उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

ओम शांति। निश्चय हमारी विजय का प्रमुख आधार है। किसी को स्वयं में बहुत निश्चय होता है, बाबा में भी संपूर्ण निश्चय होता है, और किसी किसी के पास इस निश्चय की काफी कमी होती है। निश्चय और संशय ये हमारे अनुभवों के आधार बनते हैं। जिस मनुष्य को संशय करने की आदत पड़ जाती है, जो हर घटना को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को डाउटफुल नजर से देखता है, वो स्वयं भी व्यर्थ संकल्पों में बहता रहता है और उसकी शक्तियां भी नष्ट होती रहती हैं। जबकि निश्चय मनुष्य को बल प्रदान करता है। तो पहला निश्चय होना चाहिए स्वयं में, और फिर निश्चय होना चाहिए अपने प्राणेश्वर प्यारे बाबा में। तीसरा निश्चय होना चाहिए इस विश्व ड्रामा के ज्ञान में, और चौथा निश्चय होना चाहिए बाबा के कार्य करने के तरीके में, उसकी मदद में, उसकी सामर्थ्य में। हम बाबा को कई चीजें समर्पित तो कर देते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों में हमें विश्वास नहीं रहता कि पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा विश्वास, हमारा निश्चय हमें सफलता की ओर ले चलेगा। तो अपने को चेक करें, कहीं हमारे अंदर डाउटफुल नेचर तो नहीं है? कहीं हम हर कार्य में अपने में ही डाउट तो नहीं करते? कहीं आप दूसरों को डाउटफुल नजर से तो नहीं देखते? कईयों में ये आदत होती है। दूसरा व्यक्ति किसी बात भी कर रहा होगा तो अनेक तरह के डाउट होंगे। इससे हम बाहर हो जाएं। जिन्हें अब महान योगी बनना है, जिन्हें बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है, जिन्हें इस विश्व गगन में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकना है, उन्हें तो अब एकाग्र होना चाहिए, उन्हें तो फोकस कर देना चाहिए, डेडिकेट कर देना चाहिए स्वयं को केवल एक बात पर, और वो एक बात है अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चाहे वो लक्ष्य बाप समान बनने का हो, चाहे वो लक्ष्य कर्मातीत होने का हो, चाहे वो लक्ष्य साक्षात्कार मूर्त बनने का हो, चाहे वो लक्ष्य महान योगी बनने का हो, उसके प्रति स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दे। तो आइए हम सभी निश्चय करें अपने भविष्य में, निश्चय करें अपने माला के नंबर में, मेरा यही नंबर होगा। बाबा में निश्चय करके अपने चित्त को पूरी तरह शांत कर दें। जहां बाबा के निश्चय का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं स्वयं में निश्चय बहुत बड़े महत्व का है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसे संपूर्ण निश्चय के साथ करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें कि इसमें हमें सफलता होगी ही, ये हमारा ही कार्य है। हम अपनी शक्तियों में संपूर्ण विश्वास करें, ऐसा नहीं अपने को निर्बल समझते रहें। जिनको आत्मविश्वास की कमी होती है, वो हर कर्म में निगेटिव सोचने लगते हैं, और निगेटिव सोचने की आदत पुनः इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन कर देती है। तो हमें, जैसे हम चाहते हैं दूसरे हम में निश्चय रखें, विश्वास रखें, हम भी स्वयं में भी विश्वास रखें और दूसरों में भी विश्वास रखें। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं पूर्वज हूँ, मुझे सब धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। मैं कल्प वृक्ष का मास्टर बीज रूप भी हूँ, जड़ें भी हूँ। मेरे संकल्पों का प्रवाह सारे संसार में पहुँचता है, सभी धर्मों की आत्माओं तक जाता है। हम खुश रहेंगे, सारा संसार खुश होगा। हम जितने पवित्र बनेंगे, सारे संसार को उसका बल मिलता रहेगा।
तो आज सारा दिन मैं पूर्वज हूँ इस स्मृति के साथ हम बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, स्वयं भगवान मुझ पे राजी हुआ है, उसने अपना वरदानी हाथ रख कर मुझे कहा बोलो बच्चे कौन सा वरदान चाहिए और हम ले लें उससे, और साथ साथ बाबा की शक्तियां स्वयं में भरते रहेंगे। ओम शांति।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप हाथ में लिए कार्य को भली बातें संपूर्ण कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाते और पुष्ट करते जाइए। जिस अनुपात में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसी अनुपात में आपकी सफलता का अवसर बढ़ेगा। हारता वही है जो मन में अपनी हार मान लेता है। मन में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कीजिए तो आप सबके सरताज बन जाएंगे। बहुत से व्यक्ति अपेक्षित योग्यता रखते हुए भी जीवन भर दीनहीन और तुच्छ ही बने रहते हैं। वे अपने ही विचारों की गिरावट के शिकार होते हैं। अपने ही सुझावों द्वारा वे अपने को निरुत्साहित करते रहते हैं। जब भी वे किसी महान कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तभी उनका मन इस विचार से कांप उठता है, कहीं हम असफल हो गए तो क्या होगा। बस इस आत्म सुझाव से उनका तन मन शिथिल हो जाता है, उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, काम करने का उत्साह ही नहीं रहता। संभावित असफलता के विचार का लेश मात्र व्यक्ति को शिथिल करने के लिए काफी है। मनुष्य की कार्य प्रवृत्ति और कर्म सामर्थ्य में यह आत्म सुझाव अत्याधिक बाधक होता है। यह हीन विचार मनुष्य की कार्य शक्ति को पंगु बना देता है। मनुष्य के मन में यदि यह बात घुस जाए कि वह अभागा है, तो उसमें साहस का चिन्ह मात्र भी शेष नहीं रह जाता। इसके विपरीत जो मनुष्य यह समझता है, मैं करता हूँ, अपना भाग्य विधाता मैं स्वयं हूँ, मैं भोग योनी नहीं, तुच्छ कीट नहीं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, वह अपने भाग्य को यशवर्ती बनाने में समर्थ होता है। वह अपने जीवन की प्रत्येक घटना को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने लगता है। प्रत्येक शहर और कस्बे में हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो वातावरण की शिकायत करते रहते हैं। वे उस वातावरण को बदलने की कभी कोशिश नहीं करते, और कुछ लोग उसी वातावरण में चमत्कार पूर्ण सफलता प्राप्त करके दिखला देते हैं कि वे स्वतंत्र और समर्थ कार्यकर्ता हैं। जो मनुष्य मन में यह मान बैठा है कि उसका जन्म असफल होने के लिए हुआ है, उसकी आप क्या सहायता कर सकते हैं? जो व्यक्ति चिंताग्रस्त है, असफलता से ग्रस्त है, गरीबी के विचार से चिपटा हुआ है, उसकी आप क्या मदद कर सकते हैं? जिसके अवचेतन मन में असफलता का विचार गहराई में उतर चुका है, जो हर समय बुरी स्थिति के विचार से ग्रस्त है, वातावरण और परिस्थितियों का ही रोना रोता रहता है, उसकी सहायता कैसे की जाए? जो हर काम को कठिन या असंभव मानकर चलता है, उसकी मदद आप

हम अपने दुर्भाग्य को अक्सर कोसा करते हैं। हम परिस्थितियों को प्रायः अपने दीनता का कारण बताया करते हैं, परंतु हम यह भी देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो हमारे जैसी ही योग्यता और कार्य शक्ति होते हुए भी बड़े बड़े कामों में सफल हो जाते हैं, आश्चर्यजनक रूप में धनी बन जाते हैं। कारण क्या है? प्रायः हम अपनी दीनावस्था का कारण अपने बाहर खोजते हैं, जबकि वह कारण हमारे भीतर होता है। हीन मनोवृत्ति ही वह कारण है जो हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। हम जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि उन्नति कैसे की जा सकती है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम भी उन्नति कर सकते हैं। हम हर काम में पिछड़े रहते हैं, किसी भी काम में अग्रणी नहीं होते हैं। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने विचारों को ऊंचा उठाना चाहिए, अपनी आशा आकांक्षा को महान बनाना चाहिए। बड़ा काम करने, ऊंचा उठने की महत्वाकांक्षा मन में जगानी चाहिए। फिर हमें अपनी दिव्य शक्तियों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। ऊंची से ऊंची आकांक्षा कीजिए, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा कीजिए, अपना उत्पादन सर्वोत्तम बनाने की तमन्ना कीजिए। आप ईश्वरीय शक्तियों का पुंज हैं, दिव्य शक्तियों का भंडार हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। अतः ईश्वर की ही संतान हैं आप, उस ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान है। फिर आपके लिए ऊंचे से ऊंचा पद भी छोटा है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ऊंची महत्वाकांक्षा आपके मन में जगानी चाहिए, इसमें जादू भरी शक्ति है, इसमें रचनात्मक सामर्थ्य है। छोटी इच्छा मत कीजिए, बड़ी इच्छा कीजिए, महान आकांक्षा। आप देखेंगे कि आपका चरित्र भी उसी के अनुरूप ऊंचा उठता जाएगा, आपकी कार्य शक्ति भी उसी के अनुकूल अत्यधिक परिवर्तित होती जाएगी, आपकी सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी। यदि आप स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो अपने मन में रोग का विचार ही न घुसने दीजिए। अपनी मनोवृत्ति स्वस्थ बनाइए, मन को प्रसन्न रखिए, मन को बेचैन न होने दीजिए। कहने का भाव यही है कि जो कामनाएं आप रखते हैं उसी के अनुकूल अपने मन में विचार लाइए, उससे विपरीत विचार आपको आपकी कामना पूर्ण करने में बाधा डालेंगे। इसीलिए तो कहते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यदि आप वीर और साहसी बनना चाहते हैं, तो कायरता का विचार ही मन में न घुसने दीजिए। अपनी चेष्टाओं से भय या कायरता प्रकट न होने दीजिए। यदि आप डब्बू हैं, झिझकने की आदत वाले हैं, लज्जालु हैं, तो अपने मन के इन विचारों को निकाल दीजिए। इनके स्थान पर तेजस्विता, अगुआपन और पहल को अपनाइए। कार्यों में अंतःकरण की प्रेरणा से स्वयं प्रवृत्त हो जाइए। सिर को ऊंचा रखिए, सीना तान कर चलिए। अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाइए। दूसरों पर उसका अच्छा प्रभाव प्रकट कीजिए। अपने काम की उपेक्षा न कीजिए। किसी विवरण को अनिश्चिंत न रहने दीजिए। लज्जा, भय, संकोच त्याग कर आगे बढ़िए। अपने मन से कहिए, दूसरे लोग अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, मेरी ओर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं है, और यदि वे देखते हैं तो मैं अपने काम करने में क्यों संकोच करूं, क्यों लजाऊं, क्यों डरूं, जब मेरे विचार में मेरा कार्य श्रेष्ठ है और उसमें सफल होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, तो मैं दूसरों की आलोचना की परवाह क्यों करूं? यदि किसी में झिझकने, पीछे हटने, लजाने की आदत है, तो उसे यह उपाय करना चाहिए। उसे मन में इस प्रकार सोचना चाहिए, मैं इस काम को पूर्ण करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं इस कार्य को करने में पूर्णतया सफल होने का विश्वास रखता हूं। मेरी विजय अवश्य होगी। जितना आत्मविश्वास आप बढ़ाएंगे, उसी के अनुपात से आपकी कार्य कुशलता और कर्म सामर्थ्य बढ़ेगी, और उसी अनुपात में आपको सफलता मिलेगी। स्वयं अपने मन को उन्नति के सुझाव दीजिए। स्वयं अपने मन को प्रोत्साहन दीजिए। तरक्की करने के लिए प्रेरणा दीजिए। अपने काम में सुधार करने के सुझाव स्वयं अपने मन को दीजिए। स्वयं अपने मन को श्रेष्ठता के लिए, उन्नति के लिए, सफलता के लिए उत्तेजित कीजिए। जितनी बार भी आप किसी व्यक्ति से भेंट करते हैं, उतनी ही बार आप अनजाने ही उसकी तुला पर अपने को रखते हैं। वह आपकी ऊंचाई नापता है, आपके गुणावगुण को तोलता है। वह यह देखता है कि इससे पहले की भेंट की अपेक्षा इस बार आपने कुछ

ने मन में अपने प्रति कभी भी दीनता, हीनता, शूद्रता, तुच्छता और गिरावट के विचार न आने दीजिए। जो मनुष्य यह जान लेता है कि वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, कि वह ईश्वरीय संतान है, कि उसका सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियों से सीधा संबंध है, कि वह संसार के पदार्थ मात्र पर शासन करने के लिए जन्मा है, कि वह दिव्य है, गौरवशाली है, महान है, उस मनुष्य में ईश्वर की दिव्य शक्तियां अवश्य

0: रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

दृढ़ता से बारंबार मन ही मन इस निश्चय और विश्वास को दोहराइए कि आपका स्थान बहुत ऊंचा है और वहां तक आपको अवश्य ही पहुंचना है, कि आपको अपनी आदर्श महत्वाकांक्षा की पूर्ति अवश्य ही करनी है, कि आप पौरुष के मदमाते प्रतीक हैं, अपने जीवन के महान कार्य को सफलता और सुंदरता से पूर्ण करके दिखलाएंगे। यह मानने से इनकार कीजिए कि आप किसी काम में असफल हो सकते हैं। दूसरा कहे तो कभी मत मानिए कि आपकी पराजय हो सकती है। यदि आप निरंतर रचनात्मक विचारों को दोहराते रहते हैं, लगातार उत्पादनात्मक और निर्माणात्मक भावनाओं से परिपूर्ण रहते हैं, अपने उद्दिष्ट पद को प्राप्त करने के लिए उस पर दृष्टि गड़ाए रहते हैं, अपनी तमाम शक्तियों को उसी के लिए केंद्रित किए रहते हैं, तो आप उस रचना को पूर्ण करके अवश्य ही यश के भागी बनेंगे। पूर्ण कुशलता, पूर्ण सफलता, पूर्ण विजय की कामना कीजिए। अल्प से संतुष्ट होने की आदत छोड़ दीजिए। अधूरी सफलता से संतुष्ट होकर ना बैठ जाइए। विचारों की धारा प्रवाह शक्ति से ही हम अपने वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। विचार ही वे औजार हैं जिनसे धीरे धीरे घड़ घड़ कर हम पत्थर को मूर्ति का रूप देने में समर्थ होते हैं। अपने जीवन की आदर्श मूर्ति हम स्वयं गढ़ सकते हैं, और इस कार्य में सबसे मुख्य साधन, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे विचार। सत्य, ईमानदारी, पवित्रता, स्नेह, प्रेम, दयालुता और कर्तव्य परायणता की भावनाओं को पूरी तरह अपना कर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। जितनी बार भय की भावना आपके मन में घुसने लगे, उतनी ही बार उसे बाहर ही रोक दीजिए। इसके प्रतिकार के लिए तुरंत अपनी आशा, आकांक्षा, कल्पना शक्ति, कार्य शक्ति और अतीत की सफलताओं की स्मृतियों का ध्यान कीजिए। निर्भयता और आत्मविश्वास की भावनाओं को मन में लाइए। अपनी निर्भय मूर्ति का पूर्णतया ध्यान कीजिए। मन में इस प्रकार के विचार कीजिए कि मैं कायर नहीं हूं, मैं तो पौरुष का मदमाता शूरवीर हूँ। मैं समस्त शौर्य का पुंज हूँ। संसार की कोई भी शक्ति मुझे भयभीत नहीं कर सकती। भय तो बच्चों के मन की चंचलता का नाम है। आप अपने मन को चपल या अस्थिर होने से रोकिए। भय तो मन की अस्वस्थ स्थिति का नाम है। छूत के रोग कीटाणुओं की भांति भय के कीटाणुओं को भी दूर ही रखिए। इन्हें अपने मन में स्थान न दीजिए। यदि आप भय को अपने मन में जरा सा भी स्थान दे देंगे, तो अपनी कार्य शक्ति को पंगु बना लेंगे। भाग्य या दुर्भाग्य कुछ नहीं, यह मन की मिथ्या कल्पना है। किस्मत नाम की कोई ताकत नहीं है जो एक व्यक्ति को उन्नत कर दे और दूसरे को अवनत कर दे। पीड़ता वही है जो भाग्य के भरोसे पड़ा रहता है। कर्मठ व्यक्ति तो आशा करता है, उसी के अनुरूप योजना बनाता है, अपने सारे साधन एकत्र करता है, अपनी संपूर्ण कार्य शक्ति को नियोजित करता है और अपने आदर्श के अनुकूल निर्माण करके संसार को चकित कर देता है। तो आप भी कभी भी अपने भाग्य के भरोसे पर ना बैठे रहें। अपने मन में कुछ पाने की इच्छा कीजिए, आशा कीजिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को सहज बनाने की कुंजी हमारे अपने जीवन शैली में है। जितना हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं या अप्राकृतिक चीजें करने लगते हैं, जो प्रकृति के गुणधर्म के विरुद्ध वाली चीजें हैं वो करते हैं, तो स्वास्थ्य का खोना या फिर बीमार पड़ना आसान होता जाता है। अब अगर हम स्वास्थ्य को वापस पाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका उस प्राकृतिक विधि पर वापस लौटना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य को बिठाना है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़े हैं, जो प्रकृति चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव इनका रहा है और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: ओम शांति, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, हम ये बात समझते आ रहे थे कि प्रकृति के अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल प्रकृति चिकित्सा में किया जाता है। भारत के आयुर्वेद की पद्धतियां, योग की पद्धतियों में भी पानी का इस्तेमाल एक चिकित्सा पद्धति में, एक चिकित्सक औषधि के रूप में किया जाता है, चीजों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि पानी के सही इस्तेमाल से हम कैसे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अब अनेक चीजों को समझने के बाद ये बात समझ में आती है कि पानी के इस्तेमाल को किस किस तरीके से किया जाता है प्रकृति चिकित्सा पद्धतियों में, ये चीज हम समझें। आपने अनेक चीज जैसे एनीमा हुआ, अवमन विरेचन इत्यादि के बारे में बताया, मगर पानी को क्या एक्सटर्नली भी, जैसे कल आप ये बात बता रहे थे कि गर्म पानी में पैर रख के जो गर्म पानी का नहान है उससे कितने फायदे होते हैं, ऐसे कुछ और भी चीजें हैं जहां पर पानी से जुड़ी हुई चिकित्साएं की जाती हैं?
1: अमूमन घर पे मिट्टी का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जा सकता है, तो उसकी जगह पानी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने पिछले एपिसोड में पेट पे मिट्टी की पट्टी के बारे में बताया, आप घर पे मोटा तौलिया ठंडे पानी में भिगो के उसको रख सकते हैं और हर 10 से 15 मिनट के बाद आप उसको घुमा के या उसमें फिर से पानी डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं। मिट्टी पोरस होती है, इसलिए वो सारी गर्मी खींच के बाहर छोड़ देती है, वरन पानी जो है उस गर्मी को सोखता है और खुद जो वो है वो भाप बन के उड़ता है और हल्का गर्म हो जाता है। तो मिट्टी की पट्टी को बार बार गीला नहीं करना पड़ता है, पर पानी की पट्टी को गीला करना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा में पट्टियों का प्रयोग ऊनी सूती पट्टी के रूप में किया जाता है, बहुत सी जगह उसे सिर्फ सूती पट्टी के रूप में भी किया जाता है। अगर गले पे पट्टी लगानी है तो वो 4 इंच मोटी और 1 मीटर चौड़ी होती है और उसी के समकक्ष एक ऊनी पट्टी 4 इंच चौड़ी और 1 मीटर लंबी होती है। अगर कमर, दोनों पैर या दोनों हाथ पे बांधने हैं पट्टी को या छाती पे बांधना है पट्टी को, तो वो 9 इंच मोटी और 3 मीटर लंबी होती है। तो 3 मीटर लंबी कॉटन की पट्टी और 3 मीटर लंबी ऊन की पट्टी, ऊन से बना हुआ कंबल की पट्टी समझ लीजिए। इसमें जो कॉटन की पट्टी है, ये खादी की पट्टी हम लोग आरोग्य मंदिर में इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण ये है कि वो अच्छा कॉटन होता है और वो कपास पानी ज्यादा सोखता है, तो वो ज्यादा गीला रहता है और खादी आश्रम से मिला हुआ जो कपास है उससे इरिटेशन नहीं होता है लोगों को, क्योंकि उसको प्रोसेस बहुत नहीं किया जाता है। अब हम गले पे पट्टी लगा सकते हैं। आप विचारिए कि आप पहले कॉटन की पट्टी को गीला किया और अपने गले के चारों तरफ उसको बांध लिया और उसके बाद उसके ऊपर एक गर्म पट्टी बांध ली। अगर बहुत गर्मी का मौसम है और आप काम कर रहे हो तो आपने गले पे पट्टी लगा लिया, आपने पेट पे पट्टी लगा दिया, वो आपके उस क्षेत्र को थोड़ा ठंडा कर देती है। पर अगर आप ऊनी सूती पट्टी लगाते हो तो ऊनी सूती पट्टी में 3 प्रक्रियाएं चलती हैं, एक शीतकारी, दूसरा समकारी और तीसरा उष्मकारी। शीतकारी का मतलब है कि पहले आप जब भी ठंडा कुछ भी अपने लपेटेंगे तो वो आपको ठंडक प्रदान करेगा, तो आपको वहां पे ठंडा लगने लगेगा। 10 से 15 मिनट के बाद आपको वो ठंडक का सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको वहां पर नॉर्मल फील होगा। और अंत में अगेन 10 से 15 मिनट बाद, मतलब टोटल 25 से 30 मिनट के बाद, आपको पसीना आने लगेगा और वहां पे गर्मी होने लगेगी। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी समझें इन पट्टियों की, जहां भी ठंडक होती है वहां पर रक्त का संकुचन होता है, मतलब ब्लड फ्लो वहां पे रुकता है, कम होता है, क्योंकि ठंडक में, सोचिए जब भी बहुत ठंडक होती है तो हम लोग बैठ जाते, हिलते डुलते नहीं है। केमिस्ट्री में कहा जाता है कि किसी को फ्रीज कर दो तो मूवमेंट कम हो जाएगा, तो मूवमेंट कम हो गया, 10 से 15 मिनट के बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो ब्लड सर्कुलेशन वापस आना शुरू करेगा, और जब 20 से 25 मिनट हो जाएगा तो एकदम तीव्र गति से ब्लड आएगा उस एरिया में और वो पूरे के पूरे टॉक्सिन्स को, गंदगी को वहां से निकाल के ले जाएगा। प्लस जो पसीना आ रहा है वो भी उन टॉक्सिन्स को हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, हमारे पसीने के थ्रू वहां से बाहर निकालेगा। गले की पट्टी, गले की जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आपके थायराइड की, आपके बोलने के लिए आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है, इवन नेक पेन, हल्का माइग्रेन अगर आपको है तो, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। छाती की पट्टी अगर हम बांधते हैं तो इससे आपका हार्ट और लंग्स दो चीज इससे कवर होती है, मतलब आपके फेफड़े और आपका हृदय इससे कवर होता है। तो जितने भी फेफड़े की बीमारियां हैं और जितनी भी हृदय की बीमारियां हैं उसमें आपको लाभ मिलता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका एस्मा, आपको आराम मिलता है, आपको दमा, जुखाम, सर्दी, खांसी, इन सब चीजों में आराम मिलता है। कोरोना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई नेचुरोपैथी का इलाज पैर का गर्म नहान और छाती की पट्टी थी। आपको दमा है, जो लोग 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, आप रोज अगर उनको छाती की पट्टी बांधिए तो उनका छाती खुल जाएगी, सांस लेना अच्छा हो जाएगा, अच्छा जो उनके टर्मिनल एल्वियोलाई है या जो फेफड़े के अंतिम छोर है वहां तक ऑक्सीजन जाने लगता है, और जो म्यूकस बन रहा होता है जो हमारे फेफड़ों को ब्लॉक करता है हवा जाने के लिए, वो खुलने लगता है और वो म्यूकस बाहर भी निकल जाता है गले और छाती की पट्टी बांधने से। तो दमा में इसका चमत्कारिक लाभ है। पेट की पट्टी, पेट की पट्टी अगर हम बांधें तो आप ध्यान देंगे कि आप अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बांध रहे हैं, जैसे लिवर हुआ, आपका पेट हुआ, आपकी छोटी और बड़ी आंत हुई, आपकी पैंक्रियाज हुई और आपकी किडनी हुई, और पीछे रीढ़ की हड्डी भी आपकी बन रही है।
0: जैसे आप पहले कह रहे थे कि जैसे मड पैक्स लगाते हैं तो हम पेड़ के हिस्से में लगाते हैं, उसको तो सिर्फ एक पैच के रूप में हम लगाते थे, मगर ये जो पानी की पट्टी है, ये जो पेट के ऊपर जो पानी की पट्टी लगा रहे हैं, वो पूरा ही एक ऐसा रोल लगा दे रहे हैं कि पूरे कमर पे इसे लपेट दिया जा रहा है।
1: जैसे आप ये समझिए कि आप सर्कल कर रहे हैं पूरा, जैसे किसी डब्बे को पैक करते हैं तो चारों तरफ से उसको लपेट देते हैं, उसी तरीके से 3 मीटर कपड़ा जो है वो पूरे कमर पे लपेट दिया जाता है और उसके ऊपर 3 मीटर ऊनी कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि अगर जो ऊनी कपड़ा है वो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, इसीलिए ऊनी कपड़ा लपेटा जाता है। अगर सादी आप कॉटन की पट्टी लगाएंगे उसका इलाज 10 से 15 मिनट के बाद खत्म, मगर आप ऊनी पट्टी लगा देंगे तो वो इलाज 30 से 45 मिनट तक हो सकता है। अब हमने अगर कमर पे बांधा है तो आप सोचिए पेट के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको आराम मिलेगा, हमारे लिवर, हमारा स्टमक, हमारा पैंक्रियास, हमारे किडनी और हमारा मेरुदंड, मतलब रीढ़ हमारी या हमारा स्पाइन। तो जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको किडनी की परेशानियां हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको गैस बन रही है, और ये जो लोग बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी, ये पट्टी उसमें भी काम करती है क्योंकि ये टॉक्सिन्स निकालती है। प्लस अगर आप थोड़ा भी वेट कम कर रहे हैं तो ये स्किन की टोनिंग कराती है पेट। हमें चिकित्सालय में बहुत सी यंग लड़के लड़कियां आते हैं जिनका मोटापे की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, वो इस पट्टियों को हमेशा मांग करते हैं कि हमको ये सुबह शाम दोनों समय बांध दीजिए, क्योंकि उनको इतना अच्छा लाभ मिलने लगता है इससे कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा स्वास्थ्य लाभ मिले, वो ये चिकित्सा सुबह शाम कराते हैं। जैसे जो बहने या महिलाएं जिनका हाथ बहुत वजन है और फिर वो स्किन लूज होने लगी तो वो इस पट्टी को बांधती है तो बहुत अच्छा स्किन टोन होता है और वो पूरा का पूरा जो स्किन है वो वापस अपनी जगह चली जाती है, तो कहीं भी लूज स्किन आपको नहीं दिखती है। आपके कमर पे जो भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वो सारे इस पट्टी को लगाने से खत्म हो जाते हैं। अब ये पट्टियां आपके दोनों हाथ में भी बांधी जा सकती है और दोनों पैरों में भी बांधी जा सकती है। हम प्रायः शाम को अपने अधिकतर मरीजों को कमर और दोनों पैरों की पट्टी बांधते हैं। उसका ये लाभ है कि अगर हम पैर में इसको बांधते हैं तो पैर से ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने लगता है और हमारा, जैसे हमको कहा जाता है कि पैर हमारे जो काफ मसल्स हैं हमारे पैर में वो हमारा दूसरा हार्ट है, हमारा दूसरा हृदय है, तो अगर हम इनको बांधते हैं तो काफ मसल का कंप्रेशन होता है और ब्लड बहुत अच्छा हृदय की तरफ जाता है, तो हमारे हृदय को कम काम करना पड़ता है। दूसरा, हम आरोग्य मंदिर में ये लोगों को कहते हैं कि आप सुबेरे और शाम 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक टहलिए, तो जो भी पैर का दर्द, जो थकान हो रही होती है, वो कमर और दोनों पैरों की पट्टी से एकदम खत्म हो जाती है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो जिन्होंने कभी भी 45 मिनट वॉकिंग नहीं की या चले नहीं है, उनको जब हम यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं बिना जूतों के मिट्टी पे चलिए या नंगे पैर चलिए, तो उनको पैर में भी दर्द होने लगता है, काफ में भी दर्द होने लगता है, हैमस्ट्रिंग भी दर्द होती है। तो 2-3 दिन ये पट्टी बांधने से उनका पूरा का पूरा दर्द खत्म हो जाता है और वो आराम से टहल पाते हैं और योग भी कर पाते हैं। श्री भैया, हम और जो चिकित्सालय आ रहा है वो अपना 24 घंटा अपनी सेहत के लिए देने के लिए आया, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और उसको हम सारी जो उसकी अड़चने हैं चिकित्सा में उसको हम कम करने की कोशिश करें। जिनको पैर में आर्थराइटिस होता है, हाथ की उंगलियां जिनकी टेढ़ी होने लगती है आर्थराइटिस, उनको भी ये ऊनी सूती पट्टी बहुत लाभ देती है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब आप इन पट्टियों की बात कहते हैं, आपने कहा कि सूती कपड़े का होना चाहिए, फिर ऊनी पट्टी भी होती है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, ये चीज आपने बताया, क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते ही ये इनको लगता है कि नहीं, पहले इसे हमें बाजार से जाके खरीद लाना है, ये करना है, बट टू शुरू करने के लिए कि भाई ये चीज कैसे की जाती है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कैसे हम इस चीज को करें, तो क्या घर में जो टॉवल्स हैं या कॉटन के कपड़े हैं उनसे हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करें। कि आपने कहा कि भाई पानी वाला ये जो वेट पैक होता है ये 10-15 मिनट में फिर सूख जाएगा, तो फिर इस बात को समझें कि कितना लगाना है, कितने इंटरवल पे लगाना है, कितने देर भिगोना है, कितने देर रखना है।
1: श्री भैया, आपको सबसे पहली जो चीज का ध्यान देना चाहिए कि आपको भोजन करने के तुरंत बाद इसको नहीं बांधना चाहिए और जब ये बंधी हुई है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली, भैया गीला कपड़ा है, अगर वातावरण बाहर का बहुत ठंडा नहीं है तो अपने घर में ही इसका प्रयोग कर लीजिए। आप खुद देखिए कि बहुत सारे खेल खिलाड़ियों का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं कि और स्पेशली फुटबॉल मैच में वो पूरा का पूरा स्पंज या तौलिया गीला करके अपने सर पे डालते हैं कि सर पे गर्मी उनके ना चढ़ जाए जब वो खेल रहे होते हैं। आपको आपके घर का पुराना तौलिया कॉटन का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पट्टी खरीदनी है तो आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये मिलती है, नहीं तो आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में चले जाइए, वहां ये आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो सिर्फ 9 इंच चौड़ा और 3 मीटर लंबा मार्किंग का कपड़ा लेना है, कोई भी कॉटन कपड़ा लेना है, ये बाजार में आपको इजीली मिल जाएगा। ये तो आपका घर का आपका लोकल दर्जी या आपके घर में अगर सिलाई मशीन है तो खुद ही आप 1 मीटर ले लीजिए, काट काट के 9-9 इंच का उसको जोड़ लीजिए, 3 मीटर का आप बना लेंगे उसमें। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाने में। प्राकृतिक चिकित्सा की अधिकतर इलाजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर वो आपको फायदा कम दे रहे हैं तो नुकसान तो एकदम नहीं देंगे, क्योंकि कुछ भी आपके शरीर में जा नहीं रहा है। इसको यहाँ हम लोग सुबेरे नाश्ते के 1 घंटे बाद करीब 9:15-9 बजे लगाते हैं, जब हमारा रोगी जो है वो सुबेरे का घूमने के बाद योगा करके अपना फल और जूस पीने के बाद 1 घंटे के गैप के बाद हम ऊनी सूती पट्टी लगाते हैं, फिर इलाज देते हैं। और दोपहर का जो भोजन हमारे यहाँ करीब 12:30-1 बजे तक खत्म हो जाता है, तो हम इसे 3-3:30 बजे लगाते हैं, जिससे रोगी को आराम मिले। और इसको लगाने के बाद वो करीब 5:30-5 बजे अच्छे से वॉक कर लेता है 1 घंटे के लिए, जिससे उसे पूरा स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। ठंडे पट्टी की तो इतनी अच्छाई है कि इसको प्रेग्नेंट फीमेल्स या गर्भवती महिलाएं भी लगा सकती हैं। इससे उनके जो पेट में तनाव हो रहा है वो कम होगा, रक्त संचार बढ़ेगा, और ये भी कहा जाता है रेगुलर वेट शीट पैक लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये इतनी चमत्कारिक पट्टी है।
0: अब जैसे आपने इन पट्टियों के बारे में बताया, एक पट्टी जब आप कहते हैं कि भाई भोजन के समय पे नहीं लगाना है, भोजन के 1.5 घंटे बाद लगाना है, तो कितनी देर तक के लिए लगाए रखना है, ये भी बात समझी जाए।
1: अगर आप कॉटन पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कॉटन, तो 10-15 मिनट, और अगर आप ऊनी सूती, मतलब पहले कॉटन पट्टी आपने बांधी और उसके बाद आपने उसके ऊपर ऊनी पट्टी बांधी, तो आप इसको करीब 35-45 मिनट तक अपने शरीर के ऊपर लगा सकते हैं। आप इसको लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इसको लगा के एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए और बहुत टहलना और दौड़ना नहीं चाहिए। बाकी आप बैठ के कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई, अपने ऑफिस का काम, या जैसे हम और आप रेडियो मधुबन पे बात कर रहे हैं, हम बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है इसका।
0: जैसे ये बात तो समझ में आती है, क्या हर दिन जो ये वेट पैक्स लगाने की बात हो रही है, पानी की पट्टी लगाने की, गीली पट्टी लगाने की बात हो रही है, एक दिन में इतना समय लगाना होता है? यानी जैसे सुबह आपने कहा कि भाई नाश्ते के बाद हमने लगाया तो 15-20 मिनट लगा के रखा, फिर दोपहर को 15-20 मिनट, फिर शाम को 15-20 मिनट, ऐसा कुछ होना चाहिए या दिन में इतने मिनट ये लगा के रखने का ये होना चाहिए?
1: श्री भैया, हमारी आपकी बात जो भी सुन रहे हैं वो सब लोग काम करते हैं, वो सब काम करने जाते हैं और शाम को अपने काम से वापस आते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि जब शाम को वो लौटे तो इसको अपने कमर पे या पैर में या छाती पे या गले पे, जहां भी मन हो इसको लगा ले और आधी घंटा ऊनी सूती पट्टी का प्रयोग करिए, वो ज्यादा अच्छी है। और आप उसको आधी घंटा से 45 मिनट तक लगा लीजिए। जो मोटे हैं व्यक्ति, जिनको अपना पेट कम करना है, जांघें कम करनी है, हाथ पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करना, वो इसे रोज लगा सकते हैं। मगर भाग दौड़ की दुनिया में अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो वीकेंड पे लगाइए और आप इंजॉय करिए और इसके लाभ देखिए। जिस दिन आप इसको लगाएंगे उस 2-3 दिन के बाद आपको अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव लाभ आपको मिलने लगेगा और आपका शरीर ज्यादा तरोताजा होगा और आप ज्यादा रिफ्रेश फील करेंगे इससे।
0: ये तो बात समझ में आ रही है डॉक्टर साहब की, जो ठंडी पट्टियां हैं पानी के अंदर भिगो कर कॉटन के, इन पट्टियों को अपने ऊपर लगाना, शरीर के अलग अलग अंगों पर लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये बात समझ में आती है। ये भी बात समझ में आती है कि इनको बनाने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, ये तो घर में ही मौजूद चीजें हैं उससे शुरुआत की जा सकती है और करके देखने वाली चीजें हैं, और ये करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं, बस पानी में भिगोना ही है और फिर लगाना है और लगाकर देखना है कि इसके फायदे क्या हैं। जैसे आपने कहा कि प्रकृति चिकित्सा में जो भी चीजें हम करते हैं, ज्यादातर चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हम शरीर के अंदर कुछ नहीं डाल रहे हैं। जैसे वेट पैक्स की बात की जाती है, क्या इसमें मौसम का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? क्योंकि प्रायः क्योंकि माउंट आबू में जहां पर हम रहते हैं, हमारे यहाँ सर्दियां बहुत तीक्ष्ण होती हैं, सर्दियों के महीनों में बहुत ज्यादा ठंडक होती है, क्या मौसम के हिसाब से भी इसका कुछ ध्यान रखने की जरूरत है?
1: आप इसको हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यदि किसी को ठंडक ज्यादा लगती है तो इसको अवॉइड कर सकता है। अगर जैसे हमने कहा आबू में ठंड बहुत है तो दोपहर में 3-2 बजे जब धूप है तब लगा लीजिए, आपको इसका फायदा मिलेगा। अब बदली छाई हुई है, आप खांस रहे हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, हल्का बुखार लग रहा है, उसमें भी आप अगर इसको लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपका टेम्परेचर कम होगा, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी और आप उस बीमारी से लड़ने लायक हो जाएंगे। कुछ मरीज जो बहुत कमजोर होते हैं उनको हम आधी घंटा न लगाकर इसको 20 मिनट के लिए लगाते हैं, पर ये किसी भी मौसम में लगाई जा सकती है। लगाने के बाद अगर आपको लगे कि आपका सर्दी जुकाम बढ़ गया है तो घबराइएगा मत, ये आपके अंदर की गंदगी विजातीय द्रव्य निकल रहा और प्रकृति किसी भी रोग को दबाती नहीं है, वो आपके शरीर से उसको बाहर निकाल के फेंक देती है। इसीलिए कभी कभी जब प्राकृतिक चिकित्सालय में लोग इलाज कराने आते हैं तो 6-7वें दिन वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी दवाइयां धीरे धीरे हम कम करने लगते हैं, दूसरा उनको जो भी गंदगी है टॉक्सिन से वो बाहर निकलने लगते हैं, तो उसको लगता है अरे ये तो क्या हुआ, हम आए और हम तो और बीमार पड़ गए। इसीलिए हम अपने यहाँ जितने भी रोगी हैं उनसे रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं और उनको धैर्य बंधाए रखते हैं कि बस एक दिन और, और ऐसे करके उनको बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है।
0: बहुत ही खूबसूरत ये आज की बातचीत रही है डॉक्टर साहब, जहाँ पर हमने इन बातों को समझा है कि प्रकृति चिकित्सा के फायदे कितने हैं और ये जो गीली पट्टियां हैं जो पानी को यूज करके, पानी के अंदर कॉटन की इन पट्टियों को भिगो कर जो हम अलग अलग जगह लगा सकते हैं, गर्दन पर, छाती पर, अपने पेट पर, पूरे कमर पे लपेटने से, पैर पे लगाने से क्या फायदे होते हैं, ये बात समझ में आ रही है। वक्त कहता है कि यहाँ पर विराम लेना होगा, मगर आज जो बहुत सारी अच्छी चीजें समझ में आई हैं वो पानी के इन गीली पट्टियों का इस्तेमाल व्यक्ति घर में ही बना के कर सकता है और इसको दिन में आधा घंटा अगर वो लगाता है तो उसके अनेक फायदे वो व्यक्ति देख सकता है, ये बात समझ में आई है। आज दोस्तों इसी मोड पर हम अलविदा कहेंगे। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच आए और उन्होंने गीली पट्टियों के बारे में गहराई से, इसके फायदों के बारे में हमें अवगत कराया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके आपको क्या फायदे हो रहे हैं वो अपने फीडबैक्स भी रेडियो मधुबन के नंबर 9414151415 पर व्हाट्सएप करें या मैसेज करके बताएं। डॉक्टर साहब, हमारे सभी श्रोता मित्रों की ओर से आज आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: दोस्तों, ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम में हमने ये बात समझी है कि प्रकृति के तत्वों को सही तरीके से इस्तेमाल करके कैसे हम अपने स्वास्थ्य को फिर से ठीक करने में अपने आप के वैद्य बनकर, अपने आप के मददगार बन सकते हैं और प्रकृति हमें हील करने के लिए कितना सब कुछ कर सकती है, समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूँ, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली। घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी। एक बार आगे बढ़ें और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है।
1: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम व्हेन वी गो टू वर्क, एंड नाउडेज इन द ऑफिसेज इट इज सेड ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क। क्योंकि एक समय था जब कहा जाता है कि ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, सिर्फ यू नो कि यहाँ पर है इंटेलिजेंस, हम सारे आइडियाज़ देंगे, टॉप मैनेजमेंट सारे आइडियाज़ देगी, जिसको हम पिरामिड स्ट्रक्चर कहते थे कि जो टॉप के लोग हैं आइडिया सिर्फ उन्हीं के होंगे और जो लोअर लेवल पर आएंगे उनको सिर्फ उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क। फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो, अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हर एक के आइडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया यू नो लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया, एवरीबडी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क। बट देन वॉट हैपन, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आर हैंड्स एंड हेड टू वर्क। अर्लियर वी वर ब्रिंगिंग ओनली हैंड टू वर्क, इट वॉज वेरी सिंपल, एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
0: कई सारे हाथ काम करने वाले,
1: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो करते गए,
0: और उस वक्त की जरूरत भी शायद वही थी।
1: अब जब सो मेनी हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, यू नो, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे आ गए कि सब लोग एक ही लेवल पर हैं एज फार एज गिविंग द आइडिया इज कंसर्न, तो जहाँ इतने सारे हेड्स केम टू वर्क, तो दैट मीन्स हेड अर्थात ईगो, इतने सारे ईगोज केम टू वर्क ऑल्सो, माई आइडिया is better than your idea, ya aapka idea kyun liya gaya, mera idea kyun nahi liya gaya, mera idea zyada better hai, to jahan sirf haath aa rahe the na, ego problem kam thi kyunki koi competition nahi tha, lekin where all the heads started coming to work, the sari jo IQs thi, egos thi, wo sari clash hone lag gayi, aur jahan itni sari egos clash hone lag gayi, tab problems aane lag gayi, aur fir हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो, हेड्स हैंड्स एंड हार्ट टू वर्क। क्योंकि हार्ट टू वर्क से क्या होगा, यू आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग योर आइडियाज, आपकी ईगो सिर्फ नहीं लेकिन बिलोंगिंगनेस, हार्ट जहाँ है अर्थात क्या कि बिलोंगिंगनेस है, दिस इज योर ऑफिस। हम एक पॉसिबल है ये कि हम अगर चाहें तो अपने ऑफिस को अपना घर बना सकते हैं,
0: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए।
1: जहाँ तक अटैचमेंट की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में, बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस बट अटैचमेंट इज टू माय इमेज, अटैचमेंट इज टू माय आइडिया। आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है, क्यों, क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है, आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजीशन से ना हो, अपने आइडिया से तो है। मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर, आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज। तो अटैचमेंट्स तो हमारी बहुत सारी चीज़ों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई। अगेन, अटैचमेंट वो जहाँ दर्द है, और बिलोंगिंगनेस वो जहाँ प्यार है लेकिन दर्द
0: नहीं है। और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, वो मुझसे ही रिलेटेड,
1: बिकॉज अटैचमेंट है क्या, फिजिकली तो अटैचमेंट नहीं है ना, यहाँ हम किसी चीज़ को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा है, इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे। सारा दिन तो सबसे ज़्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे, अटैचमेंट्स। और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए, क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मैनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ। लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग

0: वहाँ हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना.
1: वहां तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ. वहाँ इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है. अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए, तो वहाँ हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक
0: तो ये
1: देगा.
0: डर यहाँ है, ये डर हमें है. क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है. अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते चाहिए. ऑफिस और घर में क्या फ़र्क है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है. बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए. ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और वट एवर, वो एक गलती करता है, वट विल आई डू?
1: सारी जगह फैलाया जाए.
0: नाउ दैट इज द डिफरेंस. क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है. तो देयर द एटीट्यूड विल बी, उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हर एक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो. ये सब किस लिए? बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेम्बर, ही वॉज माई फैमिली मेम्बर. डिफरेंस यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की, इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है, वो गलती करे और मैं सबको बता दूं कि देखा, एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन ऑल्सो पुलिंग हिम डाउन ये गलती की. तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी. तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर, अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर और इवन सेम एज, वट एवर, गलती की. हेल्प द पर्सन आउट एंड जस्ट कीप इट बिटवीन द टू पीपल. क्या होगा उस रिलेशनशिप में? दिस इज कोऑपरेशन, वो था कॉम्पिटिशन. अब ये जो अगर हमने कर लिया एक बार कि किसी ने गलती की और हमने उसको किसी को नहीं बताया, बिल्कुल किसी को नहीं बताया, जहाँ तक ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट नहीं की उसके, और उसको सिखा कर समझा कर सॉर्ट आउट करके बिल्कुल उसको भी हल्का कर दिया. वट यू हैव अ फैमिली मेम्बर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट टिल यू आर ओनली इन दैट ऑफिस, यू हैव अ फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बट वी डोंट वॉन्ट टू बिल्ड दीज रिलेशनशिप्स बिकॉज वी आर इन दैट बिलीव सिस्टम कि सबको पीछे गिराना है और खुद आगे भागता जाना है. तो अगर ऑफिस में वो जो लोग हैं उनको भी परिवार की तरह भी नहीं, परिवार ही, दिस इज माय फैमिली, दिस इज माय ऑफिस, दिस इज माय होम, तो वो ऐसे होने लगेगा कि जब आप सुबह घर से उठेंगे तो आप एक घर से उठेंगे
1: दूसरे परिवार
0: दूसरे घर में पहुंच जाएंगे, एंड संडे को आप उस परिवार को मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे नहीं मिलते हैं, एंड मंडे मॉर्निंग You will look forward to meeting them again. It is possible. And for that, I don't have to wait ke pura office kab aisa ban jayega. No, kyunki wo hone nahi wala. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. Wo chahe junior most vyakti ho us office ka. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
1: Actually, I can feel the, you know, vibrations. अगर एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा एटीट्यूड, पूरा का पूरा हमारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा जब हम अपने ऑफिस में एंटर करेंगे.
0: और जब आप पहुंचेंगे ना सारा दिन में, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, यू नो दैट फीलिंग, क्योंकि वो आपको यही नहीं लगेगा कि आप ऑफिस में हैं. कोई भी चीज़ अगर आप इंजॉय करते हैं कोई भी ग्रुप के साथ, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो हल्का कितना लगता है, क्योंकि आप
1: घर पे भी जो काम कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम
0: बिल्कुल नहीं लगता. तो थकावट नहीं होती है, एनर्जी सारा दिन ऑफिस में एनर्जी ड्रेन आउट क्यों हो जाती है? ये छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं, इसको नीचे खींचना, इसको नीचे गिराना, इधर से उधर तक गए, वेंडिंग कॉफी मशीन तक गए, उसके वहां खड़े हुए, कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है, जब तक वो पिया चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए. दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन. pulls down. How can I feel good? Mm.

0: तो कैसा अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं। लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें, हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है ना। इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट, ना माय चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ। तो टुमोरो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बट दिस थॉट आई एम गोइंग टू माय फैमिली।
1: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस,
0: इट्स ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
1: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम।
0: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी, तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है। सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड, एक ऑरा तो है हर एक का। तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है। तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं। अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके, और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें, तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है, एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
1: मुझ तक नहीं पहुंचेगा।
0: आई एम स्टेबल, आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए। मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ। अब आप मुझे ओवर पावर नहीं कर सकते। तो आप यहाँ नेगेटिव हैं, लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी। ये सेकंड स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज थी, मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपकी नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया। सेकंड स्टेज, आप जहाँ हैं वहाँ हैं, आई रिमेन स्टेबल। नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ, लीकेज नहीं होने दो सारा दिन। थर्ड स्टेज क्या पहुँचेगी?
1: मेरी आप तक पहुँचेगी, आई विल ओवरपावर यू।
0: एब्सोल्युटली, माई पॉजिटिविटी आपको ओवर पावर करेगी, और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर, क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है। नाउ वाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी? इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी, तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी।
1: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनली और आउटर, बोथ शुड बी सेम इन सिंक।
0: हाँ, हियर वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इनर,
1: यू नो, हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चल रहा
0: है। हम एक ऑफिस के ग्रुप में, एक कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन्स जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए। तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट, एंड देन दे सेड फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे, यू नो, एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं, उसकी तो लेवल
1: वही आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
0: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है। लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे। इफ आई चेंज
1: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली, बहुत
0: ओनली इंटरनली, क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है, तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए। वो कैसे निकलेगा, यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर। अभी एफर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली। लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा, तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत
1: के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। वंडरफुल, एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो, ये माइंडसेट दिमाग में आते ही कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा, यू नो, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहाँ मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी, तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, यू नो। हम पहली चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती,
0: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना। देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में, गुस्से में, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है? कोई नहीं जाता। अगले दिन वापस वही उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल लेती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस. Why? It's okay. See, conflict in, you know, छोटी छोटी बातों पे difference of opinion, that's going to always be there. लेकिन जहाँ वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है, और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत ईजी हो जाता है.
1: पहली चीज, पहला थॉट आता है लीव.
0: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना, तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत ईजी है.
1: बहुत सुंदर. आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माई रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माई रिलेशनशिप टू द ऑफिस, यू नो, माई बिलोंगिंग फीलिंग कि आई बिलोंग टू दैट ऑफिस. अगर ये माइंड सेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा. अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहाँ पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सॉल्यूशंस उसी में ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट इज़ कि मेरे प्रोजेक्ट को या मैंने जो जितना जहाँ तक पहुँचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया. दैट्स द बिगेस्ट हर्ट.
0: अगेन आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी. एक प्रोजेक्ट इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. एक चीज़ की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है. और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए? मोटिवेशन. कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? तो वर्तमान समय एक चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज़ औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें. मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन ये पॉजिटिविटी है. लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे? उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है. लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा काम अच्छा नहीं है. लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है, अ जूनियर एंड अ सीनियर लेट्स से, एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड. ओके, अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मे भी मेरे पापा किसी बात से परेशान है, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं मैं कल डिस्कस कर लूँगा. वाई कैन अ जूनियर नॉट थिंक द सेम थिंग अबाउट हिज सीनियर? कि मे भी ही इज़ अपसेट अबाउट समथिंग, वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में है. क्या बात है जो उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया मैंने ये किया? क्या होगा उससे? इमिजिएटली आपके यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी. अभी क्या था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जान के खींचने किया ये, हाँ मुझे आगे नहीं, क्या गया,
1: खुद डर गए हैं. सबसे बड़ी इनसिक्योर, खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ. तो हो सकता है आप ज्यादा,
0: दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. हो सकता है कि सच में ये रीजन हो इफ यू फील लाइक दैट, लेकिन ऑफ कोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है. कई बार तो वो अपनी घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबीयत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीज़ें उनके माइंड पर हैं, और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज़ उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है. तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, तो कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा? डू यू थिंक इट वॉज ओके? आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था. वेन विल आई डू दिस? इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू. लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट. तो उससे क्या होगा, हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विड्रॉ हो जाते हैं. अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मैनी मैनी मैनी मैनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देर इज सम स्ट्रैटेजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं? नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क. वॉट इज द चॉइस, क्योंकि आपकी विशेषता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है. और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर. आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं. तो फिर मुझे क्या होना चाहिए?
1: लेकिन मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ ना, क्योंकि
0: अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी. आई हैव टू रियली रियली टेक केयर. सी दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट इज हैपनिंग, कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवर पावर हो रही है. ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए. इफ वी फील कि वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए एंड दे सक्सीडेड, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों. तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई एंड नाउ ही सिक्योर. अब वो सिक्योर हो गए कि हाँ, इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई. तो आई लेट हिम विन ओवर, आई लेट हिम ओवर पावर मी एंड देन आई से उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया. किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा. आई गेव इन, आई यू नो आई गेव इन टू दैट पावर. दूसरे ने कोशिश की, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म, मैंने वो होने दिया. अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन, वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में. मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं हैं. तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा?
1: मैं खुद.
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन. व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट? जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एम आई हैप्पी विद इट?
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए.
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहाँ पावर है, एनर्जी है, वहाँ ग्रोथ है. जहाँ पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं. आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे. एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब. लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट, लर्निंग, वर्किंग हार्ड, गोइंग ऑन, वो अगली जगह पर यूज हो जाएगा. लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता. ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी जस्टिफाइड, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ. तो उसको गिव अप नहीं करें. इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं. लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं. सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, मैं कितना अच्छा, सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है. सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड.
1: वंडरफुल, आई थिंक इट गिव्स अ न्यू रियल न्यू डायमेंशन. शिवानी, अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर. हम ये सोचते थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए? लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है, तो वहाँ ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में. अब इजाज़त लेते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान लें कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी। जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहाँ एक प्रॉब्लम आई आई चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज। अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है 09999934555, 09999934666, 09873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ मेडिटेशन कितनी ज़रूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का आस्पेक्ट वहाँ पर भी होना ज़रूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। अब दीजिए इजाज़त, ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। तो आइए आज के इस दिन को यादगार बनाते हैं। सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, तो आप सभी को आज के दिन की और पूरे हफ्ते के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, बहुत जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हो, मुझे तो है ईश्वर से काम। जग रूठे रूठन दो, हरिओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ये गाना भी हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी जी,
1: धन्यवाद सर
0: जी, शुक्रिया। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये थे हमारे मित्र खास बुढ़ीलाल जी, जो आप सभी को बड़े प्यार से याद करते हैं और बेहद खुशी होती है जब उनकी बातें सुनते हैं। तो चलिए, थोड़ी देर में मैं डॉक्टर दिनेश चहल का इंटरव्यू सुनाने वाला हूं। जैसे हमने रतन जी का सुना था, ऐसे ही इनका खूबसूरत अनुभव है जो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने वाला हूँ। और अभी आपको सीधे ले चलता हूँ आज के दिन विशेष के बारे में बातें करते हैं। और बहुत ही सुंदर ओम नमः शिवाय गीत को भी याद किया है सोमवार के दिन, और अच्छा लगता है ओम नमः शिवाय याद करते हैं तो ये एक नमस्कार करने का परमात्मा को और याद करने का सिंपल तरीका है। और परमात्मा हमेशा कहते हैं कि मुझे याद करो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मनुष्य जीवन में हमारे साथ जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं और उस पाप को धुलाई करने का या क्लीन करने का काम शिव परमात्मा करते हैं। इसलिए उनका कहना है कि आप मुझे बड़े प्यार से याद करो। तो जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही आत्मा शुद्ध और पवित्र

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और जैसे ही आप इसमें डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है डूबे रहे। चलिए, 11 मई 2026 आज का तारीख है और राशि शके 1948, शके 21, गते 28, शुद्ध ज्येष्ठ सोमवार आज है। विक्रम संवत 2083, शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी सोमवार सतविशा आज है और इस्लामी हिजरी 1447 जिलकत पीर अब यह आज है। इसके साथ ही आज शहादत हसन मांटो का जन्मदिन है, मृणाली शाराबाई का भी जन्मदिन है। ये विशेष साहित्यकार रहे हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी आज है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मतलब है नेशनल टेक्निकल डे। तो आज सभी को 11 मई की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he is in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवॉपरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, they're so damn tired. किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, somehow he comes out, और वो अपना घर देखता है, 100 meters away. 100 meters seems to him as 100 kilometers, because he's so tired. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? No. He will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, lekin 100 meters Indian record to usko todna hi tha. What I'm trying to communicate is, aisa nahi hai ki uske paas energy nahi tha, energy tha. But he kept on programming, I'm tired, I'm tired, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. Jaise usne us kutte ko dekha to kya kya, ek switch off kiya, dusra switch on kiya, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन, राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock, ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है। सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है, और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा, और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock, he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aaram karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा। एंड बिफोर द अलार्म कैन रिंग, दिस जेंटलमैन इज सो फ्रेश। इट्स अ वे वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स। अ सारा दिन ही इज देयर इन खंडाला एंजॉयिंग हिमसेल्फ, प्लेइंग इन द घाट्स, एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड हार्डली हैड 3 to 3.5 आवर्स ऑफ स्लीप, बट नो फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। इट इज द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग दैट वी डू।
2: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियां और मनोरंजन, ये है नई किरण।
3: अब की जान, अब की शान, अब निवासियों की है पहचान, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चहल जी हमारे साथ है, और उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप प्रोफेसर हैं, डिप्टी ऑफ टीचर्स एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आप अपनी सेवा देते हैं। तो निश्चित तौर पे एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम सभी लोगों को शिक्षा मिलती है, और शिक्षकों को शिक्षित करने का काम जो है दिनेश जी कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, और शिक्षा को लेकर अभी जो है विशेष ब्रह्मा कुमारी में एक सुंदर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है ज्ञान सरोवर में, और उसी को पूरा करके वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी की तरफ से दिनेश चहल जी का बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद भ्रताश्री।
4: कैसे हैं आप?
5: मैं ठीक हूँ,
4: बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहला तो एजुकेशन सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन आपका क्या एजुकेशन सेक्टर में कैसे आना हुआ, ये स्टोरी हमें बताइए।
5: जी बहुत अच्छा सवाल, मैं कहूँगा
4: जी जी,
5: हम इसको सेक्टर ना कह करके मैं कहूँगा एक सेवा का जरिया है ये।
4: बिल्कुल,
5: और
4: बिल्कुल।
5: हम कहेंगे ये सेवा है, हमारे ऊपर सबके ऊपर ऋण होते हैं। ऋषि ऋण एक उसमें से है।
4: जी जी जी।
5: समाज का या राष्ट्र का ऋण हमारे ऊपर है, माता पिता का ऋण ऊपर है। तो मेरा मानना यह है जब हम इस तरह की सेवा से जुड़ते हैं तो वहां पे हम समाज का भी, अपने पितृ ऋण को भी कह लीजिए, और जो हमारा ऋषि ऋण है उनको भी हम चुका सकते हैं। और बहुत सुंदर एक मौका मिलता है आपको हमेशा से युवाओं के बीच रहने का, और युवाओं को हम कहते हैं देश का भविष्य है, किसी भी राष्ट्र की चेतना, ऊर्जा, जोश, हिम्मत, जज्बा वो युवाओं में देखने को मिलता है। तो कहा भी जाता है जिधर युवा जाता है उधर ही समाज और देश चल पड़ता है। तो मेरा जुड़ने का मकसद यही था कि हम इस सेवा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी भी कमाएं, अपने राष्ट्र को और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं।
4: जी जी जी। दिनेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। तो आप किस लिए इस सेवा कार्य से जुड़े वो आपने बताया, और कैसे आपका जुड़ना हुआ ये भी आपने बताया। तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जो एजुकेशन सेक्टर है एक बड़ा सेक्टर है, और इसमें बहुत सारे वैरायटीज आ गए हैं, मल्टीपल टास्किंग्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें जो है, हम लोग एक बहुत बड़ा जगत है शिक्षा जगत। तो इसको आज आप कैसे देखते हैं, और न्यू पॉलिसीज भी आ गए हैं, हर 5 साल में कहीं ना कहीं एक बहुत ही चेंज हम लोग देखते हैं, तो अभी का चेंज और इन फ्यूचर आप किस तरह के चेंज की सोचते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं?
5: जी, इसमें आज हम जैसे आपने कहा पीछे क्या था, आज क्या है, और भविष्य में क्या होने वाला है उस शिक्षा के जरिए। तो शिक्षा, बेसिकली जब हम शिक्षा की बात करते हैं, वो दो तीन चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षक पढ़ाने वाला,
4: बिल्कुल,
5: शिक्षित जो उस शिक्षा के जरिए निकलेगा बाहर। तो शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित, ये तीनों बड़े इम्पोर्टेंट है। अब जब पहले की बात आपने छेड़ी है, तो पहले क्या होता था, शिक्षा का मतलब जहां विद्या हम बोलते थे, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक ज्ञान, एक आपका संस्कार और एक कौशल। आज ज्ञान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाते हैं संस्कारों की कमी है। अभी 2020 में ही भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो उस पॉलिसी का मकसद ये है कि हम युवाओं को शिक्षा के माध्यम से इस तरह से तैयार करें कि वो जो अपना फील्ड है उसमें तो काम करेंगे, लेकिन वो ग्लोबल सिटीजन के साथ साथ जो भारतीय मूल्य या जिसको हम सनातन मूल्य बोलते हैं,
4: जी, जी, जी,
5: उन मूल्यों के साथ भी वो जुड़े। अब लेकिन इसके लिए एजुकेशन बिल तो आ गया है, लेकिन उस एजुकेशन बिल के साथ हमें विल पावर चाहिए।
4: सही बात।
5: तो उस विल पावर को स्ट्रोंग करना होगा। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, अमृत काल में हम चल रहे हैं, लेकिन क्या भारत की वास्तव में 75% जनसंख्या पढ़ी लिखी वास्तव में है?
4: बिल्कुल,
5: वो उस तरह के चैलेंजेस भी हैं, उन पे भी हमें काम करना होगा। तो पास्ट जो हमारी सिविलाइजेशन थी उससे हमने सीखना है, प्रेजेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको एजुकेशन के माध्यम से जो फ्यूचर का विजन है उसको हमने अचीव करना है।
4: दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों चीज़ों को अगर देखते हैं तो पास्ट में चलिए जो चीज़ें हो जाती है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा करते, लेकिन वहाँ से हमें सीख क्या मिली, हमने क्या पाया क्या खोया, ये ज़रूर देखना एक बार ज़रूरी है। जो आपने बताया कि हम जो है बच्चों को शिक्षित ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कौशल भी अच्छी तरह से दे रहे हैं, लेकिन संस्कार जो बीच वाला जो कड़ी है जो हमारे बच्चों को भारत का रिप्रेजेंट करने की जो बात आती है वो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो गई, जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और मुझे लगता है कि नए शिक्षा पद्धति में चैलेंजेस भी हैं और अच्छी बातें भी हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो संस्कारों को जो है टेक ओवर करेगा या उसको जो है स्थापित करने में हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ें शायद जुड़ी गई हैं, एक संगीत अनिवार्य रूप से है और एक है योग। दोनों चीज़ें जो है संस्कारों को समृद्ध करने में बड़ा योगदान कर सकता है अगर हमारे जो वर्तमान के टीचर्स हैं अगर उन्हें ठीक ढंग से प्रोफेशनली उस चीज़ को सिखाने का प्रयास करें, शिक्षक को रखे, योगा टीचर भी अपने स्कूल में अपॉइंट करें जैसे रेगुलर टीचर्स है वैसे संगीत टीचर को भी उसी नज़रिए से देखें कि ये भी रेगुलर टीचर है, तो वो नज़रिया बनाना पड़ेगा स्कूल वालों को, शायद ओनर्स को या जो एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने स्कूल्स बनाए कॉलेज बनाए इंस्टीट्यूशंस बनाए, शायद उन लोगों का नज़रिया में ये चीज़ अगर इम्पोर्टेंस रहे तो ये चैलेंजेस को अगर वो अपने लाइफ में अचीव लाते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद ये जो आपने जो मिडिल वाला जो गैप है उसको पूरा करने में बहुत बड़ा अहम रोल हो सकता है। आपको क्या लगता है सर, मैं ये जो बात कह रहा हूँ?
5: बहुत सारी बातें आपने जोड़ दी हैं कि अभी तक हम जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन दे रहे
4: जी,
5: हैं
4: जी, जी, जी,
5: वही शिक्षा ही है, लेकिन आपने एक और बिंदु को छुआ कि हमने विकसित भी बनना है, शिक्षित भी बनना है विकसित भी बनना है, लेकिन इसमें बीच में एक और रास्ता जो आपने बहुत सारा योगा और उसके माध्यम से
4: जी,
5: कहा
4: जी, जी, जी।
5: दीक्षित भी बनना है, अब शिक्षा भी हो और दीक्षा भी हो। शिक्षा क्या है जो फॉर्मल एजुकेशन है और दीक्षा क्या है जिसको हम संस्कार वैल्यू मूल्य ये बोलते हैं, क्योंकि अकेली शिक्षा होगी तो मेडल्स ही डलेंगे और अगर शिक्षा के साथ दीक्षा जोड़ देंगे तो समाज के लिए मॉडल्स तैयार होंगे, दिशा देने वाले युवा या जिसको हम कहें रोल मॉडल तैयार होंगे। आज हम इस शिक्षा के माध्यम से सिर्फ मैं कहूं जीविका उपार्जन ठीक है लेकिन जीवन उपयोगी कैसे हो वो उस दीक्षा के माध्यम से आएगा। तो मैं विरोधी नहीं हूं, उच्च शिक्षा दीजिए लेकिन उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम शिक्षा भी हो। तो उत्तम शिक्षा का मेरा आशय वही फिर मूल्य और संस्कार से है। और आपने बड़ा अच्छा जोड़ा कि संगीत है उसको हम लिबरल आर्ट्स की फॉर्म में नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ रहे हैं, और जैसे ही आपने योग का जिक्र किया
4: जी, जी,
5: ये हमारी एक तरह से धरोहर थी जो हमने कहीं ना कहीं जब पश्चिम से योगा बन के आ गया उसको अपना लिया, अपने योग को छोड़ दिया। तो इसी कड़ी में मैं जोड़ूंगा कि वो अनुलोम विलोम जरूरी है शरीर का, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा अपना अनुलोम विलोम विचारों का भी हो, अच्छा विचार अंदर जाए और बुरे विचार बाहर आए। तो वो वाली शिक्षा की बात हम इसीलिए बार बार हमें इस शिक्षा नीति में कहना पड़ रहा है, लर्निंग जरूरी है अनलर्न जरूरी है जो गलत सीख लिया, और रीलर्न नए तरीके से सीखना भी जरूरी है।
4: जी जी जी,
5: तो तीनों का हमें समन्वय करना होगा।
4: बिल्कुल दिनेश जी, काफ़ी अच्छा जो है आपने उसको विस्तार से स्पष्टीकरण किया कि नए शिक्षा पद्धति में इन चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ लें और समानता से जोड़ लें सभी चीज़ों को और एक विश्वास हो जाए कि भाई हम लोग अभी वर्तमान में इतना टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ गई है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो योग या फिर संगीत या फिर जो मूल्य है उसके ऊपर हावी होता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें जो है इनबैलेंस वाली जो बात आ रही है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब एक तरफा काम भी नहीं चलेगा इसमें, मुझे लगता है कि इसमें विद्यार्थियों को भी उतना ही काम करना है जितना टीचर्स को उसे इस्टेब्लिश करने में उसे इम्प्लीमेंट करने में काम कर रहे हैं, तो उनका कंधे से कंधा मिलाते हुए समझदारी से हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि एक तरफ टीचर तो कहेगा कि भाई योग का क्लास है आप अटेंड करो, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस और अपने आप को भी वो चीज़ें इंक्लूड करने के लिए आपका इम्पोर्टेंट रोल है विद्यार्थियों का, तो वो ऐसे समझे कि नया शिक्षा हर साल 5 साल में एक बार नई शिक्षा कुछ ना कुछ आते हैं, तो वैसे ही ये भी होगा, ऐसा नहीं है। ये आ गया तो सिर्फ आपके लिए है और आपको इन्हें अचीव करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें अपनी तरफ से आपको करना ज़रूरी है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो चीज़ें हमारे लिए योगा टीचर रखिए, हमारे लिए म्यूज़िक टीचर रखिए, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उसको सीखेंगे, है ना। तो ये आपकी तरफ से हो जाता है तो विन विन सिचुएशन होगा और उन्हें भी खुशी होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए, एक छोटा सा वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में मैं चाहूँगा कि एक गीत सुनना चाहेंगे या सुनाना चाहेंगे आप सभी को, और मैं दिनेश

0: सर से पूछूंगा कि आपको कौन सा गीत अभी आपके मन में आ रहा है जो आप सुनना पसंद करेंगे?
1: बहुत ही सुंदर एक गीत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, प्यार का सागर है।
0: क्या बात है, क्या
1: तो मेरी अनुरोध यही है कि आप वो हमारे श्रोताओं के लिए प्यार
0: बिल्कुल,
1: का सागर
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे विद्यार्थी मित्र भी अगर इस गाने को सुनेंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो है गीत संगीत जो है हमारे जीवन को समृद्ध इसलिए करता है संस्कारों से, क्योंकि संगीत के साथ जो मैसेज मिलता है अगर हम उसे ध्यान पूर्वक अपने लाइफ में अपनाएंगे तो हमारा जीवन निश्चित तौर पे बेहतर बनेगा। हम जो चीज़ें हमें जैसे सर ने बताया अनुलोम विलोम, यानी जो चीज़ें अंदर जानी है वो अंदर ही जाएगी और जो चीज़ें अंदर बेकार में हो बाहर जाना है वो बाहर ही जाएगा। देखिए आप इस गीत को ही सुन लीजिए, तू प्यार का सागर है, यानी हम सभी उस प्यार के सागर के हम आइडेंटिटी हैं, उसके बच्चे हैं हम, तो उससे हमें प्यार मिलेगा, बस उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो इस गीत में आप अपने उस परम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर विशेष मुलाकात। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ विशेष हरियाणा से हमारे टीचर महोदय उपस्थित है दिनेश जी और उनसे काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और एजुकेशन विंग का जो प्रोग्राम अटेंड करके उनको भी एक नई ऊर्जा मिली है तो वो ऊर्जा आपको उनके शब्दों के माध्यम से उनके भावनाओं से आपको मिल रहा है। तो मैं अब आप सभी युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए आज के समय में जो यूथ हैं, क्योंकि आपका पूरा जो है मेरे ख्याल से पूरे ही 6 से 8 घंटे यूथ के साथ ही बीतता है, उन बच्चों के साथ बीतता है जो पढ़ रहे हैं और उनकी दिनचर्या, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, उनके जीवन में अब कुछ एडिशन और करेक्शन करना है तो वो आप ज़रूर बताइए। जी
1: जी, शांतिवन में हम शांति की तलाश में इस मधुबन के रेडियो चैनल पे युवाओं के लिए संदेश की जब बात आती है,
0: जी, जी, जी, जी,
1: क्योंकि युवा, मैंने फिर कह रहा हूँ कि युवा किसी भी देश की एक तरह से
0: धरोहर
1: है और वो धरोहर अगर मजबूत नहीं होगी तो इमारत भी मजबूत नहीं होगी।
0: जी, जी, जी।
1: तो हमारा सौभाग्य भी है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश में आते हैं और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो युवा देश के लिए, समाज के लिए, और इवन आपके ब्रह्मा कुमारी में भी बहुत सारे युवा, हमारी बहनें और भाई इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम उनके आचरण से सीख करके, उनके काम से, इस सेवा भावना से ही, मैं कह लूँ जो पूरे ब्रह्म कुमारी का मैसेज है कि इस सेवा भावना से किस तरह से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए हम काम कर सकते हैं। और जब हम सेवा से जुड़ते हैं, सेवा से जुड़ने का मतलब हम बुद्ध भी बनते हैं, हम शुद्ध भी बनते हैं और हम प्रबुद्ध भी बनते हैं। और ये चीज़ें जब हम युवाओं को बताएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, और एक और जब आपने जिक्र किया था कि आज कहीं ना कहीं संस्कारों को स्थान कम दे रहे हैं, तो एक छोटी सी कहानी, एक गांव था, उसमें एक गांव में आग लगती है, सारे लोग भाग जाते हैं, 2 लोग जलने पर मजबूर थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था। जब दोनों ने सलाह की कि मैं तेरी आंखें बनता हूं, तू मेरी टांगे बन जा, वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों बच जाते हैं, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन इसका संदेश क्या है, अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? अंधा आज की हमारी युवा पीढ़ी है जो पाश्चात्य जगत की ओर कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के, उन लंगड़ा कौन है, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं तो उनसे दूर होती जा रही है। अगर हम युवा शक्ति को उन संस्कारों से जोड़ दें तो हम समाज को भी और अपने कहीं राष्ट्र को भी और आगे ले जा सकते हैं। अदरवाइज तो आप देखते हो आज नकारात्मकता के इस पूरे दौर में वासनाएं, गलत चीजें, उनकी पूरी बरसात हो रही है। तो ये संस्कार हमारे छाते का काम करेंगे। हम बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो हम बना सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस नकारात्मकता की जो दौड़ है उसमें आग ना लगाएं, बल्कि संस्कार रूपी बाग लगाएं। तो संस्कार जब होंगे, वो संस्कृत होंगे, बच्चे सुसंस्कृत होंगे, तो वो अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और सारे प्राणी मात्र के लिए भी वो काम करेंगे। और जब इस तरह से जब युवा तैयार होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को भी बचाएगा, अपने जीवन को चलाएगा, अपने जीवन को बढ़ाएगा, सजाएगा और इन संस्कारों को अपनाएगा। जब इन संस्कारों को अपनाएगा वो अपना बेस्ट कर पाएगा। बेस्ट क्या है एक युवा के लिए? बी मीन्स बिहेवियर, ई मीन्स एनवायरमेंट, एस मीन्स सर्विस और टी मीन्स उस टैलेंट को या टेक्नोलॉजी, जो आपने बीच में कहा था, टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दिनेश सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बात अगर हमारी युवा थोड़ा सा समझ ले, आपने वैज्ञानिक तरीके से, सुंदर तरीके से आपने बताया, अंधा और लंगड़े की कहानी को आपने इस बीच में जोड़ा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं हमारी जो है

0: से अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, तो ये बहुत ही अच्छी चीज सर की मुझे लगी। आइए आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न की तरफ मैं चलूंगा कि आज के समय में जो चीजें हमारे बीच में है और युवाओं को हम लोग देखते हैं एक धरोहर के रूप में, अगर युवा सारे समृद्ध हो जाए और संस्कारित हो जाए तो मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु के कगार पर तुरंत पहुंच जाएगा। आज हम लोग बातें कर रहे हैं विश्व गुरु भारत बनेगा और काफ़ी हद तक जो है आज के समय में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लोग जागरूक हैं, लेकिन जागरूकता के साथ साथ कहीं ना कहीं धारणा स्वरूप में मुझे लगता है कि वो कमी फिर भी रह जा रही है। जी सर,
1: बिल्कुल विश्व गुरु का आपने जिक्र किया, हम बनने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हमारा युवा या हम लोग यही कहते रहे भारत भूमि बहुत महान थी, उससे अब महान नहीं बनेंगे, बल्कि हमें जो अपनी युवा के रूप में भूमिका है, शिक्षक के रूप में भूमिका है, चिकित्सक के रूप में जो भी हमारी भूमिका है, भारत भूमि महान थी उससे महान नहीं बनेगी। मेरी और आपकी जो भूमिका है उस भूमिका को निभाने से महान बनेगी। और उस भूमिका में हम आज जहाँ जिसको हम कहते हैं कंज्यूमरिज्म और जो आपाधापी है, भरने की बात है, छीनने की बात है, या मैं कहूँ इकट्ठा करने की बात है, तो ब्रह्म कुमारी से हम वो सीखते हैं जहाँ पे हमें जिसको ग्रीड कल्चर नहीं, नीड कल्चर में जीना है।
0: बिल्कुल,
1: यूज एंड थ्रो वाली कल्चर नहीं, यूज एंड ग्रो की कल्चर में हमने जीना है कि हम किस तरह से अपनी ज़रूरतों को और दूसरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं उस युवा को सोचना होगा और हमें इन संस्कारों के माध्यम से उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। स्मार्ट मेरा वो ड्रेस वाला स्मार्ट नहीं है भ्राताश्री, स्मार्ट मेरा क्या है, एस मीन्स सेंसिटिव, एम मीन्स मोटिवेटेड, ए मीन्स अलर्ट अवेयर अवेक, और आर मीन्स जिसको आज की जरूरत है रिस्पॉन्सिबल, और टी फिर मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी या टेक्नोसेवी भी और टैलेंटेड भी। इस तरह का जब स्मार्ट युवा बनेगा तो हम कह सकते हैं उसको रहना भी आ जाएगा, उसको कहना भी आ जाएगा, उसको सहना भी आ जाएगा और उसको बहना भी आ जाएगा। जो बहने का मतलब है जो बदलाव हो रहा
0: है,
1: टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया था कि कौन सी मेरी चीज मेरे लिए या मेरे समाज के लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, तो ये जरूरी है एक बैलेंस।
0: बिल्कुल,
1: आप मॉडर्न होइए लेकिन आप अपने ट्रेडिशन से, आप अपने संस्कारों से, उनसे भी जुड़ के रहिए, तब हम उस सामंजस्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे।
0: जी जी जी, चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश इसमें छिपा हुआ था जो आपने बताया, और आशा करूंगा कि हम सभी जो आज का हमारा जो चर्चा रहा दिनेश सर से, इस चर्चा में हमने जो बातें की, हमारे भारत देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा की, भारत देश की संस्कृति के बारे में चर्चा की, और शिक्षा में जो नई पद्धति आ रही है या पूर्व की जो पद्धति थी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक जाते जाते सर को जब मैं सुन रहा था और मुझे एक लाइन महाराष्ट्र की याद आती है, वो परत फिरा गरा कड़े ऐसा कहते हैं, मतलब फिर से हम अपने घर की ओर चले
1: वापस
0: चले, तो हाँ अब लौट चले
1: वेदों की ओर,
0: वेदों की ओर, अपने गुरुकुल की ओर, अपने
1: जड़ों
0: की ओर वापस लौट आए। बहुत हो गया अब घूमना भटकना, अब फिर से अपने घर, अपने ही गांव की पेड़ की छाँव में हमें फिर आना है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार दिनेश सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, और मैं चाहूँगा कि अभी आप अपने हरियाणा में जाएंगे, टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे, टीचर्स को सिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक नया बदलाव वो सभी फील करेंगे, एक नई ऊर्जा जो है उनको मिलेगी आपके द्वारा। और आपने जो यहाँ पर जो 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया है, उस सेमिनार में कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है सकारात्मक हो गई होगी और एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत के साथ आप जाएंगे, तो उन सभी टीचर्स को भी ये चीज़ें महसूस होगी और वो भी इस और अपना अच्छा काम, अच्छा मतलब अपना जो कार्य है उसे एक नए उत्साह के साथ करेंगे, ऐसी शुभ आशा करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

गहरा। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:51 हो रहे हैं और कर्मों की गति बड़ी न्यारी, मोहम्मद अजीज का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध्यात्मिक गीत सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो गया होगा। आइए अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज विशेष, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रौद्योगिकी दिवस है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो भारत में ये दिन 11 मई के दिन मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री तत्वकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था और जिसके कारण परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। ये योजना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के लक्ष्य में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 ने भी इसी दिन परीक्षण उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ये दिवस हमारी ताकत कमजोरी लक्ष्य के विचार मंथन के लिए मनाया जाता है, जिससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें देश की दशा और दिशा का सही ज्ञान हो सके। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। पूरे देश में शैक्षणिक संस्थान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान इसे भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं और इस दिन उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी को पुरस्कृत भी किया जाता है। बीते कुछ दिनों में भारत ने अपनी उन्नति स्वदेशी प्रौद्योगिकी का परिचय देते हुए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अग्निफाइ और देश का पहला स्वदेश निर्मित राडर अमेजिंग उपग्रह रीसैट 1 का सफल प्रक्षेपण किया है। ये दोनों कामयाबी भविष्य के लिए दूरगामी सिद्ध होगी, क्योंकि हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और विश्व के 6 ताकतवर देशों के समूह में शामिल हो गए। भविष्य में भारत उन सभी ताकतों को और भी कड़ी टक्कर देगा जो साधनों की बहुलता के चलते प्रगति कर रहे भारत के पास प्रतिभाओं की बहुलता है, क्योंकि अब समय आ गया है भारत को अपना प्रदर्शन करने का। तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। भारत का परमाणु परीक्षण अपने आप में एक ऐतिहासिक है और वो 11 मई के दिन बहाल हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हुए आप सभी भी मेरे साथ जुड़िए और नेशनल टेक्निकल डे के बारे में अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कीजिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और आनंद ही आनंद हो रहा है। तो बड़ा ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपने सुना और निश्चित तौर पे जब हम लोग इस तरह के गीत संगीत से जुड़ जाते हैं तो बेहतर फील करते हैं और अपने अंतरात्मा को एक क्या कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो एक आनंद जो है हमको मिल जाता है और पूरा दिन के लिए हम चार्ज हो जाते हैं, है ना। तो आइए मैं आप सभी को सीधे ले चलता हूँ। वक्त हो रहा है समाचारों का, समाचारों की तरफ अभी चलते हैं।

0: Good morning. I am Saira Mujtaba. The headlines.
1: Oh, अंग्रेजी में शुरू हो गया, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आपको हिंदी में समाचार सुना पाऊँ। चलिए, हिंदी समाचार अब डाउनलोड होने में टाइम शायद लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा थोड़ी देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, हर समय हम लोग एक नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं, और आज का हमारा जो विषय है वो है मिट्टी की कहानी। जी हाँ साथियों, इस नए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा मिट्टी शब्द सुनकर हम सभी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम मिट्टी पर रहने वाले लोग हैं। तो आइए मिट्टी की कहानी आपके नाम आज। दोस्तों, मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश, और स्वागत करता हूं एक बेहद ही खास कार्यक्रम मिट्टी की कहानी में, जिसमें आज हम सुनेंगे हमारी धरती की महक, इतिहास की धड़कन और उन नेताओं की बातें जिन्होंने मिट्टी को सिर्फ जमीन नहीं बल्कि संस्कृति, संस्कार और स्वभाव कहा है। तो आइए इस कहानी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कहते हैं, कभी किसी ने पूछा भारत को महान किसने बनाया, तो जवाब मिला इसकी मिट्टी ने। यही मिट्टी है जिसने हमें कृष्ण दिया, बुद्ध दिया, प्रताप दिया, विवेकानंद दिया। महात्मा गांधी कहा करते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा मिट्टी में बसती है। आज भी जब किसान खेत में पहला कदम रखता है तो मिट्टी को सिर से लगाकर प्रणाम करता है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये है धरती से प्रेम का वचन। तो आइए इस कार्यक्रम में फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ मिट्टी की कहानी आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। मिट्टी की कहानी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत ही सुंदर गीत आपने सुना। कहते हैं कि इस सुंदर भाव, जैसे गीत में भाव होते हैं, भाव के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप बहने लगते हैं। कहने का मतलब है, जिस तरह से जो चीज़ें आपके कानों के द्वारा जो शब्द मिलते हैं, उस भावना में संगीत के साथ लयबद्ध होकर जो आनंद आप उठाते हैं, उससे आपका शरीर और आत्मा दोनों ही सुकून महसूस करता है। तो शायद आप इस तरह की फीलिंग आपने किया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से मिट्टी के महक और संस्कृति पर बातें करूंगा। और जब मिट्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वीर गाथाएं भी याद आती हैं। तो साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इतिहास के उन पन्नों की तरफ, जहाँ से मिट्टी जो है अपनी कहानी अपने विशेष नेताओं के माध्यम से, अपने विशेष जो लीडर्स हैं उनके जरिए वो कहानी कहती हैं। तो एक कहानी महाराणा प्रताप की आपके लिए। जब वे जंगल में संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने अपनी धरती का एक कण नहीं छोड़ा। अकबर ने कई बार कहा, मेरे दरबार में आ जाओ, सब मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब था, मिट्टी की इज्जत पर 100-100 ताज भी कुर्बान। तो साथियों, ऐसे होते हैं महान वीर। कहते हैं एक बार उन्हें भूख लगी, केवल जौ की रोटी बची थी, उसी में फिसल कर उनका टुकड़ा जमीन पर गिर गया। प्रताप ने उसे उठाया, माथे से लगाया और कहा, ये वही रोटी है जो मेरी धरती में उगी है, इसका हर कण सोने से भी कीमती है। तो साथियों, जब हमारे विचार इतने सुंदर हो, हर कण के प्रति, मिट्टी के बूंद के प्रति हमारी अगर भावना इतनी अगाढ़ जुड़ी हो, तो आप भारत माता के सच्चे सपूत बनते हैं। और देखिए, कोशिश करके कि जब आपके पास कुछ ना हो और रोटी का एक टुकड़ा हो और वो जब जमीन पर गिरता है, तो आपकी भावनाएं किस तरह से आगाज करके धरती माँ को और सारे ही अंबर तक जो है भावनाएं उठ जाती है, उस क्षण को याद कीजिए। मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हम सबकी पहचान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा ब्रेक। आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। जी हाँ साथियों, मैं हूँ आपका हम सफर आरजी रमेश और मिट्टी की कहानी इस कार्यक्रम में हम जुड़ गए हैं मिट्टी से। भारत के बहुत से महान नेताओं ने मिट्टी को ही जीवन बताया है। अब लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बातें। वो हमेशा मिट्टी से जुड़े रहे क्योंकि उनका बचपन गरीबी में बीता, मिट्टी से जुड़ा हुआ उनका जीवन था। वहीं से उन्होंने लालटेन पर पढ़ाई की और फिर देश के सर्वोच्च जो पद है उस पर वो विराजमान रहे। उसके बाद भी जमीन से जुड़े रहे। अपना कारोबार करते हुए वो बच्चों से जरूर मिला करते थे और बच्चों को अपने अनुभव जरूर सुनाया करते थे। तो हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी उनका आगमन हुआ। उन्होंने सभा को तो संबोधित कर दिया था लेकिन उसके बाद उन्होंने बच्चों की सिफारिश की थी, बच्चे कहाँ हैं। तो फिर हमने उनके लिए खास बच्चों को बुलाया और बच्चों के साथ जब वो इंटरेक्शन कर रहे थे तो बहुत खुल के और बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि जैसे उनको लगा कि हाँ ये मेरा जीवन का सबसे प्राथमिक कार्य है। तो बच्चों के साथ घुल मिल गए और उनको भारत की और अपने बच्चों के अंदर क्या क्या कला होनी चाहिए, कितना आप पढ़ेंगे तो कैसे भारत के लिए काम आएगा, ये सारी बातें उन्होंने बच्चों से की। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ लगा मुझे कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं कि नेता सिर्फ लोगों के लिए नहीं, वो पूरे भारत के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमें बच्चों के साथ जुड़कर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक शब्द आता है जहाँ पर हम कहते हैं पढ़ाई में कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। तो उन नागरिकों को तैयार करना, उनके मन में उनके भावनाओं को शुद्ध और पवित्र बनाना, देश के प्रति सम्मान उनके अंदर जगाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी सुन रहे हैं मिट्टी की कहानी इस कार्यक्रम को। आशा करूँगा कि आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके साथ एक और जो विशेष व्यक्ति है राम मनोहर लोहिया की बात मुझे याद आता है कि जिस देश की मिट्टी उपजाऊ है वो देश कभी गरीब नहीं हो सकता, ये उनकी बात है। तो अगर हम इस तरह से इस भावना से मिट्टी को अगर देखेंगे, मिट्टी के प्रति हमारा अगर लगाव हो जाए तो निश्चित तौर पे पूरा भारत जो है गरीब नहीं हो सकता। अगर है तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी के साथ प्यार या ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और जगह पे या कुछ और चीज़ें हमारे बीच में आई हैं। उन सभी को समझना होगा और उस पर्दे को हटाकर मिट्टी से जब हम जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे भारत की मिट्टी जो है उपजाऊ है और जहाँ मिट्टी उपजाऊ है तो गरीब कोई नहीं हो सकता। इसी के साथ बहुत बार आपने लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके एक घोष वाक्य है, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वो था जय जवान जय किसान। तो ये सिंपल सा दो लाइन, दो शब्द जो है जय जवान जय किसान भी हमें भारत की मिट्टी से सीधे सीधे जोड़ता है। ये बताता है देश की धरती पर खड़ा हर इंसान वीर भी है और अन्नदाता भी है। तो साथियों हम जब इस तरह के ऊंचे विचार, जैसे कहते हैं ना गांधी जी का सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब, तो जहाँ हम भले ही साधारण से दिखने वाले व्यक्ति हो लेकिन हमारे मन में अगर भारत और मिट्टी की जो खूबसूरती है उसका अगर विचार है तो आप गरीब बिल्कुल नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा एक बहुत ही प्यारा संगीत जय जवान जय किसान आपके लिए, अभी सुनते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है साथियों कार्यक्रम के। धीरे धीरे हम लोग आखिरी पलों में पहुंच रहे हैं और मिट्टी की कहानी इस कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं और आपका मैसेजेस हमें जो है मोटिवेट करते रहते हैं। तो जो हमारी मिट्टी की ताकत है, हमारी जड़ों और हमारी पहचान की बात करता है। तो हमेशा देखिए कि जब जिस धरती पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो उसका ऋण हमेशा आपके साथ चलता रहता है। अगर हम उसको साथ लेकर उसके लिए हमेशा धन्यवाद करते रहें तो जीवन हमारा कितना धन्य हो जाएगा। एक छोटी सी बात याद आती है कि एक छोटा बच्चा, नाम उसका था अनूप, स्कूल में मिट्टी बचाव पर निबंध लिखने का कार्य उनको दिया गया था और वो निबंध लिखने लगा। लेकिन लिखने के पहले उसके विचारों में मिट्टी के प्रति जो भावना थी वो शायद उतनी निखल के नहीं आ रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मिट्टी क्यों बचानी चाहिए? तो माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा मिट्टी नहीं होगा तो तुम्हारी किताबें नहीं, भोजन नहीं, खेल का मैदान नहीं, और हाँ तुम्हारी मुस्कान भी नहीं। अनूप को ये बात जो उनके गहराई से उनके दिल को छू गई। उस दिन पहली बार उसे अपने आप का एहसास हुआ, उसे उस बार भूले हुए कर्तव्य को उन्होंने महसूस किया। अनूप ने वो गांव के बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाना और कचरे को साफ करने का काम उस दिन से उन्होंने शुरू किया और मिट्टी को छू कर बोला, तू गंदी नहीं है मिट्टी, हमने तुझे गंदा किया है, हमें माफ कीजिएगा। तो इस तरह से जब उनके अंदर एक प्योर वाइब्रेशन या प्योर भावनाएं जब उत्पन्न हो जाता है बच्चों के अंदर, तो वो बच्चा देश के लिए, गांव के लिए आदर्श बन जाता। हर छोटी छोटी सोच ने पूरे गांव को अनूप की बातें पसंद आने लगा और गांव को बदलने में एक सक्रिय भूमिका अनूप का हुआ। कभी कभी एक बच्चा भी मिट्टी की कीमत समझ ले तो गाँव को बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। तो साथियों, मिट्टी की कीमत को जाने, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ जीवन को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बदले बिना नहीं रह सकता है। साथियों, हम सबकी अलग अलग कहानियां हो सकती हैं मिट्टी को लेकर, लेकिन मिट्टी से शुरू होती है और मिट्टी से ही लौटती है फिर। इसलिए उसे बचाना, उसका सम्मान करना और उससे प्यार करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी माँ है, पहचान है, संस्कृति है। इसलिए भारत को क्या कहते हैं हम, भारत माता कहते हैं। साथियों, मिट्टी की कहानी, धरती की जुबानी, आप दिल से अगर आप इस आवाज़ को सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बेहतर बनने लगेगा। और मैं चाहूँगा कि मेरी ही बातें नहीं, आप अपनी भी बातें मिट्टी के साथ जोड़ के देखिए, आपको जीवन नज़र आएगा, आपको दर्शन नज़र आएगा। और भारत की भूमि ही ऐसी है जहाँ पर वीर लोगों का, वीर सपूतों का जन्म हुआ है और देश के लिए कई लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया है। तो निश्चित तौर पे मैं एक एक कहानी अगर बता दूं तो ये कारवां चलता रहेगा, लेकिन कम में बहुत

ज्यादा आप समझ रहे होंगे ऐसी शिव आशा के साथ कार्यक्रम को यही पूरा करते हैं। फिर मिलता हूँ एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए और मिट्टी से प्यार करते रहिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुनने जा रहे हो प्रभा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए आज के सुंदर से विचार को सुबह सुबह अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो आज का विचार इस प्रकार है, दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं संतुष्टता है। आज के विचार को मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं संतुष्टता है। आइए आज के विचार का विस्तार करते हैं। कहते हैं, संतुष्टता ही सबसे बड़ा धन है। लोगों के पास करोड़ की संपत्ति होती है फिर भी वो जीवन में संतुष्ट नहीं होते, धन के पीछे भागते ही रहते हैं। उन्हें खाने पीने और परिवार के साथ रहने का समय नहीं होता, उनका जीवन एक मशीन की तरह हो जाता। तभी तो किसी ने ठीक ही कहा है कि जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो प्यारे श्रोताओं, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, बने रहेंगे आप आशियाना में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आशियाना सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी उषा का नमस्कार। आइए अब मैं आपको घरेलू नुस्खा देती हूँ फिटकरी के बारे में कि दर्द पीड़ा नाशक है फिटकरी। कैसे है आइए जानेंगे और उसके उपाय भी सुनाऊंगी आपको। फिटकरी एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में हर घर की महिलाएं बहुत कुछ जानती है। ये त्वचा रोगों को दूर करने, शरीर के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करने, कीड़ों को मारने, दर्द को कम करने और सूजन एवं बादी को शांत करने की बेजोड़ दवा है। तो आइए इसके औषधि गुण, किस तरह हम औषधि के रूप में यूज करेंगे फिटकरी को, अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि अगर दांत का दर्द हो तो सरसों के तेल में फिटकरी का चूर्ण मिला करके दांतों पर मलिए। अगर दांतों का दर्द हो, दांत में कोई तकलीफ हो रही हो तो आप सरसों के तेल में फिटकरी का चूर्ण मिला करके दांतों पर घिसिए, मलिए, रगड़िए, ठीक है, इससे आपके दांत का दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। अगला उपाय भी बहुत अच्छा है। सामान्य ज्वर हो, सामान्य ज्वर यानी कि साधारण बुखार हो, तो 3 ग्राम अदरक और 2 ग्राम फिटकरी दोनों की चटनी पीस करके दिन में 2 बार गर्म पानी से सेवन कर लीजिए, फिर देखिएगा आपके बुखार में आराम मिल जाएगा। पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनेंगे। अगर साधारण बुखार हो तो आप 3 ग्राम अदरक और 2 ग्राम फिटकरी दोनों की आपको चटनी बना देनी है पीस करके, ठीक है, फिर आपको दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ लेना है, इससे आपके बुखार में आराम हो जाएगा, आपका बुखार रफू चक्कर हो जाएगा। अपच की तकलीफ हो तो 2 ग्राम फिटकरी तथा 1 ग्राम कलमी शोरा दोनों को खरल करके गुनगुने पानी से पी जाइएगा। अगर अपच की तकलीफ हो तो आप 2 ग्राम फिटकरी लीजिए और 1 ग्राम कलमी शोरा दोनों को खरल कर लीजिए और गुनगुने पानी से सेवन करिए, इससे अपच की तकलीफ समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे श्रोताओं, इस तरह फिटकरी के द्वारा आप अपने जो भी मैंने आपको तकलीफें बताई है उसका उपचार आराम से कर सकते हो और अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, बने रहोगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में इस समय हो चला है खुशनुमा जीवन में बातें करने की। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, और अच्छा पाएंगे तो जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। कैसे? चलिए दो पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। बहारे रुक जाए तो सूरज थम जाए, बहारे रुक जाए तो सूरज थम जाए, पैरों की धूल चाहे आंधी बन जाए। बहारे रुक जाए तो सूरज थम जाए, पैरों की धूल चाहे आंधी बन जाए। अपने जीवन को इतना अच्छा बना लो, अपने जीवन को इतना अच्छा बना लो कि जीवन की काली शाम सुख का सवेरा हो जाए, जीवन की काली शाम सुख का सवेरा हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अच्छे कर्मों के बदले अच्छा फल मिलने और बुरे कर्मों के बदले बुरा फल मिलने वाली बात पर संदेह है। हो सकता है उन्होंने स्वयं अच्छे काम करके बुरा फल पाने का अनुभव किया हो, या फिर अच्छे काम करने वालों को बुरा फल पाते देखा हो। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उम्मीद न होते हुए भी अच्छा फल मिला। आइए हम कर्म फल की स्पष्टता के लिए एक आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारा जीवन एक यो आकार की नली की तरह है। जन्म लेते समय इसके आधे हिस्से में अच्छाई भरी थी और आधे में बुराई। हम इसे आधा पुण्य और आधा पाप भी कह सकते हैं। पाप पुण्य के चक्कर में नहीं जाना चाहे तो हम इसे आधा सकारात्मक और आधा नकारात्मक भी कह सकते हैं। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो इस ट्यूब के अच्छाई वाले आधे हिस्से में अच्छाई जाती है और दूसरी तरफ से उतनी ही बुराई बाहर निकलती है, क्योंकि ट्यूब पूरी तरह भरी हुई है। अगर हमने किसी का बुरा कर दिया तो ट्यूब के बुराई वाले हिस्से में बुराई घुसी और दूसरी तरफ से उतनी ही अच्छाई बाहर निकल गई। यदि लगातार बुरा ही बुरा करते जाते हैं तो ट्यूब में भी अधिक बुराई अंदर जाती रहती है और अच्छाई बाहर निकलती रहती है। हम रिश्वत लेते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, क्रोध करते हैं, बुरा सोचते बोलते हैं, और एक दिन सारी अच्छाई ट्यूब से निकल जाती है। इसके बाद उस नली से केवल बुरा ही बुरा निकलता है। जिस दिन सारी अच्छाई निकल जाती है उस दिन हम चाहे कितने ही ऐशो आराम में रहते हो, बेचैन और विचलित रहेंगे। बड़े बुजुर्ग इसी को तो कहते थे कि पाप का घड़ा भर गया। आइए इसी बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार एक लड़का पाठशाला में अपने एक सहपाठी की पुस्तक चुरा कर लाया और वह पुस्तक उसने अपनी माँ को दी। माँ ने कहा, बेटा बड़ा अच्छा है। इसी तरह उसकी चोरी की आदत पड़ती गई, पढ़ना लिखना छोड़ दिया तथा कुछ दिन बाद पूरा डकैत बन गया। एक दिन वह डाका डालने गया और उस डकैती में पकड़ा गया तथा उसे फांसी की सजा हुई। जब फांसी लगने की तैयारी हुई और उससे पूछा गया, तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा, मुझे अपनी माँ से कुछ कहना है। जैसे ही माँ ने बात सुनने को कान बढ़ाया वैसे ही लड़के ने माँ के कान काट दिए। उपस्थित लोग उसे धिक्कारने लगे, परंतु लड़के ने कहा कि जब मैं पहली बार किताब चुरा कर लाया था तब ही मुझे डांट दिया होता तो शायद मुझे आज फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ता। तो प्यारे श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का, ये कहानी ही नहीं सच्ची घटना, ये तो सिर्फ मैंने आपको कहानी के रूप में सुनाया है, लेकिन ये कहानी कहीं न कहीं घटित हो चुकी होती है। तो इस कहानी का कहने का भाव यही है कि अगर हम बच्चों को अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, और अगर बच्चे खराब करके आएंगे और हम अपने बच्चों को बढ़ावा देंगे तो बोलिए कैसे अच्छे हो सकते हैं बच्चे। फिर लौट करके सारा दर्द, सारा तनाव, सारा दुख हमारे पास ही आना है। तो प्यारे श्रोताओं, हमें हमेशा श्रेष्ठ कार्य करना है और अपने बच्चों को भी अच्छा ही कार्य सिखवाना है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, तो जीवन में खुशियाँ किसके रहेगी, हमारे ही रहेगी ना, किसी और के पास थोड़े ना जाने वाली है। तो इस तरह अगर अच्छे संस्कार

देंगे तो जीवन में खुशियाँ रहेगी और हमारा जीवन आनंद पूर्वक बीतेगा। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम और अल्प विराम के बाद और भी बातचीत करेंगे कि अच्छा करने से अच्छा कैसे पाए, बुरे का परिणाम बुरा क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहानी में सुनाया कि इस बच्चे को अच्छी शिक्षा शुरू से दे दी होती, किताब अगर वो चोरी करके लाया और माँ ने उसी समय एक चांटा लगा करके डांटा डपटा होता तो उसको आगे जा करके वो डकैत नहीं बनता, फांसी नहीं मिलती। तो कहते हैं ना, बुरे का परिणाम बुरा हुआ। तो और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: सच्चाई की नाव कभी डूब सकती नहीं, सच्चाई की नाव कभी डूब सकती नहीं। सच्चाई तो सिद्ध है, सिद्ध की जा सकती नहीं। सच्चाई तो सिद्ध है, सिद्ध की जा सकती नहीं। तूफा हिलाने डुलाने की कोशिश तो करेगा, तूफा हिलाने डुलाने की कोशिश तो करेगा। मंजा माजी मंजिल पर होगा, रुक सकता नहीं। मंजा माजी मंजिल पर होगा, रुक सकता नहीं। तो प्यारे श्रोताओं, अल्प विराम के पहले आपसे बातचीत हो रही थी कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, और उसमें मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी कि किस तरह उस माँ ने अपने बेटे को उल्टी शिक्षा दी और बच्चा आगे चल करके डकैत बना और फांसी मिली। तो कहते हैं ना कि बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। एक घटना मेरे को और याद आ रही जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि हमारे पास एक डॉक्टर साहब का घर है। डॉक्टर साहब के घर में एक महिला अपने अच्छे कर्म को नहीं छोड़ती थी, उसे गरीबी मंजूर थी लेकिन गलत काम नहीं। एक दिन बाथरूम में उसे डॉक्टर साहब की सोने की अंगूठी मिली, उसे धोकर वापस घर गई। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है ये अंगूठी कितने की होगी? उसने कहा, दाम तो नहीं पता साहब, लेकिन बहुत महंगी होगी, सोना और हीरा तो महंगे ही होते हैं ना। उन्होंने पूछा, तुम इसे चुपचाप अपने पास रख सकती थी ना, तुम्हारे मन में ऐसा क्या आया जो वापस कर दी? उसने दोनों कानों को हाथ लगाया और कहा, साहब पिछले जन्मों की गलतियों के कारण इस जन्म में गरीबी देख रही हूँ, अभी भी नहीं चेती तो अगले जन्मों का चक्र बिगड़ जाएगा। उस महिला को उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, और जब डॉक्टर साहब ने ये बात मुझे बताई तो मैंने भी उस महिला को मन ही मन सलाम किया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है, आप उसे गाइड कर दे ताकि वह हाई स्कूल पास हो जाए। उन्होंने उसे एक शिक्षक के पास भेज दिया, लड़की प्रथम श्रेणी में

पास चली गई। अब लखनऊ में उसका बहुत बड़ा बंगला है, दिल्ली मुंबई में तो है ही। उस महिला ने अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा, उसकी ट्यूब में ढेरों पुण्य समाते गए और दूसरी छोर से सारे पाप निकल गए। जिस दिन सारे पाप निकल गए, ट्यूब के पास निकालने का सिर्फ अच्छा अच्छा ही रह गया। ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम अल्पकाल के लिए दुखों को सहते हुए पुण्य के खाते को बढ़ाना चाहते हैं या पाप करते हुए अपने पुण्य के खाते को खत्म करके दुख को बार बार झेलना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर आधार है। तो प्यारे श्रोताओं, इस घटना से आप समझ गए होंगे कि एक महिला गरीब होने के बावजूद भी ईमानदारी पर रही, हर समय उसने अच्छा ही किया, उसके ईमान को नहीं बिगड़ने दिया। बाकी अपन समझ सकते हैं कि आजकल पैसे वाले का भी ईमान हिल जाता है जब सामने रखी हुई दौलत बड़ी कीमती होती है। तब कौन से रिश्ते कब बदल जाते हैं, धन संपदा को देखकर किसी का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम अच्छाई पर डटे रहेंगे, अपने ईमान पर डटे रहेंगे, तो एक दिन कहते हैं ना, अच्छा अच्छा करता है अच्छा बन ही जाएंगे। जैसे कि सत्संग में जाते हैं, संत लोग क्या कहते हैं, भले आपको नींद आवे लेकिन आप सत्संग में आइए और सत्संग का लाभ लीजिए। बहुत सी महिलाओं को नींद आती है तो संतों को पता है, और महिलाएं कहती भी रहती है कि संत महाराज निंदा प्रपंच करते तब तो हमको नींद नहीं आती, लेकिन सत्संग सुनने आते हैं तो नींद आ जाती। तो संत यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, नींद आती है तो आने दो, लेकिन सत्संग आप सुनने आओ। कहते हैं कि सत्संग के अगर दो शब्द भी कानों में चले गए और जीवन में बदलाव आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसी तरह प्यारे श्रोताओं, पाप का जब हमारे पूर्व जन्म का कोई भी हिसाब किताब हो कर्मों का, वो चुकता होने के बाद अगर हम इस वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म कर रहे होते हैं तो बुरे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के बाद हमारे साथ अच्छा ही होगा। जैसे कि उस महिला का हुआ, उस महिला ने ईमानदारी से डॉक्टर साहब के घर में काम किया, एक अंगूठी वो चाहती तो छुपा भी सकती थी। आप समझ सकते हो डॉक्टर के घर में किस चीज की कमी रहती है, तो वो छुपा भी सकती थी, लेकिन उसका ईमान उसने ये नहीं करने दिया और उसने डॉक्टर साहब को वो अंगूठी लौटा दी। तो उसकी एक दिन गरीबी समाप्त हो गई और उसकी बेटी इतने अच्छे आगे बढ़ पाई कि अच्छे अच्छे को उसने टक्कर दे दी और वो भी एक दिन विदेश चली गई। तो सोचिए अच्छाई का परिणाम कितना अच्छा होता है, और अच्छाई का परिणाम अच्छा होता है तब जब हम अच्छाई करते हैं। तो ये खुशियां हमारे पास ही लौट के आती है और हमारा जीवन सदैव खुशियों से भरपूर रहता है। तो प्यारे श्रोताओं, अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको सिखाते हैं नए नए व्यंजन। तो आशियाना के किचन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आशियाना के किचन में आज बनने जा रहा है काजू रोल। काजू रोल जो अक्सर हम त्योहारों पर बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि बनाना नहीं आता, इसलिए हम काजू कतली है, काजू रोल है, रेडीमेड बाजार से ले आते हैं और इस तरह त्योहारों पर काजू रोल व काजू कतली का खाने का आनंद उठाते हैं। लेकिन अगर हम घर पर बनाते हैं तो कितनी अच्छी बात है। घर पर बनाने से हर चीज थोड़ी सस्ती भी पड़ती है और स्वच्छता से बनाई जाती है। स्वच्छता से बनी हुई चीज सभी को अच्छी लगती है और अपने मन माफिक टेस्ट के अनुसार हम चीज बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी। इसलिए हर एक चीज घर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए काजू रोल के लिए सामग्री लेंगे। पेन और डायरी तो आपने ले ली है ना? ओके, तो मैं आपको जो सामग्री लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। पीसे हुए काजू लीजिएगा 2 कप, ठीक है। पिसक्कर लेनी है आपको 1 कप। देसी घी 2 छोटे चम्मच लीजिएगा। भीगी हुई केसर लेनी है थोड़ी सी और चांदी का वर्क व पिस्ता कतरन लेना है आपको सजाने के लिए आवश्यकता के अनुसार। तो ये हो गई काजू रोल की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पीसे हुए काजू लीजिएगा 2 कप, शक्कर 1 कप, 2 छोटे चम्मच लेना है देसी घी और थोड़ी सी भीगी हुई केसर लेनी है, चांदी का वर्क और पिस्ता कतरन सजाने के लिए लेना है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिएगा। तो ये हो गए काजू रोल की सामग्री। अब काजू रोल भी बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहोगे आप आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomaduban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: अभी आप आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है काजू रोल। काजू रोल की सामग्री तो मैंने आपको लिखवाई दी है, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा। काजू, शक्कर, देसी घी, केसर, चांदी का वरक और पिस्ता कतरन। ठीक है, तो ये हो गई सामग्री। अब कैसे बनाएंगे आइए वो भी सिखाते हैं आपको। शक्कर में आधा कप पानी डाल करके आप गैस पर रखिए और लगातार हिलाते हुए पकाइए। ठीक है, जब एक तार की चाशनी बनने लगे ना, तो इसमें काजू का पाउडर व देसी घी मिला करके तेजी से फिर से हाथ चलाते हुए पकाइए। जब मिश्रण किनारे छोड़कर एक जगह इकट्ठे होने लगे तो गैस बंद कर दीजिए। फिर आप मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके मध्यम आकार के रोल बनाइए और चांदी के वर्क, भीगी केसर, पिस्ता कतरन से इसको सजा दीजिए। तो ये बन गए हमारे काजू रोल। पुनः दोहरा रही हूँ काजू रोल की विधि को, बहुत ही अच्छी है, आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप शक्कर की चाशनी बना लीजिए, जिसमें आप शक्कर में आधा कप पानी डाल करके गैस पर रखिए और लगातार हिलाते हुए पकाइए। जब एक तार की चाशनी बनने लगे ना, तो इसमें काजू का पाउडर व देसी घी मिला करके तेजी से हाथ चलाते हुए पकाइए। हाथ चलाते हुए बोले तो अच्छी तरह हिलाइए, हिलाते हुए आपको पकाना है। ठीक है, और जब मिश्रण किनारे छोड़कर एक जगह इकट्ठा होने लगे तो बस आप गैस बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। फिर आप मध्यम आकार के रोल बनाइए और रोल बनाने के बाद आप चांदी के वर्क, भीगी हुई केसर, पिस्ता कतरन से सजा दीजिए ऊपर ऊपर से। तो ये बन गए हमारे काजू रोल। अब काजू रोल तैयार है, तो बस भोजन तो आपने बनाया ही होगा, फिर देर किस बात की। लीजिए एक स्वच्छ थाली, स्वच्छ थाली में भोजन पिरसिएगा, काजू रोल भी रखिएगा और तुलसी पत्र जल के स्वच्छ ग्लास भर के रखिए और ऊपर से ढकिए स्वच्छ कपड़ा, और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो काजू रोल का। अब लेंगे यहाँ पर छोटा सा विराम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
2: समय रिसागे उदय सिंगी मोटियार होवण दागे, वारी राजपूती मरोड़ अर सांगारी शक्ति उदयरे बाजुओं में देखण दाके, उठीने मेवाड़ री प्रजा सामंत अर जागीरदार बनवीर रे आतंक सू घणी धापियोड़ी ही दुखी हुई। छेवट मेवाड़ अर मारवाड़ रा कई मानिता सरदार भेड़ा होयर गुप्त मंत्रणा करता हा। उन समय उन्होंने ठा पड़ी कि मेवाड़ी सूरज उदय सिंह जिंदा है। पन्ना रे बलिदान री बातां घर घर होवण लागी। जद मेवाड़ रा सरदार ने पतो लागो के उदय सिंह आशा शाह रे घरे है, तद सरदार चूंडावत, सरदार महीदास, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़ रा अखय सिंह और सांचोर रा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होयर कुंभल मेर गया। सगड़ा मिलुर उदय सिंह रो राज तिलक करियो। एण अवसर माथे सोनगढ़ रा शासक अखय सिंह आपरी बेटी रो ब्याह उदय सिंह जी साथे करियो।

0: गौरवशाली गुजरी उदय सिंह रखवाड़ माँ ममतारी मूर्ति तू शक्ति प्रणपाल तू शक्ति प्रणपाल बलिदानी मायड़ थारो जीवन गीता सार पन्ना धाय पड़के है सूरज रे उणियार सूरज रे उणियार।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन,
3: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए अब सामान्य जानकारी देते हैं कि सर्दी के मौसम में कैसे दिल की देखभाल करेंगे। दिल की ही नहीं पूरे स्वास्थ्य के संभाल रखिएगा, या तो आती हुई सर्दी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है या फिर जाता हुआ मौसम हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन खास दिल का ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे दिल की संभाल करेंगे, चलिए ये जानकारी लेते हैं। जन्म से मृत्यु तक दिल धड़कता है, 24 घंटे काम करने वाला दिल कभी भी धोखा दे सकता है। अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और उपचार के पहले ही दिल धड़कना बंद कर देता है। दिल को चुस्त दुरुस्त रखना है तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, खान पान को थोड़ा सा बदलिएगा। तनाव दिल का कट्टर दुश्मन है मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल भी अनियंत्रित करता है। तनाव से बचिए, यह अवस्था है रोग नहीं। ब्लड प्रेशर दिल को कमजोर करता है, नमक का सेवन कम करिए, खाने में ऊपर से नमक नहीं लीजिए तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। दांतों को फ्लश और ब्रश करें। ओरल केविटी से एक बैक्टीरिया निकलता है जो रक्त में मिलकर के रक्त प्रवाह को बाधित करता है। रक्त का थक्का हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों के मसूड़े का संक्रमण रोग है उन्हें मुंह व दांत को रोज 2 बार सफाई करना चाहिए और चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए। नाश्ता कभी नहीं छोड़िए, सारी रात कुछ नहीं खाने के बाद सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो शरीर तनावग्रस्त होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। टमाटर में लाइकोपेन एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखता है। अनिद्रा तनाव बढ़ाती है और दिल को क्षति पहुंचाती है। हर व्यक्ति को 8 घंटे गहरी नींद सोना चाहिए। धूम्रपान से बचिए, अधिक धूम्रपान के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, रक्त प्रवाह में बाधा आती है, ब्लड प्रेशर और धड़कन बढ़ती है। आज के आपाधापी के दौर में बीमारियों से बचने के लिए व्यायाम, संतुलित खानपान और नियमित जांचों का शेड्यूल रखना बेहद जरूरी हो गया है। जांचों के माध्यम से मोटापा, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बीमारियों का पूर्वानुमान लगाकर हम इनसे होने वाले खतरों को कम तो कर ही सकते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, इस तरह अपने दिल का ध्यान रख सकते हो। इन सभी बातों पर गौर करेंगे तो हमारा दिल स्वस्थ रहेगा, दिल स्वस्थ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें अच्छा लगेगा। अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

प्यारे श्रोताओं, समय हो चला आप सभी से विदा लेने का। तो आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, ज्ञान कितना भी सुनते रहो पर सच्चा ज्ञानी वह है जिसके हर कर्म में ज्ञान दिखाई दे। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। मेरी कविता का शीर्षक है वक्त की हवाएं। देखो हवाएं किस रुख बह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही, आने वाले वक्त के आसार कह रही, आने वाले वक्त के आसार कह रही। समझ से एकाग्र हो विचार करो, समझ से एकाग्र हो विचार करो, वक्त से पहले ही तैयार करो, फिर जीत तुम्हारी तय रही, फिर जीत तुम्हारी तय रही। देखो हवाएं किस रुख बह रही। ना तुम तबाही का जिक्र करो, ना तुम तबाही का जिक्र करो, योजना बनाओ न फिक्र करो, घड़िया अब चंद रह रही, घड़िया अब चंद रह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही। मुश्किल वक्त भी उससे डरता है, मुश्किल वक्त भी उससे डरता है, जो जरूरी है वह करता है, संग उसके ही विजय रही, संग उसके ही विजय रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही। तुम बड़ो संग शक्ति का दाता है, तुम बड़ो संग शक्ति का दाता है, वह किसी को निमित्त बनाता है, वह किसी को निमित्त बनाता है, और समझो क्या गहरी वजह रही। देखो हवाएं किस रुख बह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही, आने वाले वक्त के आसार कह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भगिनी निवेदिता के सामने अब प्रश्न था कि सेवा से आगे क्या, क्योंकि मामला केवल भूखे शरीर तक सीमित नहीं था, प्रश्न था आत्मा की स्वतंत्रता का। भारत की पीड़ा को उन्होंने देखा था, अब वो उसे महसूस भी करने लगी थी। निवेदिता अब सिर्फ एक सेविका नहीं थी, वो एक देशभक्त बन चुकी थी। उन्होंने अपने बाकी जीवन को अनुशीलन समिति, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी जैसे संगठन, जो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले लोग थे, उनकी सेवा में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। वो अपने ज्ञान से लोगों में ऊर्जा का संचार करती थी।
1: मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा जीवन में ब्रह्म को खोजने की बात करते थे। आज की सिचुएशन में स्वराज को खोजना ही ब्रह्म है, और स्वराज को खोजने के लिए एक महामंत्र है जो आपके संघर्ष में आपको जोश और शक्ति देगा। वो है वंदे मातरम। हमारे चारों तरफ माया है, हमें इस माया को भूलकर देश की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए सेवा ही ईश्वर की सेवा है। God is seeking your services more than anything।
0: इन्हीं दिनों कलकत्ता की हवाओं में एक गीत की सुबुगाहट होने लगी थी, एक ऐसा गीत जिसे गाने पर जेल और सुनने पर संदेह होता था। उस गीत का नाम था वंदे मातरम, और उसे एक वैचारिक हथियार बनाने वाले थे अरविंदो घोष, स्वाधीनता संग्राम के प्रखर चिंतक। इधर जैसे जैसे बच्चियां भगिनी निवेदिता से उनके जीवन के बारे में जान रही थी, उनकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, साथ ही बढ़ रहे थे उनके प्रश्न।
2: अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आपने मठ और क्रांति को एक साथ कैसे संभाला?
1: अच्छा प्रश्न किया तुमने लाली, ये सफर मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं अनुशीलन समिति जाने लगी तो मठ के वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रॉब्लम्स होने लगी।
3: तुम समझ नहीं रही हो निवेदिता, ये मठ व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को क्रांतिकारी नहीं, बल्कि उसे समाज के प्रति संवेदनशील बनाना है।
0: मठ के वरिष्ठ जनों की बात सुनकर निवेदिता का मन विचलित हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। फिर भी उन्होंने धैर्य से अपनी बात रखी।
1: स्वामी जी की आखिरी इच्छा थी स्वराज, इसीलिए मुझे पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
0: निवेदिता के दृढ़ निश्चय को देख उस व्यक्ति ने कहा,
3: यही तो डर है मुझे, कहीं तुम्हें मठ से अपना नाता न तोड़ना पड़े, क्योंकि मठ किसी क्रांतिकारी या राजनीतिक समूह से जुड़ना नहीं चाहता है। तुम्हें मठ छोड़ना पड़ेगा निवेदिता, छोड़ना पड़ेगा।
1: जिस मठ को मैं अपना घर समझती थी, उसे छोड़ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, पर मैं अपने स्वामी जी की लास्ट विश को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आश्रम से जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले भी हुआ है मेरे साथ, जब मैंने अपना देश और अपना घर छोड़ा था। स्वामी जी ने मुझे मोह माया से डिटैच्ड रहना सिखाया था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत, उठो जागो, सचेत हो जाओ, और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। टू अवेक, टू बी अलर्ट एंड नेवर स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड।
0: भगिनी निवेदिता की कहानी सुनकर सबकी आंखें भर आईं। फिर निवेदिता ने कहा,
1: मठ से निकाल देने के बाद मुझे श्री अरविंदो ने अपने आश्रम अनुशीलन समिति में रहने का स्थान दिया। उन्होंने पूरे आदर सम्मान के साथ मुझे सभी आश्रम सदस्यों के साथ कार्यरत होने को कहा।
0: सन 1905 का समय था। अनुशीलन समिति की बैठक थी जिसमें भगिनी निवेदिता भी उपस्थित थी।
1: हाँ अरविंदो, बताओ कि क्या अपडेट्स हैं?
4: युवाओं की शारीरिक मजबूती के लिए हमने उनके फिजिकल एक्टिविटी शेड्यूल को और भी सख्त कर दिया है। साथ ही समूह में विचार विमर्श और तर्क वितर्क के अभ्यास के लिए हमने स्टडी सर्कल्स भी चला रखे हैं।
1: That's great. Next plan क्या है?
4: उसी के बारे में विचार करने हम यहाँ आए हैं। दरअसल आगे की योजना के लिए हमें शास्त्रागार की भी जरूरत है। साथ ही बम बनाने और उसके रख रखाव के लिए हमें एक सुरक्षित स्थान भी चाहिए।
0: थोड़े सोच विचार के बाद निवेदिता ने कहा,
1: मेरा एक फ्रेंड है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। वैसे उसे प्लान्स और ट्रायल्स की फीलिंग समझने का शौक है। लेट्स सी अपने नेशन की फीलिंग्स को वो कितना समझ पाता है।
0: इस बैठक के बाद भगिनी निवेदिता अपने मित्र जगदीश चंद्र बोस से मिलने जाती हैं। उनसे स्वतंत्रता संघर्ष में साथ देने की अपील करती हैं, जिसे वो मान जाते हैं।
5: मैडम, मैं देश के लिए आपका साथ जरूर दूंगा।
0: समय के साथ साथ निवेदिता और उनके साथियों का दल और भी मजबूत होने लगा। विज्ञान के प्रयोगों के साथ साथ उन्होंने बम का प्रयोग भी करना सीख लिया। लेकिन उनके समक्ष अभी और भी कई चुनौतियां थीं। ऐसा ही हुआ साल 1906 में। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उनको अपनी बात रखने का आग्रह किया गया, लेकिन पार्टी दो पक्ष नरमपंथी और चरमपंथी में बटे होने के कारण उन्हें दोनों पक्षों को संतुष्ट करना था। उनके प्रभावशाली वाक्यों का ऐसा जादू हुआ कि जो काम दादा भाई नारोजी इतने वक्त से नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने करके दिखा दिया था। पार्टी के दोनों पक्षों को एक बात पर सहमत कर उन्हें एकजुट करवाया। इधर निवेदिता की बात सुनते हुए एक बच्ची ने पूछा,
2: अच्छा दीदी, आप कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के अधिवेशन का

0: समझ जाते थे। बट देन अ डे केम जब हमारे मेंबर्स पकड़े जाने लगे। फिर मुझे लगा कि कुछ समय के लिए कलकत्ता छोड़ने में ही समझदारी है। Hence, I have come to meet my dear girls. क्योंकि अब कुछ समय के लिए हमारा मिलना मुश्किल है। ये थी मेरी कहानी। आज मैं तुम्हें एक प्रार्थना सिखाऊंगी, पर वादा करो कि तुम लोग ये प्रार्थना हर दिन गाओगे।
1: प्रार्थना की बात सुनकर लड़कियों में असमंजस पैदा हो गया। उन्होंने निवेदिता से पूछा,
2: लेकिन दीदी, हम पहले से इतनी सारी प्रार्थनाएं गाते हैं, तो अब एक और क्यों?
0: क्योंकि सभी प्रार्थनाओं में हम गॉड से अपनी अच्छी हेल्थ, अच्छी स्टडीज और फैमिली के लिए प्रे करते हैं, लेकिन इस प्रार्थना में हम भारत माता के राष्ट्र की भलाई के लिए प्रे करेंगे। इस गीत को गाकर हम भारत माता की वंदना करेंगे। ये गीत हमें एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ ताकत का एहसास दिलाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये गीत भारत का हर बच्चा गाए। क्या तुम लोग इसे गाने को तैयार हो?
2: हाँ।
1: सभी लड़कियां भगिनी निवेदिता के साथ खड़ी होती हैं।
0: Please repeat after me. Vande Mataram.
2: Vande Mataram.
0: Vande Mataram.
2: Vande Mataram.
0: Sujalam Sufalam.
2: Sujalam Sufalam.
0: Malayaja Shitalam.
2: Malayaja Shitalam.
0: Shasya Shamalam Mataram.
2: Shasya Shamalam Mataram.
0: Vande Mataram.
2: Vande Mataram.
0: मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि वंदे मातरम जैसे महान गीत को मैं स्कूल प्रेयर्स में शामिल कर पाई।
1: और फिर धीरे धीरे कई और स्कूल्स में वंदे मातरम गीत गाए जाने लगे। उधर लड़कियों से मिलते हुए शाम हो जाती है और निवेदिता वापस अनुशीलन समिति आ जाती है। रात का समय था। कलकत्ता के अनुशीलन समिति में दिए की लौ कांप रही थी। भगिनी निवेदिता खिड़की के पास बैठकर आनंद मठ को पढ़ रही थी और वंदे मातरम गीत गुनगुना रही थी।

0: सिस्टर निवेदिता, आप जानती हैं कि ये गाना, इस गाने को गाना अब अपराध घोषित किया जा चुका है।
1: अगर मातृभूमि को प्रणाम करना क्राइम है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी।
0: यह गीत केवल शब्द नहीं है, यह ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती है। आप विदेशी हैं, आपको सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा।
1: मैं विदेश में जन्मी हूँ, पर अब मेरी कर्म भूमि भारत है, सोल भारतीय है, और आत्मा पर कोई शासन नहीं कर सकता।
2: उस क्षण निवेदिता ने वंदे मातरम को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जी लिया।
1: वंदे मातरम।

0: भूमि का गीत नहीं, ये उस माँ की पीड़ा है जो अपने बच्चों को पराधीन देखने से दुखी है। जब तक ये पीड़ा है, वंदे मातरम अमर रहेगा। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी और ये गीत सही मायनों में भारत के राष्ट्र को दर्शाता है। ये धरती मेरी कर्म भूमि बन गई है और ये देश मेरा घर। मैं हमेशा ही यहाँ रहना चाहती हूँ, अनंत काल तक।
1: अब निवेदिता केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रही, वो युवाओं की चेतना, गुप्त सभाओं और विचारों की क्रांति का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने अपनी कहानी सुनाते सुनाते बच्चियों से कहा,
0: तुम्हें तलवार नहीं उठानी, सिर्फ अपना डर छोड़ना है। वंदे मातरम कहते समय आईज नीचे मत करना।
2: दीदी दीदी, अगर हमें जेल हो गई
0: तो समझना मदर इंडिया भारत माँ ने तुम्हें अपनी गोद में छुपा लिया है।
1: भगिनी निवेदिता का मत था कि भारत की दुर्दशा का बड़ा कारण विदेशी गुलामी है। बंग भंग का उन्होंने प्रबल विरोध किया। क्रांति गीत वंदे मातरम को अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत बनाया, अनेक पुस्तकें लिखी, प्लेग पीड़ितों की अथक सेवा की और फिर एक दिन शरीर ने जवाब दे दिया। वो 13 अक्टूबर 1911 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब भगिनी निवेदिता ने अंतिम सांस ली। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेलूर मठ को दान कर दी। उनका स्मारक आज भी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। समाधि पर अंकित शब्द हैं, हेयर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। ऐसी महान नारी को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। दोस्तों, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक संकल्प है। जब जब इस गीत की पंक्तियां गूंजती हैं, तब तब सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, इतिहास याद आता है, सेनानियों का बलिदान याद आता है, याद आती है वो चेतना जिसने भगिनी निवेदिता जैसी विदेशी स्त्री को भी भारत माँ की बेटी बना दिया। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती। वंदे मातरम गीत कैसे बनी एक पूरे राष्ट्र की आवाज, कैसे एक गीत बना डर का सबसे बड़ा शत्रु और कैसे ब्रिटिश सत्ता इस गीत से कांप उठी, अगले अध्याय में हम जानेंगे उस गीत की यात्रा जो जेल की दीवारों से टकराई, फांसी के फंदों तक पहुंची और फिर भी अमर हो गई। अगर आज भी वंदे मातरम सुनकर आपका सिर अपने आप झुक जाता है, अगर आपकी आंखों में नमी और सीने में आग एक साथ उठती है, तो समझ लीजिए ये गीत अब भी जीवित है। और जब तक ये जीवित है, भारत की आत्मा कभी पराजित नहीं होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक गीत, एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

अगर एक सवाल का एक जवाब होता, या फिर हर सवाल का एक जवाब होता, तो क्या होता? अगर भगवान ने दुनिया में एक ऐसी चीज़ बनाई होती जो पाते ही ऐसा लगे कि खजाना मिल गया, जिसको जीवन में शामिल होने से ऐसा लगे कि जीवन सफल हो गया, जीवन स्वर्ग बन गया, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिंदगी में हो जिसके बस माथे पर हाथ रख देने से सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो कौन है? जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ हर उस माँ की, या हर उस शख्स की जिसने माँ का किरदार निभाया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी हमारी बड़ी बहन, कभी कभी हमारे पिता, कभी हमारे चाचा, मामी, मामा, कोई भी हो सकता है जिसने हमें माँ बन के प्यार किया। माँ कौन होती है? जो सेल्फलेस प्यार करती है, पालना करती है, जो उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ें ये कामना करती है, ऐसी होती है ना माँ? तो दोस्तों, उस माँ को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं। वैसे तो कोई एक दिन नहीं होता माँ को सेलिब्रेट करने के लिए, या माँ को ये बताने के लिए कि आप क्या हो मेरे लिए। हालांकि कई बार हम इसे शब्दों में बयां कर भी नहीं पाते हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तभी तो बहुत सारे गाने बने हैं दोस्तों जो हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। चलिए, फिलहाल मैं आपको लिए चलती हूँ ऐसे ही एक गीत की ओर, बहुत सुंदर है, और उसके बाद हम मधुबन अनप्लग्ड में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। रेडियो मधुबन के साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

রে উড়া গোলা মাই তেরি চুনারিয়ালহরাই জগ সে হারা নহি মে খুদ।

0: का ऑल ओरी सुनाओ ना।
1: हाँ बेटा। जू जू जू जू जू जू जू जू जू जू।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी मम्मीज को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, यानी ये संगीत का सफर है यार, उसे एक ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं। हर हफ्ते हम आ जाते हैं रात को, आए बहुत सुंदर सा, ये मीठा सा, प्यारा सा, मधुर सा संगीत का सफर। दोस्तों आज का दिन और स्पेशल है, मदर्स डे है, यानी हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं, दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं हर उस माँ का या हर उस व्यक्ति का जिसने माँ का रोल निभाया। कोई ज़रूर रहा होगा दोस्तों, कई बार हमें भी ऐसे हैं जिन्होंने माँ की तरह हमें बड़ा किया या माँ की तरह प्यार किया, है ना दोस्तों। चलिए अब बातें कम और संगीत ज़्यादा, भाई हमारे नारा है क्योंकि कार्यक्रम है संगीत वाला। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में विवेक जी। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू जी।
0: विवेक जी मैं चाहूंगी सबसे पहले, वैसे तो मुझे लगता है आप हमारे श्रोताओं से कई बार मधुबन अनप्लग्ड में जुड़ चुके हैं
1: जी,
0: और आप बहुत सुंदर सेवाएं भी करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या फिर आप चाहे गीत संगीत की बात हो या पोएट्री लिखने की बात हो, बहुत कुछ आपके अंदर हुनर छुपे हुए हैं, इससे तो हम परिचित हैं। आज मदर्स डे पे आप क्या फील कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: जी वैसे तो मैं माँ बाप का जो ऋण होता है वो चुकाया नहीं जा सकता, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या हो तो वो कठिन हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो हमने माता जी को फोन लगाया, हमने माता जी को हैप्पी मदर्स डे बोला तो माता जी ने भी बड़ा थैंक यू बोला, तो उसको भी एक अंदर से अच्छा फील आया होगा जरूर कि भाई कुछ भी हो, मीन्स एक तो लगा उसको कि अपने बच्चे ने अपने हमको अप्रिशिएट किया है कुछ भी, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा करने से हमको कोई अप्रिशिएट करे तो उनको भी लगता होगा, क्योंकि आजकल कितने भी बुढ़े हो जाए अगर वो थोड़ा सा मीडिया से कनेक्टेड है तो उनको पता चल जाता है आज मदर्स डे, आज फादर्स डे है, जो भी डे है,
0: आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाता है फटाफट।
1: जी जी, तो उनको पता रहता है कि आज मदर्स डे, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी हमको कभी फोन करे, क्योंकि जब से ये फोन आया है सब लोगों को दूर कर दिया इस फोन ने, तो हो सकता है कि उनको भी थोड़ा बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ होगा। और मुझे भी फोन करने के बाद आपने जो याद दिलाया मुझे, तो उसके बाद में मुझे भी थोड़ी सी एक भावना जागृत हो गई कि नहीं फोन करना चाहिए, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा।
0: अगर मैं आपसे पूछूं अपनी माँ की सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है?
1: मेरी माँ की सबसे अच्छी क्वालिटी है, मुझे ऐसे लगते है बचपन से मैं देख रहा हूँ कि जो भी कोई घर पे आए वो भूखा ना रहे, और हम भी बच्चे और हमको भी उन्होंने यही सिखाया कि मेहमान भगवान का रूप होता है, उसको कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। कभी भी आए, रात को 12 बजे क्यों ना आए, उसका फर्ज अलग है, लेकिन अपना फर्ज है कि उसको पूछे और उसको कुछ बना के खिलाए तो वो संतुष्ट होके अपने घर से जाए। और मैंने देखा कि जो खाना खिलाने में ज़्यादा भावना रखते हैं, खिलाते हैं, दिल से करते हैं, उनके घर में किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। तो हमारे घर में भी यही है, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि जो भी आए उसको अपने हाथ से बना के खिलाओ, और आज भी हमको यही आदत है, हम जितना हो सके और जो भी हो सके हम करने की जरूर कोशिश करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है।
0: मतलब ये संस्कार आप में माँ से आए
1: जी,
0: है ना? तो क्या आप माँ से कुछ कहना चाहेंगे, मैं रेडियो के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आपने उनसे कहनी चाहिए या नहीं कह पाए?
1: पर्टिकुलरली मैं मेरी माँ को तो अभी सब कुछ बोल दिया, मैं ज़्यादा तो माँ बाप से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, उनके लिए मेरे जो कर्तव्य होते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन जनरल

0: मैं सभी जो बच्चे हैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक होता है कि उनका कर्तव्य होता है और एक और दूसरी चीज होती है कि उसका एक धन्यवाद देना होता है। कर्तव्य तो जब हम लोग माँ बाप बनते हैं तब हमको पता चलता है कि कर्तव्य क्या चीज होता है और एप्रिसिएशन क्या चीज होता है। तो इस चीज के लिए मैं सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो भी माँ बाप है, आप जिस किसी फीलिंग से, जिस किसी फॉर्मेट में आप बताना चाहते हो, बाय टेक्स्ट, बाय मैसेज, बाय ऑडियो क्लिप, किसी भी चीज से आप उनको जरूर बताइए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज के माँ बाप लोगों को पता चल जाता है कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, तो एक्सपेक्टेशंस रहती है थोड़ी सी। तो उस एक्सपेक्टेशंस को हम, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा उनसे बात कर लेना चाहिए। भले मदर्स डे, फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे नहीं बोले, लेकिन उस दिन उनको जरूर फोन करें। और ये मैं खुद को भी आज आपके रेडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि जो रोज कम से कम एक बार तो भी अपने माँ बाप को फोन करते हैं। माँ को तो जरूर करते हैं, भाई होगा तो माँ को करते हैं, बच्ची होगी तो पिताजी को करते हैं। मुझे तो ऐसा होता नहीं, मेरे से मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि रोज क्या बोले, कुछ नया हो, कुछ अलग हो तो बात करें ना, कि बस खाना खाया क्या, ये हुआ कि हाँ किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई अलग सा ओकेजन हुआ है रेगुलर से, तो बात करने का कुछ बनता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आदत मेरी भी मुझे बदलनी चाहिए। नहीं, मैं तो 15-15, 20-20 दिन फोन नहीं करता हूँ, लेकिन करना चाहिए एटलीस्ट, नहीं कुछ तो अल्टरनेट डे, 7 days, वंस इन अ वीक, ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए, उनके हालचाल पूछने चाहिए।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है अब विवेक जी, आप, हम जिस जनरेशन के हैं, हम सभी, हम ऐसे बड़े हुए हैं कि हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने माता पिता के साथ। हम उन्हें ये नहीं कहते कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, या कुछ बोलते नहीं हैं कभी। वो शायद हम उन पे गुस्सा कर सकते हैं अगर वो अपनी दवाई टाइम पे ना खाएं, या हम पे गुस्सा करें तो, या कोई बात ना माने, हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं, तो हम उनको टोक सकते हैं, उनसे नाराज हो सकते हैं, पर उनसे ये नहीं कह पाते कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
0: लेकिन उनसे नाराज होना, वो जो दवाई नहीं देते उनसे नाराज होना, इसमें भी एक प्यार छुपा है। और हो सकता है कि वो गुस्सा होना कितने लेवल तक के हम करते हैं, तो उसमें भी उनको अच्छा लगता है कि ये केयरिंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो भी हो सकता
1: वो
0: है,
1: वो भी
0: अच्छा फील करते होंगे, वो हमारे तरफ ध्यान देते हैं तो। लेकिन हर चीज हर वक्त गुस्से से ही नहीं करनी चाहिए, ये मैं खुद को भी समझाता हूँ। तो कुछ कुछ वक्त प्यार से भी बात कर लेनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे अभी याद आया, मदर्स डे के लिए ही नहीं, अभी वो बूढ़े होने के बाद में बच्चे सरीके जरूर करते हैं।
1: हाँ,
0: उनको थोड़ा सा, जैसे बच्चों को हम इग्नोर करते हैं कि चलो कोई नहीं बच्चा है, उस हिसाब से भी माँ बाप को अभी थोड़ा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 60 के बाद में वो थोड़ा सा रिवर्स गियर डाल के वो बच्चों सरीका

0: देखना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: आज का जनरेशन ऐसा है कि करके देखना चाहते हैं। गलतियां तो होगी लेकिन उस गलती से सीख भी लेंगे, इसलिए कुछ कुछ गलतियां होने दो। कुछ कुछ गलतियां माँ बाप कर रहे हैं आज के डेट में, इतने अनुभवी होने के बाद में भी, तो वो उनका बचपना है, उनको भी माफ करो। और माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी थोड़ा सा फ्री छोड़ो, उनको नया कुछ ट्राई करने दो, उनको अलग कुछ ट्राई करने दो, और हो सकता है तो उनके अलग कुछ करने में थोड़ा सहयोग दो, अगर नहीं हो सकता है तो इग्नोर करो। इससे घर का वातावरण भी अच्छा बना रहेगा और थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना भी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है हम ये जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं जो जनरेशन को करता है।
0: प्यार तो सभी में होता है, क्या फील नहीं हो पा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके पास बैठे जरूर, उनके लिए वक्त जरूर निकालें। मैं तो बस यही कहूंगी, क्या आप अपनी आज इस रेडियो के माध्यम से अपनी माँ को कैसे?
0: हाँ, आजकल ये कि मैं ओपनली उनसे बोलता हूँ, एक दो बार मैंने माता जी को भी बोला है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैं वर्ड यूज करता हूँ इसलिए मैं आपके लिए ये करता हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए।
1: हाँ, बस उतना ही काफी है।
0: उतना बोलेंगे तो उस वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग बनता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए घर बना रहा हूँ। वो तो अपने आप में जान चुके हैं, लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल रहता है, उतना उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। उसके आगे वो कंडीशन डाल देते हैं तो फिर वो कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि भाई घर तक ही इसका घर ये सीमित है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके आगे कंडीशंस नहीं लिखने चाहिए। लेकिन फिर भी वो

0: एक्सप्रेस करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बोलना जरूरी है और ये बोलना पड़ेगा। ये मैं आपके रेडियो के माध्यम से खुद को भी समझा रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं कहना है।
1: तो अगर आपकी माँ आपके सामने होंगी तो आप उन्हें कह सकते हैं केवल ये सेंटेंस?
0: हाँ, कह सकता हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स के इसमें नहीं जाएगा, वो थोड़ा कॉमेडी सेंस में चला जाएगा, वो थोड़ा हंसी के मोड में लेके जाऊंगा मैं
1: बोलने की ना।
0: हाँ, तो वो थोड़ा हंसी के मोड में चला जाएगा। हंसी हंसी में भी थोड़ी सीरियस बातें की जा सकती है,
1: कर सकते
0: और हंसी हंसी में भी फिर धीरे धीरे सीरियस हो जाएगा। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हंसी से क्यों ना हो कि शुरुआत तो हो जाएगी।
1: अभी मैंने
0: माता जी को बोला तो थैंक यू 2-3 बार उसने थैंक यू बोला, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी बड़ा एक दिल का बोझ हल्का हुए शरीर का लगा आज।
1: इसीलिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने की शुरुआत करनी है तो कल पे मत छोड़िए दोस्तों, आज मौका है, आज कर दीजिए।
0: क्या पता अगला मदर्स डे आए ना आए, उनका वो अपने साथ रहे ना रहे, अपना भी भरोसा नहीं है, उनका भी भरोसा नहीं है,
1: जीवन का भरोसा तो नहीं है। और सच में कई बार हम बहुत मिस करते हैं, जब वो डिस्टेंस भी हो जाता है कई बार तो भी बहुत मिस करते हैं, तो मौका छोड़िए मत। क्या कोई गाना है ऐसा जो आप सुनाना चाहेंगे आज मदर्स डे पे हमारी श्रोताओं को भी और अपनी माँ को भी डेडिकेट करना चाहेंगे आज?
0: जी, एक गाना है जो मुझे हमेशा के लिए पसंद है, वो तारे जमीन पर मूवी का मेरी माँ। तो ये गाना मैं आपके माध्यम से मेरी माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ।
1: जरूर
0: जी।

जी श्रोता हो, मैं आपके सामने ये गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भावनाओं पे जाइएगा, थोड़ा आज गले में खराश है तो आप सुनिए और अपनी माँ को भी याद कीजिए आज के दिन।

0: बहुत सारा स्वागत है दोस्तों आप सभी का. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड और अभी अभी आपने विवेक जी की आवाज़ में जो गाना सुना, एक शब्द भले छूट गया हो उसमें से, लेकिन भावना पूरी पहुंच गई. और सच में ये ऐसा गाना है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आते हों ये गाना सुन के, या इसके लिरिक्स पढ़ के, या हल्की सी नमी आ जाती हो, या शायद भावना तो अंदर आपकी बाहर आने को तड़पती ज़रूर होगी. क्योंकि सच में माँ को सब पता होता है. माँ पहचान जाती है वो चीज़ें भी जो हम खुद से भी छुपाते हैं. भले हमें डांटती है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी पिटाई भी होती है, लेकिन वो भी हमारे लिए ही होती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं सच में माँ को कहने के लिए. और अगर आपके मन में भी इस वक्त कुछ आ रहा है तो देर बिल्कुल मत कीजिए, फ़ोन कीजिए, या अगर आपके पास हैं तब तो सबसे बेस्ट है, उन्हें कुछ कहिए, कोई जेस्चर से दिखाइए, या किस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने माँ की भूमिका आपके जीवन में निभाई है तो उसे भी कहिए हैप्पी मदर्स डे. विवेक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी. थैंक यू.
0: और दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, लौट कर आएंगे. मधुबन अनप्लग जारी रहेगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में तो। तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
3: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
4: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
3: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
5: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों कई ऐसे कवि हुए, कई ऐसे ज्ञानी हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे बातें कह दी शब्दों में पिरो के कि वो दिल को छू जाती हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई, कई गहरी बातें अपने कलर से उतार दी। कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया जा सकता है। पर हम घर में सोचते हैं कि मैं तो भाई जॉब करता हूँ या स्कूल में पढ़ती हूँ या कॉलेज जाता हूँ, ना मैं कोई कलाकार हूँ और ना ही मुझे इतनी सुंदर तरीके से अपनी बात को व्यक्त करना आता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सच्चे दिल से बोले गए दो बोल, चाहे वो शायरी ना हो, चाहे वो कविता ना हो, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ ना हो, फिर भी दिल तक पहुँचते हैं और वो जो अनुभव होता है ना वो हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं जो अच्छी चीज़ है, अब देखिए बुरी चीज़ें तो हम फटाफट कह देते हैं, गिना भी देते हैं गलतियाँ और याद भी दिला देते हैं एक दूसरे को, अरे तुमने ऐसा किया था, और कोई अगर हमें हमारी गलती याद दिलाए फिर तो फटाफट उसको भी दिलानी ही पड़ती है ना। ऐसा होता है लड़ाई झगड़े बातें, जब उन चीज़ों में हम देरी नहीं करते जबकि उसमें करनी चाहिए, डिले होना बहुत ज़रूरी है उन थॉट्स में, उन एक्शंस में जो कई बार हमें बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो प्यार में देरी क्यों, अपनी माँ से कहने में देरी क्यों कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, या कोई ऐसी शख्सियत जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जिसने आपके जीवन में माँ की भूमिका निभाई हो। दोस्तों ये भावना अगर हमें समझनी है तो बस खुद के अंदर ही जाना होगा थोड़ा सा, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हमारे अगले गेस्ट और आइए उनका नाम पूछते हैं।
6: नमस्कार, मेरा नाम अतुल है, आपको और रेडियो मधुबन के हर श्रोता को आज मदर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस।
5: तो अतुल आप मदर्स डे पर आज अपने माँ को कौन सा गीत डेडिकेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
6: जैसा कि आज का शो मदर्स डे को डेडिकेटेड है, तो आज के इस हैप्पी डे पर मैं अपनी मदर का एक बहुत फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गाना गाना चाहूंगा और सारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा।

0: बिन अंगना ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा. So this was one of the favorite songs my mother likes, and ye gana main unko aaj dedicate kar raha hu. Hope everybody liked it aur unhe acha laga ho.
1: थैंक यू सो मच अतुल, बहुत सुंदर गाना आपने गाया. और सच में ऐसा लग रहा था कि वो ना एक जो लोकल फ्लेवर आता है, जो हमारे गाँव में हमारे यू नो घरों में गीत गाए जाते हैं, फिर वो वाली बात आ रही थी. और सच में अपने माँ का फेवरेट गाना आपने गाया, बहुत सुंदर लगा होगा उन्हें भी हमें लगता है. अब मैं आपसे जानना चाहूँगी अतुल, इतना प्यारा आपने गीत गाया, कोई ऐसी माँ के बारे में अपनी बात भी बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आप उनसे कहना चाहते हैं, आज वो बात अपनी जरूर अपनी माँ से कह दीजिए.
0: और आज मदर्स डे पर अपनी माँ की तारीफ के लिए मैं कितना भी कहूंगा, जितना भी कहूंगा उतना कम ही होगा, बिकॉज उसकी कोई लिमिट नहीं है. आई एम deeply, deeply, deeply grateful for all her love, her dedication. उन्होंने जितने sacrifices मेरे लिए किए हैं, मुझे पालने के लिए, मुझे इतना बड़ा करने के लिए, मुझ में अपने values, अपने संस्कार डालने.
1: बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है, संस्कार डालना वो माँ ही कर सकती है. तो
0: values, अपने संस्कार डालने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है. तो मैं ताउम्र इस जीवन में भी, शायद अगले जीवन में, अगर वो हम एक दूसरे के साथ आते हैं, सामने आते हैं, हमारा आमना सामना होता है, तो भी मैं उस जीवन में भी उतना ही शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझ पर अपना एफर्ट, अपना समय, अपना प्यार लुटाया है. One of the best things as a mother towards me कि उनके अंदर बहुत पेशेंस है. मुझ जैसे क्रैंकी, नटोरियस और शरारती इंसान को, एक शरारती बच्चे को पालना, इतना बड़ा करना एक बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए भी, बिकॉज हर जगह इधर शरारत कर रहा हूँ मैं, उधर तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट शी हैज मेंटेन्ड पेशेंस, वो अपना काम कंपोज्ड बिहेवियर रखा है. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मार नहीं खाई है, मैं बहुत पिटा हूँ, बट जिस हिसाब से मैंने उनकी नाक में दम करके रखा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक हाइएस्ट कोई एक अवार्ड मिलना चाहिए पेशेंस के लिए, उनको दे देना चाहिए. बिकॉज मैं एज अ चाइल्ड क्या, मैं अभी भी नाक में दम करने में, मैं ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कोई ऐसी कोताही छोड़ रखी है उनको परेशान करने में, बट स्टिल शी स्टिल लव्स मी विद दैट सेम फील, सेम डेडिकेशन. तो आई एम ब्लेस्ड, मैं इससे ज़्यादा और तो कुछ मांग भी नहीं सकता हूँ कि हाँ. और एक और एक बेस्ट चीज़ ये रही है कि उनकी वजह से मेरा बचपन, ठीक है आज मेरी उम्र 35 साल के ऊपर हो गई है, पर वो जो बचपना था, जो 13 साल के अंदर वो जो एक मासूमियत थी, जो शरारत करने का एक जज्बा बोल सकता हूँ मैं, या मेरी अंदर की एक जो स्किल थी, वो आज भी जिंदा है. बिकॉज शी लिसन्स टू इट, शी केटर्स टू इट, उन्हें

0: में आता है कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है और मेरे अंदर की खुद की अपनी जो फीलिंग है उसको उन्होंने अभी तक जिंदा रखा है, उसे वो समझती हैं। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि हाँ आज इस स्टेज पर भी आकर उन्हें वो चीज़ें समझ में आती हैं और मेरे अंदर का वो जो बचपन है उनकी वजह से है। सो हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू हर एफर्ट्स, हर डेडिकेशन। एंड अपनी तरफ से फिलहाल मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि उन्हें प्राउड करवाऊँ। मेरी अपने जो भी लक्ष्य थे या उनके प्रति जो मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ थी मैंने उन्हें पूरा किया है और आगे भी करता रहूँगा। तो इन दिस होप कि हाँ मैं एक बेहतर बेटा बन पाऊँ, एक बेहतर इंसान बन पाऊँ, वो गर्व उनको मैंने वो महसूस करने के लिए दिया है। एंड थैंक यू माँ, आई लव यू बिकॉज यू हैव लाइक यू आर द बेस्ट, सिंपल इज दैट, यू आर द बेस्ट बेस्ट बेस्ट बेस्ट। और जाने से पहले एक चीज और, देर आर अदर वुमेन टू, सिर्फ मेरी माँ नहीं, और भी कुछ ऐसी महिलाएं रही हैं मेरे जीवन में, जहाँ मेरी मौसी हैं या मेरे दोस्तों की मम्मियाँ रही हैं, जो जिन्होंने जब ज़रूरत थी मुझे तो सहारा दिया है, समझा है, कुछ चीज़ें समझाई हैं कि जीवन में जब मैं कभी भटक रहा था तो आई डू रिमेम्बर वो मदरली फिगर्स भी वहाँ पर थे जिन्होंने मेरे अच्छे के लिए अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम का इन्वेस्टमेंट दिया है, जहाँ उन्होंने मुझे सुना है, मुझे समझाया है, मुझे मार्गदर्शन दिया है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और उन्हें भी मैं अपनी तरफ से हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगा।
1: थैंक यू सो मच अतुल। और बिल्कुल ऐसे महिलाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने हमारे जीवन में वो भूमिका निभाई। उन सभी को आज रेडियो मधुबन भी बहुत दिल से प्रणाम करता है, नमन करता है और कहता है हैप्पी मदर्स डे।

0: जी हाँ दोस्तों, जब माँ की बात आती है तो फिर शब्द कम पड़ ही जाते हैं, लेकिन संगीत का सफर है तो हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजे उषा जी भी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पर।
1: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने आज खास दिन के लिए हमें याद किया इसके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देरी ना करते हुए मैं आपसे भी हाँ जी जी जानना चाहूंगी कि आप सबसे पहले
1: इस दिन की खास देर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और हाँ जी, और सुनिए आरुषि जी,
0: आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी माँ के लिए, आज कुछ विश करना चाहेंगे उन्हें?
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं हर माँ के लिए यही कहना चाहूंगी, माँ तो कहते ना कि ममता की मूरत होती है और माँ रत्नों की खान होती है। वो कहते हैं कि माँ ए माँ बाकी बदा वगड़ा ना वाह, ये गुजराती में कहावत है।
0: अच्छा
1: जी, तो मतलब माँ की होड़ इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल सही बात है, और आप खुद एक माँ हैं, बहुत प्यारे प्यारे आपके जो बहुत सुंदर सुंदर परिवार वाले हैं वो भी मुझे लगता है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपने आप सभी को वो प्यार अनुभव कराते रहते हैं अपना रोल हर जगह जहाँ भी जाते हैं। और आपके जो माता जी हैं वो भी हम समझते हैं इस उम्र में भी इतने एक्टिव और इतने खुश मिजाज हैं कि वो भी एक उदाहरण है हम सब के लिए।
1: और देखिए हर माँ, वो कहते हैं ना त्याग की मूर्त होती है, माँ भले खुद दुख सहन कर लेती है, खुद भूखी रहेगी, लेकिन अपने संतान को अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं रहने देंगे, इसलिए माँ की महिमा है। कहते हैं ना त्याग के बिना कोई किसी की तारीफ नहीं करता, और माँ तो माँ के नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कि अच्छी सी चॉकलेट खा ली हो मुंह में।
0: सही बात है, माँ शब्द इतना मीठा है, इससे मीठा शब्द नहीं होगा। उषा जी, क्या कोई दो पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे आज मदर्स डे पे खास समय श्रोताओं को?
1: जरूर जरूर। रुके तो चांद जैसी है माँ, चले तो हवा जैसी है माँ, वो माँ ही है जो धूप में भी ठंडी छाव जैसी है। वो कहते हैं कि लाड़ प्यार की बस यही है, दोस्तों मेरे लाड़ प्यार की बस यही है, मैं बिगड़ भी जाऊं ना तो वो मुझे अनमोल कहती है। नींद अपनी भुलाकर सुलाया है मुझे, नींद अपनी भुलाकर के सुलाया है मुझे, अपने आंसू सुखा करके हंसाया है मुझे। तो मैं आज के इस खास दिन पर मैं अपनी भी माँ को याद कर लेती हूँ सभी माताओं के साथ कि माँ तो कहते हैं ना कि ये एक दिन मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन एक दिन नहीं, रोज मनाना चाहिए, रोज माँ की महिमा जितनी आप गाओ उतनी कम है। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो यही कहा जाता है कि बच्चे अपनी माँ का अगर चरण धोकर के रोज पिए ना तो भी उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते।
0: माँ बाप का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता
1: जी,
0: संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जी, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, बहुत इमोशनल और बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज इस दिन को और खूबसूरत बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, आपको भी और हमारे सुनने वाले सभी छोटा बंधुओं को भी
0: शुक्रिया दोस्तों, और उषा जी के साथ साथ आप सभी का भी धन्यवाद। आप सभी रेडियो का हिस्सा हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, और आपकी खुशियों में आपके गम में हम आपके साथ हैं, शामिल हैं, क्योंकि ये एक परिवार है। तो दोस्तों, रेडियो मधुबन से अपना ये रिश्ता बनाए रखें, बरकरार रखें, अपने मैसेजेस अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेजेस के माध्यम से अपने विचार ज़रूर हम तक पहुँचाते रहें, हमें भी पता चलता रहता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो फीडबैक हम तक पहुंचता है। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर संगीत का आपको शौक है, तो ज़रूर आपका नाम, आपके गांव का नाम हमें लिखकर भेज दीजिए हमारे नंबर पर, जो कि है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414151415। अब फिलहाल तो वक्त हो गया इजाज़त लेने का, लेकिन सच में दोस्तों, अपनी भावनाओं को इजाज़त मत लेने दीजिएगा, खुद से दूर मत करिएगा, अगर वो सच्ची हैं, अच्छी हैं, प्यारी हैं। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो मत कहिए, लेकिन अच्छा है कुछ कहने के लिए तो देरी बिल्कुल मत करिए, क्या पता कल वक्त मिले ना मिले, है ना। तो दोस्तों, अपनी माँ को, अपनी बहन को या किसी भी रिश्ते को अगर आप ये कहना चाहें कि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, या मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, या थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए किया, किसी भी तरह से जो आपके मन में आ रहा हो कह दीजिए, एक सेंटेंस हो, एक पैराग्राफ हो, कुछ लंबा चौड़ा हो, लेकिन अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो कह दीजिए। फिलहाल लेते हैं इजाजत और सलाम करते हैं हर उस माँ को जिसने कर्तव्य अपने ऐसे निभाए कि उनके कई बेटे भारत माँ की रक्षा में भी खड़े हैं. उन माओं को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपने बेटे का, अपनी बेटी का मोह ना करके देश को समर्पित कर दिए. बहुत बड़ी बात है, ये करना आसान नहीं होता. बहुत कमाल की वो माएँ होती हैं जब उनका बेटा शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर आते हैं, तब भी वो सलाम करती हैं देश को, गर्व से कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को भारत माँ के नाम कर दिया. उस माँ को भी हम सलाम करते हैं और आप सभी को कहते हैं दिल से हैप्पी मदर्स डे. मातृदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: नमस्कार हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिन कर रहा गणा गणा राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन फम सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओ अन कार्यक्रम रे मायने अपने समाज रे माये जत्री कुरुतियों में है वन्य बारा में अपने समाज रे बंधुओं की बात करो हो और अन कार्यक्रम में मैं वन कुरुतियों ने कम करवा वास्ते समाज रा लोगों ने जागरूक करवा वास्ते रेडियो मधुबन री पूर्ण कोशिश है और एक कुरुतियों धीरे धीरे अगर आप समाज रा लोग जागरूक वेला तो अनो में कमी आवे है के। तो श्रोता बंधुओं अन्य अलावा अपने भारत देश में समाज रे में अति जातियों वे कई तरह री जातियों वे तो हर जाति रा रीति रिवाज रहन सहन उन्होंने पैरवास कहो है उन्होंने का रिवाज वे है उन्होंने बारे में जानकारी लेन अपने समाज रे बंधुओं वास्ते आज जो नवी पीढ़ी है उन्होंने वास्ते जानकारी वास्ते उन्होंने अन कार्यक्रम में समाज रा रीति रिवाज प्रसारित करवा रही रेडियो मधुबन री एक कोशिश है और प्रयास है कि आज जो नवी पीढ़ी में जो बच्चा है उन्होंने जानकारी मिलेगा अपने समाज रा रिवाज का है। तो अन्य हाथी समय आपो सबसे पहला अपने पाए आज बे समाज रा बंधु है उन्होंने आपो आज समाज रा में एक कुरुति केवा है या एक रिवाज केवा है कुरुति भी नहीं कहता पर रिवाज है पर मन में कुछ लागे है अपने का खर्ची ली है तो वह है एक ओडामनी प्रथा। ओडामनी प्रथा में यू वे एक आज समाज रे में जो भी अपने घर में फंक्शन वे है शादियों वे है कोई मौत वे मृतक वे है गंगा जल वे है कोई भी जो भी अवसर आवे तो वरने ऊपर अपने समाज में ओडोमनी लावा एक प्रथा है। ओडोमनी में पहला जो पुराना जमाना थी जो ओडोमनी प्रथा हले रही वन आदर माते हर समाज वाला वन प्रथा ने लेन हले रिया है पर अपन ने सोचना जोजिए कि जो समय बदले रही युग बदले रही है थोड़ा में थोड़ा सो बदलाव लाना जरूरी है। घनी ठोको ने देखो अपने घर में कोई मृतक हुई है फिर भी आपको देखो हो कि यदि 12 दिन वे तो अपने परिवार आसपास जितना मेंबर वे जितना भी रिश्तेदार वे अपने कई परिवार में अगर वन चार भाई है तो चार ही भाइयों जो भी रिश्तेदार वे हावरा वाला वे तो सब एक बीजारे कपड़ा लेना वे पासा वनी ने वत्रा वन हिसाब थी अगर वो रुपयारो दिए तो वनी ने हवाया जरूर देना पड़े जरे वो मोने नहीं तो क्या मुँह आया मोने तो कोई दीदू नहीं तो अन वास्ता उडमनी पड़ता एक खर्चीली भी केवा है एक कुरुती भी केवा है। आपको कतरो भी कणीन दो अपनो कोई खुश नहीं वे तो वंचित थी आवे के मो तो 1000 रुपये खर्च कर आयो मैं तो 1 रुपयारी और नहीं दीदी है तो एक एक तरह प्रथा है अणी ने गलत भी नहीं कहता पर खर्चीली है तो अणी ने कम करवा वास्ते समाज रा लोगों ने जागरूक होना पड़े और समाज रा नियमों में कुछ बदलाव लाना पड़े। तो आज ओडोमनी प्रथा माते आज अपने समाज रा बंधु बे है तो उन्होंती बात करो हो तो सबसे पहला अपो हीरालाल जी देवासी है तो उन्होंती पहला आपो 2-3 बार कुछ समाज रा विषय पर बात की दी थी आज फिर आपो उन्होंती ओडोमनी प्रथा पर बात करो हो तो सबसे पहला उन्होंने परिचय लो हो तो हीरालाल जी जो परिचय लेवाते पहला अपना जो बे बंधु है उन्होंने रेडियो मधुबन में स्वागत करो हो तो हीरालाल जी आप रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: राम राम शाह
0: हीरालाल जी राम राम किया है और एक बीजा बंधु है वह बबूता राम जी देवासी तो बबूता राम जी देवासी

0: आप बात करोला पर सबसे पहला उन्होंने कहो कि आप रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: राम राम सा आपने, राम राम सा।
0: देखो बबूता राम जी भी सब भाई बंधु ने राम राम किया है, रेडियो मधुबन रे श्रोताओं ने राम राम किया है, और रेडियो मधुबन रे तरफ और मारा तरफ से भी राम राम है, और आप सब रो अपनो समाज कार्यक्रम में स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं हमें आपो थोड़ो सो परिचय लोग, हीरा लाल जी आप कटे रहो हो।
2: मो एक्चुअली अवरूड गुड़े गांव खड़ात है, खड़ात में रेणु हमारे है
0: जी जी,
2: और वैसे बार कंपनी में एक सर्विस करो क्वालिटी में
0: जी। तो हीरा लाल जी क्यों पहला परिचय तो आपने दी तो है, फिर भी आपने बताऊं कि हीरा लाल जी खड़ात गांव में रहे हैं और मॉडर्न इंसुलेटर में सेमी स्टाफ में काम करे है। तो हमें अपने बीजा समाज रे बंधु है बबूता राम जी देवासी, तो बबूता राम जी ने पूछू आप वर्तमान में कटेरो हो और आप का करोरिया हो।
1: राम राम साहब
0: जी,
1: मेरा नाम है साहब बबूता राम जी, वो अपने तलेटी गांव रो रहवासी हूँ
0: जी। आपने पिताजी का नाम है?
1: मारे पिताजी सर नाम है हीराजी देवासी
0: जी।
1: जी साहब
0: आप वर्तमान में का करोरिया हो?
1: वो साहब एक मोरे गांव में तलेटी में से एक लिमिटेड कंपनी है
0: जी,
1: वहीं में सर्विस करू
0: जी। आप कतरा साल थी सर्विस करो?
1: हाँ साहब वो 8-9 साल हुई
0: जी।
1: 9 साल थी?
0: अच्छा 9 साल थी। एटिस काम करो उन कंपनी में?
1: हाँ इस कंपनी में काम करो सर।
0: ठीक है, तो बबूता राम जी मैं आपने पूछू आपके परिवार में कतरा मेंबर है?
1: सर मोरे परिवार में मैं करीबन 6 भाई और 1 बहन है मोरे।
0: अच्छा,
1: ने मदर फादर
0: जी।
1: इवन 12-13 फैमिली मोरे मेंबर है।
0: आपने जो खुद परिवार में कतरा मेंबर है?
1: मोरे पांच मेंबर, एक बच्ची है, बे बच्चा है।
0: अच्छा।
1: ने मैं मिया बेबी।
0: बच्चों ने आप पढ़ाओ?
1: हाँ जाए स्कूल जाए।
0: अच्छा, बच्चियों ने पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ?
1: बच्चियों पढ़ाओ सर, क्यों नहीं, जरूर पढ़ाओ, बच्चियों तो पढ़ावनी
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है, बच्चियों ने जरूर पढ़ावनी जोजे। तो श्रोता बंधुओं ओपो एक समाज में प्रथा है उडामनी प्रथा, अन्य बारा में चलो आपो अपने बबूता राम जी से पूछो कि उडामनी प्रथा के बारे में आप बताओ, आप अन्य बारा में का विचार है?
1: उडमनी पड़ता सर है यू तो बोले तो खर्ची लिए मीठो खर्चो बोले तो कोई वो है अन में खर्चो ही वे अगलो जो मारे कोई फंक्शन है मारे घर में जैसे माँ बेटा रे व्याह है कि मारे बच्ची रे व्याह है तो वही में मारे हावरिया लेना आवे जैसे माँ बच्ची रे मोमाली है वे उडमनी लेना तो बच्ची रे तो लावी लावी वही में मारे लावे माँ फैमिली लावे। ठीक है, वन अलावा पूरु जैसे मारो कुटुंब मारे पिताजी है उन्होंने पिताजी रे भाई है ये करें कोई कुटुंब में तो जैसे मारा 8 घर है 8-9 घर है तो पूरी फैमिली नोडा रही तो वो एक खर्चीलो है मतलब मीठो खर्चो है खर्चो है वो
0: जी, जी।
1: और नहीं वेणो जो है बाकी एक खर्चो है बाकी अनमे ज्यादातर आवे तो माँ फैमिली में लावे तो वो एक बढ़िया बात है वो अच्छी बात है वो वेणु जो बाकी अन्य अलावा जो पूरा कुटुंब ने उड़ा रह गए वो सर नहीं वेणु जो
0: है
1: मैं थोड़ा रोक लगा वो ये लागे की मनो वो खर्चो वधारे से।
0: ठीक है, अच्छी बात बताई आप कि भाई एक तरह आज जो है प्रथा खर्चीली है और नवा युग में देखवा जाओ तो आज अत्रो पालन कटे करे को पहला लोग करता अन्य प्रथा रो अन हमें करे रिया लोग अन में जो जुड़ियोला है समाज जो भी है करे है। तो अन्य बारा मोर आपको अपने बीजा मेहमान है हीरा राम जी देवासी उन्होंने बात करो तो हीरा राम जी देवासी आप बताओ कि उडमनी प्रथा बारे में आप का विचार है?
2: एक्चुअली जो बबूता राम जी की हो बात तो सही है ना अनिमे अब जैसे अन्य घर में कोई अन्य का मारा गया करने में घर में अगर विवाह है तो रिश्तेदार तो लेना है कपड़ा परेशानी बटे वे जो वापस रिटर्न उन्होंने पास ही कपड़ा देना है बटे जो हमने वेरे वे कपड़ा तो मेरे पास रिटर्न करे नहीं एकता अन अलावा या तो अपनों खरीदना पड़े पास या पे कोई बीजा मेहमान लाया अपना से वो कम प्राइस के देना पड़े तो उन्हें करे सही कपड़ो मतलब
0: फिर आप अन्य प्रथा के बारे में बात कर रही हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बाद में रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिन कर राम राम। और अपने बे मेहमान बबूता राम जी और हीरा राम जी रो भी बेकरबाद में अन कार्यक्रम में स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं, हमें अपने मेहमान बबूता राम जी ने पूछो हो कि चलो ओडम नहीं पड़ता है तो अना कारण मुख्य कार्य जनती आज अन प्रथा रो मोटो रूप लेते जा रही है।
2: राम राम सर, आ मोरे ओडम नी रीति है, रीति रिवाज है कैसा। हाँ। वो मोरे ठेठ बाप दादा ने पुराना थी, मतलब ठेठ काफी टाइम थी हाले रही है। अच्छा। तो आ रीति रिवाज अपे अणी ने एकदम कंट्रोल है, अपे बंद नहीं करेगा
1: जी।
2: मैं अणी में कहा वो हमें आगा थी लेन आवे रिया, अपे समझ रहा अपने भाई बंधुओं थी लीधा है तो उन्हें वही राखनु पड़े
1: जी। आप के बारे मतलब हर समाज रे में जो पुराना रिवाज है मनक लेन हाले रिया है, तो हर समाज में मैं हमारे जो रीति है जो पुराने लेन हाले पर वनी में बदलाव तो आपको लावे को
2: लावे है को अपने लावे है को बदलाव
1: जी।
2: हमें आप मैं थोड़ी बड़ा पहले आपने की मेरे को हम तो पूरा मोरे कुटुंब ने जैसे ओडम नहीं करी वो नहीं करो आप रोक करे को। जैसे माँ घर में से तो माँ एक मेंबर से लावे, जैसे मारे फैमिली में लावे तो वो कंट्रोल वे है के आने में कंट्रोल करे को तो अभी वे है के समाज रे ऊपर समय एक बोल आवे नहीं करे तो भाई का लाई तो भाई उड़मने नहीं करी वो है चगावा ने लाइया। आजकल तो फैशन वापरी गावे मांगा मांगा वही हिसाब ने लाओ तो वही कहवत रहे समाज में के तारा भाई का लाई।
1: ठीक है, मुख्य कारण वैसे है कि भाई के कंपटीशन वधिया है थोड़ा और पुरानी परंपरा है जो हाले रही है, उन परंपरा ने भाई थोड़ो बदलाव ला वास्ते समाज लोगों ने जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं अपना बीजा मेहमान है हीरा राम जी देवासी, उन्होंने पूछू कि आप बताओ और कारण अन्य बारण का कारण है जो उड़मनी प्रथा थोड़े मोटो रूप लेती जा रही है।
3: कारण का है समय हिसाब से, पहले तो जो कुछ छोटी चीज थी है चीज में कम कपड़ा दिया बागी, हम तो एक फैशन बढ़िया आप कह दिया दगेरे के बाद भी ना
1: जी।
3: और हमें तो एक बीजोर कॉम्पिटिशन हुआ एक
1: जी जी।
3: और फालतू एक हर्ष है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, और सबसे ज्यादा अच्छे कमाए थे कपड़ा वाले से कमाए नहीं बाकी कोई मतलब है जितना कपड़ा जाए कावे कपड़ा हारे पेरी थोड़ी
1: जी।
3: एक बीजा देवा ने जाए ना तो अटाई लीधो वटा दीदो अटा लीधो वटा दीदो का मतलब का है।
1: ठीक है, तो मैं कहूँ ये जो कपड़ा दिए तो पासा उड़ोम नहीं करे रिया के मन पासा।
3: हाँ, करे बिल्कुल करे,
1: जन के 50 घर थी उड़ोम नहीं आई तो 50 घर वाला पासे तो देना पड़ेगा।
3: बिल्कुल दे तो, देना
1: हाँ।
3: रिटर्न दे, बाकी सबसे ज्यादा बने दुख और तकलीफ बटे हुए की जो जो शादी ब्याह में खर्चो जितना कपड़ो आवे ना
1: जी।
3: जैसे मारा बेटा घर में खर्चो ना तो काफी रिलेशन कपड़ो अतरो लेना आवे, ए कपड़ो पास रिटर्न देवा बहुत जरूरी भी है
1: जी।
3: एक खर्चो में नहीं, मतलब ऐसे जो कोई फंक्शन आवे की शादी है ओणु है कोई भी है ढूंढवे चीज में तो दिमाग खराब जैसी बात भी है एक्चुअली, मतलब कोई नहीं, मतलब कोई साइंस नहीं है तो कपड़ो आई पास रिटर्न देना पड़े वही ने मन कर अच्छा वैसे ही ढंग थी कपड़ो कोई खराब लेना वही के एकदा देखो कपड़ो सही आई खराब आई हुआ
1: बाकी देनी पड़े
3: वाची तो मन दो खराब थोड़ी दो मुझे सही सही देनी पड़ी तो मत पास खरीदारी करनी पड़ी वे कपड़ा माकरे पड़ी रही है तो मतलब की वेस्ट खर्चा मतलब के कोई मतलब नहीं है तो अन्य फूटे
1: जी। आपने पूछू की गणित को मृतक वे जाए पैसे मृतक में कहा है कि मो मेरा ओढ़े मन मो मेरा एक तरह घो में समाज के समाज है रहा जिनमें कहा है कि जितना परिवार सब कपड़ा लेना आवे पर इन मोमेरो के तो ए मृतक वे तो मोमेरा पेरे गणित कौन है तो क्या उचित है का
3: जैसे के शोक तोड़ना रस्म वे आ।
1: हाँ।
3: जैसे कोई सफेद कपड़ो मौत वे बेटे सफेद कपड़ो माता मौत है तो लाल कपड़ो लेना आवे जैसे लुगाई वे जो बीजे कपड़ो कपड़ो मैंने लाल लेना आवे तो आने में एक कपड़ा खर्च ठीक है। आने में अपने एक बात बताया कि जैसे एक घर में मौत हो तो सबने अलग अलग कपड़ा वे मौत और कपड़ा पहनना पड़े।
1: हाँ।
3: जब शोक तो रस्म में पास बीजे कपड़ा लेना आना पड़े
1: नहीं मुझे जितना
3: बाकी ठीक
1: है कपड़ा बदलना पड़े
3: बदलना पड़े बाकी ठीक है कुछ आती वे कम थी कम वे तो बढ़िया रहे ना तो हमारे समाज में तो क्या अदर समाज में बहुत परेशानी है कपड़ों में तो देखो तो आप
1: कतरो महंगाई वधी है तो महंगाई का कारण आज आप अगर वो अतरा समाज भेड़ा वे घनी टुकड़े वे एक परिवार ने पूरा 120 गोम में परगणो वे तो मन पट्टा में कड़े हो चिट्टी जाए कड़े बे हो चिट्टी जाए हर गोम थी एक बे बे मनक आवे तो 200-400 मनक वे जाए कोई मृतक में है गंगा जल में है तो उन्होंने सबने पासा रिटर्न देना पड़े
3: नहीं अतरा कपड़ा कोई लेने आता हो अभी। अच्छा। समझिए तो काफी करीबी रिलेशन कंट्रोल में मेरे काफी रिलेशन जो टच में है
1: जी,
3: जो टच वाले से लेना बाकी जा अलग ही मोरे जो समाज में पब्लिक तो आर करती है एक मनक आवेश के वो तो समाज मोरे एक प्रगना हिसाब दी है अदर प्रगना थी मनक आवे
1: जी जी।
3: बाकी कपड़ा में तो कोई मौत में ऐसे और कोई नहीं है। बाकी जो वेस्ट खर्चो में जैसे आपने कह रही हो ना जैसे लोग खर्चो जैसे कोई मरे पंडा वास्ते पंडा पुटे घी आले गुड़ कहे तो मीठी चीज बड़े चालू हुई ना शोक में तक आवे की सादा खाना
1: ठीक है मान रही हूँ। पर हमें बात आ रही ओडोमनी पर था रही ओडोमनी में क्या है हमें गंगा जल की दो थोड़े गंगा जल की दो तो हमें धोने तो हमें कपड़ों तो लावनस पड़ी है मन कह के एक लाख खर्ची हो बे लाख खर्ची हो कपड़ों में बे बे लाख रहा कपड़ा आप लाल लाख डोड लाख रहो तो हमें वो एक खर्चो है अने ने अने बारे में आप लोग का विचार है।
3: एक तरफ देखो सो एक बात करो मोरे कपड़ा जो अत्रो जो सूरत ने जो आब रोड में सूरगंज में जो वोणिया बैठा ना सस्तो कपड़ो बाकी थानी का कपड़ो चमकीलो देखे रेट चार गुना ज्यादा पेमेंट रेट ले लेना रही है
1: तो
3: बाकी वही दो बिल्कुल तो खर्चो से बाकी महंगा महंगा कपड़ा कोई मतलब नहीं कोई कॉटन पूरा तो सिल्क का दो चमकीलो कपड़ो आए कि अच्छो कपड़ो नवो नवो डिजाइन थी खरीदी बनी थी बाकी चार गुना ज्यादा बनी में रेट ज्यादा ले खरीद रही है
1: खरीदना जरूरी
3: इतना जरूरी है सब आधे आधे मतलब के बहुत समझ वो तो उठाने पड़ेगा कपड़ो के मतलब जो लॉन्ग टाइम आ सही कपड़ो लेना वो चीज नहीं है।
1: ठीक है अच्छी बात है। तो श्रोता बंधुओं जो ओडामनी प्रथा है आज जो एक तरह अपना मुख्य कारण तो इसे मनक एक तो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा ने लेने हले रिया है जो परंपरा में मनक जो पहला रिवाज बनाया वैसे उन्होंने माता हले रिया ने आज जो भी कोई गाबो लेना आ तो उन्हें पासो देना रीति रिवाज आदमी का करे करने बहन बेटियों ने वे घर में कौम पड़े तो वे क्या करे के अगर कोई परिवार में चार पांच बहन बेटी वे तो चार पांच बहन बेटी वास्ते वो भाई हर बार कोई ना कोई कॉम पड़े जर जितना कॉम पड़े वरना हावरा में वनिन कपड़ो लेने जाना पड़े वरना खुदरे लेने वरना हावरा में देरोनी जेटोनी का सब और कपड़ा लेने जाना पड़े का तो एक तरह का एक आज जो पड़ता है खर्चीली है क्योंकि अनमें आदमी डूबी श्री है क्योंकि अगर वो एक खर्चो तो कटाती उधार लान की दो गरीब वर्ग तो अगर बीजो खर्चो पास बुटाती बीजी बहन आ जाए तो वो कटाती लाए तो वो माता करण ला तो रहे उड़ावतो रहे तो एक दिन तो वर्णी ने मतलब वो जो खुदरो तो जो परिवार विकास है वरना तो कोई ठकोना नहीं बनना है वो खर्चाती बाने नहीं आवतो क्यों कर्जा माता कर्जो ओढ़तो रहे एन समाज में नाक राखो वास्ते वनी ने वो ओडोमनी करनी पड़े जाए जैन तो अमुद को हर समाज ने अपन आगे आवनो जोजिए जागरूक बनो जोजिए तो वर्णन प्रथा ने थोड़ी कम करनी जोजिए। तो श्रोता बंधुओं हमें और आपो अन्य बारे में और बात कर रही हो फिर हम आप एक छोटो सो ब्रेक लो हो ब्रेक के बाद में फिर आपो अन्य प्रथा के बारे में बात कर रही हो। तो श्रोता बंधुओं अगर आपने कार्यक्रम अच्छा लागे है और आपरा को सुझाव है तो भी रेडियो नंबर माते आप मैसेज कर जो रेडियो नंबर है 94-14-15-14-15 तो आप जरूर मैसेज कर जो आपरा सुझाव विचार बहुमूल्य है। तो श्रोता बंधुओं हमें आप एक ब्रेक लो हो आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।
1: थोड़ी बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण ने अपने बे बंधुओं समाज रा बंधुओं स्वागत है अने रेडियो मधुबन ने सुनवाला सगला श्रोताओं भी अन कार्यक्रम में स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं, अपन ओडोमनी प्रथा के बारे में बात करता था। हमें अपने समाज रा बंधु है बबूताराम जी ने पूछो हो कि अन प्रथा ने अपो समाज में थोड़ी कम करवा वास्ते ऊपर का प्रयास वे है कि हर समाज वाला एक ही समाज ने हर समाज रा जो भी बंधु है तो अपो का प्रयास कराया को अन्य बारे में आप का संदेश है।
2: हाँ सर, राम राम। वो साहब केणु साहब अपने समाज हमें जो पहला रीति थी रिवाज थी ये तो ठीक है, बूढ़ा मन को हाथी रहेगी ठीक है। हमें नवी युवा निवा पीढ़ी है अणी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना जरूरी है। क्यों कि हमें ये फालतू खर्चा है, मोंगा मोंगा खर्चा अणी अपन कंट्रोल करना बहुत जरूरी हुआ है ठीक है। हमें जैसे मोह में रोल लेन आवे रिया हो हमें इतना अपना पूरा कुटुंब ने उड़वा उड़वा की जरूरत नहीं है। जो मेन मोह को करना है घर में है वही आप करो, बहन ने देह को
0: परिवार ने देह
2: वन्ने वन्ने फैमिली वन्ने आई अपना भोने जुआ गणित अपने देह को बाकी जय देवर जेठ हाउ होरो वन उड़ा तो ये सवाल तो वेस्ट खर्चा है।
0: क्यों
2: वेस्ट है?
1: अन्नमा यू है ना कि भाई अगर वो एक बहन रे कर ली भरपूर, बीजी चार पांच बहन और की गण कर।
2: हमें जैसे मैं हूँ मुँह तुम्हारे शहर बहन है, हम शहर बहन है तो शहर ने राखनी तो हर की पड़े। आज एक बहन ने हाउ करू, बीजी बहन ने थोड़ा हल्कू करवा जाऊ तो मन मन का के समझ रस का के एक बहन जो एरो की दोनों बीजे बहन ने थोड़ा एरो हल्कू करवा जा रही हो तो एक आग केवत है तो ये तो फालतू खर्चा ही से अन चीज ने हमें कंट्रोल करवा चाहो तो करे को फिर आ चीज हमारे युवा मंडल जो है के केव चाहो के आप बनती कोशिश कंट्रोल रखो
1: कम करो उड़ावनी प्रथा ने आप रोज संदेश है। अच्छी बात है। तो अपने बीजा मेहमान है हीरा राम जी, उन्होंने पूछू कि चलो अन्न प्रथा ने उड़ावनी प्रथा खर्ची ली है जो भी आज नवा युग में जो भी मना कंपटीशन में दौर में हले रिया है एक बीजा देखा देखी कर उड़ा उड़ी करे अन्न प्रथा ने कम करने वास्ते अपने का प्रयास करना जो जोर उड़ावनी प्रथा है समाज में है तो इन्हें कम करने वास्ते आपरा समाज रा लोगों वास्ते का संदेश इतना मन खोबरे रिया उन्होंने वास्ते
3: अपना तो प्रयास एक बीजा देखें ओढ़े घोड़े नहीं फोड़ना
1: जी,
3: बस कंट्रोल को अपने अपने हिसाब से कपड़ो लियो ले जाओ दियो और फालतू कपड़ो ज्यादा लेनो देनो की बाकी खुद अपने अपने तो समझ महंगाई कितनी आवे वाला टाइम में हिसाब थी तो बस प्रयास तो खुद समझदार आने टाइम में मन को सब पता ही है महंगाई कितनी है कपड़ो महंगा कितरो पहला तो खैर
1: अपने तो गंगा जल वे घना मनक लाखों रुपया खर्चे तो कपड़ा भी लाखों रुपया आवे तो आप सब्र वास्ते का संदेश है अन खर्चा कम करना जो जे या नहीं?
3: हाँ बिल्कुल, थोड़ा कम होने से बहुत जरूरी है
1: जी।
3: अतरो खर्चो वे की लाखों रुपए तो ही खाओ पिया में वे बाकी कपड़ों में भी है
1: जी।
3: तो सब खर्चा जाए सीधा वॉरियर करे जाए कपड़ों वाला मार्केट में कमाए
1: सही बात है चलो अच्छी बात है पर हमें वैसे के अपने हीरा लाल जी और बबूताराम जी की खर्चा जो भी खर्ची लिया प्रथा है कम करनी जो क्योंकि आजकल आप देखो हो कि कटे मृत्यु भी हो तो पहला का करता मनक वो भी मरतक वे तो खर्चो मतलब कहते हैं ना वन खर्चा ने मतलब जीव वो रिवाज वे तो जो कपड़ा ओडोमनी सब करता पर हमें अन नवा जमाना हर समाज वाला थोड़ा अन माते कंट्रोल भी कर रही है कटे नहीं भी हुआ है तो कई टुकड़ा ने देखियो है कि मृत्यु भोज बिल्कुल बंद है और जो भी है गंगा प्रसादी वास्ते जो खर्चा ओडोमनियन वे जो दो दो तीन तीन दिन तक आदमी मनक रहे हुए आजकल सब कम हुआ है तो अन जो एक ओडोमनी पड़ता है अणी ने भी कई समाज वाला प्रयास किया है वे पप्पो ने आशा है कि हर समाज वाला प्रयास करेला कि ओडोमनी प्रथा बिल्कुल बंद करनी है क्योंकि जब मृतक वे तो एक तो घर में दुखद समाचार वे और एक कपड़ा सब जना मल लेन आवे पछा अपो पासा दो वनो का अर्थ अन वास्ते घना समाज वाला आजकल सुख संदेश मिले कार्ड मिले वरने नीचे एक लाइन लिख दे के उड़ावनी प्रथा बंद तो उड़ावनी कोई लेन नहीं आता खाली सिर्फ वन परिवार में जो भी तेगर तीन भाई है तो वन सबसे मोटो भाई वे वन हावरा वाला एक पगड़ी लेन आवे जो समाज जाजम माता पगड़ी उड़ावे अन वनो होक उठावे अन वास्ते वा एक रिवाज है अन अलावा बहन बेटी हवा मीना बाद में जो भी आप बहन बेटी देना हो वो अपने घर दे है को। मतलब समाज रमायण रिवाज ने कम करवा की कोशिश पूरी है। तो मुई क्यों और मारो प्रयास हो है कि भाई ओडोमनी पर था हमें थोड़ा अपन ध्यान देना है समाज लोगों ने और हर समाज वाला थोड़ा आगे आवेला जो आज रहा युवा वर्ग है वे भी आगे आवेला तो हम प्रथा ने कम करवा वास्ते आपको पूरा प्रयास करें को और ओडोमनी थोड़ी कम करे तो नहीं तो आदमी हर समाज रो आदमी डूब तो जाइला क्यों कभी एक ठुकोने वे तो करे क्या मैं दस ठुकोने अगर वो ओडोमनी लेन जाना वे तो उन्हें आदमी कर्जा मत कर्जो ले लेन वनी ने कौम करना समाज में उन्हें नाक भी रखना समाज में अगर नहीं लेन जाए तो समाज वालों के का लेन आई हो वास्ते समाज बंधुओं ने ऐस अपील है ऐस प्रार्थना है ऐ रिक्वेस्ट है कि भाई के ओडोमनी प्रथा ने जत्री भी वे के थोड़ी कम करनी है और समाज में विकास करवा रही पूरी अपनी कोशिश है और कोशिश करनी जोजिए समाज बंधुओं ने ऊंचा लावना है खर्चा में डुबावनो नहीं है तो समाज का खर्च कभी खर्चा कम वही अगर अपने प्रथा है जरी भी है उड़ावनी प्रथा है कम कर रही हो तो उन्होंने बारे में अपो कुछ आके विचार करे को और अन प्रथा ने कम करे को। तो श्रोता बंधुओं हमें अपने बी मेहमान रो आभार प्रकट करो हूँ और भूमिता राम जी और हीरा राम जी ने कहो कि आप अपना अमूल्य समय दीदो है अवन वास्ते आपने धन्यवाद और मुकेश सिजिनगर अपनी वाणी ने विराम दूं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुरा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों।
1: भाई आज मैं बहुत खुश हूँ,
0: बता दूं क्यों? चलो बता ही देता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे अगले जन्मदिन पे मुझे एक नई साइकिल दिलाएंगे, है ना खुशी की बात?
1: लेकिन ये मीना, अरे इसे क्या हुआ, ये इतनी उदास क्यों लग रही है? आओ जरा देखे तो।
2: ये ले मीना बेटी, आम खा ले, बहुत मीठे आम हैं।
3: मुझे नहीं खाना दादी।
2: क्या बात है मीना, देख रही हूँ जब से तुम दीपू के घर से वापस लौटी हो बहुत उदास हो।
3: मुझे दीपू की बहुत चिंता हो रही है दादी।
2: कहीं वो फिर से बीमार तो नहीं पड़ गया?
3: बीमार नहीं दादी, उदास, बहुत उदास है दीपू।
2: वो क्यों?
3: वो पिछले हफ्ते दीपू के बाबा को कुछ पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने दीपू की साइकिल बेच दी, तभी से दीपू उदास रहने लगा है। अब तो उसने हमसे बात करना भी बंद कर दिया है। मैं क्या करूं दादी?
2: मेरे पास एक तरकीब है।
3: सच दादी?
2: हाँ, तू दीपू को यहाँ लेके आ।
3: वो नहीं आएगा।
4: नहीं आएगा, फिर से चिल्लाएगा।
2: आएगा मीना, जरूर आएगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं ये मीठे मीठे आम लाई हूँ तो दौड़ा दौड़ा आएगा। हाँ
3: बात तो सही है, मैं अभी जाके उसे बताती हूँ।
2: कृष्णा को भी साथ में लेके आना।
3: कृष्णा को? लेकिन कृष्णा को?
2: जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर।
3: ठीक है दादी, चल मिट्टू।
0: आम का नाम सुनते ही दीपू मीना के साथ चलने को राजी हो गया। रास्ते में उन्होंने कृष्णा को भी अपने साथ ले लिया और फिर मीना के घर पहुँच के सब मजे से मीठे मीठे आम खाने लगे।
2: बच्चों, आम खाते खाते क्यों ना एक खेल खेलें?
5: कैसा खेल दादी?
2: बड़ा मजेदार खेल है ये कृष्णा। इस खेल का नाम है देखो आसपास कौन खुश कौन उदास। तुम सब बारी बारी से मुझे एक उदासी की और एक खुशी की बात बताओ। तुम शुरू करो मीना।
3: जी दादी, आज मैं उदास हूँ क्योंकि क्योंकि आज बहुत गर्मी है, पसीना भी आ रहा है।
4: पसीना भी आ रहा है, बहता जा रहा है।
3: अब तुम्हारी बारी है दीपू।
6: आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरी साइकिल अब मेरे पास नहीं है।
3: अब तुम्हारी बारी कृष्णा।
4: तुम्हारी बारी कृष्णा, आम बाद में चखना।
3: चुप मिट्ठू, शरारती कहीं के। तुम बोलो कृष्णा।
6: बोलो ना कृष्णा, कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से तुम उदास हो गए।
5: क्या बोलूं दीपू, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से मैं उदास हूँ, बल्कि आज तो मैं खुश हूँ क्योंकि आज हम सब दोस्त फिर से साथ हैं।
4: फिर से

0: खुशी
1: लेकिन कृष्णा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें ठीक से ना चल पाना उदास नहीं करता?
2: बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं धीरे धीरे ही सही मगर चल तो सकता हूँ।
3: शाबाश कृष्णा, ये हुई ना बात।
0: ये हुई ना बात, चलो मिलाओ।
1: कृष्णा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
2: हाँ हाँ दीपू, भला दोस्तों की बात कभी कोई बुरा मानता है?
1: तुम्हें चाचा चाची ने पोलियो की खुराक नहीं दिलवाई थी क्या?
2: दीपू, मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था और शायद मेरे माँ और बाबा को ये बात पता ही नहीं थी कि बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद उसे पोलियो के जन्म की खुराक दी जाती है।
1: लेकिन तुम ये बात सोच के उदास नहीं होते?
2: नहीं दीपू, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कम से कम BCG का टीका तो लगा।
4: BCG का टीका लगवाने से क्या फायदा होता है दादी?
3: मीना बेटी, BCG का टीका TB जैसी खतरनाक बीमारी से बचा के रखता है बच्चों को।
1: दादी, जैसा भी कृष्णा ने कहा कि बच्चे को पैदा होते ही पोलियो की जन्म की खुराक दी जाती है, लेकिन ये जन्म की खुराक होती क्या है?
3: दीपू बेटे, जन्म की खुराक मतलब BCG का टीका और पोलियो की खुराक। ये जन्म की खुराक बच्चों को पोलियो और TB जैसी बीमारियों से बचाती है, समझे?
5: जी दादी।
3: चलो अब अपना खेल पूरा करते हैं। अब तुम सब बारी बारी बताओ कोई खुशी की बात। पहले तुम बताओ कृष्णा।
2: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि दीपू बहुत खुश होके आम खा रहा है। अब आपकी बारी दादी।
3: कृष्णा बेटे, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
4: लेकिन दादी, आप तो कोई खुशी की बात।
3: मीना बेटी, उसी से जुड़ी है ये कहानी।
2: सुनाइए ना दादी।
3: ठीक है तो सुनो। एक आदमी और एक औरत के घर में एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ। फिर कुछ सालों बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उसके कुछ सालों बाद एक प्यारी सी बिटिया।
1: इसमें खुशी की क्या बात?
3: पूरी कहानी तो सुन लो दीपू बेटे। तीनों बच्चों के पैदा होने के तुरंत बाद उनके माँ बाप ने उन्हें जन्म की खुराक दिलवाई, यानी BCG का टीका और पोलियो की खुराक, जिसके कारण वो तीनों बच्चे आज स्वस्थ हैं।
4: लेकिन दादी, इस कहानी से आप क्यों खुश हैं?
3: क्योंकि उन बच्चों के नाम हैं मीना, राजू और रानी।
0: मीना, राजू और रानी, अब आई समझ कहानी?
4: सच दादी, क्या हम तीनों को जन्म की खुराक दी गई थी?
3: बिल्कुल।
2: अब तुम बताओ मीना, तुम आज खुश क्यों हो?
4: हाँ, आज मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाबा ने मुझे, राजू और रानी को जन्म की खुराक दिलवाई थी।
0: खुराक दिलवाई थी, अकलमंदी दिखाई थी।
4: अब तुम्हारी बारी दीपू।
1: मीना, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ठीक से चल सकता हूँ। साइकिल नहीं तो क्या हुआ?
0: क्या हुआ, मिट्टू भी खुश हुआ।
1: मैं कुछ और सोच के भी खुश हूँ दादी।
3: हाँ हाँ दीपू कहो।
1: मैं खुश हूँ क्योंकि हम सब ने आज मीठे मीठे आम खाए।
0: आम खाए? दीपू जी मुस्कुराए।
6: भाई वाह, दादी का ये खेल तो सचमुच मजेदार था। सुन के मजा भी आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया। चलो अब सुनते हैं एक प्यारी सी कविता।
0: खेल खेल में, मजे मजे में, हमने तो ये सीखा।
4: बहुत जरूरी पोलियो की खुराक और BCG का टीका।
6: भाई वाह, सचमुच बहुत सुंदर कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्ठू। अब लगे हाथों एक गाना भी हो जाए।

0: गाना सुन के तो दिल कर रहा है नाचने का, लेकिन अगर नाचना शुरू कर दिया तो खेलेंगे कब? इसलिए अब सीधे चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे पहचानो कौन। मैं आपको तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और आपने मुझे बताना है उसका सही जवाब, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: आज की पहेली है एक मशहूर इमारत के बारे में। तुम्हें कड़ियां जोड़ जोड़ कर बूझना है इस इमारत का नाम। तो सुनो, पहली कड़ी, दूध के जैसा रंग है, ये है दुनिया में मशहूर, जो भी भारत आए इसको देखना चाहे जरूर।
3: लाल किला।
1: क्यों मनु, लाल किला क्यों?
3: क्योंकि लाल किला पूरी दुनिया में मशहूर जो है।
1: वो तो है, लेकिन लाल किले का रंग तो लाल है और दूध कभी लाल रंग का होता है? भूल गए पहली कड़ी, दूध के जैसा रंग है, ये है दुनिया में मशहूर, जो भी भारत आए इसको देखना चाहे जरूर।
3: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है दीपू, दूसरी कड़ी सुनो बच्चों, इसको जिसने बनवाया था वो मुगल सुल्तान, लाल किला भी उसने बनवाया था, अब पहचान?
4: शाहजहां। बहन जी लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था।
1: ये जवाब तो ठीक है कृष्णा, लेकिन तुम्हें बूझना है पहेली में छुपी इमारत का नाम।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है ताजमहल। दूध सा सफेद रंग पूरी दुनिया में मशहूर, और मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारत है आगरा में स्थित ताजमहल।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया। अब मैं चलता हूँ, लेकिन हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप त्रिवेदी एंड वी आर doing question answers exercises grammar portions these days for class 10th RBSE Rajasthan Board of Secondary Education from the book Golden Rays. And yesterday we studied question answers, and today I am going to start activity 3, which is grammar portion, and the topic is models. It's a very important topic for all listeners. So, students, आज हम a hero जो lesson हम पढ़ रहे थे उसका grammar portion देखेंगे आज, activity 3, और उसमें है models. Golden Rays book का नाम है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, class 10th. Activity 2 में कुछ खास नहीं है, इसलिए activity 2 को हमने छोड़ दिया है. Okay? तो मॉडल्स को देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमेशा की तरह. फर्स्ट पहला एग्जांपल है, यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर. तो यहां पर जो मॉडल है वो मस्ट यूज हुआ है. फिर है कैन यू प्रूव यू हैव करेज. यहां पे कैन मॉडल आया है. द अंडरलाइन वर्ड्स इन बोथ द सेंटेंसेस आर examples of modal verbs. All auxiliary verbs except be, do and have are called modals. यानी कि be verb में क्या क्या है, देखिए is am are और was verb, do does और have और has, इन सब को छोड़ करके बाकी सब मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. दे आर हेल्पिंग वर्ब्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और जेंडर. ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर पर्सन और जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है. दीज आर, ये कौन कौन से हैं देखिए, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, could, ought to, must, dare, need, used to, कुल मिलाकर के 13 हो गए लगभग ये. In most cases, they express present or future time. ज्यादातर परिस्थितियों में इनसे present और future की परिस्थितियों का पता चलता है. The chief features of models are, उनकी जो प्रमुख विशेषता है वो कौन कौन सी हैं? लेट सी. दे आर नेवर यूज्ड अलोन. इनका अकेले में कभी यूज नहीं किया जाता है. दे ऑलवेज हैव अ मेन वर्ब विद देम. इनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब या बेस वर्ब जरूर होगी. आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं. यहाँ पे बेस वर्ब कौन सी है? डू. और मॉडल कौन सा है? कैन. सेकेंड, देयर फॉर्म्स रिमेन अनचेंज्ड वॉट एवर द persons and number of subject is there. I can read, they can read. यहाँ पर भी can है, you can read. Person कोई सा भी हो, इनका इस्तेमाल हो सकता है. Number 3, they do not have infinitives or past participles. इनमें infinitive या past participle नहीं होता है. We cannot write, he can go and can see. Now we proceed to see how each model is used. अब हम देखेंगे कि हर एक मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको हर एक मॉडल का उन्होंने क्लू दिया हुआ है, तो उस क्लू को हमें ध्यान में रखना है. ओके, तो सबसे पहला मॉडल है कैन. ठीक है, दिस मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फोर मीनिंग्स विचार. इससे चार मीनिंग्स पता चलती हैं. कौन कौन सी है? एबिलिटी, number 1, permission number 2, request number 3 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 4। अब इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, एबिलिटी परमिशन रिक्वेस्ट पॉसिबिलिटी। एबिलिटी परमिशन APRP ऐसे करके याद कर सकते हो आप, ARPP भी करके याद कर सकते हो और ARPP करके याद कर सकते हो। शॉर्ट पहला वर्ड ले लिया ना हमने सब, जैसे एबिलिटी का ही ले लिया, परमिशन का पी ले लिया, रिक्वेस्ट का आर ले लिया और पॉसिबिलिटी का भी पी ले लिया, या RAPP ले सकते हो, RPAP ले सकते हो, RPPA कर सकते हो, PAPR कर सकते हो, जो भी आपको जिससे भी याद हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि APRP ठीक है। तो अब इसमें पहला एबिलिटी, एबिलिटी से कैसे कैन को यूज़ किया जाता है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। शी कैन स्विम इन अ रिवर, वो एक नदी में तैर सकती है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, स्विम, और इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो सकना सकती के रूप में होगा, है ना। दूसरा है राम कैन प्ले अ गिटार, राम गिटार बजा सकता है। एबिलिटी इन्वॉल्व्स कैपेसिटी टू डू सम एक्शंस बट विद एनिमेट सब्जेक्ट एंड डायनेमिक वर्ब्स। विद इनएनिमेट सब्जेक्ट्स द यूज ऑफ कैन एक्सप्रेसेस देयर पोटेंशियलिटी। तो बता रहे हैं आपको कि एबिलिटी में कैपेसिटी यानी क्षमता भी जिसमें शामिल हो तो वहां पर कैन का इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है द बिजनेस ऑफ कैब्स कैन एक्सपांड, जो कैब सर्विसेज हैं उनका व्यापार बढ़ सकता है। दिस बाइक कैन रन फास्टर विद दिस फ्यूल, इस ईंधन से ये बाइक और तेज भाग सकती है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, एबिलिटी के। जब इनकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स, आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। ओके, अभी है परमिशन। परमिशन में देखिए कैसे यूज होता है, कैन इज यूज टू आस्क एंड गिव परमिशन। इट इज यूज टू सीक परमिशन इन द सर्कमस्टेंसेस वेयर सोशल अथॉरिटी इज इन्वॉल्व, जहां पे सामाजिक अधिकार छुपे हुए हो वहां भी ये परमिशन को देने में काम आता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, बॉय कैन आई गो नाउ, बॉय ने पूछा क्या मैं जा सकता हूं, टीचर नो बट यू कैन गो आफ्टर दिस पीरियड, हाँ तुम नहीं अभी नहीं लेकिन इस पीरियड के बाद तुम जा सकते हो। रिक्वेस्ट, तीसरा है रिक्वेस्ट, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। अ फ्रेंड, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह सकता है, कैन यू ब्रिंग मी सम मोर आइसक्रीम इन अ होटल, होटल में आप कह सकते हैं। ये सब पॉइंट आपको दिए ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। कैन इज यूज टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी अनौपचारिक प्रार्थना, अनौपचारिक रिक्वेस्ट के लिए भी वी ऑफन यूज इट व्हेन वी आर टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इन शॉप्स, हम जब दुकानों में या दोस्तों से बात कर रहे हो तो इसका इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ऑफिस रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, ऑफिस रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। चौथा है पॉसिबिलिटी, आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मुझे पूरा भरोसा है कि इस समस्या का हल निकल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है द फायर कैन बी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है। नोट, कैन इंडिकेट्स थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, कैन से सैद्धांतिक संभावना पता चलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कुड। कुड क्या है,

पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, जहां जहां कैन का इस्तेमाल हमें पास्ट टेंस में करना है वहां कुड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर एक, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी, पुरानी हमारी कोई आदत या योग्यता बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं इस नदी के आर पार तैर सकता था। इन इनडायरेक्ट स्पीच इट इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह कुड का ही इस्तेमाल होता है। He said that he could run fast. उसने कहा कि वो तेज दौड़ सकता था। To express polite request. हाँ, ये एक नई चीज है आपके लिए। Polite request के लिए could का इस्तेमाल किया जाता है। How? देखते हैं। Could you please lend me your pen? यानी आप जब could का इस्तेमाल करके कोई चीज मांगेंगे किसी से तो सामने वाला दे दिए बिना रहेगा नहीं, उसमें बहुत ही रिक्वेस्ट आ जाती है। कुड यू लेट मी सी योर फोटो, क्या आप मुझे अपना फोटो देखने देंगे। चौथा है टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति के लिए। कुड आई यूज योर सेलफोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। नोट, टू मेक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट्स एंड सीक परमिशन, प्रार्थना और अनुमति मांगने के लिए भी could you is more formal and polite. We often use it when we are talking to strangers. जब अजनबी से आप बात करें तो could का इस्तेमाल करें। Older people, बुजुर्गों से बात करें, could का इस्तेमाल करें। Teachers, अपने अध्यापकों से बात करें, could का इस्तेमाल करें। And bosses, और boss से बात करें तो भी could का इस्तेमाल करें। To express something remote in likelihood, संभावना में कुछ, दिस रोड कुड बी ब्लॉक, ये मार्ग बंद हो सकता था, ये सड़क बंद हो सकती होगी या बंद होगी, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है मे, ओके मे का इस्तेमाल देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। मे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन है यूज्ड फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, वही अनुमति लेने और देने में इसका इस्तेमाल होता है। आप बहुत कॉमन बात है मे आई कम इन सर, लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स कई बार इसमें गलती करते हैं, माई कम इन बोल देता है कोई, क्या बोल देता है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, मे आई कम इन सर। अब टीचर जवाब क्या देंगे, यस यू मे, टीचर भी परमिशन दे रहा है ना आपको, हाँ जी आ जाइए। मे आई बोरो योर पेन, यस यू मे। मे नॉट is used to deny permission, अनुमति न देने के लिए may not, may I use the toilet, no you may not। second है when possibility and uncertainty are mixed, जब संभावना तो हो लेकिन संभावना पूरी होने की संभावना कम हो, it may rain tomorrow, कल बरसात हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं, है ना। that may or may not be True, जो सच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा है मे इज ऑल्सो यूज फॉर अ विश, फेथ एंड मे यू एंड अ होप, यानी आप किसी के लिए कोई कामना करें, उसमें किसी में आपको बहुत आस्था हो या कोई उम्मीद हो, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपने प्रार्थना की, भगवान से कामना की कि आप जुग जुग जिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे इंडिया विन द मैच, भारत इस मैच को जीत जाए। चौथा, मे इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए भी मे का इस्तेमाल। चिल्ड्रन गो टू स्कूल सो दैट दे मे लर्न थिंग्स, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए ताकि वो चीजों को सीख सकें। वीड सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। चौथा है माइट, माइट मे का पास्ट टेंस है, जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इसका इस्तेमाल होता है फॉर पास्ट टाइम। ही सेड दैट नीरू माइट कम, उसने कहा था कि नीरू हो सकता है आए।
टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना, दैट इज सिमिलर टू मे बट इट्स यूज्ड इंडिकेट्स द ग्रेटर सेंस ऑफ डाउट अबाउट दिस पॉसिबिलिटी देन मे। मे में क्या होता है, काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहां पे जब माइट का इस्तेमाल करेंगे तो शायद संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है होने की। आई एम अफ्रेड दैट इफ आई आस्क हिम अगेन, मुझे डर है कि मैंने दोबारा उससे कुछ पूछा, ही माइट रिफ्यूज, वो मुझे मना कर दे, ज्यादा संभावना है। शी माइट विन द प्राइज, वो हो सकता है इनाम जीत जाए। तीसरा है टू एक्सप्रेस गेस, अनुमान लगाने के लिए, दैट माइट बी अ थीफ, वो एक चोर हो सकता है। चौथा है माइट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस परमिशन और टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स, या तो अनुमति देने के लिए या अनौपचारिक रिक्वेस्ट, मे माइट आई बोरो योर पेन फॉर माई मिनट, माइट आई बिगिन माई लेक्चर। पांचवा है इट इज ऑल्सो यूज फॉर सजेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर, अगर कुछ लिख रहे हैं, कोई वाक्य आप लिख रहे हैं, कोई कथन लिख रहे हैं, तो उसमें सुझाव देने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, ही माइट ज्वाइन द आर्मी। पांचवा है मस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मस्ट यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्शन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में जरूरी बाध्यता के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि बस ये काम होना ही चाहिए। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना ही है। दूसरा है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, आवश्यकता बताने के लिए इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव में वी मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, हमें कल सुबह जल्दी उठना है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दे मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, इस शाम तक उन्हें ये काम पूरा कर लेना चाहिए। चौथा टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, श्योरिटी यानी निश्चितता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए, माई सिस्टर हैज गॉन टू बेड अर्ली, शी मस्ट बी टायर्ड, मेरी बहन जल्दी सो गई है, शायद वो थकी हुई हो। लुक एट हिज लाइफ स्टाइल, उसके जीवन शैली को देखो, ही मस्ट बी रिच, हो सकता है वो अमीर हो। पांचवा है टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, कर्तव्य, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें जैसा कहा गया वैसा कीजिए। कैंडिडेट मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, 10 में से 5 क्वेश्चन करने जरूरी हैं। नोट इन द नेगेटिव एंड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक वाक्यों के लिए, नेगेटिव वाक्यों के लिए मस्ट नॉट इज यूज्ड, दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ डोंट डू दिस। मस्ट नॉट का मतलब ऐसा मत करो, वी मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क हियर, यहाँ पे कार को पार्क नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 6th नंबर पे ऑट, और ऑट का इस्तेमाल ऑलवेज फॉलोड बाय अ इन्फिनिटिव, हमेशा टू के साथ इसका इस्तेमाल होता है ऑट। सबसे पहले टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ऑट टू गिव्स द मीनिंग ऑफ शुड बी, ऑट टू का मतलब होता है हो सकता है, होना चाहिए। ought to is used when a feeling of duty is involved, agar kartavya ki usme bhavna hai to ought to ka istemal kiya jata hai based on external rules, social conventions, samajik jo manyatayein hoti hain, institutions, sansthaen, and should when we have पर्सनल जजमेंट ऑफ ड्यूटी, जब हमें कर्तव्य के बारे में हमारी व्यक्तिगत कोई राय हो तो शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन संस्थागत कोई बात हो तो ऑट का इस्तेमाल किया जाना। यू ऑट टू लव योर एल्डर्स, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, आपको आपके बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आई ऑट टू हेल्प देम, मॉरल ड्यूटी, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। द

अब हम और फिर मैं बताता हूँ आपको, वुड के बाद में है शैल, देन शुड, देन एक्सरसाइजेस। तो आई थिंक एक बार हम देख लेते हैं, विल, विल आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनेट में या सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है, टू इंडिकेट सिंपल फ्यूचर टाइम विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है, शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी, यू विल एक्सेप्ट दैट ही वॉज रॉन्ग, तुम ये मानोगे कि वो गलत था। दूसरा है टू इंडिकेट एक्सप्रेस इंटेंशन, इरादा, विलिंगनेस, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी एंड डिटर्मिनेशन, एंड दृढ़ संकल्प एंड रिक्वेस्ट और प्रार्थना। आई विल गो टू मुंबई फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी के लिए मुंबई जाऊंगा, ये इच्छा है, इंटेंशन है जी। आई विल सिंग एट द कॉन्सर्ट टुमारो, मैं किसी प्रोग्राम में कल गाऊंगा, विलिंगनेस। मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन विल बी इन द पार्टी, मेरे बहुत सारे दोस्त हो सकता है पार्टी में हो, प्रेडिक्शन। आई विल पास दिस एग्जामिनेशन, मैं इस एग्जाम को पास करूंगा ही करूंगा। वी विल डू और डाई, हम या तो करेंगे या मर जाएंगे, गांधी जी ने नारा दिया था ना, डू और डाई। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप रिक्वेस्ट मेरे लिए कुछ करेंगे। विल यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे। विल यू गो विद मी देयर, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे। रिक्वेस्ट नोट, एज कंपेयर्ड टू द यूज ऑफ वुड, द यूज ऑफ विल शोज अ लेस पोलाइट रिक्वेस्ट। वही कैन और कुड वाला मामला है, अगर विल का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा जो पोलाइटनेस है, शिष्टता है, वो कम हो जाती है। इन नेगेटिव इट्स फॉर्म चेंजेस टू वॉन्ट, नकारात्मक वाक्यों में ये वॉन्ट विल नॉट हो जाता है। वॉन्ट यू कीप क्वाइट, तुम चुप नहीं रहोगे। आई वॉन्ट कम टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं आऊंगा। नोट, विल इज नेवर यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन यानी आई के साथ कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और खासकर प्रश्नवाचक वाक्यों में। नेक्स्ट है वुड, तो डेफिनेटली वुड को अब हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: आदि, तुझे पता है
1: क्या?
0: आज मैंने मेरी फेवरेट सब्जी बहुत दिनों बाद खाई।
1: कौन सी?
0: कद्दू।
1: कद्दू की सब्जी?
0: हाँ।
1: ये तेरी फेवरेट सब्जी है?
0: हाँ।
1: मेरी तो पनीर है।
0: फेवरेट तो बहुत है, खा हर एक लेते हैं, बट लेकिन कोई ना कोई बड़ी मुश्किल से खाने मिलती है, इस कारण वो
1: फेवरेट होती है।
0: उसका अलग ही मजा है।
2: हेलो बच्चों।
3: हाय दीदी।
2: क्या बात है, मुझे लग रहा है आज सब लोग कुछ अच्छा अच्छा खाने में खा के आए और बड़े खुश दिखाई दे रहे हो।
3: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
2: चलो, मतलब सबके फेवरेट सब्जियां तो डेफिनेटली अलग अलग होंगी। यश, आपकी कद्दू है, मैंने अभी अभी सुना।
0: हाँ जी।
2: है ना?
0: हाँ जी।
2: चलो बच्चों, एक काम करते हैं, आपके फेवरेट खाने पीने यानी फूड के बारे में आज हम लोग बात करते हैं।
0: ठीक है दीदी।
1: ठीक है।
2: ठीक है। तो चलो पहले मुझे ये बताओ, खाने के बारे में, खाना तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, किसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
3: मेरे को। वैसे तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि खाने के बिना कोई रह ही नहीं सकता ना। दिन में सब लोग 5 बार खाते हैं।
4: मैं तो पानी पी।
0: 3 बार का खाना होता है, 2 बार आप शायद एक्स्ट्रा खाते होंगे।
4: मैं 7 बार खाता हूँ।
3: मैं बताऊँ दीदी, हम बच्चे बहुत काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, तो हमें जल्दी भूख लगती है, तो हम सिर्फ 3 बार नहीं खाते होंगे। जैसे सुबह स्कूल से पहले खा के जाते, फिर स्कूल में भी खाते, स्कूल से आकर भी खाते, शाम को भी खाते और रात को भी खाते।
2: मतलब बीच में जो हमारे स्नैक्स होते हैं वो भी हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं।
3: हाँ। हाँ।
2: अच्छा, तो एक बात बताओ, सब लोग सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन कौन सी है?
0: दीदी मैं बताऊं?
3: दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बताऊं?
4: मैं बताऊं? मैं।
2: हाँ चलो बताओ, एक एक करके सब लोग बताओ।
4: पहले यश।
0: चलो ठीक है, मेरी फेवरेट सब्जी, पहले स्थान पर पनीर, फिर दूसरी शिमला मिर्च,
4: और कद्दू कहाँ गई?
0: तीसरी पे है ना।
4: तो तूने बोला मुझे फेवरेट लगती है।
2: अच्छा, मतलब 4-5 फेवरेट्स भी हो सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी फेवरेट जो आपको खाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और आदित्य, आपको क्या पसंद है?
1: मुझे कढ़ाई पनीर।
2: कढ़ाई पनीर, अच्छा। और वेदांत?
3: पनीर हांडी।
2: अरे वाह, ये तो तीसरे टाइप का पनीर है।
3: हाँ, जिसमें मटके में बिल्कुल अच्छे से बड़ा मटका भर के पनीर आता है, उसके बाद पूरियां आती है।
0: अरे वाह, फिर तो खाने में मजे आएगी।
2: आकाश, आपको क्या पसंद है?
5: दीदी आलू छोला पनीर।
3: आलू छोला पनीर
5: मेरी मम्मी
3: नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूँ, हम सबको पनीर पसंद है।
2: वही मैं भी देख रही हूँ, क्या बात, सबका फेवरेट पनीर है लगता है यहाँ पे।
3: वेल दीदी, आपको क्या अच्छा लगता है?
2: भाई पनीर तो मुझे भी पसंद है। अच्छा, अब ये बताओ, खाना पीना तो हम सबको बहुत पसंद है, बट क्या आप लोगों को खाना बनाने का भी शौक है?
4: जी हाँ दीदी, हमें आता है।
2: आता है सबको? well, आता है।
0: यस दीदी।
1: हाँ दीदी, मुझे नहीं आता।
3: वैसे हम लोग तो सीखते रहते हैं उड़ान केयर स्पेशल में, हमेशा हम लोग रेसिपी बनाते रहते हैं, मैं और आदित्य, तो हम लोगों को कुछ रेसिपी तो आती ही होगी।
2: अच्छा, तो कभी आप लोगों ने खाना बनाया है, या कुछ खाना में कुछ भी, एक भी डिश या कोई छोटी सी चीज?
4: हाँ दीदी, बनाई है।
0: दीदी बनाया है।
2: अच्छा, तो बताओ यश, क्या बनाया आपने?
0: मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं छोटा था, मैंने आज तक अपनी लाइफ में पहले नंबर पे चाय सीखी थी बनानी, फिर उसके बाद मैंने सीखा था चावल बनाने कैसे, फिर रोटी, और उसके बाद मैगी।
2: अच्छा, मतलब आप रोटी एकदम गोल गोल बना लेते हो?
0: कुछ हद तक बन जाती है, कभी कभी नहीं बनती तो हार जान।
2: तो जब मम्मी पापा कहते हैं तो फिर चाय बना के पिलाते हो?
0: हाँ बिल्कुल, एकदम एक्यूरेट टेस्ट के साथ।
4: चाय में चीनी डालते हो?
0: अरे हाँ हाँ,
2: ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेदांत, आपको क्या क्या बनाना आता है?
3: मोमोज बनाने आते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगता है, और मेरे को जो चीज अच्छी लगती है वो मैं जरूर सीख लेता हूँ बनाना। जैसे डेली रूटीन में दाल चावल बनता है ना, दाल चावल सीख लेता हूँ, कोई सब्जी फेवरेट है आलू या पनीर की भी, तो वो बना लेता हूँ। पर सबसे अच्छा मोमोज बनाना आता है।
2: अच्छा, और मम्मी की हेल्प कराते हो किचन में?
3: हाँ, मम्मी की, एक्चुअली मैं मम्मी की इसी में ज्यादा हेल्प कराता हूँ, सफाई और किचन में।
0: बिल्कुल मेरी तरह।
2: अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश, आप बताओ।
5: दीदी मैंने लाइफ में अभी तक जितनी भी चीजें खाई हैं उसमें से 80% मुझे बनाना आता है।
2: अच्छा, तो सबसे अच्छा आप क्या बनाते हो?
5: डोसा।
2: डोसा बनाना आता है आपको? अरे वाह, में। आदित्य आपको क्या आता है, कुछ आता है आपको कुक करना?
1: सिर्फ मैगी बनानी आती है।
2: अच्छा, और कभी कभी मम्मी की हेल्प कराते हो किचन में?
1: किचन में नहीं, उसके अलावा बाकी कामों में करवा देता हूँ।
2: किचन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, है ना?
1: नहीं है।
2: चलो कोई नहीं।
3: वेल दीदी, खाना बनाना तो सीखना चाहिए, कभी हॉस्टल में जाएंगे तो खुद खाना बनाना पड़ता है। किसने कहा?
2: नहीं, ये तो अच्छी बात है, अगर हमें कुक करना आता है तो जब हम बड़े होंगे और कभी अकेले रहेंगे तो हमें खाना बनाना आता होगा, तो थोड़ा थोड़ा मम्मी को देख के हम थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं, उनकी हेल्प करा सकते हैं
3: अभी।
2: हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप ये बताओ कि जो मेनली हम लोग खाना खाते हैं उसमें वेजिटेबल्स और पल्सेस होते हैं, यानी दाल और सब्जी।
3: हाँ जी,
2: है ना? तो क्या आप लोग उनको अच्छी तरह से पहचान पाते हो, ये कौन सी दाल बनी है आज, कौन सी सब्जी खा रहे हो आप?
3: मतलब आग बंद करके?
2: नहीं, देख के आप समझ पाते हो कौन सी दाल है, उनके नाम वगैरह आपको पता है?
0: दी, दाल के नहीं पता लेकिन सब्जियों के तो सारे पता है।
3: आग बंद करके तो मैं टेस्ट से भी पता लगा सकता हूँ क्या है।
4: दीदी, मैं तो सुगंध से भी पता लगा लेता हूँ।
1: मैं थोड़ा बहुत पता लगा लेता हूँ दाल का।
2: अच्छा, तो सारी दालों के नाम पता है आप लोगों को?
3: नहीं।
4: हाँ।
2: अच्छा, अगर एक बात बताओ, आपको मम्मी बोले जाओ जाके मार्केट से ये सब्जी लेके आओ, तरोई लेके आओ, लौकी लेके आओ, तो क्या आप लोग अच्छे से ला पाओगे?
3: जी दीदी, वैसे मैं तो ला सकता हूँ, पर सच ये कि मैं ज्यादा मार्केट गया नहीं, और अगर वो सब्जी वाला मेरे को ज्यादा रेट में दे दिया तो मेरे को रेट नहीं पता अभी क्या चल रहा है सब्जियों का, इसलिए मैं नहीं चाहता सब्जी लेने।
4: दीदी, मैं लौकी के अलावा जो सब्जी मम्मी बोले सब ले दूंगा।
3: लौकी क्यों नहीं आकाश?
4: बकवास सब्जी लगती है लौकी।
2: लेकिन किसी सब्जी को बकवास नहीं बोलना चाहिए,
3: और लौकी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है,
2: क्योंकि लौकी तो बहुत हेल्दी होती है।
3: हाँ।
2: है ना?
1: हाँ,
3: जैसे भी।
2: और वैसे भी जो टेस्ट होता है वो तो हमारी जबान का होता है, लेकिन जो हेल्थ है वो पूरी बॉडी के लिए होती है।
3: जी,
2: तो बताओ, छोटी सी जुबान इम्पोर्टेंट है या पूरी बॉडी की हेल्थ?
3: हेल्थ,
1: पूरी बॉडी की हेल्थ।
4: छोटी सी जुबान,
2: तो छोटी सी जुबान के लिए फिर हमें जो हेल्थ मिलेगी ना वो भी छोटी सी होगी।
4: चलेगा दीदी?
2: अभी तो चलेगा, जब बड़े हो जाओगे तो बेटा चलेगा नहीं।
3: हाँ।
2: अच्छा ये बताओ आप लोग, मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना?
3: जी दीदी।
4: हाँ। दीदी,
2: थोड़ा सा अपने बारे में और अपने स्टेट के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग? सबसे पहले यश, आप बताओ।
0: मैं महाराष्ट्र और पंजाबी हूँ, और बर्थ मेरा महाराष्ट्र का है। अच्छा। तो मैं दोनों तरफ जानता हूँ।
2: और आकाश, आप?
4: दीदी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ।
2: और आदित्य, आप?
1: मैं ओडिशा से।
2: और वेदान?
3: मैं तो कई स्टेट्स में रहा, पर यूपी में मेरा जन्म हुआ है।
2: अच्छा, तो वैसे मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज होंगे आपको वहाँ के डिशेस के बारे में भी, है ना?
3: हाँ दीदी।
2: तो सबसे ज्यादा जो आपके स्टेट में डिशेस बनती हैं उसमें आपको जो पसंद है या आपको पता है कौन कौन सी स्पेशल डिशेस होती हैं वो बताओ हम लोगों को।
4: दीदी, मैं पहले। दीदी, हमारे वहाँ पे दही लिट्टी बहुत फेमस है।
2: अच्छा, और वो क्या होता है?
4: अरे जैसे यहाँ पे बाटी बनाते हैं राजस्थान में, वैसे ही हम लोग लिट्टी भी बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर चने का आटा यानी सत्तू भरा रहता है।
2: अच्छा, और उसके साथ दही से खाते हैं?
4: हाँ।
2: अरे वाह,
4: वो भी एकदम खट्टी दही से।
2: अच्छा।
4: हमारे गांव के तरफ सुरेमनपुर स्टेशन पे जाइएगा ना तो ठेला लेके ऐसे चिल्लाएंगे, दही दही लीटी लीटी लीटी दही दही लीटी।
2: अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत डिफरेंट सी डिश है। अच्छा यश, आप बताओ।
0: पहले पंजाबी में फेमस डिश ये है, मक्के की रोटी खाते हैं और उसके साथ सरसों का साग।
2: मक्के की रोटी और सरसों का साग?
0: हाँ जी।
2: अरे वाह।
0: और थेपले भी बहुत खाते हैं वहाँ पे। और महाराष्ट्र में पूरण पोली वहाँ की फेमस डिश है। वाह, तो हर एक मराठी के घर जाओ तो वहाँ पे फेमस, मतलब इसी के साथ स्वागत करते हैं।
2: हाँ। अच्छा, और ये डिश कैसी होती है खाने में?
0: एकदम मीठी होती है, मेरी तो फेवरेट डिश है।
2: यूपी में कौन सी डिश आपको बहुत पसंद है?
3: यूपी के भी तीन भाग है ना, मतलब इस साइड लखनऊ के साइड में मैं बताता हूँ, वहाँ पर तेल का खाना बहुत मिलता है, जैसे चटपटे खाने जो होते हैं, जैसे कि छोले भटूरे, पूरी छोला, बहुत ऑयली फूड वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। और आपको वहाँ पर सिर्फ एक तरीके के फूड नहीं, कई तरीके के हर फूड वहाँ आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। और अभी ज़्यादातर वहाँ पर कबाब पराठा मिलता है। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता देता हूँ, वहाँ पर सैलड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि वो उतना हिस्सा जंगल है, तो वहाँ पर बहुत आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ पर सैलड बहुत खाया जाता है हर खाने के साथ। मतलब वो लोग कच्चा सैलड भी खा लेते हैं, उनको सैलड बहुत पसंद होता है।
0: तो भैया आपका बॉर्न कहाँ पे है?
3: एक्चुअली मैं लखनऊ में पैदा हुआ, पर पापा की जॉब की वजह से 10 ईयर्स छत्तीसगढ़ में रहा।
0: तो मतलब आपने पहले ऑयली फूड भी बहुत खाया होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाने
3: मतलब
0: के बाद
3: मम्मी ने दोनों चीज सीख ली, छत्तीसगढ़ की भी खाना है, और मतलब अगर ज्यादा स्टेट्स में रहो तो सारा खाना सीख लेते हैं, दोनों स्टेट्स के खाना आ जाता है।
0: वहाँ के लोग तो हेल्दी भी बहुत होंगे फिर।
3: हाँ
2: मतलब आप सबको ये पता है कि ऑयली फूड से ज्यादा जो सलाद होता है, जो हेल्दी चीजें होती हैं, वो फायदा
0: देती हैं।
5: अरे यश, इसका मतलब ये नहीं कि साइज में हेल्दी, हड्डी में मजबूती आनी चाहिए।
0: हाँ।
2: बिल्कुल। और जब हम सैलेड खाते हैं, अच्छे पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो एक्चुअली ताकत अंदर ही आती है कि नहीं बच्चों?
3: इम्यूनिटी तेज होती है।
2: बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, हेल्दी डाइट के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो?
3: हेल्दी डाइट मीन्स बैलेंस्ड डाइट।
2: अच्छा, और बैलेंस डाइट क्या होती है?
3: जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, ऐसा मत, ये नहीं कि सबसे कम खाना खाओ या सबसे ज़्यादा खाना खाओ, नॉर्मल जो एवरेज हमें खाना चाहिए, ना तो ज़्यादा फैट वाला फूड, ना तो ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड, नॉर्मल फूड जो हम खाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वो बैलेंस डाइट कहलाता है, जो हम हमेशा खाते रहते हैं।
0: विधान भाई, आप साइंस के स्टूडेंट हो?
3: हाँ, मैंने साइंस ली है।
2: और आकाश, आप बताओ हेल्दी डाइट से आप क्या समझते हो?
5: दीदी, हेल्दी डाइट से दीदी मेरे को लगता है दूध की ज्यादा चीजें खाना।
2: अच्छा,
5: क्योंकि मेरे घर में बोलते मोटा हो दूध पी बटर खा, ऐसे बोलते हैं।
2: अच्छा यश, आप बताओ।
0: दीदी हमारे यहाँ पे तो मतलब यही कहते हैं, अच्छे से घी का खाना खाओ, थोड़ा तेल लगाओ, मक्खन खाओ, मक्खन पंजाबी भाषा में मक्खन खाओ,
3: मक्खन
0: हेल्दी रहो।
5: माँ के हाथ के बने आलू के परांठे से मक्खन लगा के सड़ा पंजाबी बल्ले बल्ले।
2: और आदित्य, आपको क्या पता है हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट के बारे में?
6: बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल्स।
2: बिल्कुल सही बात है बच्चों, बैलेंस डाइट मतलब हर वो चीज जो हमारी बॉडी को चाहिए वो प्रचुर मात्रा यानी एक्यूरेट मात्रा में हमारे साथ हो, यानी प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, और हर चीज का एक मिक्स हमें चाहिए। तो उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, दाल भी होने चाहिए, रोटी भी होने चाहिए, वो चीजें जो हमें फायदा करे वो सभी हमारे थाली में मौजूद होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं करते कि मैं ये दाल खाऊंगा और वो सब्जी नहीं?
0: नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता।
3: मैं तो करता हूँ, मैं को अरहर की दाल ज्यादा अच्छी लगती है, बाकी मसूर की दाल, चने की दाल थोड़ा कम अच्छी लगती है।
2: ऐसा और भी लोग करते हो क्या?
0: नहीं दीदी, मैं तो सब खाता हूँ।
2: और आकाश?
5: मैं भी सब खाता हूँ दीदी।
3: मेरी सबसे फेवरेट सब्जी करेला की सब्जी है, मैं तो दाल चावल के साथ भी खा लेता हूँ।
2: अच्छा अब ये बताओ, क्या ज्यादा पसंद है, घर का खाना या फिर फास्ट फूड बाहर खाना?
5: घर का खाना।
3: मुझे तो फास्ट फूड बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार, कभी ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाता। वैसे हर बच्चों को पसंद है फास्ट फूड, पिज़्ज़ा बर्गर, चाउमीन वगैरह, लेकिन तो हम लोगों को यूजुअली घर का ही खाना ठीक रहता है।
0: दीदी मैंने तो पिज़्ज़ा आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार खाया।
5: दीदी मैंने तो खाया ही नहीं है।
3: मैंने तो सिर्फ 2-3 बार खाया होगा।
2: और आदित्य आपने?
6: 5-6 बार।
3: बरसात के मौसम में तो कभी नहीं खाना चाहिए बाहर का।
0: नहीं दीदी, लेकिन पिज्जा बर्गर के बारे में बहुत सी बातें निकली है, जैसे पिज्जा है तो पिग होती है, उसकी मांस से बना गया, ऐसे भी बताया गया था बीच में, तो उस समय से मैंने
5: देखा था।
0: ना ना,
5: तो
0: मैं तो इंटरनेट पे देखा था।
5: माय गॉड,
0: मेरी मम्मी ने दिखाया था।
3: वैसे दीदी टीवी में हर फास्ट फूड के लिए अलग अलग डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स बताए जाते हैं,
0: वो तो हर जगह मिलेंगे ना।
3: एक घर का खाना एक ऐसा होता है जिसके लिए हमारी मम्मी का बना खाना कोई भी नहीं कहेगा कि ये गंदा खाना है, चाहे जो अगर मेहमान भी आते हैं तो हमारी मम्मी के खाने को पसंद करते हैं
0: जी।
3: तो सबसे अच्छा खाना होता है।
2: हाँ बच्चों, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तो आप लोग घर में हो, साथ में हो, तो आपको मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा खाना मिलता है। लेकिन अगर कभी जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें बाहर रहना पड़ता है या फिर कभी काम करना पड़ता है, तो हमें तब उस खाने की वैल्यू बहुत रियलाइज होती
0: जी
2: है।
0: दीदी
5: जी दीदी,
2: फुल बेनिफिट उठाओ, क्योंकि मम्मी से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। और फास्ट फूड के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो तो आप लोगों को पता ही है
0: जी दीदी,
2: है ना, क्योंकि हमारे ब्रेन पे भी वो असर करता है, बॉडी पे भी असर करता है,
3: मेंटली फिजिकली।
0: दीदी मैगी को पचने के लिए 2 दिन लगते हैं पूरे, यानी 48 आवर्स।
2: अच्छा, क्योंकि जो मैदा होता है, मैदे से बनी जो भी चीजें होती हैं, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती हैं।
3: और इसीलिए शायद हमारी मम्मी मैदा का खाना भी, जैसे छोले भटूरे बहुत कम बनते हैं, अगर आप 4 दिन लगातार छोले भटूरे खाओगे
0: तो पेट खराब हो जाएगा,
3: इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है।
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर सारे दिन आपको एक जैसा खाना मिले ना, तो वो भी खाने का मन नहीं करेगा।
0: हाँ, जी बोर हो जाते हैं।
3: अलग अलग दाल, अलग अलग डिश सब लोग खाते तो ये अच्छा लगता है।
2: और बच्चों हाँ। पता है एक और अच्छी बात ये है खाने की, कि टेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं। कोई कोई चीजें हमें पसंद होती हैं, कोई कोई चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम वो खाना शुरू करते हैं धीरे धीरे ये समझ के कि वो अच्छी है, तो हमें वो अच्छी लगने लगती है।
3: हाँ ये तो सही है। पहले मेरे को शिमला मिर्च टमाटर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे कि मेरे को ना बाहर फास्ट फूड में सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते थे, तो जब मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि वो ऐसे ऐसे बनाते टमाटर डाल देते हैं, तो फिर मम्मी कहती है तुम टमाटर तो नहीं खाते, पर इसमें तो पड़ा होता है, तो मम्मी फिर कहती है अब तुम घर में बना के खाया करो। और धीरे धीरे मेरे को टमाटर और शिमला मिर्च अच्छा लगने लगा।
2: बिल्कुल यही होता है कि धीरे धीरे हमें वो चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं, है ना
0: जी दीदी।
2: और फिर एक और बात ये भी होती है कि हमें नहीं पता कितना साफ सफाई है और कितनी सारी चीजें हाँ। होती हैं बाहर, धूल धक्कड़ मिट्टी बहुत सारी चीजें होती
3: है। और खाना को बनाने के लिए मन की शुद्धता की भी जरूरत पड़ती है, मन कुछ और ना सोच रहा हो, जैसा विचार वैसा आहार।
2: बात तो वेदांत ने सही कही बच्चों, है ना, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका असर तो पड़ता ही है। और मम्मी तो को कितनी प्योर फीलिंग से हमारे लिए खाना बनाती होंगी, है ना।
0: हाँ दीदी, तो और अगर नकार दे तो उनको कितना बुरा लगता होगा ना।
2: बिल्कुल, तो इसीलिए अब सब लोग घर में हर चीज खाना।
3: आज तो हम लोगों ने खाने के डिश के बारे में भी जाना और उनके वैल्यूज के बारे में भी जान लिया।
2: बिल्कुल, अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग टाइम पे खाना खाते हो या फिर कभी कभार लेट हो जाता है या मिस भी करते हो कोई मील?
3: मैं तो दीदी तीनों चीजें कर लेता हूँ। मिस हो जाता था, जैसे सुबह स्कूल होता था तो मैं सुबह नहीं खा पाता हूँ, मैं कभी भी स्कूल जाता हूँ तो खा के नहीं निकल पाता, क्योंकि शायद ये कारण है कि मैं लेट उठता हूँ, इसे खा नहीं पाता और जल्दी स्कूल भी रहता है।
2: और आदित्य आप बताओ, कभी कोई मील मिस करते हो या फिर सब चीजें टाइम पे खाते हो हमेशा?
6: कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, मिस
2: बाय मिस्टेक मिस हो जाता है। वैसे हमेशा रेगुलर खाते हो?
6: हाँ।
2: अच्छा, वेरी गुड। और आप बताओ यश?
0: दीदी बस सुबह का, उसके अलावा तो प्रॉपर टाइम पे।
2: अच्छा, मतलब दोपहर का खाना, रात का खाना, सब चीजें टाइम पे खाते हो?
0: जी दीदी। अच्छा। टाइम पे सो भी जाते हैं।
2: अरे वाह, वेरी गुड। और आकाश आप बताओ?
5: हाँ दीदी, कभी कभी स्कूल के काम से या कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो खाना मिस हो जाता है कभी कभी, बाकी प्रॉपर।
2: अच्छा, वैसे तो प्रॉपरली खाते हो हमेशा टाइम पे, है ना, क्योंकि टाइम पे खाने की जो वैल्यू है ना वो बेटाइम खाने की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग तबीयत खराब होती है या आप लोग बीमार हो जाते हो तब क्या खाते हो?
3: खिचड़ी।
0: खिचड़ी,
5: खिचड़ी।
3: अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले खिचड़ी बनाया था उड़ान के स्पेशल में, मैंने बताया कि कैसे खिचड़ी
0: हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता
3: है, के लिए अच्छी होती है।
5: दीदी मैं तो अभी अभी ताजा ताजा खिचड़ी खा के आया।
2: अरे वाह। अच्छा वैसे जब तबीयत खराब होती है तो खाने का मन तो नहीं करता, है ना?
3: हाँ दीदी मेरा तो खेलने का मन करता है।
2: अच्छा लेकिन तब तुम लोग खाना खाते हो या नहीं खाते हो?
3: वैसे
0: खाता हूँ दीदी,
3: सच बताओ
0: थोड़ा कम।
3: जब तबीयत खराब रहती है ना तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। मम्मी कहती है कि तुम चटपटा बुखार के समय खाओगे तो और ज्यादा बीमार हो सकते हो।
4: हाँ दीदी ऐसा होता है, और है ना त्योहार भी उसी टाइम पे आता है
0: क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना, एक्साइटमेंट के कारण हम बहुत उछलते हैं तो बॉडी पे लोड आता होगा इसलिए।
2: और आदित्य आप बताओ?
6: मेरा जब बस गला खराब हो जाए तब कुछ खाने का मन नहीं करता।
2: लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो खाना तो जरूरी होता है।
6: हाँ
2: तो इसलिए जो मम्मी बताए ना वो खा लेना चाहिए, है ना?
3: यस दीदी।
2: और जब हम तबियत हमारी ठीक हो जाएगी तब तो फिर सब कुछ खा सकते हैं।
6: हाँ।
2: अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई चीज आपने खाई हो बाहर या इधर और उस कारण से आपकी तबियत खराब हुई हो?
3: हाँ दीदी हुआ है, बरसात में जब खाते तो हो जाती तबियत खराब।
2: और यश आप बताओ?
0: दीदी मैं तो बहुत कम खाता हूँ बाहर।
2: अच्छा और आकाश?
4: दीदी मेरा तो घर से बाहर खाने का कभी होता ही नहीं है, बस अगर स्कूल की पिकनिक में जा रहे हैं या कहीं टूर पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ तो खा लेते हैं बाहर का।
2: अच्छा और एक और सवाल, क्या आप लोग प्लेट में जब खाना खाते हो तो कौन कौन सची सची खाना छोड़ता है प्लेट में या पूरा खत्म करते हो?
4: दीदी मैं तो हमेशा पूरा खत्म करता हूँ। अच्छा। शांतिवन की बात बता रहा हूँ।
2: और घर पे?
4: घर पे भी।
3: वैसे मैं तो घर में पूरा खाना खा लेता हूँ लेकिन कभी कभी छोड़ देता अपने खरगोशों के लिए, जैसे छिलके वगैरह।
2: अच्छा वैसे आप पूरा फिनिश करते हो ना खाना?
3: हाँ दीदी हमेशा।
2: और
0: मैं भी दीदी।
3: एक्चुअली घर में क्या होता है कि हमें जो चाहिए होता है वही हम लेते हैं, और इतना सा हमारी मम्मी को पता रहता है कि मेरा बच्चा कितना खाएगा, कब छोड़ते हैं हम लोग।
2: ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आदित्य?
6: मैं भी हमेशा खत्म करता हूँ सारा खाना।
2: चलो मेरे ख्याल से आप लोग खाने की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो।
4: हाँ दीदी
2: है ना, क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना खाना मिलता है, प्रॉपरली हर चीज हमारे पास अवेलेबल है और इतने प्यार से हमारी मम्मी हमें खिलाती है, तो उसकी वैल्यू को हमें जरूर समझना चाहिए, कभी प्लेट में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए।
4: दीदी मेरे पापा कहते हैं हिंदुस्तान में 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन का सिर्फ 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है।
2: हाँ बच्चों बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो हमें पता होनी चाहिए।
6: हाँ।
2: अच्छा जाते जाते एक और सवाल, जब आप खाना खाना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? क्या आप कभी भगवान को थैंक यू बोलते हो उसके लिए या फिर कुछ याद करते हो?
0: दीदी भगवान को पहले याद करके शुक्रिया करते हैं कि हमें जो भी मिलता है वो हमें ऐसी मिलता रहे।
3: और मैं तो हैंड वॉश भी करता हूँ।
4: मैं डेटॉल से
2: नहीं, बिल्कुल हैंड वॉश करना तो प्रॉपरली बहुत जरूरी है। और आदित्य आप?
6: हाँ गॉड को प्रे करते हैं पहले फिर स्टार्ट करते हैं।
2: गॉड को प्रे करते हो सब लोग?
0: जी दीदी।
4: हाँ दीदी।
2: अच्छा चलो बच्चों ये तो अच्छी बात है, हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए और हमें उन सभी को थैंक यू बोलना चाहिए जिनके थ्रू ये खाना हमें मिला, वो किसान जो सब्जी उगाते हैं, वो वेंडर्स जो उनको सेल करते हैं, और
3: हमारी मम्मी लेकर भी आती है बहुत थैले में इतना भारी भारी कद्दू भर के।
0: जी दीदी।
2: तो सोचो हमारी प्लेट में वो खाना आता है उसमें कितने लोगों का हाथ होता है?
0: 4-5 लोगों का
2: है ना।
4: और दीदी एक हाथ तो हमारा भी होता है खाने का,
2: लेकिन वो खाने के लिए जो हमें चाहिए वो सब मिलता कितने लोगों की बदौलत है, तो हमें उन सब का थैंक यू जरूर करना
3: सबसे
2: चाहिए,
3: सबसे ज्यादा प्रकृति का।
2: बिल्कुल। और हर किसी का थैंक यू करते विश भी करना चाहिए कि जो भी लोग हैं भगवान उन सभी को अच्छा खाने को दे और सभी खुशी से रहे, है ना? तो आज से हम सब ये करेंगे।
4: हाँ दीदी।
3: यस दीदी।
2: अच्छा चलो ठीक है, तो खाने के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की और आपके फेवरेट फूड के बारे में भी जाना और ये भी जाना कि खाने की वैल्यू क्या है। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: अरे
1: मम्मी मम्मी।
2: हाँ बेटा।
1: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
3: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: सन 1902 के अंतिम भाग में जापान से दो विख्यात विद्वान बेलूर मठ में पधारे। जापान में एक धर्म महासभा बुलाने का संकल्प लेकर वे विशेष रूप से स्वामी जी से ही मिलने के लिए आए थे। जापान के एक बौद्ध मठ के अन्यतम नायक ओडा ने स्वामी जी से कहा,
1: आप जैसे विख्यात व्यक्ति इस कार्य में सहायक हो तो हमारा उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। जापान में इस समय धर्म का संस्कार विशेष आवश्यक हो गया है। आप जैसे शक्तिशाली आचार्य के अलावा ये कार्य और किसके द्वारा संपन्न हो सकेगा।
2: इन महोदय के साथ ही डॉक्टर ओकाकुरा भी जापान की वर्तमान स्थिति का वर्णन कर स्वामी जी से अनुरोध करने लगे। जड़ सभ्यता की दृष्टि से तेजी के साथ उन्नति करने वाले जापान में धर्म भाव की कमी की बात सुनकर स्वामी जी के हृदय में जोश भराया। शारीरिक अस्वस्थता को भूलकर वे जापान जाने के लिए तैयार हुए।
0: स्वामी जी के अलौकिक चरित्र और उदारता से मुग्ध होकर वे लोग मठ में ही निवास करने लगे। स्वामी जी प्रतिदिन भगवान बुद्ध देव और बौद्ध धर्म के संबंध में इनके साथ चर्चा किया करते थे। पाश्चात्य पंडितों ने बौद्ध दर्शन को हिंदू दर्शन के नितांत विपरीत बताकर जो मत प्रकट किए हैं, स्वामी जी उनका खंडन करके दिखा देते थे कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की विद्रोही संतान होने पर भी बुद्ध देव के अधिकांश उपदेशों के भाव और उपनिषदों का काफी मेल है। फलतः उपनिषद के ज्ञान कांड पर ही बौद्ध दर्शन की नींव है। जापानी पंडितगण स्वामी जी के बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांतों को सुनकर विस्मित हुए। उन्होंने देखा कि इस सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली सन्यासी ने बौद्ध धर्म संबंधी अधिकांश ग्रंथों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि स्वामी जी को बौद्ध श्रमण कहें या हिंदू सन्यासी।
2: कुछ दिनों बाद 1902 ईस्वी के जनवरी मास में स्वामी जी डॉक्टर ओकाकुरा का आमंत्रण स्वीकार कर उनके साथ बुद्ध गया जाने के लिए तैयार हुए। ये भी निश्चय हुआ कि वे वहाँ से काशीधाम में जाकर कुछ दिन विश्राम करेंगे। स्वामी जी के परिव्राजक जीवन का यही अंतिम भ्रमण था।
0: बौद्ध गया मठ के महंत महाराज स्वामी जी की प्रसिद्धि की बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे। आज उन्हें अप्रत्याशित रूप से अतिथि के रूप में प्राप्त कर महंत जी के आनंद की सीमा न रही। स्वामी जी को किसी प्रकार असुविधा न होने पाए, इसलिए स्वयं उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन ध्यान के आनंद में बिताकर स्वामी जी ने वाराणसी की ओर यात्रा प्रारंभ की।
2: स्वामी जी के उपदेशों, शिक्षा तथा उत्साह द्वारा उद्बुद्ध होकर कुछ युवक एकत्र होकर अनाथ, रोगग्रस्त, असहाय तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए अग्रसर हुए। एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वे राजपथ तथा गंगा घाट से बूढ़े रोगी नर नारियों को उठाकर वहाँ पर ले जाते और यथा साध्य औषधि, पथ्य, सेवा आदि द्वारा उनके कष्ट को कम करते थे। श्रद्धा व निष्ठा के साथ दीन दुखियों को नारायण मानकर उनकी निस्वार्थ सेवा में आत्मसर्ग करने वाले युवकों की ये दृढ़ता देखकर स्वामी जी को बड़ा हर्ष हुआ।
0: ये देखकर कि उनके आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आ रहा है, वे कभी कभी दुखी हो जाते थे। परंतु आज इन थोड़े से युवकों का कार्य देखकर उनका वो दुख दूर हुआ। वे गर्व और आनंद से अपने मानस पुत्रों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने लगे। उत्साह देते हुए बोले,
3: वत्स, तुम लोगों ने सत्य मार्ग जान लिया है। मेरा प्रेम तथा आशीर्वाद सदा तुम्हारा कल्याण करे। साहस के साथ अग्रसर होते जाओ। अपने अभावों के लिए निराश न होना, धन आएगा। तुम्हारी छोटी सी संस्था के नींव पर भविष्य में जो कुछ होगा वो तुम्हारी वर्तमान प्रियतम कल्पनाओं को भी लांघ जाएगा।
2: स्वामी जी ने इस नवीन रामकृष्ण सेवाश्रम की प्रथम रिपोर्ट के साथ जन साधारण के समीप आर्थिक सहायता की प्रार्थना कर आवेदन पत्र लिखा। स्वामी जी से उत्साह और आशीर्वाद प्राप्त कर युवकों का कर्मोत्साह 100 गुना बढ़ गया। काशीधाम में सेवा धर्म के सुवर्ण सौध की नींव चिरकाल के लिए स्थापित हो गई। उसके बाद कितनी बाधाएं, विपत्तियां, असुविधाएं आईं, पर उन सब का सामना कर वो सेवाश्रम आज की वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया है।
0: श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव को निकट जानकर स्वामी जी काशी से बेलूर मठ लौट आए। काशी की जलवायु से स्वामी जी कुछ स्वस्थ हुए थे, परंतु मठ में आकर रोग इतना बढ़ गया कि वे शैया ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्णोत्सव के दिन आनंद पर एक विषाद की छाया दिखने लगी। अनेक व्यक्ति स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से आए थे, पर मिलने का कोई उपाय न देख वे निराश हो गए। स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि वे जनता के सम्मुख आएंगे, परंतु प्रातःकाल दो चार व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करके उन्हें इतनी थकावट महसूस होने लगी कि और अधिक बाहर रहने का साहस बिना कर सके।
2: मठ का विशाल प्रांगण जनपूर्ण था। कहीं कीर्तन हो रहा है तो कहीं प्रसाद बांटा जा रहा है। इस आनंदोत्सव में स्वामी जी को सम्मिलित होने में असमर्थ देख अनेक व्यक्ति दुखी हुए। उस दिन श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय स्वामी जी के पास बैठे थे। स्वामी जी की धीरे धीरे बढ़ती हुई रोग यंत्रणा तथा शारीरिक अस्वस्थता को देख उनका मुख म्लान हो गया, उनका हृदय विदीर्ण हो गया और वे आंसू बहाने लगे। स्वामी जी ने शिष्य का मनोभाव समझकर कहा,
3: क्या सोच रहे हो? शरीर पैदा हुआ है, नष्ट भी होगा। अगर मैं तुम लोगों में अपने भावों को थोड़ा भी प्रविष्ट कराने में समर्थ हो सका, तभी जानूंगा कि मेरा शरीर धारण सार्थक हुआ है।
0: थोड़ी देर बाद भगिनी निवेदिता ने कुछ अंग्रेज महिलाओं के साथ जाकर गुरु दर्शन के बाद थोड़ी ही देर में विदा ली। स्वामी जी को कष्ट होगा ये सोचकर वे अधिक देर तक न ठहरे। दिन के 2:30 बजे के बाद शरद बाबू एक बार उत्सव प्रांगण का परिदर्शन कराए और आकर स्वामी जी को उत्सव की बातें बताने लगे। शिष्य के मुंह से 50,000 लोगों के एकत्रित होने का समाचार सुन उन्हें देखने के लिए स्वामी जी बड़े कष्ट से धीरे से खड़े हुए और उस जन समुदाय को देखा, कहा,
3: अधिक से अधिक 30,000।
0: अधिक देर तक खड़े रहना उनके लिए असंभव था। थोड़ी देर बाद वे फिर लेट गए।
2: इस दिन उत्सव के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जिस प्रणाली से उत्सव चल रहा है उसे बदलकर 4-5 दिनों के उत्सव की व्यवस्था करना अच्छा होगा। प्रथम दिन शास्त्र पाठ और व्याख्या, दूसरे दिन वेदांत का विवाद और मीमांसा, तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सभा, चौथे दिन श्री रामकृष्ण देव की जीवनी तथा उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श व मार्ग के संबंध में भाषण व चर्चा, और अंतिम दिन प्रसाद वितरण व दरिद्र नारायण सेवा।
0: उत्सव के उपलक्ष्य में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे रामकृष्ण देव के जीवन संबंधी विचार सभी शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में प्रविष्ट हों। महोत्सव का अनुष्ठान यदि उनके विचारों के प्रचार के केंद्र के रूप में परिवर्तित न हो तो ऐसा समझना निरर्थक है कि कुछ लोग मिलकर केवल हल्ला गुल्ला करने से ही श्री रामकृष्ण देव के विचारों का प्रचार कर लेंगे। सामयिक धर्म बोध की उत्तेजना में कीर्तन नृत्य आदि द्वारा विशेष कुछ न होगा।
2: लगातार औषधि सेवन तथा नियम कानून के नियंत्रण में रहते हुए स्वामी जी विरक्त हो गए। उन्होंने सुना कि उनके गुरु भाई गण गंभीर दार्शनिक तत्व आदि की आलोचना होने की आशंका से अनेक व्यक्तियों को उनके साथ साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं देते हैं। अनेक व्यक्ति प्रतिदिन निराश होकर दुखी मन से मठ से लौट जाते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु भाइयों को बुलाकर कहा,
3: देखो इस देह को रखकर और क्या होगा, पर कल्याण में इसका पतन हो जाए तो अच्छा होगा। श्री रामकृष्ण देव ने असहनीय रोग यंत्रणा को सहन करके भी जीवन के अंतिम दिन तक परहित के लिए उपदेश दिया था, मुझे भी क्या ऐसा ही करना उचित नहीं? तृण जैसी यह मामूली देह रहे या जाए मैं इसकी परवाह नहीं करता। सत्य के अनुसंधानकारी व्यक्तियों के साथ विमर्श करने में मुझे जो आनंद होता है इसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकोगे। अपने स्वदेशवासी भाइयों की आत्मा की छुपी हुई शक्ति को जागृत करने में सहायता करने के लिए बार बार जन्म ग्रहण करने से भी मैं विचलित नहीं होऊंगा।
0: इससे पूर्व स्वामी जी जब कभी कुछ आराम अनुभव करते थे उसी समय कोई ना कोई काम आरंभ कर देते थे। बिना काम किए बैठे रहना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। मार्च मास के प्रथम भाग में जीवन के अंतिम दिन तक इन चार महीनों में शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उन्होंने नाना प्रकार से जो असाधारण परिश्रम किया था वो वास्तव में आश्चर्य है। जिस समय वे एकाग्र चित से किसी कार्य में युक्त होते थे उस समय उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखने का संकल्प भी लिया था। इस कार्य का प्रारंभ भी हुआ किंतु खेद है एक भी पुस्तक पूर्ण न हुई।
2: स्वामी जी आडंबर पूर्ण क्रियाकलाप के विशेष विरोधी थे। मठ की नित्य नैमित्तिक ठाकुर पूजा यथा संभव सादगी के साथ समाप्त कर वे ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों को अधिकांश समय साधना शास्त्र चर्चा वेद पाठ आदि कार्यों में ही बिताने का निर्देश देते थे। मठ के प्रतिदिन की कार्यावली को स्थिर रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक कार्य का समय निर्दिष्ट कर दिया था। मठ के प्रत्येक व्यक्ति पर वे तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। जानबूझकर यदि कोई किसी नियम का उल्लंघन करता तो वे उस पर कठोर भाषा में भर्त्सना भी करते थे।
0: रात्रि के 3 बजे शैया त्याग करके स्वामी जी ध्यान मग्न होते थे। ध्यान के कमरे में उनके लिए एक अलग आसन रखा रहता था। दूसरे सन्यासी व ब्रह्मचारी गण उन्हें घेर कर बैठते थे। जब तक स्वामी जी न उठते तब तक किसी को उठने का अधिकार न था और आवश्यकता भी नहीं होती थी। महापुरुषों की पवित्र चिंताधारा के प्रभाव से प्रत्येक का मन बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होता था। एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति से चित्त भर जाता था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक दिन कहा था,
1: नरेन के साथ ध्यान करने बैठने पर जैसा ध्यान जमता है वैसा मैं जब अकेला बैठता हूँ तब नहीं जमता।
2: कभी कभी स्वामी जी 2 घंटे से अधिक समय तक ध्यानासन पर बैठे रहते थे। उसके बाद शिव शिव कहते कहते आसन से उठकर श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम कर कोई शिव संगीत गाते गाते नीचे उतर आते थे और प्रांगण में टहलते थे। मुखमंडल पर अपूर्व प्रशांति, विशाल विस्तृत नेत्रों में भाव के आवेग, बेसुध सी दशा में लापरवाही से टहलना आदि देखकर ऐसा लगता था कि मानो वास्तव में वे इस पृथ्वी के मानव नहीं हैं।
0: इसके बाद शास्त्र चर्चा प्रारंभ होती थी। स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहकर शिष्यों का विचार करते और जटिल स्थानों की स्वयं मीमांसा करते। प्रातःकाल उपनिषद ब्रह्म सूत्र आदि वेदांत शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन चलता था। स्वामी जी ने स्वयं कुछ दिनों से शिष्यों को पाणिनी तथा लघु कौमुदी पढ़ाना शुरू किया था। दोपहर में भोजन के उपरांत फिर पठन पाठन होता था। संध्या आरती के शंख घंटा बजने के साथ ही साथ सब लोग ध्यान गृह में एकत्र होते थे। ध्यान के समय पर यदि कोई अनुपस्थित रहता स्वामी जी उसकी भर्त्सना करते थे।
2: कोई भी ब्रह्मचारी शारीरिक अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से मठ की दैनिक नियमावली का उल्लंघन करने पर उस दिन मठ में भोजन नहीं कर पाता था। आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर उस दिन के लिए उसे उदर पूर्ति करनी पड़ती थी। स्वामी जी एक ओर जिस प्रकार उदार दयालु व स्नेह परायण थे दूसरी ओर उसी प्रकार कठोर न्याय परायण तथा निर्मम थे। कितना ही प्रिय पात्र क्यों ना हो उनकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी वे क्षमा नहीं करते थे। वे जानते थे उदारता व क्षमा की अधिकता होने पर भविष्य में मठ के आदर्श की रक्षा करना असंभव हो जाएगा।
0: वास्तव में इस समय यश मान पद आदि सभी बातें संपूर्ण रूप से भूलकर उन्होंने अपनी सारी शक्ति मनुष्य गठन के कार्य में नियुक्त कर दी। इस प्रकार अप्रैल और मई के माह व्यतीत हुए। भारत तथा बाहरी देशों में रामकृष्ण मिशन के प्रचारक सन्यासीगण बड़े उत्साह पूर्वक प्रचार कार्य में नियुक्त थे। स्वामी जी के नवीन कर्मोत्साह को देख कोई न समझ सका कि वे महायात्रा की तैयारी में हैं।
2: जून मास के प्रथम भाग से ही स्वामी जी मठ तथा रामकृष्ण मिशन संबंधी बातों में संपूर्ण उदासीनता प्रकट करने लगे। किसी भी विषय में अब वे अपना मतामत व्यक्त न करते थे। कभी कभी किसी कार्य में उनकी सलाह पूछने पर वे विरक्ति के साथ उन्हें स्वयं तय कर लेने का आदेश देते थे। आचार्य, नेता, गुरु, शिक्षादाता आदि उपाधियों को एक एक करके छोड़ वे अधिकांश समय ध्यानानंद में ही डूबे रहते थे। ध्यान की आकांक्षा को अधिक से अधिक बढ़ते देख उनके गुरु भाईगण चिंतित हुए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वो जिस दिन अपने को पहचान सकेगा उस दिन फिर उसका शरीर ना रहेगा। यही बात बार बार सभी के मन में आने लगी।
0: सभी समझ गए कि अब किसी भी पल स्वामी जी देह त्याग कर सकते हैं, परंतु इस समय उनके शरीर से रोग के सभी लक्षण दूर हो गए थे। चिंतित व दुखी गुरु भाइयों के साथ हास्य खेल आदि करते हुए वे सदा अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाए रखते थे। वे वास्तव में देह त्याग करेंगे, कोई इस बात को जानकर भी समझ नहीं सकता था।
2: देह त्याग के एक सप्ताह पूर्व आचार्य देव ने स्वामी शुद्धानंद जी को एक पंचांग लाने का निर्देश दिया। पंचांग आ जाने पर उन्होंने स्वयं उसे पढ़कर अपने कमरे में रख दिया। बीच बीच में वे गंभीर ध्यान के साथ उसे देखते थे। उस समय उनके मुख का भाव देखकर ऐसा लगता था मानो वे किसी विशेष कार्य के लिए कोई दिन चुनना चाहते हैं, परंतु किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी का देहांत होने के बाद उनके गुरु भाईगण समझ सके कि स्वामी के बारंबार पंचांग देखने का क्या मतलब था। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी देह त्याग से कुछ दिन पूर्व एक शिष्य को पंचांग देखने के लिए बुलाया था। उसके बाद कुछ दिनों की विशेष बातें जान लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, बस अब और आवश्यकता नहीं। स्वामी जी ने भी गुरुदेव की पद्धति का अनुसरण करते हुए महायात्रा का दिन निश्चित कर लिया था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी को पंचांग देखते समय किसी को थोड़ा भी इस बात का स्मरण न हुआ।

0: त्याग से 3 दिन पूर्व स्वामी जी मठ के विस्तृत मैदान में घूमते घूमते उस स्थान को उंगली के इशारे से दिखाते हुए सहसा बोल उठे,
1: मेरा देहांत होने पर उस स्थान पर मेरा अंतिम संस्कार करना,

0: भोजन के समय स्वामी हास्य विनोद से सभी को हंसाने लगे।
1: स्वामी जी को प्रफुल्लित देखकर शिष्यगण बहुत ही खुश हुए। स्वामी जी जिस समय बालक की तरह हंसी मजाक करते थे और ठहाके लगाते थे, सभी के साथ सरल भाव से मिलते थे और उस समय उनके सामने किसी को लज्जा या संकोच नहीं होता था, परंतु जब वे गंभीर होकर बैठे रहते उस समय उनके पास में जाकर खड़े होने में भी भय होता था। आहार के बाद सब लोगों के उठ जाने पर स्वामी जी उनके हाथ धुलाने के लिए लोटे से स्वयं जल देने लगे और आचमन के बाद तौलिए से उनके मुंह और हाथों को पोंछने लगे।
2: ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? ये सब काम तो मुझे करना चाहिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपसे सेवा नहीं ले सकता।
3: क्यों, क्या ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे?
1: शिष्यों ने मन ही मन में सोचा वो तो उनका अंतिम दिन था, पर कोई ये बात कह नहीं पाया।
0: सन 1902 ईस्वी 4 जुलाई तड़के ही शैया त्याग कर स्वामी जी आज सभी के साथ एकत्र ध्यान करने न गए। अतीत की बातें चलाकर वे नाना प्रकार से वार्तालाप करने लगे। दूसरे दिन अमावस्या और शनिवार था, इसलिए मठ में उन्होंने श्री काली पूजा करने की इच्छा प्रकट की। पूजा के आयोजन के संबंध में वार्तालाप हो रहा था। इसी समय स्वामी रामकृष्णानंद के पिता शक्ति साधक तंत्र शास्त्र में पंडित ईशान चंद्र भट्टाचार्य महाशय मठ में पधारे। उन्हें देख स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए।
1: भट्टाचार्य महाशय के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने उसी समय स्वामी शुद्धानंद जी और बोधानंद जी को पूजा की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया। इसके बाद थोड़ी सी चाय पीकर वे मठ के ठाकुर घर में प्रविष्ट हुए। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई। इस प्रकार तो वे कभी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करते थे, इसका क्या कारण है कौन कहे। 3 घंटे व्यतीत हो जाने पर एक श्यामा संगीत गाना गाने के बाद आनंद में मग्न स्वामी जी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर कर नीचे आए। मन चल निज निकेतने, गाना गुनगुनाते हुए वे टहलने लगे।
0: स्वामी प्रेमानंद जी पास ही खड़े थे, उन्होंने सुना। स्वामी जी अपने मन ही मन में कह रहे हैं,
3: यदि इस समय कोई दूसरा विवेकानंद होता तो वो समझ सकता था कि विवेकानंद ने क्या किया है, परंतु समय पर अवश्य अनेक विवेकानंद जन्म ग्रहण करेंगे।
1: सूक्ष्म अंतर्दृष्टि वाले महापुरुष स्वामी प्रेमानंद देख कर भी देख न सके, समझ कर भी न समझ सके कि उनके प्यारे गुरु भाई विवेकानंद ने आज देह त्याग का संकल्प ले लिया है।

0: नियमित समय पर भोजन की घंटी होते ही स्वामी जी ठाकुर घर के नीचे एक बरामदे में सभी के साथ मिलकर भोजन करने बैठे। स्वामी जी अस्वस्थ हो जाने के बाद सभी के साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। आज सहसा उस नियम का व्यतिक्रम होते देखकर किसी के मन में कोई संदेह ना हुआ, बल्कि सहसा अप्रत्याशित भाव से स्वामी जी के साथ एकत्र होकर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सभी बड़े आनंदित हुए। स्वामी जी अस्वाभाविक आग्रह के साथ भोजन करने लगे और गुरु भाइयों के साथ हास्यालाप में रत हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे दिनों की अपेक्षा आज उनका शरीर अधिक स्वस्थ लग रहा है।
1: भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके ही स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को संस्कृत क्लास में बुला लिया। अन्य दिन 2:30-3 बजे के समय पाठ शुरू होता था। आज 1:15 पर ही पाठ प्रारंभ हुआ। लघु कौमुदी व्याकरण का पाठ चल रहा था। विषय नीरस होने पर भी लगातार 3 घंटे में किसी ने किसी प्रकार विरक्ति का अनुभव नहीं किया। कभी हास्यपूर्ण छोटी छोटी कहानियां कहकर, कभी सूत्रों की नाना प्रकार की आकर्षक व्याख्या करते हुए स्वामी जी कठिन

0: कठिन स्थानों को भी आकर्षक बनाने लगे। एक बार बचपन में स्वामी जी ने अपने मित्र स्वर्गीय दाशरथी सान्याल को एक रात में ही इंग्लैंड का सारा इतिहास सिखा दिया था। व्याकरण का पाठ समाप्त होने पर ऐसा दिखा कि स्वामी जी थक से गए हैं।
1: संध्या आरती का समय, ब्रह्मचारी गण एक एक करके स्वामी जी को प्रणाम करके ठाकुर घर की ओर चले। स्वामी जी धीरे धीरे दुमंजिले पर अपने कमरे में पधारे। स्वामी जी ने उन्हें अपने कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोल देने का आदेश दिया। काफी देर बाद मानो एकाएक होश संभाल कर विवेकानंद मुड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मचारी को बाहर बैठकर जप करने का निर्देश देकर वे स्वयं जपमाला हाथ में लिए पद्मासन में बैठ गए। एक घंटे बाद आसन से उठकर स्वामी जी कमरे में बिस्तर पे लेट गए और ब्रह्मचारी जी को बुलाकर उन्होंने पंखा चालू करने के लिए कहा।
0: जप माला हाथ में लिए सोए हुए महापुरुष की देह निस्पंद और स्थिर है। उस समय करीब रात्रि के 9 बजे का समय था। इसी समय उनका हाथ कांप उठा और साथ ही वे निद्रित शिशु की तरह अस्पष्ट स्वर से थोड़ा क्रंदन कर उठे। दो गंभीर दीर्घ निश्वास के साथ ही साथ उनका मस्तक तकिए से हिल गया। स्वामी को इस स्थिति में देख ब्रह्मचारी जी ये न समझ सके कि क्या करना चाहिए। वे घबरा गए और नीचे जाकर दूसरे सन्यासियों को ये समाचार सुनाया। उन्होंने जल्दी ही आकर देखा कि योगीवर अनंत निद्रा में शयन कर रहे हैं। अमावस्या की रात्रि के अंधकार पूर्ण आड़ में जगन माता ने अपने व्यग्र बाहुओं को प्रसारित कर रण क्लांत वीर पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया।
1: जो कुछ आँखों के सामने था वो आँखों से ओझल हो गया। किंतु किस उद्देश्य से संसार रूपी रंगमंच पर किसने ये अभिनय किया? कौन है विवेकानंद? कौन है भगवान श्री राम कृष्ण? मृत्यु की यवनिका द्वारा नेपथ्य भूमि आवृत है। काल स्रोत में कहां जाकर ये अभिनय समाप्त होगा? मानव का शुद्र ज्ञान क्या भूत क्या भविष्य किसी अंत तक पहुंच नहीं सकता। किंतु आज जो कुछ है कल वो नहीं रहता। बहता रहता है केवल अनंत काल स्रोत। गरज उठती हैं बीच बीच में केवल ऊंची ऊंची लहरें।
0: बंगाल के जीवन स्रोत में राजा राम मोहन से लेकर तरंगों के उत्थान और पतन का हमने निरीक्षण किया है। शताब्दी के अंत तथा प्रथम भाग में फिर ये एक तरंग का अभिघात। दक्षिणेश्वर में गंगा जी के पूर्वी तट पर एक दिन इसकी उत्पत्ति हुई। बेलोड़ में पश्चिम तट पर इसका विलय हुआ।
1: अमेरिका के स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को उनका महाप्रयाण हुआ। परंतु क्या ये सचमुच का ही चले जाना, चिर निर्वाण, पृथ्वी के लोगों के साथ चिर विच्छेद? न, उनके जीवन और संदेश से तो ऐसा नहीं लगता। एक बार उन्होंने कहा था,
2: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य से कभी विरत नहीं होऊंगा, जब तक कि संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता। मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा।
0: शायद स्वयं को ही लक्ष्य करके वे 4 जुलाई नामक कविता लिख गए थे।
2: वक्त वो हासिल निकाला काम का, प्यार का, पूजा का, जीवन दान का, हाथ उठाया संवर कर पूरा किया, फिर तुम ही ने स्वस्ति की बांधी कमर, जनगणों पर मुक्ति की डाली किरण, देव चलते ही चलो बेरोक टोक, विश्व को दोपहर न जब तक घेर ले, कर तुम्हारा हर जमी जब तक न दे, स्त्री पुरुष जब तक न देखें चाव से, बेड़ियां उनकी कटी उल्लास की जानई, जब तक न समझें आ गई, ओम शांति ओम शांति।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: मैंने घोड़ा लियो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी से रूबरू होता है। सफर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज 11 मई है और 11 मई की विशेष बातें आपसे शेयर करूंगा, कुछ खास लोगों का जिनका जन्मदिन है उनके बारे में हम लोग बातचीत करते ही हैं। और आज मुखशिरा नक्षत्र है, बात करें आज के दिन मृणाली साराभाई, सादत हसन मांटू, एस एम श्री गणेश, केवी के सुंदरम, शक्ति सिन्हा, सागर सरहादी, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही आबिदा सुल्तान, इनका पुण्य दिवस है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ और आशा करूंगा कि आप सभी विचारों को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे और अच्छे विचार सुनते ही आपके मन को सुकून मिलता है। बस यही पर इस चीज को पकड़े रखिए कि सुंदर विचार ही आपके अच्छे मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, जो आपको अच्छा बनाते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं, याद रखिएगा, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। है ना कमाल की बात। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपके नाम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बात करते हैं हम लोग आज के दिन विशेष में जिन लोगों का जन्मदिन है, एक खास व्यक्ति के बारे में बात करूंगा मैं, मृणाली साराभाई, एक ऐसी नृत्यांगना जिन्होंने अपनी भारत की परम्परा को चारों ओर विदेश तक जो है उन्होंने फैलाया। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। और ये अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती भारत की बहुत ही पॉपुलर नृत्यांगना, उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए उनके उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन 11 मई 1918 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर स्वामीनाथन मद्रास हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे। माँ अम्मू स्वामीनाथन आज़ादी की दीवानी थी जो बाद में देश की पहली संसद की सदस्य बनी। बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ थी। मृणाली ने बचपन का अधिकांश समय स्विट्जरलैंड में बिताया। यहाँ डेलक्रूज स्कूल से उन्होंने पश्चिमी तकनीकी से नृत्य कलाएँ सीखी। फिर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण की और यहीं से नृत्य उनकी जिंदगी बन गई। उनके पति विक्रम साराभाई देश के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। उनकी बेटी मल्लिका साराभाई भी प्रसिद्ध नृत्यांगना और समाजसेवी है। मृणालिनी की बड़ी बहन लक्ष्मी सहगल विशेष क्रांतिकारी थी और क्रांतिकारी के रूप में, आज़ादी के सेनानी के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी फौज की महिला सेना झांसी रेजिमेंट की कमांडर इन चीफ थी। तो है ना कमाल की बात, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक महिला जो है अपनी कला के माध्यम से, अपनी सूझबूझ से देश सेवा, समाज सेवा और नृत्य कला को बहुत ही अच्छा निखार सकती है और उसे दूर तक फैला सकती है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर। तो आइए एक और गीत आपके लिए खास, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्त सभी लिसनर्स जो सुन रहे हैं, उपराम जी और भूपत सिंह जी, सुरेश जी जोटाना, सुरेश जी पिंडवाड़ा और दयाराम जी और सभी जो बड़े प्यार से सुनते हैं कार्यक्रम को, फिरोज जी वगैरह, सुभाष जी जलगांव से आप सभी को याद भेजते रहते हैं और कार्यक्रम को सुनते हुए उन्होंने बड़े आनंद आता है उन्हें और मैसेज भी करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा था मृणाली साराभाई के बारे में। जी, मृणाली साराभाई का जो ट्रेनिंग है नृत्य की, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उस समय वो दौर था जब कलाकार सिर्फ एक फॉर्म नहीं सीखते थे। मृणाली साराभाई ने भी नृत्य की अलग अलग शैलियों को, उसकी बारीकियों को जरूर सीखा। उन्होंने अमूबी सिंह से मणिपुरी नृत्य सीखा, कुंजू कुरूप से कथकली सीखा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले और मुत्तु कुमार पिल्ले से भरतनाट्यम सीखा। उनके हर एक गुरु का अपनी अपनी कला में जबरदस्त योगदान था। इसी दौरान उन्होंने विश्वविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई पंडित उदय शंकर के साथ भी काम किया। पंडित उदय शंकर का भारतीय कला को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। आधुनिक नृत्य को लोकप्रिय और कामयाबी के अलग मुकाम पर पहुंचाया। इस बीच मृणालिनी साराभाई कुछ दिनों के लिए अमेरिका भी गई और वहां जाकर ड्रामेटिक आर्ट्स की बारीकियां सीखी। इसके बाद मृणालिनी साराभाई ने देश दुनिया में भारतीय नृत्य परंपरा का विकास किया। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ। कभी कभी कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग गुरुओं के साथ मिलकर उनसे सीखना होता है। जिस तरह से मृणाली जी ने इतनी सारी लोगों से ट्रेनिंग लिया और फिर भारत लौटकर देश विदेश में सीखते हुए जानी मानी नृत्यांगना मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले से भरतनाट्यम का फिर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। इस तरह से अलग अलग लोगों से उन्होंने जो है सीखा। भारत सरकार की ओर से साराभाई को देश के प्रसिद्ध नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मश्री प्राप्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगलिया नविश यूके ने भी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मान किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सीखने के बाद उन्होंने देश और विदेश में अपनी एक नई शैली जो है वो विकसित करके लोगों को उनका प्रेजेंटेशन जो है नृत्य का किया करते थे और ये इतना प्रभावशाली होता था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे इनके नृत्य का प्रदर्शन देखकर। इंटरनेशनल डांस काउंसिल पेरिस की ओर से इन्हें एजुकेटिव कमेटी के लिए भी नामांकित किया गया और दर्पण एकेडमी की स्थापना मृणाली साराभाई ने की, जिसके माध्यम से वो देश दुनिया में अपना परचम लहराया और भारत की जो अलग अलग नृत्य शैलियां हैं उन्हें विकसित करते हुए मिक्स जो है सारे शैलियों का एक समृद्ध जो नृत्य का अभिभंगी या कहते हैं अभिव्यक्ति उन्होंने लोगों के बीच में रखा, इसलिए इनको आज भी याद किया जाता है। और मृणाली साराभाई जो है इनका जब 100वां जयंती था 2018 में और इस महान नृत्यांगना को इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी थी। इस डूडल को सुदीप्ति टक्कर ने बनाया था। मृणाली साराभाई गूगल डूडल में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के ऑडिटोरियम में एक छतरी लिए हुए हैं और उनके पीछे नृत्य करती हुई नृत्यांगना है। गूगल ने एक पोस्ट में डूडल के बारे में ये लिखा था, आज के डूडल में भारतीय क्लासिकल डांसर मृणाली साराभाई को याद किया जा रहा है, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी टेक्निक, ऊर्जा और मजबूती के दम पर भरतनाट्यम की साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म और कथकली की क्लासिकल डांस ड्रामा की लोगों को ट्रेनिंग दी और उसकी जगह जगह परीक्षण करते हुए प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें मृणाली साराभाई के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक बात तो समझ में आता है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन कला उसकी जिंदा रहती है और उस कला के माध्यम से व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, सहद सादत हसन मांटो। मांटो की बात अगर कहें तो ये एक ऐसे कहानीकार लेखक रहे जो इनके लेखनी को रेडियो, टीवी और फिल्मों में यूज किया गया। एक ऐसे कहानीकार मांटो फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। मांटो की कहानियों की बीते दशक में जितनी चर्चा हुई उतनी शायद उर्दू और हिंदी और शायद दुनिया के दूसरी भाषाओं के कहानीकारों की कम हुई है। और आंतोन चेखो के बाद मांटो ही थे जिन्होंने अपनी कहानियों के दम पर अपनी जगह बनाई थी। तो अब आइए इनके बारे में बात करते हैं। और ये मांटो की गिनती ऐसे साहित्यकारों में की जाती है जिनका कलम ने अपनी वक्त से आगे की बातें, आगे की रचनाएं लिख डाली और जिनकी गहराई को समझने की दुनिया आज भी कोशिश कर रहे। कहानीकार मांटो का जन्म आज ही के दिन 1912 को यानी 11 मई 1912 को पुश्तैनी बैरिस्टरों के परिवार में हुआ। उनके पिता गुलाम हसन नवी बैरिस्टर और सेशन जज थे। उनकी माता का नाम सरदार बेगम था और मांटो उन्हें बीवी जान कहते थे। मांटो बचपन से ही बहुत होशियार और शरारती थे और मांटो ने एंट्रेंस एग्जाम 2 बार फेल होने के बाद पास किया और इसकी वजह उनकी उर्दू में कमजोर होना था। मांटो का विवाह साफिया से हुआ था जिनसे मांटो की 3 पुत्री हुई। उन्हीं दिनों के आसपास मांटो ने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रामेटिक क्लब खोला था और एक नाटक प्रस्तुत करने का इरादा किया था। ये क्लब सिर्फ 15 से 20 दिन रहा था इसलिए कि मांटो के पिता ने एक दिन धावा भूलकर हारमोनियम और तबले सब तोड़ दिए थे और कहा था कि ऐसी वाहियात काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तो क्या, दुकान इनकी बंद हो गई, नाटक कंपनी बंद हो गई। लेकिन मांटो की कहानियों की जो बात आती है, लिखना उनका जारी रहा और पढ़ाई पूरा किया अमृतसर में। उसके बाद 1931 में उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया और उन दिनों पूरे देश में और ख़ासकर अमृतसर में आज़ादी का आंदोलन पूरा उभर कर था। जलियांवाला बाग का नरसंहार 1919 में हो गया था जब मांटो की उम्र कुल 7 साल की थी, लेकिन उनके बाल मन पर उनकी गहरी छाप थी। और फिर जब वो लिखना शुरू कर दिया तो एक कृति उनकी जो है तमाशा, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, इस कृति में उन्होंने या इस जो रचना में उन्होंने जलियांवाला बाग की घटना से निकलकर कहानी तमाशा आई और ये मांटो की पहली कहानी थी। क्रांतिकारी गतिविधियों बराबर चलती रहीं और गली गली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुनते रहे और दूसरे नवजवानों की तरह मांटो की भी चाहत थी कि जुलूस और जलसों में बढ़कर हिस्सा ले और नारे लगाए, लेकिन पिता की सख्त मनाई के कारण मनसोख कर वो रह जाते थे। आखिरकार उनका ये रुझान अदब से मुखातिब हो गया और उन्होंने पहली रचना लिखी तमाशा, जिसमें जलियांवाला नरसंहार को 1-7 साल के बच्चे की नज़र से देखा गया। इसके बाद कुछ और रचनाएं भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के अवसर पर लिखा और 1932 में मांटो के पिता का देहांत हो गया। भगत सिंह को उससे पहले फांसी दी जा चुकी थी और मांटो ने अपने कमरे में पिता के फोटो के नीचे भगत सिंह की मूर्ति रखी और कमरे के बाहर एक तख्ती पर लिखा लाल कमरा। तो इस तरह से उनकी जो अलग अलग हरकतें और उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी। फिर इन्होंने लिखा मैं क्या लिखता हूँ, मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ, तोबा टेक सिंह खोल दो, घाटे का सौदा, हलाल और झटका, खबरदार करामत, बेखबरी का फायदा, पेशकश, इस तरह के तमाम जो है इनकी कुछ कहानियों का संग्रह है जो अलग अलग नामों से उन्होंने लिखे थी। अब धीरे धीरे साहित्य की ओर उनका ज्यादा रुझान बढ़ा और फिर वो साहित्य में बहुत सारे लोगों के साथ मना ऐसे साहित्यकारों की पढ़ने लगे वो, जिसमें विक्टर ह्यूगो, लॉर्ड लिटन, गोर्की, अंतोन चेकव, ऑस्कर वर्ल्ड, मोपासा आदि के पुस्तकों को उन्होंने काफ़ी पढ़ा और फिर अब्दुल बारी की प्रेरणा पर ही उन्होंने विक्टर ह्यूगो के एक ड्रामे द लास्ट डेज ऑफ द कमेंट का उर्दू में अनुवाद किया और फिर सरगुस्ते आशीर शीर्षक से लाहौर में उसको प्रकाशित किया। इस तरह से रचनात्मक कार्यों में जुड़े रहे, कार्य क्षेत्र उनका साहित्य ही रहा और फिर पाकिस्तान की यात्रा उन्होंने की, वहाँ पर उनको कुछ अनुभव हुए वो भी उन्होंने किताबों में दर्ज की और फिर उसके बाद धीरे धीरे मांटो को ये बात समझ में आ रही थी कि क्या सही है और क्या गलत है और उन पर भारत और पाकिस्तान में हुए बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि मांटो को पूरी तरह समझ पाने के लिए 100 साल भी कम है, जो कि उनके मुताबिक शुरुआत में मांटो को दंगे, वारदात और वैश्याओं पर कहानियां लिखने वाला सामान्य व साहित्यकार माना जाता, लेकिन मांटो की कहानियां अपने अंत के साथ खत्म नहीं होती, वे अपने पीछे इंसान को झकझोर देने वाली सच्चाइयां छोड़ जाती हैं, उनकी सपाट बयानी वाली कहानियां फिक्र के आसमान को छू लेती। चलिए ये थी कुछ खास बातें मांटो के बारे में। मांटो के 19 साल के साहित्य जीवनी में 230 कहानियां और 37 रेडियो नाटक और 22 शब्द चित्र और 70 लेख मिले। तमाम जिल्लतें और परेशानियां उठाने के बाद भी 18 जनवरी 1955 में मांटो ने अपनी उन्हीं तेवरों के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी कुछ खास बातें मांटो के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर कार्यक्रम को। और चलिए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This is being heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। SN श्री गणेश के बारे में बात करेंगे और थल सेना के विशेष सेना अध्यक्ष इन्होंने पद संभाला था, तो आइए ऐसे देश सेवा के विशेष व्यक्ति के बारे में जानते हैं। और जिस तरह से हम लोग अलग अलग व्यक्तियों की कहानी सुनते हैं तो मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि एक व्यक्ति कितनी सारी चीज़ें कर सकता है ना। इतने अभाव के बाद भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने कलाओं को, अपने भावनाओं को किसी ना किसी रूप में व्यक्त ज़रूर करता है ना। तो चाहे आप नाटक कंपनी में काम करने के लिए तैयार भी हो, अगर निबंध हो जाता है तो कोई बात नहीं, उस नाटक को आप किताबों में छाप कर लोगों के बीच में तो रख सकते हैं, है ना। तो एक दरवाज़ा अगर आपका बंद हो जाता है किसी कारणवश, तो वहाँ पर नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि आपके लिए कितने और दरवाजे खुल गए हैं। ईश्वर एक बंद करता है तो उसके लिए चार खोल देता, तो उसमें से फिर आप अपने चॉइस के अनुसार उस जगह पर जाइए और अपने आप को उस जगह में साबित करके दिखाई, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और श्री गणेशन के बारे में अब बात करते हैं। और विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक जो कॉलेज हैदराबाद के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हें कुछ समय के लिए, और सेवानिवृत्ति के पास माना आफ्टर रिटायरमेंट के बाद श्रीनिवास श्री गणेश जी को जो है 14 अक्टूबर 1959 से लेकर 12 नवम्बर 1960 तक अलग अलग जगहों पर उन्होंने आसाम के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और फिर बाद में मैसूर के राज्यपाल भी बने रहे। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। और इनका जन्म आज ही के दिन 11 मई 1903 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। इनका पिता डॉक्टर गणेश मल्ला हैदराबाद के निजाम के व्यक्तिगत चिकित्सक थे और बचपन में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। जनरल MS गणेश ने इंग्लैंड में एक पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। ब्रिटेन में सैडहंट मिलिट्री अकेडमी के छात्र भी थे। उन्हें 20 साल की उम्र में ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। समझ सकते हैं आप इनकी जो पढ़ाई और इनकी जो गति

विधियाँ हैं वो इनको इस तरह से कम उम्र में बड़ा पोस्ट संभालने का मौका दिया। अब कानी क्षेत्र की बात करें तो नॉर्थ स्टेफनशायर रेजिमेंट में नियुक्त होने के बाद जल्दी उन्हें बर्मा भेजा गया और फिर वहां पर मद्रास पायनियर्स पोस्ट किया गया। उनकी अगली नियुक्ति हैदराबाद रेजिमेंट में हो गई। फिर श्री गणेश ने सिंगापुर में एक एजुकेट के रूप में काम किया और 1939 में उनकी भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के ट्रेनिंग में का पदभार उन्होंने संभाला और 1939 में आसाम और बर्मा की लड़ाई में उन्होंने 6/19 हैदराबाद रेजिमेंट की कमान संभाली। जनरल एस एम श्री गणेश ने बर्मा में 19वीं भारतीय डिवीजन की 64वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाली। 1945 में उन्हें जर्मनी में भारतीय सैन्य मिशन के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। जर्मनी से लौटने के बाद एस एम श्री गणेश ने जापान में 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेडियर की कमान संभाली। मेजर जनरल के पदोन्नति और उन्होंने मद्रास क्षेत्र में जीओसी का कार्यभार संभाला। 1948 में उन्हें नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। तो अलग अलग पदों पर ये काम करते हुए राष्ट्र को समर्पित 34 वर्षों की सेवा पूरा करने के बाद ये रिटायर हुए और नई दिल्ली में जब ये रहा करते थे तो 1977 को सुबह 27 अक्टूबर को श्री गणेश जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, और ये एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बात करते आइए बात करते हैं शक्ति सिन्हा के बारे में। 1996 और 99 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर काम किया, और वाजपेयी दी ईयर दैट चेंज इंडिया इस शीर्षक पर इन्होंने किताबें लिखी थी। इनका जन्म 11 मई 1957 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ और 1979 में वे IAS अधिकारी बने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वे बहुत ही करीब थे और 98 से 2000 के बीच में उनके निजी सचिव भी रहे। दिल्ली के ऊर्जा सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। रिटायरमेंट के बाद शक्ति सिन्हा कई संस्थाओं में सेवा देते रहे और सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फाउंडेशन के महानिदेशक भी थे। शक्ति सिन्हा के परिवार में उनकी पत्नी सुरभा सिन्हा, बेटी सुहासनी सिन्हा और बेटा कार्तिकेय सिन्हा है। सुरभि सिन्हा रिटायर्ड IRS अधिकारी हैं। शक्ति सिन्हा के पिता शिवाजी सिन्हा देश के पहले बैच के IPS अधिकारी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन के दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के शक्ति सिन्हा निदेशक भी रहे, और इसके अलावा वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज के निदेशक पद पर जिम्मेवारी संभालते रहे, और वो नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक रहे। दैनिक जागरण के हिंदी है हम अभियान में शुरुआती दिनों से जुड़े रहे, लेखन का कार्य भी करते रहे, और लेखन का कार्य करते हुए जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि वाजपेयी द ईयर दैट चेंज इंडिया ये किताब शक्ति सिन्हा ने लिखा, और इससे पहले 2019 में उन्होंने नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तक के सीनियर फेलो हिमांशु राय के साथ मिलकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज ये किताब लिखी थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुरभि सिन्हा, बेटी सुहासनी सिन्हा, ये सारे लोग उनके साथी रहते हैं, और काफ़ी उनको जो है अपने पिता पर नाज है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें शक्ति सिन्हा के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और अपने पूरे परिवार के साथ जब हम रहते हैं और एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। सबके लिए शुभकामना करें और मंगल कामनाएं करें, है ना। आइए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: The official cyber safety awareness initiative by the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. आज का सेशन बैंक अकाउंट मिसयूज और साइबर फ्रॉड्स के एक इम्पोर्टेंट एंगल पर बेस्ड है, जहां हम समझेंगे कैसे लोग अनजाने में मनी म्यूल बन जाते हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री कांबले शरण गोपीनाथ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीक राजस्थान पुलिस, जिन्होंने ऑपरेशन म्यूल हंट के थ्रू एक बड़े नेटवर्क पर एक्शन लिया है। Sir, thank you for joining us today.
3: Thank you.
2: Sir, to start with the first question, Operation Mule Hunt क्या है और इस operation के दौरान क्या major actions लिए गए?
3: Operation Mule Hunt ये राजस्थान पुलिस का state level पर जो mule accounts है और इस तरह से जो भी cyber fraudster इस mule account का use करे उनके खिलाफ एक महीने का पूरा अभियान चलाया था, जिसमें इनके खिलाफ अलग अलग जिलों में है कार्रवाई करी गई है। तो इसी के अभियान के अंतर्गत जो डी पुलिस है, डी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 34 जो एफआईआर्स है इस तरह से जो गिरोह म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए कर रहे हैं उनके खिलाफ किए गए, और साथ में लगभग 103 जो साइबर ठग थे उनको जो है अरेस्ट किया गया और जेल भेजा गया।

0: तो इसमें 4 करोड़ 80 लाख के ऊपर भी जो है वो फंड की जो फ्रॉड फंड की जो राशि थी वो इनके अकाउंट में पाई गई। साथ में ये जो लोग इस तरह से साइबर ठगी कर रहे थे इनके कब्जे से साइबर फ्रॉड का स्कैम फंड का आगे ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जितना उसमें ट्रांजेक्शन होगा जितना उसमें क्रेडिट होगा उसका 2% उनको क्या करते हैं प्रोमिस करते हैं। तो अराउंड टू 1.5 to 2% के अराउंड एक कमीशन देने की बात बोलते हैं। या कोई अकाउंट दे देता है तो एक हफ्ते के हिसाब से उसको उतना पैसा तुझे किराए पे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से तो वहां तो लोगों के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है लालच के लालच को देखकर। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जहां ठग एक्चुअली जिस इलाके में ठग एक्चुअली रहते हैं ज्यादा मात्रा में तो वहां के लोगों के साथ तो विश्वास बहुत बार होता है। जैसे कोई क्यूआर कोड लगा के छोटा सा कोई बिजनेस कर रहा है या कोई उसकी दुकान है तो उसको कॉल करके उसके क्यूआर कोड पे वो पैसा डालेंगे तो उसको पता भी नहीं होता है कि मेरे इस पे इस तरह से जो है वो स्कैम का फंड आ रहा है या फ्रॉड का फंड आ रहा है। तो उसको बोलकर उसको फिर 5-10 हजार देके फिर बाकी वो फंड ले लेंगे। तो इस केस में भी ऐसे केसेस में भी उन्होंने क्या किया उनके साथ जो है वो ठगी करी है। तो बेसिकली मैं यही मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि अनजाने में हम चीजों को थोड़ा अलर्ट होके नहीं देखते हैं, चीजों के बारे में थोड़ा सोचते नहीं है और ज्यादा विश्वास करते हैं और उसकी वजह से जो है हमारे साथ जो है इस तरह से म्यूल अकाउंट के जो है वो फ्रॉड होता है या म्यूल अकाउंट जो लोगों के साथ म्यूल अकाउंट का फ्रॉड होता है। दूसरा वो है कि काफी लोग जो है वो जॉब से रिलेटेड चीजों को सर्च करते हैं या उनके पास कोई इस तरह से मैसेज आता है जिसमें कुछ ऑफर्स होती है या बहुत बार मैसेज को उस तरह से फ्रेम करेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसका इस्तेमाल करके आपको बहुत बड़ी मात्रा में कमीशन भी मिलेगा, आपको बड़ी मात्रा में जो है वो किराया मिलेगा या हम आपका अकाउंट जो है वो लाखों में खरीद लेंगे आप हमें दे दो। तो उसमें फिर जो लोगों को लगता है कि यार घर बैठे पैसा मिल रहा है या इस तरह से जो जरूरतमंद होते हैं तो फिर उसका शिकार होते हैं।
1: सर, जैसे आपने बताया बहुत बार सोशल मीडिया पर ऐसे एड्स और सोशल पोस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें वो सीधे से बोल रहे होते हैं कि उनको अकाउंट्स की जरूरत है जिसके बदले पैसे मिलेंगे, और घर बैठ के काम करना और थोड़े बहुत पैसों परसेंटेज ऑफ मनी के लालच देकर लोग जानन जाने में इस स्कैम में फंस जाते हैं। सर, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या लोग बिना जाने भी साइबर क्राइम का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर हाँ तो ये कैसे होता है?
0: बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपको कहा कि काफी लोग जो है वो इस तरह से इस ठगी का भी शिकार बन रहे, इस म्यूल अकाउंट के संबंध में फ्रॉड का भी शिकार बन रहे। उनको ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट है वो अकाउंट आगे जाकर किसी न किसी साइबर फ्रॉड में यूज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। तो ज्यादातर बार क्या होता है कि किसी वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में किसी कंपनी में जॉब की ऑफर के चक्कर में तो उन्हें वो पीछे वाला जो एंगल है जो साइबर ठगी की राशि है या स्कैम का जो फंड है वो उस तरह से रोटेट करके या जो लॉन्डर कर रहे हैं वो उनके जो है वो नॉलेज में या जहन में चीज नहीं आती है। तो इसको लेकर जो है वो अवेयर कराना बहुत जरूरी है, हर लेवल पे लोगों को ये चीज बतानी जरूरी है कि आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट किसी भी हालत में लोग बाहर ना दें। बहुत बार ये होता है कि आपकी खुद की जो डिटेल है वो आपने खुद के पास होनी चाहिए और उसका खुद का यूज खुद करना चाहिए। तो बहुत बार ये जो डिटेल है वो किसी बहाने में अगर बाहर शेयर कर रहे तो कहीं ना कहीं वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो जो कंपनियां होती है इस तरह से फर्जी जो फर्में होती है या जो फ्रॉडस्टर होती है वो ऑनलाइन बहुत बड़ी विज्ञापन देकर जो एडवर्टाइजमेंट है वो उस तरह से करते हैं। उनको ट्रेंड पता होता है कि किस क्या माहौल चल रहा है, वो चीजों को देखते हैं कि लोग किस में ज्यादा जो है वो उनके ठगी में शिकार होंगे। तो ये हमें देखना होगा कि जो लोग इस तरह से बिना सोचे समझे कुछ लालच के चक्कर में या कुछ अनजान रहते हुए इन लोगों को जो है वो इनका बलि का बकरा बन रहे हैं।
1: सर, ऑपरेशन म्यूल हंट के दौरान पकड़े गए लोगों में क्या कोई कॉमन पैटर्न या बिहेवियर देखने को मिला आपको?
0: जैसे ऑपरेशन म्यूल हंट में ज्यादातर जो अकाउंट्स है वो उन लोगों को पता नहीं था कि उनके जो अकाउंट है वो इस तरह से इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो अलग अलग अनजाने में काफी लोगों ने जो है वो अपने अकाउंट शेयर कर रहे थे। कुछ लोग जो नॉर्मल काम कर रहे हैं उनका इतना डेली का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं होता है, उन लोगों के नाम पर जो है वो अकाउंट निकाले गए हैं। काफी लोगों को मतलब पूछताछ करने के बाद ये भी पता चला कि किसी किसी ने उनके नोन ने उनके गांव में रहने वाले ने किसी छोटे से रुपए के झांसे में उनसे एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाया गया था। बहुत बार कुछ लोगों को इस तरह से कॉल आए कि मेरी छोटी सी राशि है उसको आप निकाल के दे दो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो उस केस में भी उन्होंने जो है वो दे दिया। तो जाने अनजाने में मैं कहूंगा कि ये जो चीज है ये सबको ध्यान में रखनी होगी कि और ज्यादातर जो ट्रेंड देखने को मिला वो सोशल मीडिया थ्रू देखने को मिला। सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े फर्जी विज्ञापन देते हुए और लोगों को जॉब का या नौकरी का झांसा देते हुए, कहीं वर्क फ्रॉम होम का झांसा, और इसी तरह से जो भी लोगों को वो ऑफर कर सकते हैं जो बहुत लुभावना हो, उसके जरिए लोगों के साथ जो है वो ठगी हुई है। और उन्होंने उन लोगों को भी ज्यादा टारगेट किया है जो मतलब उनको पैसे की या जॉब की या इस तरह से जरूरत थी, तो उन लोगों को, गांव के लोगों को भी उन्होंने ज्यादा टारगेट किया है। तो ये देखने वाली चीज है कि लालच में आकर थोड़ा छोटा मोटा पैसा कमाने के चक्कर में जो है काफी लोगों ने अपनी डिटेल शेयर करी है, काफी ने जो है वो अपनी डिटेल ऑनलाइन शेयर करी है, काफी ने जो है वो सीधा जो अपना सिम कार्ड और जो बैंक अकाउंट इस तरह से चीज है वो दे दी है। और बहुत बार ये देखने को मिला है कि उनको उस चीज की ग्रेविटी पता नहीं है। बहुत बार ये चीज देखने को मिली कि उस चीज की उनको ग्रेविटी पता नहीं कि वो अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं या जो भी बैंक अकाउंट्स इस तरह से दे रहे, तो उन चीज की उनको लेकर जो अवेयरनेस थी वो कम थी।
1: सर आई थिंक जैसे आपने बताया, लोगों को पता ही नहीं है कि वो स्कैम का हिस्सा कैसे बन जा रहे हैं। वो लोगों पे भरोसा करके या कुछ बहुत ही कम पैसों के लालच में अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि
0: बिल्कुल
1: ये उनको एक बहुत बड़े स्कैम का हिस्सा बना सकता है। और ये एक्चुअली में एक पनिशेबल ऑफेंस है। किसी को भी अपने अकाउंट डिटेल्स इलीगल एक्टिविटीज के लिए देना एक बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है।
0: बिल्कुल
1: सर हमारे व्यूअर का एक क्वेश्चन आया है, अगर किसी को अपना बैंक अकाउंट मिसयूज होने से बचाना है तो कौन से वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना जरूरी है?
0: देखिए, मैं ये डेफिनेटली कहता हूं कि इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उनकी कितने बैंक अकाउंट्स हैं। सबसे पहले बहुत बार ये देखने को मिला है कि उसका उसके नाम पर कोई एक अकाउंट खुला है। ज्यादातर जो एजुकेटेड यूथ है उनको तो पता होता है कि मेरे कितने अकाउंट हैं, बट उनके जो घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो भी उनके दोस्त है, तो उनमें से ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके नाम पर कोई और एक्स्ट्रा अकाउंट भी खोला गया है। तो सबसे पहले अकाउंट कितने हैं ये सभी को पता होना चाहिए। दूसरा, अपना जो खुद का अकाउंट है वो खुद ही यूज करें, किसी और को यूज ना करने दे, किसी और को जो अपने अकाउंट की जो डिटेल्स है वो शेयर ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऐसा कोई भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है ऑनलाइन जहां वो आपकी डिटेल मांग रहा है और इन ऑर्डर टू सेंड सम मनी, तो वो बिल्कुल शेयर ना करिए। और एक जरूरी चीज है कि सबको पता होना चाहिए कि अकाउंट कमीशन पर या किराए पर या किसी भी तरीके से जो बेच रहे हैं वो पूरा इलीगल है। तो ये इसको लेकर जो है वो अलर्ट होना है, किसी भी हालत में इन चीजों को जो है वो ये नहीं करना है, टॉलरेट भी नहीं करना है, इनको सपोर्ट भी नहीं करना है, उसका हिस्सा भी बनना नहीं है। दूसरा, बहुत बार ये होता है कि कोई कॉल करके आपको बता देगा कि इतनी राशि है निकाल कर दे
1: सर
0: दे। अगर आप उसको जानते हो, आपका दोस्त है, तो ठीक है, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति है जो कॉल कर रहा है और आपको बोल रहा है कि आपके खाते में इतनी राशि आई है और आप निकाल के दे दो, आप इतनी रख लो, या आपका जो अकाउंट है मुझे कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए जो है इसको यूज करना है वो दे दो। और हमेशा मैं कहता हूं कि जो अपना जो ब्रांच है आपकी, उससे हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखें, और जो भी साइबर रिलेटेड चीजों में मतलब अवेयरनेस के रिलेटेड चीजें आ रही है, न्यू अकाउंट के रिलेटेड आ सकती है, कोई और तरह के फ्रॉड आ सकते हैं, और कोई टेक्नोलॉजिकल जो कोई इन्वेंशन होता है उसका इस्तेमाल करके भी जो है वो फ्रॉड करते हैं, तो उसको लेकर हमेशा अलर्ट रहना होगा। सबसे बेस्ट मतलब मैं वे कहता हूँ कि वही है कि जो अपनी डिटेल्स अपने पास रखे और वो जो डिटेल है ऑनलाइन शेयर ना करे, और किसी के कहने पर किसी का पैसा ट्रांसफर करना या किसी का पैसा निकाल कर एटीएम से देना ये ना करिए। बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि जो स्कैम फंड होता है, जो साइबर फ्रॉड से अर्जी मतलब राशि होती है जो ठग कर ली जाती है, या गेमिंग होता है, या बेटिंग होता है, या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, तो उसको फिर ये ट्रेड भी करते हैं विद क्रिप्टो। बहुत बार ये देखा गया है कि जो लोग अपने अकाउंट करंट अकाउंट उनको बेच देते हैं, उनको जो कमीशन मिलता है वो क्रिप्टो में भी मिलता है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई ना कोई अकाउंट मेरा बाहर यूज करेगा, तो मैं कहता हूँ उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है और इसको लेकर अवेयर होना बहुत जरूरी है।
1: सर और अगर किसी का बैंक अकाउंट मिसयूज हो रहा हो या गलती से डिटेल शेयर हो गई हो तो तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
0: देखिए, जैसे ही किसी का अकाउंट कहाँ अगर कहीं इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो अकाउंट है 1930 पे कंप्लेंट की वजह से या रिपोर्टिंग की वजह से जो है वो फ्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है बैंक से भी, मान लो आपका करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में काफी मात्रा में जो है वो आपका फंड फंड आया है, स्कैम का फंड आया, साइबर फ्रॉड का पैसा आया है, तो आपका अकाउंट जो है उसको लेकर ईडीडी होती है, एडवांस ड्यू डिलीजेंस भी होता है, साथ में आपको पुलिस का भी कॉल आ सकता है, उसमें जो फ्रॉड हुआ है उसको लेकर आपके अकाउंट के बारे में पूछताछ हो सकती है। बट ये चीज तभी होगी जब आपका जो अकाउंट है वो कहीं इस्तेमाल हुआ होगा, या आपका जो अकाउंट है कहीं रिपोर्ट हुआ होगा, या फ्रॉड होने के बाद ही आपको पता चलेगी। पर उसके पहले मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि जो अपने नियर बाय बैंक है उसको जाके डेफिनेटली देखे, अपने बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट है डेबिट है वो चीजें भी आप डेफिनेटली देखे, और जो कभी कभी बैंक स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है, बैंक से जाकर आप कोई अलर्ट इस संबंध में आपके बैंक से रिलेटेड आया है कि उसको भी देख सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट कौन यूज कर रहा है इसको लेकर आपको अलर्ट रहना है। अगर आपके अकाउंट की डिटेल इस तरह से कहीं शेयर हो जाती है तो उसके बाद उसमें फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा होती है। अकाउंट को लेकर जो है आपको बहुत बार ये भी होता है कि किसी का सैलरी अकाउंट होता है, वही अकाउंट हर जगह यूज होता है, वो अगर उसका शिकार हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस होता है। बहुत बार जो इस तरह से ठेले लगाकर या छोटी सी दुकान होते जहाँ क्यूआर कोड लगाते हैं, ये एडवाइजेबल है कि वो वाला जो क्यूआर है उनका वो अलग हो, खुद का जो पर्सनल जो अकाउंट है वो अलग हो। तो ऐसी काफी चीजें हैं जिसे लेकर जो है हम अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, डिटेल्स बाहर शेयर करने से बच सकते हैं।
1: सर, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या की मैसेज देना चाहेंगे? लोग अपने बैंक अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए क्या याद रख सकते हैं?
0: देखिए, दोबारा वही मैं दोहराना चाहूंगा कि अपना जो बैंक अकाउंट है उसको लेकर आपको आपकी जो क्रेडेंशियल है बैंकिंग के, हो सकता है उसका नंबर हो सकता है, उसका अकाउंट नंबर हो सकता है, यूपीआई हो सकता है। बहुत बार ये देखने को मिला है कि ये जो फ्रॉडस्टर है वो क्यूआर कोड मांगते हैं आपके जो अकाउंट है, क्योंकि वो क्यूआर कोड फिर किसी प्लेटफॉर्म पर लगाकर लोग फिर उसमें स्कैन करके जो भी ठगी की राशि है वो लेते हैं। तो जो भी आपकी डिटेल है, भले ही वो यूपीआई आईडी हो सकता है, क्यूआर कोड हो सकता है, पासबुक हो सकता है, एटीएम हो सकता है, या इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड काफी चीजें डिटेल्स हो सकती है, तो ये पहले चीजें शेयर करने से लोगों को बचना होगा। दूसरा, छोटे छोटे ट्रिगर होते हैं जहां आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका अकाउंट कोई ना कोई फ्रॉड के लिए मांग रहा है, तो उसमें जैसे ही कोई कमीशन का, किराए का, या पैसे देकर अकाउंट का इस्तेमाल करने की चीज आती है तो उसको लेकर जो अलर्ट रहना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर काफी ऐसे चैनल जो है इस ठगों द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें लोगों से या तो कमीशन पर या किराए पर अकाउंट लेने की बात की जाती है, उनको इनकम देना, घर बैठकर इनकम देने का वादा दिया जाता है, या ऐसी कोई कंपनियां, फर्जी कंपनियां, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाली हो गई, किसी एजेंसी में जॉब देने का हुआ, या किसी कंपनी का बस आपको पैसा आएगा वो आपको आगे ट्रांसफर करना है या निकालना है, तो ये सारी जो चीजें हैं इसको लेकर जो है अलर्ट होना पड़ेगा। अकाउंट का इस्तेमाल आप उनको से जो व्यक्ति है उसको सेफ भी करना है, और उसकी डिटेल जो है वो शेयर करने से भी बचना है। म्यूल अकाउंट क्या है उसको समझना होगा, क्योंकि म्यूल अकाउंट भले ही आप जाने अनजाने में कर रहे हो, कहीं ना कहीं आगे जाके वो साइबर अपराध के लिए यूज हो रहा है, फ्रॉड के लिए जो है वो यूज हो रहा है।
1: सर, बैंक अकाउंट मिसयूज और साइबर फ्रॉड्स पर आपकी गाइडेंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल रही। थैंक यू इस साइबर सेफ लाइफ सेशन का हिस्सा बनने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे साइबर अलर्ट। थैंक यू।

देखते हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूं गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं। मेरी नजरों में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं। बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं। बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं, कोई और कैसे समाऊं मैं।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता है ना, तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट, शेयर इट विद एवरीवन।
2: सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। सबसे पहला सवाल, अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए?
3: देखिए, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम दो पोर्शंस में डिवाइड होता है। एक साइबर क्राइम वो है जिसमें कि आपका पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, जैसे डेफिमेशन है, कोई ट्रॉलिंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका गलत बन गया है या आपके नाम से किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे लोड कर दिया, वो आप डायरेक्टली cybercrime.gov.in जो पोर्टल है हमारा उस पर जाके डायरेक्ट आप कंप्लेन कर दीजिए। एक मैकेनिज्म वो है। एक साइबर क्राइम वो है जिसमें आपका पैसे का लॉस होता है, जिसमें मनी आपका चला जाता है, चाहे वो बैंक फ्रॉड बैंक के थ्रू जाए, चाहे UPI के थ्रू जाए, चाहे किसी मोड में पैसा आपका चला गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहला काम बिना देरी किए, अगर आपको जैसे ही आपको आभास होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो आपको तुरंत उसी समय 1930 याद आना चाहिए और 1930 कॉल करना है। 1930 कॉल करके आपके पास जो डिटेल आपको देनी है, आपको रेडी रखनी है वो डिटेल्स, वो एपी ट्रांजेक्शन डिटेल्स जो आपके SMS के थ्रू आती है या आपके मेल पे आई होंगी जैसे ट्रांजेक्शन हुआ है आपकी, तो वो डिटेल्स रेडी रखनी है आपको, आपका आधार नंबर रेडी रखना है, आपका ID proof रेडी रखना है। तो ये चीजें जैसे ही आप रेडी रखेंगे, आपका अकाउंट नंबर रेडी रखना है, ये सारी चीजें रेडी रखिए और इमीडिएटली 1930 कॉल कर दीजिए, जिससे कि जो सामने ऑपरेटर बैठा है वो आपकी कॉल को एक्सेप्ट कर सके और जो डिटेल उसको चाहिए वो डिटेल फिल कर ले फटाफट। वो डिटेल इन्हीं में से डिटेल आपसे पूछेगा, जितना जल्दी डिटेल कन्वे करेंगे आपका टिकट वो क्या करेगा, जो पोर्टल है पोर्टल के बैकएंड पे एक पोर्टल और है जिसको CFC फार्मर्स बोलते हैं, जिसमें इंडिया के 1400 बैंक्स जो है, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर्स बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सबको इंक्लूड किया हुआ है, एक ही छत के नीचे सब बैठते हैं और पोर्टल से इंटीग्रेटेड है सारे के साथ। तो नॉर्मल विजिबिलिटी आपको सिर्फ दिखेगी कि आपके बैंक से दूसरे बैंक में चला गया, लेकिन आपको नहीं पता कि उससे आगे कहां गया है, लेकिन वो हमको दिखता है, वो मेरे CFC फार्मर्स को दिखता है। जैसे ही आपने रिपोर्ट किया 1930 पे, वो टिकट रेज होता है ऑटोमेटिकली आपके बैंक को, जिस जहां पे आपका बैंक है वो बैंक इमीडिएट आपकी डिटेल फिल करता है वहां पे और उसको नेक्स्ट बैंक पे जहां पैसा गया ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे जैसे पैसा जाता रहेगा वैसे वैसे टिकट पीछे पीछे चलती रहेगी, जब तक वो टिकट पैसा विड्रॉल नहीं हुआ कहीं से। अगर बीच में कहीं भी पैसा मिलता है किसी भी बैंक को तो होल्ड पे डाल देता है या लेन डाल देता है। तो अगर आपने डिले कर दिया है रिपोर्टिंग करने में तो विड्रॉल करके लेके चला जाए। और विड्रॉल करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें कैश विड्रॉल भी कर सकता है, एटीएम से विड्रॉल भी कर सकता है, कुछ परचेज कर सकता है, कुछ सामान ले सकता है। ऐसे केसेस में आपको जितनी जल्दी उतनी रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपने रिपोर्टिंग टाइमली कर दिया, गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, गोल्डन मिनट्स के कॉन्सेप्ट में आ गए क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत स्पीड से जा रही है। एआई बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ऐसे केसेस में स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा है तो आपको भी स्पीड बनानी है अपनी। हमने नोटिस किया है कि जो जिसमें पैसे का लॉस होता है साइबर क्राइम्स में, उसमें डिले ऑफ रिपोर्टिंग होता है। तो डिले ऑफ रिपोर्टिंग की वजह से पैसा निकल जाता है आपका। 60-70% पैसा जब तक रिपोर्टिंग होती है उससे पहले जा चुका होता है सिस्टम से बाहर, तो हमारे पास रोकने का ऑप्शन बहुत कम रह जाता है। तो उस केस में हम जब तक आप रिपोर्ट फाइलिंग करते हैं, टिकट एस्केलेशन बैंक को जाता है और वहां से रिकॉर्ड अपडेट होता है जब तक आपका पैसा और निकल चुका होता है। तो बेस्ट जो सॉल्यूशन बताया गया कि इमीडिएटली जैसे आपको अपनी डिटेल रेडी रखिए, डिटेल रेडी करने के बाद जैसे ही कॉल करेंगे ऑपरेटर को, ऑपरेटर को तुरंत आप डिटेल्स बताइए। दूसरा तरीका है, मान लो किसी वजह से कॉल्स बहुत ज्यादा है स्टेट्स के अंदर, आप बड़े सिटी में रहते हैं, वहां कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 193 जो बिजी चल रहा है, क्योंकि एक कॉल्स को निपटाने में ऑपरेटर को काफी टाइम लगता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन ढूंढना है कॉल्स जहां आप रहते हैं, आप इमीडिएटली पहुंचेंगे वहां पे। तो जो पोर्टल 1930 के पास है वो पोर्टल साइबर पुलिस स्टेशन के पास भी एक्सेस है, तो आप इमीडिएटली वो वहां से कंप्लेंट लॉज करिए और उसको जो पुलिस ऑफिसर बैठे हैं वहां पर उनको बोले पुश की दीजिए। तो जैसे ही पुश करें आप बैंक में जाएंगे। लोग क्या करते हैं, 1930 अगर कंप्लेंट नहीं मिल रही है किसी वजह से, अगर कॉल नहीं मिल रहा है वहां पे, तो वो लोग वेट करते हैं उसका बहुत लंबे समय तक, वो क्या होता है पैसा निकल जाता है। ऐसे में क्या करना, अगर मान लो 1930 भी नहीं मिल रहा है और आप पुलिस स्टेशन भी नहीं पहुंच सकते हैं और डिले हो सकने के चांसेस हैं, तो अगर आपको कॉन्टैक्ट्स पता है साइबर पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन के, जो आपके डिस्टेंस भी हो सकता है, उस दूरी पे भी हो सकता है, कोशिश करें जाएं वहां पे। और किसी वजह से अगर नहीं भी फिर भी बात बन रही है, तो आप पोर्टल पे जो cybercrime.gov.in पोर्टल है उसके ऊपर आप कंप्लेंट लॉन्च करें इमीडिएटली, या फिर हमारा जो ऐप है आईफोसी का ऐप है, इसका एनसीआरपी ऐप जो है, उसके ऊपर आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। चार मैकेनिज्म है, किसी में आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइम एसेंस है, जितनी जल्दी रिपोर्टिंग होगा उतना पैसा आपका ज्यादा रुकने के चांसेस है। ये मैकेनिज्म पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज में है, एक इंडिया में है, एक यूएस में, एक ऑस्ट्रेलिया में है। तो तीनों कंट्री जो है सबसे ज्यादा रोकने में फ्रॉड सक्सेसफुल है। तो हमारे यहाँ पैसा रोकने में सबसे बेस्ट मैकेनिज्म हमारे पास है कि अगर कुछ भी होता है किसी के साथ, पैसा लॉस होता है, तो सबसे पहले 1930 पे जाना, क्योंकि आपकी ट्रेल वहीं बनेगी, सारे बैंक्स को वहीं दिखेगा जहां जहां पैसा जा रहा है, और उसके बाद ही आप कार्रवाई कर सकते हो, उससे पहले कार्रवाई नहीं हो सकती। तो पुलिस को भी नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखाई देगा, वो केवल बैंक के उस पोर्टल को दिखता है। तो जितना जल्दी आप रिपोर्टिंग करेंगे उतना पैसा आपका बस्ता चला जाएगा।
2: सर, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए कौन सा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और विक्टिम अपनी कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं?
3: दो ही मैं जैसे बताया, एक है ऑनलाइन पोर्टल cybercrime.gov.in, उसके ऊपर आप नॉन फाइनेंशियल कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल भी कर सकते हैं। फिर एक 1930 कॉलिंग के लिए, सपोज करो किसी को ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना नहीं आता है, तो 1930 कॉल कर सकते हैं किसी मोबाइल फोन से, जहां भी वो खड़ा है, किसी भी स्टेट में कहीं भी खड़े हैं आप, 1930 कॉल करेंगे, डायरेक्टली वो लैंड होगी पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर, जो हमारा पोर्टल का जो कॉल सेंटर बनाया गया है, हर स्टेट के अंदर कॉल सेंटर बनाया गया है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करके बैठाया गया, वो कॉल अटेंड करते हैं। तो आप दो मैकेनिज्म आपके पास है, फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाता तो ऐप है हमारी एनसीआरपी ऐप जो है, हमारी इस पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, उसी की उस पर भी जाके कर सकते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वहां भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ये दोनों चारों तरीके हैं। आपने सोचा कंप्लेंट हो गया और आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल कंप्लेंट दर्ज कर दी है और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके मैसेज पे आ गया है और वो एक्नॉलेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपकी कंप्लेंट अभी बैंक के पास नहीं पहुंची। अगर आपकी कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब बैंक में चला गया है, बैंक के पास डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई है। अगर आपकी कंप्लेंट पोर्टल पे लॉन्च की है आपने और पैसे का लॉस हुआ है और उसका डिजिट 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी बैंक में नहीं पहुंचा है। उसके लिए आपको साइबर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा इमीडिएटली और जो कंसर्न्ड ऑफिसर बैठे उनको बोलना पड़ेगा मैंने कंप्लेंट लॉन्च की थी, मेरी ये कंप्लेंट बैंक बकेट को पुश कर दीजिए। उसके पास ऑप्शन होता है, उसको दिखेगी कंप्लेंट, वो पुश कर देगा तो बैंक में चली जाएगी। अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो आपका पैसा नहीं रुकेगा।
2: ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है
3: क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैंने कंप्लेंट कर दी है तो चली गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। स्टेट कंप्लेंट वही जाती है जो 1930 कॉल सेंटर के थ्रू जाती है, नहीं तो स्टेट कंप्लेंट नहीं जाएगी। वो कंप्लेंट पोर्टल के थ्रू जाएगी, पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे जाती है, उसके बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन को मार्क होती है और वो कंप्लेंट उसके बाद वो देखे कब देखेगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना लोड है उसके ऊपर, कितनी कंप्लेंट्स आई है पुलिस स्टेशन पे वो देखता है। तो बेटर है कि अगर आपने कंप्लेंट पोर्टल पे लॉन्च किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर कंप्लेंट नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो आप तुरंत भागे और नियर साइबर पुलिस स्टेशन जाए, उसको बोले मेरी कंप्लेंट पुश। जैसे वो बैंक में जाएगी ट्रेल चालू हो जाएगा, अगर बैंक के पास नहीं पहुंचा है टिकट तो फिर एक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे ही ये एक्शन स्टार्ट होता है, जिस भी बैंक के पास पैसा है अगर वो पैसा निकला नहीं है तो पैसा निकलता कैसे, चेक से निकल सकता है, एटीएम से विड्रॉल हो सकता है, कोई सामान परचेज किया जा सकता है या दूसरे कंट्री में एटीएम से विड्रॉल हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी परचेज किया जा सकता है, कोई कूपन परचेज किया जा सकता है, कोई सामान परचेज किया जा सकता है। अगर आपने सामान पर उसने सामान परचेज कर लिया क्राइम प्रोसीड से तो डिलीवरी रोकी जा सकती है। हमारे पास सारे डिलीवरी एजेंट्स हमारे पास ऑनबोर्डेड है, सारे के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे पास ऑनबोर्डेड हमारे पोर्टल पे। तो अगर हमें लगता है किसी लेवल पे हम इंटरफेयर कर सकते हैं और सामान हम डिलीवरी रोक देते हैं तो आपका सामान जैसे ही वापस आएगा पैसा वापस आएगा। तो अगर किसी वजह से मान लो उसने एटीएम से विड्रॉल नहीं किया है तो हम होल्ड पे डाल देंगे, कैश विड्रॉल नहीं किया होल्ड पे डाल देंगे, वो पैसा आपका सेफ है, आपको मैसेज मिलेगा कितना पैसा आपका होल्ड हो गया है, उस पैसे को आप क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए
2: सर, हम भी विक्टिम्स को सबसे ज्यादा यही इन्फॉर्म करते हैं कि जब तक सिस्टम में पैसा है हम इमीडिएटली एक्शन लेके उसको रोक सकते हैं।
3: यस,
2: तो टाइमली रिपोर्टिंग इज ऑफ एसेंस,
3: बिल्कुल एसेंस है।
2: सो फ्रीज होने के बाद मनी

0: कंप्लेंट फाइल की है, पहले उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि जी मेरा ये पैसा होल्ड पे था, क्या इतना ही पैसा होल्ड पे है और भी है। नंबर दो, उनसे ये पूछना है कि सर इस जो इस बैंक अकाउंट में जिसमें पैसा होल्ड पे है इसके अगेंस्ट में और कितनी कंप्लेंट है। कुछ लोगों ने कंप्लेंट करते कि जी मैंने ऑर्डर कराया था और ये मेरा पैसा था, ये पैसा चला गया है। वो चला इसलिए गया है कि आपसे पहले भी उसको किसी ने अपनी कंप्लेंट में होल्ड पर रखा हुआ था उतना पैसा, और आपका पैसा उसमें मर्ज हो गया जाके, इसलिए आपको नहीं मिल पाता है। तो आपको ये मालूम करना है अपने आईओ से कि मेरे अकाउंट में जिसमें पैसा होल्ड पे है उसमें पहले कितनी कंप्लेंट है। अगर केवल आपकी ही कंप्लेंट है तो आप अपनी ब्रांच में जाके हमारा मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल जो है उसमें आप रिकवरी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बैंक आपकी ईडीडी करेगा, आपका स्टेटमेंट वेरीफाई करेगा, जस्टिफिकेशन चेक करेगा, उसको भी दिखता है बैंक को, उसके पास मॉड्यूल में दिखता है कि इस अकाउंट के अगेंस्ट में कितनी कंप्लेंट है, वो चेक करेगा, चेक करने के बाद आपकी कंप्लेंट को रेज करेगा। वो ग्रीवेंस जैसे ही रेज होगी वो सीधी आईओ के पास जाती है, पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास जिस भी कंसर्न पुलिस स्टेशन को बिलोंग करती है ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी वहां पे। वो आईओ जस्टिफिकेशन रेडी करता है, रेडी करके चेक करता है, अगर आपकी सिंगल कंप्लेंट है तो इमीडिएटली आपसे आप जैसी कंप्लेंट लॉज होती है एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते का समय बैंक के पास होता है और बैंक के बाद 15 दिन का समय आईओ के पास होता है। तो आईओ का पहला काम क्या होता है कि जैसे उसके पास रिक्वेस्ट जाती है कि मेरा पैसा होल्ड पे है, मुझे रिलीज किया जाए, वो क्या करेगा, जिसके खाते में पैसा होल्ड पे है वो थर्ड पार्टी है
1: जी।
0: तो थर्ड पार्टी से पूछे बिना, आप उसको इंटीमेशन दिए बिना आप उसको रिलीज नहीं कर सकते। अब वो किसका खाता है वो देखना पड़ेगा। तो आईओ क्या करता है, अपनी 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करता है, उसको मैसेज भेजा कि ये पैसा होल्ड पे है और क्राइम का मनी था, आप इसको आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और जस्टिफिकेशन दें अपना। तो वो या तो वो आदमी आएगा और नहीं आएगा तो अपनी रिप्लाई देगा, और नहीं रिप्लाई देगा तो 15 दिन का समय उसको दिया गया है। तो इस 15 दिन में आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगा। अगर उसको लगता है कि जस्टिफिकेशन आ गया है और उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑर्डर कर सकता है रिलीज के, आपको रिलीज ऑर्डर वो बैंक को रिलीज कर देगा, बैंक से पैसा आपके खाते में चला जाएगा। और आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा एक आईओ कि जब भी इस पैसे की इन्वेस्टिगेशन आ सकता है कि आप उसको वापस करना, तो पैसा आपको मिल जाएगा। 50,000 से नीचे किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है, अगर 50,000 से ऊपर है तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाएंगे आईओ के द्वारा पैसा रिलीज करने के लिए, सारे के सारे ये इनकी इंटीमेशन कोर्ट को जाती है। उस पुलिस स्टेशन का जो भी कोर्ट होगा, ज्यूडिशियल कोर्ट, उसको इंटीमेशन जाएगी और डॉक्यूमेंट वहां डिपॉजिट होगा। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कभी कोर्ट करना चाहे तो आपको बुला के पूछ सकता है। ये प्रोसेस ही है। अगर आपके खाते में जिसमें पैसा आपका होल्ड पे है उसमें शिकायतें एक से ज्यादा हैं, ये था आपकी अकेले की शिकायत है जहां पे पूलिंग हो गया पैसे का, उसके लिए हमने प्रिंसिपल डिसाइड करके रखा हुआ, उस प्रिंसिपल को हमने इसकी एसओपी की भी कॉपी ऑलरेडी सभी पुलिस स्टेशन को दे दी है और सभी बैंक को दे दी है। तो मान लो अगर उसमें एक से ज्यादा पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व है और अलग अलग स्टेट्स हैं, तो जैसे ही आप वहां से रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं तो बैंक को दिखाई देगा कि कौन कौन से पुलिस स्टेशन इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी कंसर्न पुलिस स्टेशन को टिकट जाता है और वो अपना अपना जस्टिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं कि ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है। जब ये सेटलमेंट हो जाएगा सबके बीच में कि किसका पैसा कितना है और कंसेंसस बन जाएगा, तब उतना पैसा आपके खाते में ऑर्डर किया जाएगा, बैंक उसको रिलीज करेगा। अगर कंसेंसस नहीं बनता है किसी की वजह से तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और वो आप कानून के हिसाब से अपने पैसे को रिलीज करा सकते हैं। ये तरीका है। दो तरीके से पैसा आता है। एक कंप्लेंट आता है, मान लो सपोज करो आपका बैंक खाता है और किसी कहीं से क्राइम का पैसा कोई आ रहा है, और किसी क्राइम के पैसे में से आपके खाते में कोई पैसा आ गया, आपको पता नहीं क्राइम का पैसा किसी लेयर में आ गया है और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया या आपके अकाउंट में होल्ड लग गया है, तो उसके उसमें तो फिर आपके लिए क्या होगा कि वो आपका अकाउंट बंद हो गया, आपकी सर्विसेज बंद हो गई है सारी की सारी। तो ऐसे केस में क्या करना है, ग्रीवांस रिड्रेशन मॉड्यूल जो है, मैंने पहले बताया ना मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, वो पैसे वापिस करने के लिए है, वो विक्टिम के लिए है। यहाँ पे आप विक्टिम बने हैं लेकिन क्राइम प्रोसीड की वजह से बने हैं, तो आपको क्या करना है, ग्रीवांस रिड्रेशन मॉड्यूल GRM बोलते हैं इसको, बैंक में जाना है, अपने कंसर्न बैंक में जहां भी आपका खाता है उस बैंक को बताएंगे कि इस वजह से मेरा खाता फ्रीज हुआ है और ये होल्ड लगा है और मेरी कंप्लेंट अब इसमें रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, ईडीडी करेगा, पूछेगा, वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा और GRM मॉड्यूल पर रिक्वेस्ट रेज

0: वो जीआरएम पे देखकर स्टेज करेगा, या फिर आप कंसर्न अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, उस साइबर पुलिस स्टेशन को बोलेंगे कि मुझे अपनी रिक्वेस्ट रेज करनी है, आप मुझे डायरेक्शन दीजिए, वो आपको समझाएंगे करना क्या है। तो जैसी आपकी रिक्वेस्ट रेज होगी कंसर्न पुलिस स्टेशन को जाएगी, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन देखेगा कि ये इंटेंशन जेन्युइन है या नहीं है, ये आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है कि नहीं है, उसके बाद अपनी जस्टिफिकेशन पोर्टल पे देता है 15 दिन के अंदर। फिर वो जस्टिफिकेशन कंप्लीट आ जाएगी, अगर आईओ सेटिस्फाइड है तो ही कैन रिलीज हिज मनी और उसका अकाउंट अनफ्रीज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं आदमी इन्वॉल्व है तो उसमें लिख देता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जस्टिफिकेशन इज नॉट क्लियर, तो फिर क्या होगा कि उस केस में आप अपील भी कर सकते हैं। अपील के लिए कहां जाना पड़ेगा, आपको हर पुलिस स्टेशन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है एक एसपी रैंक है, एडिशनल एसपी रैंक के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रैंक, वो इसको हैंडल करते हैं आपकी अपील को, वो देखते हैं कि जो अपील आपकी 30 दिन में फाइल कर सकते हैं, तो 30 दिन के अंदर आपने फाइल कर दिया, आपकी रिक्वेस्ट को देखेंगे, अगर वो लगता है कि आईओ ने जस्टिफाई नहीं किया है तो वो भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर करा सकते हैं। ये दो तरीके हैं।
1: सर आई थिंक काफी सिस्टमैटिक प्रोसेस अब हमने अपने सिटीजंस को दिया है, ताकि वो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है आपकी जानकारी के लिए, आपके फॉलो करें और इस हिसाब से अपने रिकवरी के चांसेस इंक्रीज करें। सर जैसे आपने एक्सप्लेन किया रिकवरी के चांसेस बढ़ाने के लिए विक्टिम को तुरंत कौन से क्रिटिकल स्टेप्स लेने चाहिए?
0: सबसे पहला कि मैंने शुरू में ही चार बताया था कि एक तो डिटेल्स जो आपको मिले हैं, जो ट्रांजेक्शन डिटेल एसएमएस आपको मिला है वो रेडी रखना है आपको, आपका आधार रेडी रखना है, 1930 कॉलिंग इमीडिएट होनी चाहिए आपको, फिर हमारे साइबर दोस्त को फॉलो करते रहें जिसपे कि हमारे लेटेस्ट क्राइम्स रिपोर्ट की हम एडवाइजरी इशू करते हैं, जिससे आप पता लग सकता है कि लेटेस्ट क्राइम कौन कौन से हो रहे हैं, ताकि आप बच भी सकते हैं। अगर पैसा रोकने का इमीडिएट, मैंने जैसे पहले बताया 1930 द बेस्ट पॉसिबल वे, वो सबसे पहला आपको फॉलो करना।
1: सर हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया है, अगर कंप्लेन करने में डिले हो जाए या प्रोसेस में किसी तरह की दिक्कत आए तो ऐसे सिचुएशन में विक्टिम को क्या करना चाहिए?
0: कंप्लेन करने में डिले आया तो मैंने सबसे पहले बताया कि नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन तुरंत पहुंच जाए यार
1: जी,
0: उनके पास एक्सेस है कंप्लेन पोर्टल का, दे विल मेक कंप्लेंट्स और उसको पुश कर देंगे तुरंत, दे विल टेक केयर।
1: सर आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे साइबर फ्रॉड से बचने और टाइमली रिपोर्टिंग के लिए, उन्हें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए?
0: देखिए सबसे जरूरी है, सबसे पहला तो हमारे साइबर दोस्त के हैंडल्स को फॉलो कीजिए ट्रेंड्स के लिए, फिर आप जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं इस पे जो भी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही है आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे। नंबर वन प्रिंसिपल है आपका लाइफ का, अगर आपने इनको फॉलो इनके ट्रेंड्स को और जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको बिना वेरीफाई के एक्सेप्ट कर लिया तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप में आएंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसी ऑफर आपके लिए, जॉब की ऑफर, किसी पैसे की ऑफर, किसी और काइंड की ऑफर आपको मिल रही है, स्कीम्स की ऑफर मिल रही है, इन्वेस्टमेंट्स की ऑफर मिल रही है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप में, 100% ट्रैप में। गवर्नमेंट किसी भी व्हाट्सएप पोर्टल के ऊपर कोई स्कीम लॉन्च नहीं करती है, पब्लिकली लॉन्च करती है, जो लॉन्च करती है और बकायदा टीवीज और न्यूज़पेपर के थ्रू भी चलता है सर। हमारे या गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं, उसके आरबीआई से चेक कर सकते हैं, अपने बैंक से चेक कर सकते हैं स्कीम्स होंगी, या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो उनके, वो भी अपने यहाँ स्कीम्स के उनके पूरी लिस्ट होती है, उसपे चेक कर सकते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया के बेसिस पे स्कीम्स को एक्सेप्ट कर लिया और इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई किए उस पर एक्शन ले लिया या उसमें फॉलो कर लिया ट्रैप को, या किसी अननेसेसरी ग्रुप में आप एंटर कर गए जहां पे आपको 20 आदमी उनके मिलेंगे, 2 आदमी बाहर के ट्रैप के लिए मिलेंगे, तो आप फंसेंगे उसके अंदर, आप विक्टिम बनेंगे उसके फ्रॉड के। और स्पेशली डिस्टर्बेंस के केसेस में हमने देखा है, अभी भी केसेस बहुत रिपोर्ट, जिसके भी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं आप उनको अच्छे से आप ब्रीफ कीजिए कि कोई भी इंडियन नंबर से कोई कॉल आती है, पहली बात तो जो नंबर्स आपके फैमिली के नंबर्स हैं, जो उनके नोन नंबर्स हैं, सबको फीड करके रखिए उनके नंबर्स, अननोन नंबर से कोई भी कॉल एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दीजिए उनको। अगर उसके बावजूद भी कोई कहता है कि आपका पार्सल आया था जो हमने इसमें ड्रग्स में मिला है, या टेररिज्म के केस में मिला है, या आपका आधार यहां फंस गया है, या आपके नाम से सिम कार्ड इश्यू हो गया है, कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाता है और उसके बाद आपको वीडियो कॉल करने के लिए बोलता है, तो आप अलर्ट हो जाएं तुरंत, ये कॉल डिस्टर्बेंस की कॉल है, तो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। अगर किसी वजह से आप ट्रैप में आ गए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कॉल को डिस्कनेक्ट करें और इमीडिएटली कंप्लेंट कर दें साइबर पुलिस पोर्टल के ऊपर या नियरेस्ट 1930 पे कॉल कर दीजिए। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि लोग इन्फ्लुएंस में आके तीन तीन चार चार दिन जिस तरह रेस्ट में रहते हैं 15 दिन तक रहते हैं और बैंक में जाके FDs को कन्वर्ट कराते हैं और पैसे लॉन्च करते हैं। हमने रियल टाइम इंटरवेंशन किए हैं, लोगों को बचाया है पैसे से, हमने पैसा भी होल्ड पे रखा है उनका। तो आप इस तरह के ट्रैप में ना, इंडियन नंबर्स जो भी आपके कॉल पे आ रहे हैं जिसको कि आपके फोन बुक में सेव नहीं है, आप अलर्ट रहिए कि कुछ गड़बड़ है। आपका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, आपको जो कॉल कर रहा है उसकी इंटेंशन, आपको नंबर्स पता है कि मेरे अपलोड नंबर्स कौन कौन से हैं, जो भी जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है ये आप जरूर फॉलो करें उनको, जो अकेले रहते हैं खासकर जिनके सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं उनको जरूर फॉलो करना है। और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम में सोशल मीडिया के बेसिस पे आपको बिल्कुल भी ट्रैप में नहीं आना है। पूरा फ्लडेड है सोशल मीडिया इस समय, गूगल पूरा पूरा, व्हाट्सएप, मेटा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स खूब धड़ल्ले से लॉन्च की जा रही हैं। आप बिल्कुल
2: आप हबरेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तेरे होने का एहसास क्यों है। इस खूबसूरत गीत के साथ साथ मैं मोना और
1: रूहानी
0: हम दोनों साथी लेकर आ गए आज की उड़ान। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं सोमवार की शाम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है आज रूहानी। हम लेकर आएंगे प्यारी सी कहानी, कौन सी, घर का भेदी लंका ढाए। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा आज भी सवाल जिसका जवाब देंगे, नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: प्यारी सी कविता होगी और साथ ही साथ आपसे कुछ बातचीत भी। तो चलिए अमेजिंग जानकारी के साथ शुरू जरूर करेंगे। आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है जो 11 मई को विशेष मनाया जाता है। इस पर ढेर सारी बातें होंगी, हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा,
1: सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।

0: ला ला ला ला ला, एक दिन बिक जाएगा। चलिए आज है राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत में हर वर्ष 11 मई को विशेष रूप से इसे मनाया जाता है। भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के दौरान दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था, और वो भी पोखरण में, और वो भी आज ही के दिन में। और वो भी आज ही के दिन इसीलिए इसे एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है, और इसीलिए विशेष ये दिन खास मनाया जाता है। पोखरण जो है, पोखरण की जो कहानी है वो भारत की एक सफलता की कहानी है। पोखरण के इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत के प्रति पूरी दुनिया का रवैया दूसरा हुआ। हाँ, उस दौरान भारत को काफ़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी भारत झुका नहीं। उस परीक्षण के बाद भारत के प्रति दृष्टि दूसरों की बदलने लगी, और आज भारत एक ताकतवर देश बनकर उभर के सभी के समक्ष खड़ा है। आज भारत को विश्व गुरु भी माना जा रहा है। भारत की जो डिसीजंस है उस पर महत्व दिया जाता है। तो चलिए, ये 11 मई विशेष दिन है हम सब के लिए। एक गाना भी वैसा सुनाने वाले, लेकिन आज की एक और प्यारी कविता आपके लिए। उससे पहले आज का सवाल पूछ लेते हैं, सवाल के बाद इस कविता को सुनाएंगे। गौरी नंदन किस देवता को कहा जाता है, या उनका दूसरा नाम है गौरी नंदन? किस देवता का नाम है गौरी नंदन, या उनको किन्हें कहा जाता है? ए, इंद्र देव को कहा जाता है। बी, हनुमान जी को कहा जाता है। या फिर सी, गणेश जी को कहा जाता है गौरी नंदन। एक कविता आप तक पहुंचा देते हैं। गौरा ने बनाई थी आकृति लेकर हल्दी और चंदन का उपटन, जीवन प्रदान किया था उसमें, बन गए थे वो गौरा नंदन।
1: माता का आदेश मानकर वह बन गए थे उनके द्वारा पार, शिव को भी रोक दिया था द्वार पर, शिव के लिए था यह बड़ा सवाल।
0: क्रोध में आ गए थे शिव स्वयं भी, हार गए बालक को समझाकर, धड़ से अलग किया था सर, दूर पड़ा था वह जाकर।
1: स्नान ध्यान कर जब लौटी गौरा, देखा पुत्र का सर विच्छेद हुआ, क्रोधित होकर बोली शिव से, मेरे पुत्र को तुमने यह क्या किया?
0: पुत्र व्यथा से पीड़ित गौरा को शिव जी ने पहले शांत किया, शिशु गज का शीश लगाकर गौरी नंदन को जीवन दान दिया।
1: विवाद हुआ था देवताओं में, पहले होगी किसकी पूजा, निराकरण हेतु शिव जी ने भी सभी को पृथ्वी की परिक्रमा करने भेजा।
0: पूरी करके परिक्रमा पृथ्वी की, जो भी पहुंचेगा यहाँ प्रथम, होगा वही प्रथम पूजनीय, सबको देते हैं आश्वासन हम।
1: चल पड़े थे सभी अपने वाहन से, करने पूरी परिक्रमा पृथ्वी की, गौरी नंदन ने मूषक पर सवार हो परिक्रमा करने की विशेष युक्ति की।
0: माँ पिता से बढ़कर को नहीं कोई, दूजा सृष्टि उनको ही मान लिया, पूरी करके परिक्रमा माँ पिता की, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया।
1: प्रसन्न हुए थे जग के पालक, पुत्र की युक्ति का गुणगान किया, गौरा सुत की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो उन्हें प्रथम पूज्य का मान दिया।
0: हर शुभ कार्य में गौरी नंदन सर्वप्रथम ही पूजे जाते, विघ्न हरण मंगल करण है जो, वही प्रथमेश कहलाते, वही प्रथमेश कहलाते। चलिए बात कर रहे हैं आज के सवाल से जुड़ी, और आज के सवाल के साथ जुड़ा ये गीत भी, नहीं सवाल के साथ जुड़ा नहीं, बल्कि प्रौद्योगिक, एक्चुअली राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिन है उससे जुड़ा ये गीत आपके लिए।

0: मैं हूं सुशील।
1: यस सर, आज का पासपोर्ट क्या है?
2: लग जा गले के तेरे हंसी रात होना।
1: चलिए साहब,

0: वेल दोस्तों, जोश में कर चले। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ हमारी रूहानी भी कुछ लेकर आई है, साखियां कबीर के।
1: मान सरोवर सुभर जल हंसा केले कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जाहे। इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य मानसरोवर रूपी दुनिया को ही अपना एकमात्र साधन समझकर अपने मोह माया में उसमें उलझा रहता है और कहीं पे भी इस दुनिया से बाहर जाकर परमात्मा में ध्यान नहीं लगाना चाहता है, उसी प्रकार इस साखी में हंस जो है वो अपने मानसरोवर में ही मोती रूपी फल चुगकर उसी में रहते हैं।
0: ओके दोस्तों, इस साखी को सुनने के बाद एक और, लेकिन उससे पहले आज का सवाल दोहरा देते हैं। गौरी नंदन कौन से देवता का नाम था? आपके सामने ऑप्शन है ए इंद्रदेव का, बी हनुमान जी का, सी गणेश जी का। सही जवाब जरूर देना। नंबर है हमारा
1: 9414151415 पर देना।
0: और एक और साखी आपके लिए,
1: हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग हमारी। इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी दलीचा डालकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और पूरा संसार है जो वो श्वान रूप से बताया, जो हमें अगर टोके भी तो भी हमें रुकना नहीं चाहिए कभी।
0: बिल्कुल। और गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम उड़ान में, सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो।

0: शिक्षक हैं, छात्रों को आलस से काटने की शिक्षा देते हैं, फिर भी खुद बहुत ज्यादा आलस करते हैं।
1: अरे बाप रे, अरे अरे अरे अरे रुको रुको, चल चल चल चल, जल्दी से घर पहुंचा दे मुझे, जल्दी से। अरे अरे अरे अरे, अरे रुक जा रुक जा, कमर दर्द होने लगी मेरी।
2: साहब जी, मेरे किराए के पैसे।
3: मेरे जैसे मास्टर जी तेरी रिक्शा में बैठे हैं, तो तुझे गर्व होना चाहिए समझा, और उसके बदले तू मुझसे किराया मांग रहा है।
0: ये इंसान केवल आलसी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंजूस था, अकेले रहते थे इसीलिए घर के बगीचे की सफाई करना, घर की सफाई करना, बाजार जाने की बात दिमाग में आते ही सीधे खड़े हो जाते, कंजूसी की वजह से कभी नौकर नहीं रखते थे, ऐसे ही चल रहा था, केवल पैसे जमा करते थे।

0: लेकिन एक घटना की वजह से अनिमेश बाबू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सुबह सुबह सोशल साइट स्क्रॉल करते करते उन्होंने एक अजीब एडवर्टीजमेंट देखा, भूत.com। यहाँ भूत मिलेंगे किराए पर, 24 घंटे सर्विस, घर के काम से लेकर शत्रु दमन सब मिलेगा एक क्लिक पर, आज ही बुक कीजिए।
1: एक बार ट्राई कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है, कम से कम बगीचे की गंदगी, छत पर जमा हुआ पानी और अगर पूरा घर साफ करवाया जाए तो। लेकिन अगर पैसे लग गए तो पहले ये ऐप तो डाउनलोड करके देखता हूँ।
0: अनिमेश बाबू ने ऐप डाउनलोड किया और एक मीडियम साइज के भूत को लॉक कर दिया, और वो जिस बात पर सबसे ज्यादा खुश थे वो थी भूत का रिमनरेशन। पैसे नहीं देने होंगे, हर दिन 10 प्लेट बासी सड़ा हुआ खाना।
1: होटल में तो बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, वही खाना उठाकर लाऊंगा तो काम हो जाएगा, बिना पैसे के सर्विस मिल जाएगी। चलो अच्छा है, 2 दिन का वक्त है, इसी बीच मुझे सड़े हुए खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा।

0: खाने का इंतजाम करते ही भूत.com से भूत बुक कर लिया उन्होंने।
1: नमस्कार साहब जी, मैं हूँ आपका 24 घंटे का किराए का भूत। ऐप में मेरा कोड है भूत09। क्या सेवा करूँ मैं?
0: अनिश बाबू थोड़ा सा घबरा गए, पर खुद को संभाल कर उन्होंने,
2: अच्छा सुन सुन सुन, मेरे बगीचे में काफी घास फूस उग गए हैं, उन सबको अच्छे से काट कर पूरा बगीचा साफ कर दे। हाँ,
0: ये सुनकर भूत ने सर खजाते हुए बोला,
1: साहब मैं तो जीता जागता भूत हूँ, मैं कैंची से घास काटूंगा तो स्टेटस में प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकिए, जरा भूतिया शक्ति लगाऊं क्या मैं इसमें?
0: अनिमेश बाबू कुछ कहते उससे पहले ही भूत ने दोनों हाथ लंबे करके घुमाए

0: सिर्फ उगे ही नहीं वो बातें भी करने लगे। रास्ते से कोई गुजरता तो चिल्ला चिल्ला कर कहते,
1: भाई साहब सुनिए, पता है इस अनिमेश ने कंजूसी करके लॉकर में कितने पैसे जमा किए हैं? इस घर में एक बार तो डकैती होनी ही चाहिए।
2: अरे अरे, आखिर चल क्या रहा है? हाँ
3: भाई साहब सुनिए, पता है ये अनिमेश कितना आलसी है, कोई काम नहीं करता है। ओ भाई साहब,
2: बदतमीज भूत, ये तूने क्या किया? अरे ये कैक्टस तो अपना कांटा मुझे ही चुभा रहा है, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। अच्छा ये बातें लोगों को पता चली तो मेरा मान सम्मान नहीं बचेगा। अरे अरे,
0: भूत के सॉरी कहने पर भी अनिमेश बाबू का मूड तो बिगड़ ही चुका था, पर अच्छा खाना तो चाहिए था उन्हें। दोपहर को अनिमेश बाबू ने सोचा कि भूत से खाना बनवाएंगे, इसीलिए आदेश दिया।
2: सुन, आज अच्छे से चिकन करी और चावल बना, कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया मैंने।
4: ओके सर।
0: अनिमेश बाबू खाने के इंतजार में थे तब भूत ने एक मिनट में टेबल पर खाना।
2: और ये चिकन करी में क्या, कि तुझे कोई देख ना पाए, समझ गया?

अनिमेश बाबू के कहे अनुसार भूत अदृश्य होकर ही बाजार चला गया, पर उसने जो कांड किया वो बड़ा ही खतरनाक था। मछली की दुकान के पास से गुजरते ही सड़ी मछली की खुशबू से तरोताजा हो गया भूत का मन और खुद को रोक नहीं पाया।

0: राजस। एक राज्य में देवशक्ति नाम का राजा राज करता था।
1: एक बार उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया और सांप ने राजकुमार के पेट में ही अपना बिल बना लिया।
0: पेट में सांप के रहने के कारण राजकुमार का स्वास्थ्य खराब होने लगा और उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर भी होने लगा।
1: राजा ने बड़े बड़े वैद्यों से उसका इलाज करवाया, परंतु उसमें कोई सुधार ही नहीं आया।
0: राजकुमार की ये हालत राजा और रानी से देखी ना जा रही थी। वे बड़े उदास थे। अपने माता पिता को वो इस तरह उदास देखकर
1: निराश और परेशान होकर राजकुमार अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चला गया और वहाँ एक मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगा।
0: उस राज्य का राजा बाली था। राजा बाली की दो पुत्रियां थी। उनमें से एक पुत्री राजा से वही बातें कहती जो राजा को अच्छी लगती, जबकि दूसरी पुत्री
1: राजा से सच बात कहती थी। दूसरी पुत्री की बातें राजा को अच्छी नहीं लगती थी।
0: एक बार अपनी दूसरी पुत्री से वो क्रोधित हो गए और राजा ने मंत्री से कहा, इसका विवाह ना किसी गरीब परदेसी से कर दो, जिससे ये अपने कर्मों का फल चख ले।
1: मंत्री ने राजा की आज्ञा मानते हुए उस राजकुमारी का विवाह मंदिर में भिखारी के रूप में रह रहे उस राजकुमार से कर दिया
0: और एक सांप के बिल के पास सो गया। और अच्छा, राजकुमारी ने अब उसे पति के रूप में स्वीकार किया और दोनों राज्य छोड़कर कहीं और चले गए।
1: दोनों एक तालाब के किनारे रहने लगे। एक दिन राजकुमारी जरूरी सामान लेकर बाहर गई थी और जब वह वापस लौटी तो उसने देखा
0: राजकुमार एक सांप के बिल के पास सो रहे और सांप राजकुमार के मुंह से झांक भी रहा और दूसरा सांप अपने बिल से बाहर फन फैलाए बैठा है। दोनों सांपों की बात चल रही थी।
1: राजकुमारी चुपचाप दोनों सांपों की बात सुनने लगी। बाहर वाला सांप पेट वाले सांप से बोला,
0: अरे दुष्ट, तुम इतनी सुंदर राजकुमार के पेट में रहकर अपना जीवन उसका जीवन क्यों खराब कर रहे हो।
1: पेट वाला सांप बोला, तू भी तो ऐसे बिल में रह रहा है जिसमें स्वर्ण कलश है, तू भी तो उसे दूषित कर रहा है।
0: बाहर वाला सांप पेट वाले सांप से बोला, तो तुझे क्या लगता है, तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को मालूम नहीं? कोई भी राजकुमार को उबली हुई राई की कांजी पिलाकर तुझे बड़ी आसानी से मार सकता है।
1: पेट वाला सांप बोला, कोई भी तेरे बिल में गरम तेल डालकर तुझे भी मार सकता है।
0: बस ये बात राजकुमारी ने सुन ली और दोनों के भेद जान गए।
1: राजकुमारी ने सांपों के द्वारा बतलाए गए उपायों से दोनों सांपों को मार दिया।
0: कुछ ही दिनों में राजकुमार का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और दोनों सांपों के बिल से स्वर्ण कलश भी निकल आया। स्वर्ण कलश पाकर दोनों की
1: दरिद्रता दूर हो गई
0: और कुछ दिनों में सुखपूर्वक काटने के बाद दोनों राजकुमार के देश चले गए। राजकुमार के माता पिता दोनों को देखकर बहुत खुश और प्रजा ने
1: प्रसन्नता पूर्वक दोनों का स्वागत किया।
0: इस प्रकार सभी आनंद पूर्वक रहने लगे और कहा यही गया,
1: इस कहानी से शिक्षा मिलती है, घर के भेदी लंका ढाए।
0: जी हाँ, दोनों सांपों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। काया धोली मन कब धोगे।

0: सुबह उठकर काया तो धोली, मन को कब धोएगा। अपने श्रेष्ठ कर्मों से मन को भी आप धो सकते हैं और उस मन में श्रेष्ठ संकल्पों को आप प्रस्फुटित कर सकते हैं। सवाल आज का, गौरी नंदन किस देवता को कहा जाता है? ए इंद्र जी, बी हनुमान जी, सी
1: गणेश जी।
0: सही जवाब जरूर दीजिए।
1: 9414151515
0: पर दीजिए। सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए
0: और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और उड़ान में।
2: ये है नशे की कहानी।
3: पहला नशा, पहला खुमार,
2: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
3: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
2: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए।
2: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: वेल दोस्तों, आज के सवाल का जवाब भी आपको जरूर देती हूँ। गौरी नंदन जो है वो किन्हें कहा जाता है, कौन से देवता को विशेष कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन हमने रखा था, ए इंद्रदेव, बी हनुमान जी, सी गणेश जी। किसी भी साथियों का कॉल जो मैं और रूहानी विशेष याद कर रहे थे नहीं आया। हमारे सुभाष जी भी काफ़ी दिनों से हमसे संपर्क नहीं साधे, न ही हमारे सुरेश जी जुटाना से। तो आप सभी का इंतज़ार रहता है, आप सभी के कॉल का भी हम सबको इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लाइव शो सुन रहे हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। तो चलिए जवाब भी दे देती हूं। गौरी नंदन न तो इंद्रदेव को न ही जय वीर हनुमान को कहा जाता है, बल्कि गौरी नंदन श्री गणेश जी को ही कहा जाता है। चलिए, ऐसा कहते हुए हमारे साथी ने ज़रूर कॉल कर दिया, खुशी हुई। बात भी कर लेते हैं। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार सुरेश जी, कैसे हो?
5: सुरेश जी नहीं, ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ, अलीगढ़ यूपी।
4: अच्छा, सॉरी, अलीगढ़ यूपी से। वाह, आपका क्या बात है, बड़े दूर दराज से हमारे पास कॉल है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे कॉल करने के लिए। सर बताइए, कैसा कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है?
5: बढ़िया लग रहा है कार्यक्रम, हम तो डेली सुनते हैं।
4: वाओ, खुशी हुई हमसे जुड़ने के लिए। सर आज के सवाल का क्या जवाब देंगे आप?
5: श्री गणेश।
4: चलिए, आपको भी शुक्रिया। और आज पहली बार आपसे रूबरू बात हुई, इसीलिए आपको भी इसी श्री गणेश आपने कर ही दिया अलीगढ़ से हमें कॉल करके। थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप। चलिए दोस्तों, हमारे बीच श्रोतागण थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आगे बढ़ते हैं और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, उड़ान से सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल, ये अपना भाषा है क्योंकि आदिवासी भाषा है। तो हमें बहुत खुशी होता है जब गांव और अंचल में जाते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय का गतिविधि सब तक पहुंचे, इस कोशिश को लेकर जब रेडियो मधुबन गांव-गांव ढाणी ढाणी और गली गली शहर शहर में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी बहुत कुछ मिलता है और सभी का बढ़ चढ़ कर हिस्सा भाग लेते तो हमें खुशी मिलता है। तो इस कार्यक्रम को आज सजाने के लिए हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रांगण में जो पीएम पार्क है, दादी प्रकाशमणि पार्क, तो उसी में आज बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी उपस्थित है। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए। आज थोड़ा दूर से सभी जो आए तो उनको भी एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आसपास क्या गतिविधि हो रहा है, खासकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या गतिविधि वो आज आप तक पहुँचाएंगे। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ बहुत सारे भाई बहन उपस्थित है। तो पहले शुरुआत करते हैं, हमारा भाई साहब उपस्थित है तो आपको स्वागत है रेडियो मधुबन परिवार की ओर से और खासकर हमारा ग्रामवासियों की तरफ से, अंचल वासियों की तरफ से। आपका परिचय प्लीज।
1: मेरे शरीर का नाम विपुल है और ऐसे मेरा जो गांव है उसका नाम कंथारिया गांव है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं सूरत में हूँ, वहाँ मेरा अपना बिजनेस है और मैं लास्ट 36 साल से ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और ये राजयोग का अभ्यास मैं कर रहा हूँ अपने जीवन में।
0: राजयोग क्यों आवश्यक पड़ा आपका जीवन में, और हमारे जो ग्रामवासी सुन रहे अंचलवासी सुन रहे उनके लिए राजयोग कितना आवश्यकता है, उनका जीवन शैली में क्या परिवर्तन, जैसे आप अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या आपका परिवर्तन हुआ ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद?
1: ईश्वरीय ज्ञान से और खास करके जो यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर एक मन की सच्ची शांति जो आज हर एक चाहते हैं। आज देखते हैं कि हर एक के जीवन में इतनी कंपटीशन है, कंपैरिजन है और इतना फास्ट लाइफ है कि जीवन के अंदर टेंशन, तनाव, डिप्रेशन और बीमारियां वो बढ़ती जा रही है और मेन इसका कारण है मेंटल। हाँ, तो हमने देखा कि राजयोग से हमारा जो जीवन के अंदर हम रिलैक्स रहते हैं और हम संतुष्ट, हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज है, गुण है, हाँ, जैसे संतुष्टता है, मधुरता है, हर्षित मुक्ता है, सहनशीलता है, ये सब दिव्य गुण भी हमारे जीवन में आते हैं। तो परिस्थितियाँ तो आती है, हर एक के जीवन में आती है, गांव में रहे, शहर में रहे, परिस्थितियाँ तो आती है, लेकिन उसको हम सहज भाव से कैसे उसको हम सामना करें, तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो समझने की शक्ति भी आती है, सहन शक्ति भी आती है और हर एक के साथ हम कैसे एडजस्ट करें। हाँ, जैसे कंपनी में काम करते हैं 10 है 15 है, हाँ, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे है, तो हर एक को हम कैसे चलाए, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। तो इसलिए हमारा जीवन एकदम इजी सरल रीति से चलता है।
0: विपुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल भाई के लिए ताली बजा जोर से। सुंदर प्रस्तुति दिए और सूरत से और गुजराती होते हुए भी आज पूरा हमारा जो आसपास गांव के जो श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि आबू रोड जो है राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर में है, तो और एक हमारा साथ कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको भी स्वागत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम?
2: ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है भिखू भाई।
0: अच्छा,
2: मैं ज्ञान में 14 साल से हूँ और मेरा गाँव है भावनगर। ठीक है, मेरा वैसे जॉब है, सरकारी कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और उसमें आप सब जानते हो कि कितना सारा काम रहता है। आज की जो परिस्थिति है, तनाव ज़्यादा बढ़ता है, जो कुछ भी है, तो उसमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से सेल्फ रियलाइज आप नहीं करोगे तब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए फिर मुझे ऐसा संकल्प हुआ, बाबा से मिला, बाबा का ज्ञान लिया और आज इतनी सारी खराब परिस्थिति है, जैसे कोरोना अभी पास हुआ फिर भी मैं निश्चय और निश्चिंत था, तो उसी वजह से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप सबको कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा की याद में रहो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय में जो गतिविधि हो रही, जैसे आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खासकर सूरज भावनगर से हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भाई बंधु आए हैं, तो उनको भी आज सम्मान मिल रहा है, उनका आवाज़ भी आज दूर दूर तक पहुंच रहा है, ये हमारे लिए खुशी है। हमेशा तो गांव और अंचल का आवाज़ हम सुनाते थे, लेकिन आज थोड़ा हट के कुछ नया आध्यात्मिक ज्ञान जो कि हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है और जीवन परिवर्तन करने के लिए राज्यों कितना आवश्यकता हम भलीभांति अनुभव करते हैं और आप लोग भी जानते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आज जब रेडियो मधुबन खासकर पीएम पार्क में पहुंचे, यहां के जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत आगंतुक आते हैं, ब्रह्मा कुमारी भाई बहन, अपने जीवन को सरस सुंदर सहूलियत बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक बहन को हम माइक देते हैं, वो भी कुछ बात बताएंगे। क्योंकि बहुत समय हो गया कि गीत हो जाए, गीत ना हो, और हमारा श्रोता मित्र को खुशी मनोरंजन कराने के लिए गुजराती गीत हो चाहे हिंदी गीत, जो आपको पसंद है।
1: मेरा शरीर का नाम वर्षा बेन है और मैं सूरत से रहने वाली हूँ। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसाराणा, ओ हंसाराणा, तो चुगले चुगले राजयोग का मोती, तू चुगले चुगले राजयोग का मोती।

0: दी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है?
0: मारा शरीर नु नाम खुशाली छे। हूँ 6 महीना थी आध्यात्मिक માં જોડાયેલી છું અને મને ખૂબ જ સારો એવો અનુભવ થયો છે અને ખૂબ જ આ જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી ખૂબ જ શાંતિ, કઈ પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે રહેવું અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું કઈ રીતે સોલ્યુશન કરવું, હસતા મુખેથી આપણે બધી જ પરિસ્થિતિનો કઈ રીતે સામનો કરવો એના એ માટેનું ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન મને આમાંથી મળે છે, જેથી તમે પણ જોડાઈ શકો અને તમે તમારી પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન કઈ રીતે લાવી શકો એના માટે જોડાઈ શકો ખૂબ જ। હું ફિઝિયોથેરાપી કસરતમાં પાર્ટ નિભાવું છું। મેં મારું સ્ટડી એમાં કમ્પ્લીટ કરેલું છે અને હું અત્યારે બધા જ બીમાર લોકોની સેવા કરી રહી છું।
1: સુનો સુનો, ઓર રાજયોગ આપ તો શીખતી હૈ તો રાજયોગ સે આપકો ક્યા ફાયદા હુઈ?
0: રાજયોગ સે મુજે બહુત ફાયદા હુઆ હૈ। કોઈ ભી પ્રોબ્લેમ્સ આતે હૈ તો ઉસે કિસ તરહ સોલ્યુશન લાના ઓર કોઈ ભી પરિસ્થિતિ મેં કેસે હમે સામના કરના ચાહીએ હસતે હુએ ઓર ઇસ તરહ આગે બઢતી।
1: બહુત બહુત ધન્યવાદ। નામ કા સાથ
2: તાલી બજા ભાઈ જોર સે।
1: क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति और हमें बहुत खुशी है। सबका भागीदारी देखने को मिलता है, छोटे बच्चे से बड़े तक। तो गांव और अंचल में इस तरह भावना को लेकर जब पहुंचते हैं, राजयोग सीखते हैं, तो राजयोग तो एक जीवन जीने की कला सिखाती है और राजयोग सीखना चाहिए। राजयोग से ही परमात्मा का और आत्मा का ज्ञान मिलता है और जैसे बहन अभी बता रही थे, राजयोग से उनका जीवन में सुंदर सरस और उनका एम्बिशन में जो लक्ष्य रखे वो लक्ष्य को पार करने में अति सहज हो जाएगी और ये हमारा सुभावना है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ और एक बहन है तो वो भी अपना परिचय देंगे। आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। खासकर आप यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, क्यों आए और आपका लक्ष्य क्या है और क्या लेकर जाएंगे, कितना दिन हुआ यहाँ पर?
3: मेरा नाम स्नेहल है, मैं सूरत से अम्बा तलावड़ी सेंटर से आई हूँ। मैं यहाँ 5 दिवस ने योग पट्टी माँ शांतिवन में आई हूँ। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे ऐसा अनुभव यहाँ हुआ कि कोई खुशी का पार नहीं है। मेरे मन की सब प्रॉब्लम दूर हो गई और मुझे इतनी शांति मिली कि मेरा जीवन का सब कुछ दुख था वो समाप्त हो गया और सभी समस्या का हल हो गया। और यहाँ इतना सुंदर परिचय दिया जाता है, मेरा नाम શરીર કા નામ તો સ્નેહલ પણ યહાં આત્મા કા જ્ઞાન દિયા જાતા હૈ ઓર મેં એક આત્મા હું એસા પાઠ ભણાયા જાતા હૈ ઓર આત્મા સે પરમાત્મા સે યોગ કેસે લગાએ ઓર પરમાત્મા સે મિલન કેસે કરે એ બહુત અચ્છી અનુભૂતિ કરાતે હૈ ઓર અનુભૂતિ હો હી જાતી હૈ આસાન સે કોઈ દેર નહીં લગતી। ઓમ શાંતિ।
4: ઓમ શાંતિ।
1: તો શ્રોતા મિત્ર ગ્રામવાસી સુન રહે થે, અનુભવ હી અનુભવ સુના પાયેગી। બહુત સુંદર રૂપમાં આપનો અનુભવ। 2-4 दिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, राजयोग सीखने के लिए परमात्मा से शक्ति लगते हैं, क्योंकि सबका जीवन में परमात्मा का शक्ति आवश्यकता है। तो रेडियो मधुबन कार्यक्रम में आज श्रोता मित्र सुन रहे हैं जो हट के राजयोग के बारे में, आध्यात्मिकता हमारा जीवन में कितना आवश्यकता, भक्ति पूजा आस्था विश्वास सभी करते हैं, उसका साथ साथ जब हम खुद को देखेंगे, खुद को जानेंगे और जब अंदर में झांकेंगे तो खुद को बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा, क्योंकि ज्ञान पवित्रता शांति सुख प्रेम शक्ति सबका जीवन में आवश्यकता है, इनका बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हमारा श्रोता मित्र भलीभांति जानते हैं और इस तरह से समझ जाते होंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें और एक भाई साहब है तो नाम बताइए।
5: ओम शांति। शरीर नो नाम अमित है। राजयोग ना ज्ञान द्वारा जीवन में जो परिवर्तनों जोया है એ વિશ્વાસ ન થઈ શકે એટલા બધા જબરદસ્ત છે। જીવનનું કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, ચાહે સામાજિક જીવન છે, પારિવારિક જીવન છે, કે તમારા કોઈ કમર્શિયલ વિષયનું કોઈ પણ ફિલ્ડનું પરિવર્તન જીવનમાં આવે છે, અનબિલીવેબલ છે, માન્ય ન કરી શકાય એટલું બધું પરિવર્તન આવે છે। ઓમ શાંતિ।
1: ધન્યવાદ। કેટલા સુંદર પ્રસ્તુતિ ઓર ઇસકા સાથ સાથ क्या कहना चाहेंगे? व्यसन मुक्त जब सही जानकारियाँ होता है, क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, शुद्ध भोजन का साथ साथ हमारा जीवन में जो नशा, नारायण नशा होना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, तो नशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
5: नशा के बारे में ज़्यादा तो मैं, हाँ, नाश की तो जड़ है ही, मगर नशा के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं मेरा बता सकता हूँ कि मैं तंबाकू का इतना आदि था, तंबाकू छूट गया है, उसका आगे मैं और लोगों का मैं नहीं बचा सकता भाई कि मेरा हो गया है, मेरा तंबाकू छूट गया है। और नशा जो उसके बाद जो नशा बनता है और वो जो ज्ञान का नशा ही बनता है, शिव बाबा का नशा बनता है, ब्रह्मा बाबा का नशा बनता है, उससे बड़ा कोई नशा है ही नहीं। ओम शांति।
1: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी, खासकर नशा नाश की जड़ है, नशा क्यों करते हैं और जब आदि हो जाता है, हबी हो जाता है, हैबिट में आ जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत में तो थोड़ा स्लो पॉइजन जैसे, लेकिन जो भी नशा कर रहे हैं इस रेडियो मंच का माध्यम से नशा छोड़े और अपना गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए राजयोग ही एक सशक्त अस्त्र है जो कारगर साबित होता है। और अनुभव आधार से सभी लोग बताते हैं जे राजयोग का माध्यम से मैं अपना जीवन को नशा मुक्त बनाए, जैसे हमारा भाई साहब अभी अपना राज्य का माध्यम से नशा मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गीत हो जाए, एक गुजराती गीत, क्योंकि बहुत समय से विषय पर चर्चा कर रहे नशा मुक्ति जीवन को सरल बनाने में, लेकिन एक गीत हो जाए तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, गुजराती गीत के लिए इंतजार कर रहे हैं हमारा श्रोता मित्र। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पीएम पार्क में। बहुत सारा हमारा भाई बहन आए हैं ब्रह्मा कुमारी दूर से आते के लिए, राज्य को सीखने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ सुंदर बनाने के लिए। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा दीदी जी उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी, तो अपना परिचय खुद देंगे। दीदी आप अपना परिचय दीजिए पहले।
2: इस शरीर का नाम सावित्री है और 42 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और बहुत बड़ों की बाप दादा की भी पालना ली है, मधुबन की भी ली है, पांडव भवन की भी ली है, बाबा से वरदान भी पाए हुए हैं और 20 साल से सेंटर पर समर्पित रूप में रह रही हूँ। तो अभी मैं अपने हाथ से बनाया हुआ जो गरबा है गरबा गाऊँगी गुजराती में।

0: ओम शांति।
1: ताली बजा दीदी के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इतने सुंदर प्रस्तुति दिए। हमारा श्रोता मित्र आज तो झूम गए होंगे मधुबन रेडियो में और मधुबन का ही गीत। चलो मधुबन मैंने जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, रेडियो मधुबन में मधुबन का ही महिमा हो रही है, क्योंकि जो मधुबन है परमात्मा का कर्तव्य भूमि है, दिव्य भूमि है और देवी देवता का वासस्थान कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत में मधुबन है और मधुबन आने के लिए सब तरसते हैं, पूरा विश्व का ये मधुबन है, सभी लोग आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीदी जी को, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए और जैसे सभी को पूरा मधुबन गीत सुनते सुनते सब मधुबन आ गए जो नहीं आए साकार में, आप तो आ गए मधुबन, जो नहीं आए हैं जो रेडियो का माध्यम से सुन रहे हैं वो भी अपना भावना को लेकर पहुंच जाते हैं और खुशी लगता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक अब तो पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आज खासकर गुजराती और हिंदी मिक्स आपको सुनने को मिल रहा है और इसका पहले हमारा दीदी लोग भाई लोग ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपना आवाज सुनाए, कोई अनुभव सुनाया, कोई गीत गाए, लेकिन छोटी सी मासूम दोनों तोतली तोतली आवाज में सुनाएंगे और वो भी गुजराती में, है ना? तो नाम बताइए।
4: रोशनी।
3: अच्छा, पूरा रोशनी करेगा। तुम्हारा नाम?
4: सुहानी। सुहानी।
3: अरे रोशनी और सुहानी को वेलकम करते हैं आज का कार्यक्रम में। छोटे से बच्चे हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारी है और ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं और घर में मम्मी चलती तो मम्मी को देखकर बच्चे भी आ जाते, टोली खाते हैं और बाबा का बोली भी सुनते हैं। तो गीत गाएंगे कुछ? हाँ, अनुभव सुनाएंगे। और शिव बाबा को जानते हैं आप?
4: हाँ जी।
3: कितना साल से शिव बाबा को जानते?
4: बस 9 साल से।
3: और आपका?
4: 9 महीने से।
3: 9 महीने से। 9 महीने से। और उनका उम्र अभी 11 साल होगा, है कि नहीं? 7th क्लास। मधुबन आकर आपको बाबा का घर कैसे लगा?
4: हमें बाबा का घर इतना अच्छा लगा कि यहाँ आके बहुत शांति मिले मुझे। जितना घर पे अच्छा नहीं लगता था इतना इधर अच्छा लगता है।
3: अपने मम्मी पापा है, यहाँ पर कौन है तुम्हारा?
4: यहाँ मेरा बाप है।
3: इसी बाबा है, है? और तुमको क्या लगा?
4: अच्छा लगा इधर आकर।
3: और घर में कौन कौन ज्ञान में चलते शिव बाबा को जानते?
4: पापा, मम्मी और मेरी बहन और मैं।
3: पहले बार आई?
4: हाँ।
3: कैसा लगा बाबा घर स्वागत? किस लगा
4: जी?
3: खाना पीना ठीक से मिल रहा? ब्रह्मा भोजन?
4: हाँ।
3: मिल रहा टोली?
4: मुझे बाबा की टोली एक गोली के तरह लगती है।
3: बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे हमारा जो श्रोता सुन रहे हैं?
4: हाँ जी, हम अपने जीवन का अनुभव सुनाएंगे, हम कैसे ब्राह्मण जीवन में हमारा जन्म हुआ। हम लोग मम्मा के दिन पे घर पे थे, मम्मी ने बोला कि आज मम्मा का दिन है तो ब्रह्मा कुमारी इसमें टोली रहेगी, माना प्रसाद होगा। तो पूरा दिन बारिश हुआ, फिर हमने शाम को बारिश बंद हुआ, हमारी बहन जी यानी कि मौसी की लड़की के साथ हम लोग सेंटर पे गए। फिर दीदी ने टोली खिलाई और बोले कि कल से आना शुरू कर दो। तो हमने दूसरे दिन से चालू कर दिया जाना। और फिर मेरी धारणा कैसे चालू हुई कि मेरी दीदी थी इतनी पक्की धारणा करते हैं कि उनके पास से मैंने सीखा है धारणा करना।
3: धारणा क्या होता है?
4: धारणा माना अन्न शुद्धि नियम।
3: अन्न शुद्धि क्या है?
4: लहसुन प्याज नहीं खाना और बाहर का चीज नहीं खाना, ये सब मेरी दीदी ने सिखाया था, मेरी टीना दीदी थी।
3: आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? चलो बहुत अच्छा। ज्ञान अच्छा लगता है
4: जी?
3: क्या अच्छा लगता है? ज्ञान सुनाओ तो। श्री बाबा का एक मूल्य का पॉइंट सुनाओ।
4: मन मना भव।
3: अरे वाह, मन मना भव, जो कि गीता का सार है, मन मना भव मध्याजी भव, है ना? मन में परमात्मा को जब याद करेंगे तो मध्याजी में विष्णु जैसे बन पाएंगे, लक्ष्मी जैसे बन पाएंगे, है कि नहीं? सत्य जी में लक्ष्मी बनेगी ना नारायण बनेगी?
4: लक्ष्मी।
3: तुम क्या बोले? नारायण।
4: हाँ जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। चले, और कुछ बोलना है?
4: हाँ, हम रोज मुरली सुनते हैं, हमारी मम्मी जाती है इसीलिए, और मुझे अपने कलोदरा सेंटर की दीदी बहुत अच्छी लगती है।
3: मम्मी का नाम तो बताओ।
4: मनीषा बहन।
3: बहन हो गया मम्मी ने? बहन, वाह, इसको कहते पक्का धारणा वाले, मम्मी को भी बहन बना दिया, है कि नहीं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, है ना? संस्था में जब आते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। अच्छा।

0: आज भिन्न भिन्न आवाज को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक ही आवाज तो हमेशा सुनते थे, लेकिन आज सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन को पवित्र रहकर श्रेष्ठ बनाते हैं, उनका आवाज आप तक पहुंच रहा है। और ये परमात्मा का देन है, परमात्मा का हम सब संतान आत्मा है। तो और एक आत्मा वो अपना आवाज को सुनाएगी गुजराती में, तो क्या नाम है?
1: नाथी बेन।
0: अभी गुजराती में है, चलो शुरू करिए।
1: उतारो यार तीज भगवान के।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

संगीत की दुनिया के दोस्तों, मुस्कुराहटों के राही और रेडियो मधुबन के प्यारे श्रोताओं, आप सभी को मेरा यानी केवल का प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आज सोमवार है, हफ्ता नया है और उम्मीदों का सूरज भी ताज़ा है। कहता है ना, जिंदगी एक आईना है, अगर आप इसे देखकर मुस्कुराएंगे तो ये भी आपको देखकर मुस्कुराएगी। इसलिए मंडे ब्लूज को कीजिए बाय बाय, क्योंकि अगले एक घंटे हम साथ मिलकर सजाएंगे यादों की महफिल, जहां होंगे सिर्फ खुशी के नगमे और दिल की बातें। वैसे दोस्तों, लोग कहते हैं कि मंडे बहुत हैवी होता है, पर सच बताओ, हैवी तो सिर्फ वो पराठा होता है जो हमें नाश्ते में खाया है। तो चलिए उस पराठे की एनर्जी को संगीत में बदलते हैं और शुरू करते हैं आज का सफर। आज मेरे पिटारे में गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जो आपके दिल को, धड़कनों को थोड़ा और तेज। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त केवल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए पहला गाना सुनते हैं आपके लिए।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

यस दोस्तों, अभी हमने जो गाना सुना, कभी कभी कुछ पुराने गाने सुनकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो पर पैरों ने रुकने से इनकार कर दिया हो, है ना। आज मेरे हाथ एक ऐसा ही गाना लगा था। अभी जो भी हमने गाना सुना, आज हम ट्विस्ट करें या शेयर करें या जर्क करें या हौली हौली हम, है ना दोस्तों। मतलब देख रहे हो, 60s के दौर में डांस सिर्फ डांस नहीं होता था,

पूरी एक्सरसाइज की लिस्ट होती थी। देख लीजिए, आपने अभी सुने ही है गाने। पहली लाइन है, लवली लवली है समा। बिल्कुल सही बात है, जब मौसम सुहाना हो तो मन तो मचलना लाजमी है, लेकिन असली मज़ा तो अगली लाइन्स में है। सिंगर पूछ रही है कि आज करना क्या है। वो पुराना ज़माना जब लोग ऐसे घूमते थे जैसे किसी ने इनविजिबल रस्सी से बांध दिया हो, जिसे आजकल के बच्चे वाइब करना कहते हैं। जो हम शेक्स की बात करते हैं, शेक करना है या जो भी हम करना है उसकी बात हो रही है। तब ये वाला स्टेप तो आजकल के जिम में ज़्यादा दिखता है, पर उस ज़माने में ये डांस फ्लोर की जान थी। और सबसे प्यारी बात ये थी कि ये जो गाने में एक जो बोलते हैं, या होले होले हम नाचे गाए धूम मचाए हम, यानी चाहे आप एनर्जेटिक डांस करो या बिल्कुल धीरे धीरे होले होले ठिरको, मकसद सिर्फ एक है, धूम मचाना। जिंदगी भी तो ऐसी ही है, कभी ट्विस्ट आता है, कभी हालात हमें थोड़ा शेक कर देते हैं, पर अगर हम गाते नाचते रहे तो हर समय लवली हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये अभी बहुत ही प्यारी सी धुन अभी हमने सुनी है, और अभी जो वक्त है ये है हमारी आज की पहली का। थोड़ा सा हम दिमाग को दौड़ाते हैं, तो तैयार है दोस्तों? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको जवाब देना है, मुझे हमें कॉल करना है। कॉल करने के लिए आपको पता है क्या करना है, नंबर डायल कीजिए 9414151415। चलिए सवाल पूछते हैं हम आपसे, वो क्या है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है लेकिन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। जी फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ सवाल, वो क्या है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है लेकिन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो जल्दी से फ़ोन उठाए, हमें कॉल कीजिए 9414151415 पर। दोस्तों कल दिन बहुत खास था, चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंजी थी, वो था माँ। कल दुनिया भर ने मदर्स डे मनाया, किसी ने केक काटा, किसी ने तो तोहफे दिए, तो किसी ने बस माँ की गोद में सर रखकर सुकून के दो पल बिताए, और किसी ने माँ के अपने फोटोज़ को स्टेटस पे डाला। जी हाँ, लेकिन दोस्तों क्या मदर्स डे सिर्फ एक दिन का मोहताज है? कल तो हमने दिखाया कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, पर असल मदर्स डे तो हर वो दिन है जब हम उनकी मुस्कुराहटों की वजह बनते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ वो शख्स है जो दूसरों की जगह तो ले सकती है, पर दूसरे तो उसकी जगह ले सकती है पर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। जहाँ कल की कुछ तस्वीरें अभी भी जहन में ताज़ा होंगी, शायद अपने कल उन्हें किचन से छुट्टी दी होगी या उनके लिए उनके पसंदीदा गाने गाए हो, पर आज जब ये नया हफ्ता शुरू हो रहा है तो बस यही नियत रखते हैं कि कल वाला वही समा और वही प्यार हम रोज़ बना कर रखे। तो चलिए बीते हुए कल की उन प्यारी यादों के साथ आज का जो सफ़र है हम शुरू करते हैं। उन सभी माओं को सलाम जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को खुशी के नगमों से भर दिया है। तो चलिए आइए सुनते हैं ये अगला नगमा, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो बने रेडियो के साथ, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों। एक कॉलर हमें कॉल कर रहे, चलिए सबसे पहले उनसे बात करते हैं, फिर इस गाने के बारे में हम बात करेंगे। हेलो,
1: अरे जी नमस्कार।
0: नमस्कार बुरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: अरे मैं तो बड़ा आनंद में हूँ
0: जी।
1: गर्मी गर्मी के मारा पंखे के नीचे और कूलर के पास में बैठा हूँ।
0: गर्मी बड़ी तेज हो रही है। बिल्कुल यस,
1: बहुत ज्यादा तेज गर्मी है। प्रोग्राम को सुन करके मजा और आनंद ले रहा हूँ।
0: क्या बात है, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया।
1: आनंद के साथ में लता जी का एक गाना है सर
0: जी।
1: अरे इतना मस्त है, बात बनती है उसकी पाले बचती है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: क्या बात है, पायल बचती है, सुनाई देती है।
1: पायल बचती है ना, तो नाच भी आता है, नाच भी आता है, रास्ता भी दिखाता है, इस प्रकार का गाना है।
0: अच्छा,
1: पायल पायल की जनकार रस्ते रस्ते, पायल की जनकार रस्ते रस्ते,
0: रस्ते रस्ते
1: तेरा प्यार उड़े, तेरा प्यार रस्ते रस्ते। लता जी की आवाज में है सर।
0: अच्छा, कौन सी मूवी का गाना है ये? कौन से मूवी का गाना है?
1: मूवी का गाना कभी पता नहीं है मेरे को, ये गाना मैंने सुना था, सुना मैंने जब लिख के रखा है।
0: क्या बात है,
1: हाँ से... लता जी की आवाज, लता जी की आवाज में है ना
0: जी।
1: हाँ तो ये सुना दो, अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल जरूर से कोशिश।
1: कूलर की हवा तो ठंडी आती है और पंखे की हवा थोड़ी गर्म आती है
0: जी। अच्छा,
1: ठंड के मौसम में ऐसे गाने सुन लूंगा के मुझे भी थोड़ा संतोष और आनंद आ जाएगा।
0: क्या बात है उरीला जी, बिल्कुल। और आप जब ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें भी आनंद आता है कि जब आपको ये गाने सुनकर आनंद आता है।
1: आनंद के लिए तो संपर्क करते हैं। हाँ, संपर्क करने का कारण क्या है? एक दूसरे से बात करेंगे तो अपने मन की बात आपके मन में आती है, आपके मन की बात हमारे दिल में आती है, और उसके साथ में अपने मन की गाने भी आते हैं ना, उनके मन की बातें भी सुन लेते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल।
1: हाँ, उससे अपना प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा और सुनने वाले भी अच्छे रहेंगे और सुनाने वाले भी आनंद आ जाएगा।
0: क्या बात है। चलिए बिल्कुल से कोशिश करते हैं, आपका ये जो नगमा आपने हमें कहा है, हम कोशिश करते हैं आपके लिए।
1: कोशिश करना तो ठीक है, कर दोगे तो अच्छा रहेगा, मजा ले लेंगे। नहीं आया तो कोई बात नहीं, संतुष्टि में सारे सार में संतुष्टि है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। हाँ दोस्तों, तो अभी जब हम बात कर रहे थे इस गाने के बारे में, जो अभी हमने गाना सुना, यूं रूठ होना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, तो इसके लिए मेरे पास कुछ शायरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जुल्फों को रुखसार पर यूं बिखराया ना करो, जुल्फों को रुखसार पर यूं बिखराया ना करो, हसीन फूलों पर काले नाग बिठाया ना करो। डर लगता है कि कहीं कयामत ना आ जाए, यूं रूट कर हमें और सताया ना करो। जी हाँ दोस्तों, फिर से हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं उनसे। हेलो,
2: नमस्कार सर, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, मैं चाहने से मदन भाई बोल रहा हूँ, रेडियो मधुर कृषि के लगते और दिल की बात है
0: जी। मदन लाल जी कैसे हैं आप?
2: बस मैं बहुत बढ़िया हूँ, और अभी छूटा हूँ विद्यालय से मुंडी चुन के, और बस रेडियो मदन को आप बताया।
0: अच्छा
2: हाँ,
0: क्या बात है।
2: और जी जी, रेडियो मधुबन तो बस यहाँ से छूट के मूल्य के बाद में सीधा रेडियो मधुबन जाके चालू करने का रेडियो।
0: तो अभी आप घर पर हो या रास्ते में चल रहे?
2: मैं बिल्कुल रास्ते में चल रहा हूँ।
0: क्या बात है जी, कैसा है मौसम, कैसा है वहाँ?
2: मौसम बड़ा ऐसे तो मेरे को तो देखिए सब गर्मी है, मगर फिर भी मैं खुशी में मस्त रहता है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं होता गर्मी का, और मैं चल रहा हूँ भैया, ठंड मेरे तो बहुत अच्छा रह रहा हूँ, ऐसे गर्मी का तो मौसम था ही।
0: अच्छा,
2: आज पूरे दिन भर गर्मी में थी, हमने हम भी खुद मतलब कंपनी में थे तो कूलर चालू कर रहा था, तो बड़ा तो वहाँ गर्मी पड़ रही थी, तो बोले भाई बहुत पड़ रही थी,
0: अच्छा
2: पानी डाल दिया तो थोड़ा ठंडा हुआ।
0: अच्छा,
2: तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है,
0: चलो बढ़िया,
2: फिर हाँ सब कुछ हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, ज्यादा भी नहीं, पानी बिगाड़ने का नहीं है, अगर पानी बहुत महंगा मिलता है ना, क्योंकि कंपनी में तो पैसे से लाना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो थोड़ी बहुत जो हमारे भगवान की कुदरत की हवा है वो भी खानी चाहिए, मैं तो बाहर की हवा ही ज्यादा खाता हूँ।
0: अरे लेकिन साथ ताजी, हाँ बिल्कुल ताजी हवा जो होती है पेड़ पौधे से, जब हमें डायरेक्ट ताजी हवा मिलती है, वो कूलर और पंखे की हवाओं से तो कहीं बेहतर है,
2: बहुत बेहतर है, वो सुकून देती है और मतलब इतना मतलब वहाँ वातावरण अच्छा रहता है। मैं लीम के नीचे ही जाकर वो वहाँ पानी का मीनर भरा, वहाँ जाकर पानी पीता हूँ
0: जी,
2: और वहाँ खड़ा रहता हूँ और लीम की तरफ देखता हूँ, लीम सुने हैं पक्षी एक भी नहीं है उस पर।
0: अच्छा
2: हाँ पक्षी कम है,
0: अच्छा
2: नहीं है इतने जो पहले थे इतने नहीं है।
0: तो अभी गर्मियों में तो हाँ
2: जी, आप कौन सा गाना सुनेंगे आज? हम
0: आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे। वैसे अभी हमने गाने बजाए हैं, दो गाने आपने सुने नहीं सुने मुझे पता नहीं है, अभी हमने दो गाने सुना और इसके बाद भी एक बहुत प्यारा सा नगमा वेट कर रहा है।
2: थोड़ा मैं गुनगुनाऊं क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कौन सा जो है? दो गाने याद किया है, तो याराना बिचर का और दूसरा जॉन मेरा नाम का।
0: हाँ
2: इस गाने को लिखा है और कल्याण जी संगीत का संगीत है
0: जी।
2: और आवाज किशोर कुमार जी है, पिछले का नाम जानी मेरा नाम और इसमें अदाकार है, तो गुनगुना दो कोई भी गाना, दोनों में
0: कोई भी एक गाना गुनगुना दीजिए
2: जी। चलो आज एक काम करते हैं, आज बुले दिन का वार है सोमवार, तो सोमवार का गीत गाते हैं भोले बाबे का। भोले ओ भोले टूटा दिल टूटा मेरे हाथ घूम ना दे, तो प्यार भी जगा दे।

0: मैं
1: क्या बात है
0: तो कसम से फिर नदी सकूंगा मेरे बोले तेरे पैसे मैं जहर पी सकूंगा किस्मत में वो जान मेरी उसने नहीं पहचान मेरी क्या बदल मैं माने मेरे यार पूर्ण मान वो प्यार फिर जगा दे
1: वाह वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच मदन लाल जी, थैंक यू सो मच मदन लाल जी, आपने इतना प्यारा गाना हम सभी को सुनाया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए।
2: गाना नहीं कहूंगा मगर एक थोड़ा सुनाता हूँ।
1: हाँ।
2: कहते हैं ना तू रूठा कोई समझता तो बोले रूठा बोले नहीं उसका दोस्त रूठता है।
1: हाँ।
2: और बोले ऐसा लगता है बोले कभी नहीं रूठता है
1: जी जी
2: और दोस्त के ऊपर गाया जाता है मगर बिल्कुल। इस तरह से गाते हैं को तू रूठा लोग क्या समझते बोले रूठा नहीं दोस्त रूठा है।
1: थैंक यू सो मच मदन लाल जी, बिल्कुल धन्यवाद सो मच, आपने इतना प्यारा गाना हमारे लिए गाया। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जब बात कर रहे थे अगले इस गाने की, जो अभी हमने गाना सुना तुम रूठो ना, इस गाने के बारे में हमने बात कर रहे थे, तो मोहब्बत में कभी कभी रूठना भी उतना ही जरूरी होता है जितना मनाना। अगर कोई रूठेगा नहीं तो मनाने का वो मजा कैसे आएगा। तो अभी जब हम गाना सुन रहे थे यूं रूठो ना हसीना, तो रफ़ी साहब की आवाज़ में जब ये अल्फाज निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई सच में दिल से इल्तिजा कर रहा हो कि इस गाने की सबसे खूबसूरत बात जानती है क्या है, इसका वो लॉजिक। करते ना जो बहाना नज़दीक कैसे आते, ये फासले ये दूरी हम किस तरह मिटाते हैं। ये जो लाइनें जब कही जाती है अपने प्रेमी से या आशिक से, तो ये आप मतलब हीरे यहाँ कह रहा है कि अच्छा हुआ तुम रूठ गई, इस बहाने हमें पास आने का मौका मिला, अगर तुम नाराज़ होती तो मैं तुम्हारे पास कैसे तमता। इसे कहते हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है अगले गाने की ओर बढ़ने का, क्योंकि लाइन में बहुत सारे गाने हमारे पास वेट कर रहे हैं। तो आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

वाहन हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: मनाता रहूं। जी हाँ, बहुत ही प्यारी आवाज थी अभी हमने जो गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में और मुकेश जी की आवाज में। मूवी का नाम था आस का पंछी, इसे लिखा था हसरत जयपुरी जी ने, जय शंकर जयकिशन जी का इसमें आवाज था। चलिए हमें कॉल आ रहा है, पहले हम कॉल पे हम बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: अच्छे भाई।
0: बढ़िया बढ़िया एकदम। आप बताइए कैसा चल रहा है वेदर, मौसम के?
1: अच्छा चल रहा है, मौसम तो बहुत गर्मी
0: ये गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है।
1: हाँ, लेकिन हम तो दुकान में बैठे हैं, इसी चल रही है, तो ठंडक होती है।
0: ओके,
1: बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बुरे लाल जी भी आके गए, हमारे मदन लाल जी भी आके गए।
0: जी,
1: हमारे मदन लाल की बात है, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने मदन लाल जी से बात की।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम तो एक दूसरे का बातचीत करते रहते
0: हैं। जी
1: हाँ, तो अभी मदन लाल से बात कर ली हमने, और बहुत अच्छा लगा। और चलो, गाने तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं।
0: आज आपने पहली सुनी?
1: हाँ पहली सुनी, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ।
0: अच्छा,
1: कौन सा जवाब दो, मैं सोच रहा हूँ, आपने बताए तो सही के फिर भी एक बार बता दीजिए तो पता चलेगा।
0: फिर से सवाल दोहरा दूँ आपके लिए?
1: हाँ दोहरा दीजिए।
0: ओके चलिए, सवाल ये था कि वो क्या है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है।
1: चलो सोचो, बात मैं आपको तो जवाब दूंगा।
0: ठीक है चलिए, बिल्कुल से आप सोचिए, इसका जवाब मुझे बिल्कुल से दीजिए।
1: एक गाना तो मैं आपको दे दूं शायद।
0: जी,
1: फिल्म का नाम तो मुझे अभी पता नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। किस जहां हो गए सारी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां हो गए। वो गाना
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा गाने गाने में।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी तबीयत का बिल्कुल से ध्यान रखिए, और हम जरूर से कोशिश करेंगे आपके लिए ये गाना आज प्ले करें।
1: जी सर, नमस्ते सर,
0: थैंक यू सो मच सुरेश जी। जी हाँ, वेदर के वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती है, सर्दी जुकाम गर्मी इतनी तेज हो रही है, बिल्कुल लू चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपसे कह रहा था कि अभी हमने जो गाना सुना मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आश का पंछी मूवी का नाम था, और सवाल फिर से एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सभी सुन सकते हैं, उसका जवाब जिसे भी पता है जल्दी से कॉल करके हमें बता सकते हैं। सवाल है, वो क्या है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। यहाँ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही चेहरे पर अपने एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक खुला रास्ता, एक चलती हुई गाड़ी और रफ़ी साहब की वो मस्तानी आवाज़, समझ गए ना। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मेरे सनम के उस गाने के जो अभी आपने सुना, पुकारता चला हूँ मैं। मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने जब ये बोल लिखे थे तो उन्होंने सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक बेकॉफ दिल की कहानी लिखी थी। इस गाने का मतलब बड़ा ही प्यारा है। गली गली बाहर की तलाश में जब किरदार अपना ये जो जिसने निभाया था उसे किसी महल की ज़रूरत नहीं है, वो कहता है बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। मतलब ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए सिर्फ एक मोहब्बत भरी नज़र ही काफ़ी है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी सादगी है कि दिल दे गई है ना। इस गाने की एक और लाइन मैंने सुनी, बड़ा कमाल की है। यही तो बात हो रही है काम की। हीरो को पूरा यकीन है कि कितनी शौकियों और दिल्लगी के बीच कोई ना कोई तो मुड़ के देखेगा, कोई तो नज़र उसके नाम की होगी। ये उम्मीद और ये जज्बा ही तो इस गाने की जान है। और दोस्तों क्या आपको पता, इस गाने में जो आइकॉनिक जो विसलिंग सुनाई देती है उसने इस ट्रैक को एक अलग ही पहचान दी। जब बी विश्वजीत साहब को पर्दे ए सीमा पर सिनेमा पर हमने देखा है, ये गाना हमारे जहन में सबसे पहले आता और हमने कई बार इस गाने को सुना है। पुकारता चला हूँ मैं। चलिए दोस्तों समय है आपको जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने का, और हमें इसका सही जवाब हमारे एक श्रोता जी हमारे सुरेश जी है जेठाना से, इन्होंने इसका जवाब दिया है। सुरेश जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इसका जो सही जवाब दिया है, जिसका सही जवाब है वो है सीढ़ी। जी हाँ, ये ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है लेकिन ये अपनी जगह से हिलती नहीं है, बिल्कुल ये है सीढ़ी। तो उत्तर है, सही उत्तर है सीढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तौर, अगले नगमे की ओर। लेकिन वो जो नगमा है अगला, वो बहुत ही प्यारा नगमा हमारे भूरीलाल जी की फरमाइश का है। जी हाँ, तो हमारे भूरीलाल जी की फरमाइश का ये सुपरहिट गाना अभी हम सुनते हैं।

प्यार से हमारी स्वर कोकिला जी ने, लता मंगेशकर जी ने इसे गाया था। बहुत ही प्यारा गाना है, प्यार की झनकार रस्ते रस्ते, तेरा प्यार मेरे रस्ते रस्ते। जी हाँ दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारी आँखों में नमी और दिल में एक पुरानी याद जगा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही आइकॉनिक गाने की जिसे सुनकर हर किसी को अपना बीता हुआ बचपन याद आ जाता है। जी हाँ, फिल्म थी 20 साल बाद और बोल है सपने सुहाने लड़कपन के। आइए सुनते हैं ये गाना और फिर बात करते हैं इस गाने के बारे में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। ये जो अभी आपने गाना सुना, शकील बदयानू जी ने क्या खूब लिखे हैं, मतलब जो शब्द इन्होंने जो बोल जो लिखे हैं, बड़े मासूमियत को पकड़ने की

कोशिश की है वक्त के साथ कहीं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि वक्त के साथ कहीं खो जाती है, इस गाने का मतलब बड़ा ही टचिंग है। इसका मुकड़ा ही देखिए, सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। इसका मतलब है कि जवानी की चौकट पर खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बचपन के सुहाने सपने किसी सुहानी बहार की तरह लगता है, पर अब हालात बदल गए हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो बड़े होने की जल्दी होती है, पर जब बड़े हो जाते हैं तो हर कोई यही दुआ करता है कि कोई ला दे जमाने वो बचपन के, वो दिन जब कोई उलझन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। हेमंत कुमार जी का संगीत और लता जी का वो दर्द भरी आवाज़, ये गाना आज भी हमें उस मासूम दौर की सैर कराता है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए सारी उलझने भूल जाते हैं और इन सपनों में खो जाते हैं। आइए तो अगला नगमा सुनते हैं मेरे साथ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूँ कौटिल्य पंडित, आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्यों, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। जहाँ दोस्तों, अभी हमने ये जो गाना सुना, ओपी नैयर साहब जी ने इसे म्यूजिक दिया है, लिखा है एस एच बिहारी जी ने। मूवी थी कश्मीर की कली। चलिए दोस्तों, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, बिकॉज 9 बजने वाले हैं, और आप इसी तरह बने रहिए रेडियो के साथ, बिकॉज जो अगला कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य, और हम आपसे मिलेंगे फिर से कल इसी समय 8 बजे। तो आपके लिए है अगला नगमा, आप बने रहिए रेडियो के साथ, तब तक हम आपसे लेते हैं विदाई। नमस्कार, बाय बाय, सायोनारा।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को सहज बनाने की कुंजी हमारे अपने जीवन शैली में है। जितना हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं या अप्राकृतिक चीजें करने लगते हैं, जो प्रकृति के गुणधर्म के विरुद्ध वाली चीजें हैं वो करते हैं, तो स्वास्थ्य का खोना या फिर बीमार पड़ना आसान होता जाता है। अब अगर हम स्वास्थ्य को वापस पाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका उस प्राकृतिक विधि पर वापस लौटना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य को बिठाना है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़े हैं, जो प्रकृति चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव इनका रहा है और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: ओम शांति, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, हम ये बात समझते आ रहे थे कि प्रकृति के अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल प्रकृति चिकित्सा में किया जाता है। भारत के आयुर्वेद की पद्धतियां, योग की पद्धतियों में भी पानी का इस्तेमाल एक चिकित्सा पद्धति में, एक चिकित्सक औषधि के रूप में किया जाता है, एक चीजों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि पानी के सही इस्तेमाल से हम कैसे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अब अनेक चीजों को समझने के बाद ये बात समझ में आती है कि पानी के इस्तेमाल को किस किस तरीके से किया जाता है प्रकृति चिकित्सा पद्धतियों में, ये चीज हम समझें। आपने अनेक चीज जैसे एनीमा हुआ, अवमन विरेचन इत्यादि के बारे में बताया, मगर पानी को क्या एक्सटर्नली भी, जैसे कल आप ये बात बता रहे थे कि गर्म पानी में पैर रख के जो गर्म पानी का नहान है उससे कितने फायदे होते हैं, ऐसे कुछ और भी चीजें हैं जहां पर पानी से जुड़ी हुई चिकित्साएं की जाती हैं?
1: अमूमन घर पे मिट्टी का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जा सकता है, तो उसकी जगह पानी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने पिछले एपिसोड में पेट पे मिट्टी की पट्टी के बारे में बताया, आप घर पे मोटा तौलिया ठंडे पानी में भिगो के उसको रख सकते हैं और हर 10 से 15 मिनट के बाद आप उसको घुमा के या उसमें फिर से पानी डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं। मिट्टी पोरस होती है, इसलिए वो सारी गर्मी खींच के बाहर छोड़ देती है, वरन पानी जो है उस गर्मी को सोखता है और खुद जो वो है वो भाप बन के उड़ता है और हल्का गर्म हो जाता है। तो मिट्टी की पट्टी को बार बार गीला नहीं करना पड़ता है, पर पानी की पट्टी को गीला करना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा में पट्टियों का प्रयोग ऊनी सूती पट्टी के रूप में किया जाता है, बहुत सी जगह उसे सिर्फ सूती पट्टी के रूप में भी किया जाता है। अगर गले पे पट्टी लगानी है तो वो 4 इंच मोटी और 1 मीटर चौड़ी होती है और उसी के समकक्ष एक ऊनी पट्टी 4 इंच चौड़ी और 1 मीटर लंबी होती है। अगर कमर, दोनों पैर या दोनों हाथ पे बांधने हैं पट्टी को या छाती पे बांधना है पट्टी को, तो वो 9 इंच मोटी और 3 मीटर लंबी होती है। तो 3 मीटर लंबी कॉटन की पट्टी और 3 मीटर लंबी ऊन की पट्टी, ऊन से बना हुआ कंबल की पट्टी समझ लीजिए। इसमें जो कॉटन की पट्टी है, ये खादी की पट्टी हम लोग आरोग्य मंदिर में इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण ये है कि वो अच्छा कॉटन होता है और वो कपास पानी ज्यादा सोखता है, तो वो ज्यादा गीला रहता है और खादी आश्रम से मिला हुआ जो कपास है उससे इरिटेशन नहीं होता है लोगों को, क्योंकि उसको प्रोसेस बहुत नहीं किया जाता है। अब हम गले पे पट्टी लगा सकते हैं। आप विचारिए कि आप पहले कॉटन की पट्टी को गीला किया और अपने गले के चारों तरफ उसको बांध लिया और उसके बाद उसके ऊपर एक गर्म पट्टी बांध ली। अगर बहुत गर्मी का मौसम है और आप काम कर रहे हो तो आपने गले पे पट्टी लगा लिया, आपने पेट पे पट्टी लगा दिया, वो आपके उस क्षेत्र को थोड़ा ठंडा कर देती है। पर अगर आप ऊनी सूती पट्टी लगाते हो तो ऊनी सूती पट्टी में 3 प्रक्रियाएं चलती हैं, एक शीतकारी, दूसरा समकारी और तीसरा उष्मकारी। शीतकारी का मतलब है कि पहले आप जब भी ठंडा कुछ भी अपने लपेटेंगे तो वो आपको ठंडक प्रदान करेगा, तो आपको वहां पे ठंडा लगने लगेगा। 10 से 15 मिनट के बाद आपको वो ठंडक का सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको वहां पर नॉर्मल फील होगा और अंत में अगेन 10 से 15 मिनट बाद, मतलब टोटल 25 से 30 मिनट के बाद आपको पसीना आने लगेगा और वहां पे गर्मी होने लगेगी। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी समझें इन पट्टियों की, जहां भी ठंडक होती है वहां पर रक्त का संकुचन होता है, मतलब ब्लड फ्लो वहां पे रुकता है, कम होता है, क्योंकि ठंडक में सोचिए जब भी बहुत ठंडक होती है तो हम लोग बैठ जाते, हिलते डुलते नहीं है। केमिस्ट्री में कहा जाता है कि किसी को फ्रीज कर दो तो मूवमेंट कम हो जाएगा, तो मूवमेंट कम हो गया, 10 से 15 मिनट के बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो ब्लड सर्कुलेशन वापस आना शुरू करेगा, और जब 20 से 25 मिनट हो जाएगा तो एकदम तीव्र गति से ब्लड आएगा उस एरिया में और वो पूरे के पूरे टॉक्सिन्स को, गंदगी को वहां से निकाल के ले जाएगा। प्लस जो पसीना आ रहा है वो भी उन टॉक्सिन्स को हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, हमारे पसीने के थ्रू वहां से बाहर निकालेगा। गले की पट्टी, गले की जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आपके थायराइड की, आपके बोलने के लिए आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है, इवन नेक पेन, हल्का माइग्रेन अगर आपको है तो, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। छाती की पट्टी अगर हम बांधते हैं तो इससे आपका हार्ट और लंग्स दो चीज इससे कवर होती है, मतलब आपके फेफड़े और आपका हृदय इससे कवर होता है। तो जितने भी फेफड़े की बीमारियां हैं और जितनी भी हृदय की बीमारियां हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका एस्मा, आपको आराम मिलता है, आपको दमा, जुखाम, सर्दी, खांसी, इन सब चीजों में आराम मिलता है। कोरोना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई नेचुरोपैथी का इलाज पैर का गर्म नहान और छाती की पट्टी थी। आपको दमा है, जो लोग 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, आप रोज अगर उनको छाती की पट्टी बांधिए तो उनका छाती खुल जाएगी, सांस लेना अच्छा हो जाएगा, अच्छा जो उनके टर्मिनल एल्वियोलाई है, जो फेफड़े के अंतिम छोर है, वहां तक ऑक्सीजन जाने लगता है, और जो म्यूकस बन रहा होता है जो हमारे फेफड़ों को ब्लॉक करता है हवा जाने के लिए, वो खुलने लगता है और वो म्यूकस बाहर भी निकल जाता है गले और छाती की पट्टी बांधने से। तो दमा में इसका चमत्कारिक लाभ है। पेट की पट्टी, पेट की पट्टी अगर हम बांधें तो आप ध्यान देंगे कि आप अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बांध रहे हैं, जैसे लिवर हुआ, आपका पेट हुआ, आपकी छोटी और बड़ी आंत हुई, आपकी पैंक्रियाज हुई और आपकी किडनी हुई, और पीछे रीढ़ की हड्डी भी आपकी बन रही है।
0: जैसे आप पहले कह रहे थे कि जैसे मड पैक्स लगाते हैं तो हम पेड़ू के हिस्से में लगाते हैं, उसको तो सिर्फ एक पैच के रूप में हम लगाते थे, मगर ये जो पानी की पट्टी है, ये जो पेट के ऊपर जो पानी की पट्टी लगा रहे हैं, वो पूरा ही एक ऐसा रोल लगा दे रहे हैं कि पूरे कमर पे इसे लपेट दिया जा रहा है।
1: जैसे आप ये समझिए कि आप सर्कल कर रहे हैं पूरा, जैसे किसी डब्बे को पैक करते हैं तो चारों तरफ से उसको लपेट देते हैं, उसी तरीके से 3 मीटर कपड़ा जो है वो पूरे कमर पे लपेट दिया जाता है और उसके ऊपर 3 मीटर ऊनी कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि अगर जो ऊनी कपड़ा है वो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, इसीलिए ऊनी कपड़ा लपेटा जाता है। अगर सादी आप कॉटन की पट्टी लगाएंगे उसका इलाज 10 से 15 मिनट के बाद खत्म, मगर आप ऊनी पट्टी लगा देंगे तो वो इलाज 30 से 45 मिनट तक हो सकता है। अब हमने अगर कमर पे बांधा है तो आप सोचिए पेट के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको आराम मिलेगा, हमारे लिवर, हमारा स्टमक, हमारा पैंक्रियास, हमारे किडनी और हमारा मेरुदंड, मतलब रीढ़ हमारी या हमारा स्पाइन। तो जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको किडनी की परेशानियां हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको गैस बन रही है, और ये जो लोग बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी, ये पट्टी उसमें भी काम करती है क्योंकि टॉक्सिन्स निकालती है। प्लस अगर आप थोड़ा भी वेट कम कर रहे हैं तो स्किन की टोनिंग कराती है पेट। हमें चिकित्सालय में बहुत सी यंग लड़के लड़कियां आते हैं जिनका मोटापे की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, वो इस पट्टियों को हमेशा मांग करते हैं कि हमको इस सुबह शाम दोनों समय बांध दीजिए, क्योंकि उनको इतना अच्छा लाभ मिलने लगता है इससे कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा स्वास्थ्य लाभ मिले, वो ये चिकित्सा सुबह शाम कराते हैं। जैसे जो बहने या महिलाएं जिनका हाथ बहुत वजन है और फिर वो स्किन लूज होने लगी तो वो इस पट्टी को बांधती है तो बहुत अच्छा स्किन टोन होता है और वो पूरा का पूरा जो स्किन है वो वापस अपनी जगह चली जाती है, तो कहीं भी लूज स्किन आपको नहीं दिखती है। आपके कमर पे जो भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वो सारे इस पट्टी को लगाने से खत्म हो जाते हैं।

0: अब ये पट्टियां आपके दोनों हाथ में भी बांधी जा सकती है और दोनों पैरों में भी बांधी जा सकती है। हम प्रायः शाम को अपने अधिकतर मरीजों को कमर और दोनों पैरों की पट्टी बांधते हैं। उसका ये लाभ है कि अगर हम पैर में इसको बांधते हैं तो पैर से ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने लगता है और हमारा, जैसे हमको कहा जाता है कि पैर हमारे जो काफ मसल्स हैं हमारे पैर में, वो हमारा दूसरा हार्ट है, हमारा दूसरा हृदय है। तो अगर हम इनको बांधते हैं तो काफ मसल का कंप्रेशन होता है और ब्लड बहुत अच्छा हृदय की तरफ जाता है, तो हमारे हृदय को कम काम करना पड़ता है। दूसरा, हम आरोग्य मंदिर में ये लोगों को कहते हैं कि आप सुबेरे और शाम 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक टहलिए, तो जो भी पैर का दर्द, जो थकान हो रही होती है, वो कमर और दोनों पैरों की पट्टी से एकदम खत्म हो जाती है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो, जिन्होंने कभी भी 45 मिनट वॉकिंग नहीं की या चले नहीं है, उनको जब हम यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं बिना जूतों की मिट्टी पे चलिए या नंगे पैर चलिए, तो उनको पैर में भी दर्द होने लगता है, काफ में भी दर्द होने लगता है, हैमस्ट्रिंग भी दर्द होती है। तो 2-3 दिन ये पट्टी बांधने से उनका पूरा का पूरा दर्द खत्म हो जाता है और वो आराम से टहल पाते हैं और योग भी कर पाते हैं। श्री भैया, हम और जो चिकित्सालय आ रहा है वो अपना 24 घंटा अपनी सेहत के लिए देने के लिए आया है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और उसको हम सारी जो उसकी अड़चने हैं चिकित्सा में उसको हम कम करने की कोशिश करें। जिनको पैर में आर्थराइटिस होता है, हाथ की उंगलियां जिनकी टेढ़ी होने लगती है आर्थराइटिस, उनको भी ये ऊनी सूती पट्टी बहुत लाभ देती है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब आप इन पट्टियों की बात कहते हैं, आपने कहा कि सूती कपड़े का होना चाहिए, फिर ऊनी पट्टी भी होती है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, ये चीज आपने बताया, क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते ही ये, इनको लगता है कि नहीं, पहले इसे हमें बाजार से जाके खरीद लाना है, ये करना है, बट टू शुरू करने के लिए कि भाई ये चीज कैसे की जाती है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कैसे हम इस चीज को करें, तो क्या घर में जो टॉवल्स हैं या कॉटन के कपड़े हैं उनसे हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करें। कि आपने कहा कि भाई पानी वाला ये जो वेट पैक होता है ये 10-15 मिनट में फिर सूख जाएगा, तो फिर इस बात को समझें कि कितना लगाना है, कितने इंटरवल पे लगाना है, कितने देर भिगोना है, कितने देर रखना है।
0: श्री भैया, आपको सबसे पहली जो चीज का ध्यान देना चाहिए कि आपको भोजन करने के तुरंत बाद इसको नहीं बांधना चाहिए और जब ये बंधी हुई है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली, भैया गीला कपड़ा है, अगर वातावरण बाहर का बहुत ठंडा नहीं है तो अपने घर में ही इसका प्रयोग कर लीजिए। आप खुद देखिए कि बहुत सारे खेल खिलाड़ियों का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं कि स्पेशली फुटबॉल मैच में वो पूरा का पूरा स्पंज या तौलिया गीला करके अपने सर पे डालते हैं कि सर पे गर्मी उनके ना चढ़ जाए जब वो खेल रहे होते हैं। आपको आपके घर का पुराना तौलिया कॉटन का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पट्टी खरीदनी है तो आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये मिलती है, नहीं तो आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में चले जाइए, वहां ये आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो सिर्फ 9 इंच चौड़ा और 3 मीटर लंबा मार्किंग का कपड़ा लेना है, कोई भी कॉटन कपड़ा लेना है, ये बाजार में आपको इजीली मिल जाएगा। ये तो आपका घर का, आपका लोकल दर्जी या आपके घर में अगर सिलाई मशीन है तो खुद ही आप 1 मीटर ले लीजिए, काट काट के 9-9 इंच का उसको जोड़ लीजिए, 3 मीटर का आप बना लेंगे उसमें। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाने में। प्राकृतिक चिकित्सा की अधिकतर इलाजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर वो आपको फायदा कम दे रहे हैं तो नुकसान तो एकदम नहीं देंगे, क्योंकि कुछ भी आपके शरीर में जा नहीं रहा है। इसको यहाँ हम लोग सुबेरे नाश्ते के 1 घंटे बाद करीब 9:15 बजे लगाते हैं, जब हमारा रोगी जो है वो सुबेरे का घूमने के बाद योगा करके अपना फल और जूस पीने के बाद 1 घंटे के गैप के बाद हम ऊनी सूती पट्टी लगाते हैं, फिर इलाज देते हैं। और दोपहर का जो भोजन हमारे यहाँ करीब 12:30-1 बजे तक खत्म हो जाता है, तो हम इसे 3-3:30 बजे लगाते हैं, जिससे रोगी को आराम मिले। और इसको लगाने के बाद वो करीब 5:30-5 बजे अच्छे से वॉक कर लेता है 1 घंटे के लिए, जिससे उसे पूरा स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। ठंडे पट्टी की तो इतनी अच्छाई है कि इसको प्रेग्नेंट फीमेल्स या गर्भवती महिलाएं भी लगा सकती हैं। इससे उनके जो पेट में तनाव हो रहा है वो कम होगा, रक्त संचार बढ़ेगा, और ये भी कहा जाता है रेगुलर वेट शीट पैक लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये इतनी चमत्कारिक पट्टी है।
1: अब जैसे आपने इन पट्टियों के बारे में बताया, एक पट्टी जब आप कहते हैं कि भाई भोजन के समय पे नहीं लगाना है, भोजन के 1.5 घंटे बाद लगाना है, तो कितनी देर तक के लिए लगाए रखना है, ये भी बात समझी जाए।
0: अगर आप कॉटन पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कॉटन, तो 10 से 15 मिनट। और अगर आप ऊनी सूती, मतलब पहले कॉटन पट्टी आपने बांधी और उसके बाद आपने उसके ऊपर ऊनी पट्टी बांधी, तो आप इसको करीब 35 से 45 मिनट तक अपने शरीर के ऊपर लगा सकते हैं। आप इसको लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इसको लगा के एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, और बहुत टहलना और दौड़ना नहीं चाहिए। बाकी आप बैठ के कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई, अपने ऑफिस का काम, या जैसे हम और आप रेडियो मधुबन पे बात कर रहे हैं, हम बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है इसका।
1: जैसे ये बात तो समझ में आती है, क्या हर दिन जो ये वेट पैक्स लगाने की बात हो रही है, पानी की पट्टी लगाने की, गीली पट्टी लगाने की बात हो रही है, एक दिन में इतना समय लगाना होता है? यानी जैसे सुबह आपने कहा कि भाई नाश्ते के बाद हमने लगाया, तो 15-20 मिनट लगा के रखा, फिर दोपहर को 15-20 मिनट, फिर शाम को 15-20 मिनट, ऐसा कुछ होना चाहिए, या दिन में इतने मिनट ये लगा के रखने का ये होना चाहिए?
0: श्री भैया, हमारी आपकी बात जो भी सुन रहे हैं वो सब लोग काम करते हैं, वो सब काम करने जाते हैं और शाम को अपने काम से वापस आते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि जब शाम को वो लौटे तो इसको अपने कमर पे या पैर में या छाती पे या गले पे, जहां भी मन हो इसको लगा ले, और आधी घंटा ऊनी सूती पट्टी का प्रयोग करिए, वो ज्यादा अच्छी है, और आप उसको आधी घंटा से 45 मिनट तक लगा लीजिए। जो मोटे हैं व्यक्ति, जिनको अपना पेट कम करना है, जांघें कम करनी है, हाथ पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करना, वो इसे रोज लगा सकते हैं। मगर भाग दौड़ की दुनिया में अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो वीकेंड पे लगाइए और आप इंजॉय करिए इसको, और इसके लाभ देखिए। जिस दिन आप इसको लगाएंगे, उस 2-3 दिन के बाद आपको अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव लाभ आपको मिलने लगेगा, और आपका शरीर ज्यादा तरोताजा होगा, और आप ज्यादा रिफ्रेश फील करेंगे इससे।
1: ये तो बात समझ में आ रही है डॉक्टर साहब की, जो ठंडी पट्टियां हैं पानी के अंदर भिगो कर कॉटन के, इन पट्टियों को अपने ऊपर लगाना, शरीर के अलग अलग अंगों पर लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये बात समझ में आती है। ये भी बात समझ में आती है कि इनको बनाने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, ये तो घर में ही मौजूद चीजें हैं, उससे शुरुआत की जा सकती है, और करके देखने वाली चीजें हैं, और ये करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं, बस पानी में भिगोना ही है और फिर लगाना है और लगाकर देखना है कि इसके फायदे क्या हैं। जैसे आपने कहा कि प्रकृति चिकित्सा में जो भी चीजें हम करते हैं, ज्यादातर चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम शरीर के अंदर कुछ नहीं डाल रहे हैं। जैसे वेट पैक्स की बात की जाती है, क्या इसमें मौसम का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? क्योंकि प्रायः माउंट आबू में जहां पर हम रहते हैं, हमारे यहाँ सर्दियां बहुत तीक्ष्ण होती हैं, सर्दियों के महीनों में बहुत ज्यादा ठंडक होती है, क्या मौसम के हिसाब से भी इसका कुछ ध्यान रखने की जरूरत है?
0: आप इसको हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यदि किसी को ठंडक ज्यादा लगती है तो इसको अवॉइड कर सकता है। अगर जैसे हमने कहा आबू में ठंड बहुत है, तो दोपहर में 3-2 बजे जब धूप है तब लगा लीजिए, आपको इसका फायदा मिलेगा। अब बदली छाई हुई है, आप खांस रहे हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, हल्का बुखार लग रहा है, उसमें भी आप अगर इसको लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपका टेम्परेचर कम होगा, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, और आप उस बीमारी से लड़ने लायक हो जाएंगे। कुछ मरीज जो बहुत कमजोर होते हैं, उनको हम आधी घंटा न लगाकर इसको 20 मिनट के लिए लगाते हैं, पर ये किसी भी मौसम में लगाई जा सकती है। लगाने के बाद अगर आपको लगे कि आपका सर्दी जुकाम बढ़ गया है, तो घबराइएगा मत, ये आपके अंदर की गंदगी बजातीय द्रव्य निकल रहा, और प्रकृति किसी भी रोग को दबाती नहीं है, वो आपके शरीर से उसको बाहर निकाल के फेंक देती है। इसीलिए कभी कभी जब प्राकृतिक चिकित्सालय में लोग इलाज कराने आते हैं, तो 6-7वें दिन वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी दवाइयां धीरे धीरे हम कम करने लगते हैं, दूसरा उनको जो भी गंदगी है टॉक्सिन से वो बाहर निकलने लगते हैं, तो उसको लगता है अरे ये तो क्या हुआ, हम आए और हम तो और बीमार पड़ गए। इसीलिए हम अपने यहाँ जितने भी रोगी हैं उनसे रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, और उनको धैर्य बंधाए रखते हैं कि बस एक दिन और, और ऐसे करके उनको बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है।
1: बहुत ही खूबसूरत ये आज की बातचीत रही है डॉक्टर साहब, जहाँ पर हमने इन बातों को समझा है, प्रकृति चिकित्सा के फायदे कितने हैं, और ये जो गीली पट्टियां हैं, जो पानी को यूज करके, पानी के अंदर कॉटन की इन पट्टियों को भिगोकर जो हम अलग अलग जगह लगा सकते हैं, गर्दन पर, छाती पर, अपने पेट पर, पूरे कमर पे लपेटने से, पैर पे लगाने से क्या फायदे होते हैं, ये बात समझ में आ रही है। वक्त कहता है कि यहाँ पर विराम लेना होगा, मगर आज जो बहुत सारी अच्छी चीजें समझ में आई हैं वो पानी के इन गीली पट्टियों का इस्तेमाल व्यक्ति घर में ही बना के कर सकता है, और इसको दिन में आधा घंटा अगर वो लगाता है तो उसके अनेक फायदे वो व्यक्ति देख सकता है, ये बात समझ में आई है। आज दोस्तों इसी मोड पर हम अलविदा कहेंगे। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच आए और उन्होंने गीली पट्टियों के बारे में गहराई से, इसके फायदों के बारे में हमें अवगत कराया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके आपको क्या फायदे हो रहे हैं वो अपने फीडबैक्स भी रेडियो मधुबन के नंबर 9414151415 पर व्हाट्सएप करें या मैसेज करके बताएं। डॉक्टर साहब, हमारे सभी श्रोता मित्रों की ओर से आज आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार। ओम शांति।
1: दोस्तों, ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम में हमने ये बात समझी है कि प्रकृति के तत्वों को सही तरीके से इस्तेमाल करके कैसे हम अपने स्वास्थ्य को फिर से ठीक करने में अपने आप के वैद्य बनकर, अपने आप के मददगार बन सकते हैं, और प्रकृति हमें हील करने के लिए कितना सब कुछ कर सकती है समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं फिर से आपके पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की सैर में।
3: हाँ बच्चों, तो पता है आज से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और वो कौन सा है मनी दीदी?
2: वो टॉपिक है पशु पक्षी भी परिवार।
3: और इस टॉपिक में हम क्या बातें करेंगे बच्चों के साथ?
2: इसमें हम जानेंगे कि पशु पक्षी भी हमारे परिवार हैं बच्चों।
3: और कभी बच्चों ये सोचा है कि हमारे आसपास रहने वाले जानवर और पक्षी भी तो हमारी तरह महसूस करते हैं?
2: हाँ, और उन्हें भी हमारी तरह भूख और प्यास लगती है।
3: उन्हें भी तो प्यार अच्छा लगता है,
2: इसीलिए हमें उनके साथ दया और करुणा से व्यवहार करना चाहिए।
3: और गर्मी के दिनों में भी बच्चों, जब धूप तेज होती है ना, तो पक्षियों को पानी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनकी मदद भी तो कर सकते हैं।
2: हाँ बच्चों, हम अपनी छत पर या बालकनी में पानी का छोटा कटोरा रख सकते हैं,
3: और रोज थोड़ा सा दाना भी डाल सकते हैं।
2: बच्चों, यही तो सच्ची सेवा है ना?
3: बिल्कुल बच्चों, तो मनी दीदी अब चलें फिर से, कहानियाँ अभी तो सुननी है ना बच्चों को?
2: हाँ बच्चों, अभी हम परी के साथ फिर से एक प्यारी सी कहानी सुनने के लिए वापस आएंगे, तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
3: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
3: सपनों की सैर को।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बच्चों चलो चलो सुनते हैं अब कहानी। गाना पूरा हो गया, बातें भी हो गई, कहानी की बारी शुरू हो गई। बच्चों आज एक सम्राट की कहानी सुनेंगे। जापान के एक सम्राट के पास 20 सुंदर फूलदानियों का एक दुर्लभ संग्रह था। सम्राट को अपने इस निराले संग्रह पर बड़ा अभिमान था। बच्चों एक बार सम्राट के एक सरदार से अकस्मात एक फूलदानी टूट गई। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने सरदार को फांसी का आदेश दे दिया। पर बच्चों एक बूढ़ा व्यक्ति था ना, उसको इस बात का पता चला तो वो सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, मैं टूटी हुई फूलदानी जोड़ लेता हूँ। मैं उसे इस तरह जोड़ दूंगा कि वो पहले जैसी दिखाई देगी। तो बच्चों बूढ़े की इस बात को सुनकर सम्राट बड़ा खुश हुआ। उसने बूढ़े को बची हुई फूलदानियों को दिखाते हुए कहा, ये कुल 19 फूलदानियां हैं। टूटी हुई फूलदानी इसी समूह की है। अगर तुमने टूटी हुई फूलदानी जोड़ दी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बच्चों सम्राट की बात सुनते हुए बूढ़े ने लाठी उठाई और तड़ातड़ सभी फूलदानियां तोड़ डाली। बच्चों जोड़ने की बात हो रही थी और इस बूढ़े व्यक्ति ने तो सारे तोड़ दी। अब क्या होगा सोचो। बच्चों ये देखकर तो सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ तूने ये क्या किया। बूढ़े आदमी ने सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इसमें से हर फूलदानी के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर आप केवल एक आदमी की जान ले सकते हैं, सिर्फ मेरी। बूढ़े आदमी की चतुराई और हिम्मत देखकर सम्राट प्रसन्न हो गए। उसने बूढ़े आदमी और अपने सरदार दोनों को माफ कर दिया। तो देखा बच्चों ये कहानी क्या सिखाती है, ये तो बताओ। बुराई से लड़ने के लिए एक ही साहसी व्यक्ति काफी होता है ना बच्चों। बुराई से लड़ने की भी तो हिम्मत चाहिए ना। कोई गलती करता है या आप कुछ गलत चीज देखते हो तो जरूर उसको अच्छाई में परिवर्तन करने की कोशिश करना। तो चलो बच्चों अब क्या करेंगे, गाना सुनेंगे। कहानी पूरी हो गई तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आजाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई लेकर किताब तेनाली रामा की। और हम जो पढ़ रहे हैं, पिछली कड़ी में हमने जो किताब में कहानी पढ़ी थी वह था व्यक्ति, परिवेश और परिधान। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसके आगे क्या हुआ वो हम बताते हैं, क्योंकि सभा में कपड़ों पर बात चल रही थी कि कपड़ों पर बहस चल रही थी सारे सभासदों की, कि कुछ लोग भ्रम में जीते हैं कि अच्छा वस्त्र पहन लेने से ही उन्हें सम्मान मिलने लगेगा, लेकिन व्यक्ति को सम्मान तो उनके बाह्य आवरण के कारण नहीं बल्कि आंतरिक गुणों के कारण मिलता है। इस तरीके से सभा में चर्चा चल रही थी और अचानक ही उस सभा में जो कटाक्ष का सिलसिला शुरू हो गया और एक सभासद की ओर सभी का ध्यान केंद्रित हो गया और वह सभासद बहुत ही शांत बैठा हुआ था। और वह सभासद पता है कौन था? वो था तेनाली रामा। तो अब आगे क्या हुआ वो हम

कारण वे विस्मित हो गए, मगर उन्हें लगा कि उसने जो कुछ भी कहा है वह सच है। फिर भी उनकी उत्सुकता बनी रही कि आखिर इस विषय में तेनालीराम स्वयं क्या सोचता है। इसीलिए उन्होंने तेनालीराम से कहा, नहीं तेनालीराम, यूं प्रश्न टालने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी राय व्यक्त करनी ही चाहिए। इतने लोगों ने इस प्रसंग में सभा के समक्ष अपनी राय रखी और तुमसे सबकी यही अपेक्षा होनी चाहिए कि तुम भी अपनी सोच से सभा को अवगत कराओगे। तेनालीराम ने तब विनम्रता पूर्वक कहा, जो आज्ञा महाराज, और एक भरपूर दृष्टि सभा सदों पर डाली। तो बच्चों, अब तेनालीराम का क्या जवाब होगा, सोचो जरा आप भी, ये तो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। और फिर अभी समय भी हो रहा है एक प्यारा सा गाना सुनने का और एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो अभी कहीं जाइएगा नहीं, मैं और परी फिर से आपके पास वापस लौटते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

के हम बच्चे आशा और विश्वास हैं, नए जगत का लिखने वाले हम उज्जवल इतिहास।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: बच्चों चलो चलो फिर से आ जाओ रेडियो के पास, पहेली की बारी शुरू हो गई है। पिछली कड़ी में याद है ना, हमने एक पहेली पूछी थी। चार पैर है पर चल नहीं सकता, घर में रहता काम बहुत आता, बताओ क्या?
1: और परी, हमारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कहे, अब किसका किसका नाम ले, सभी ने सही जवाब भेजे हैं और सही जवाब है मेज यानी टेबल।
0: बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। तो चलो अब लिख लो आज की पहेली, इससे कुछ मिलती जुलती है। चार पैर है पर चलता है, घर का वफादार कहलाता है।
1: अच्छा, चार पैर पर चलता है, चार पैर है तब तो जरूर कोई जीव ही होगा, और घर का वफादार कौन कहलाता है? बच्चों आप तो समझ ही गए होंगे, तो चलो जल्दी से सही जवाब हमें 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
0: हाँ, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, और भगवान जी को सॉरी और थैंक यू करना मत भूलना।
1: हाँ, अपने दिल की बात भगवान जी को कहकर उनकी गोद में सो जाना।
0: तो हम करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
0: गुड बाय।
1: सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो
1: रेडियो।

आप सुनने जा रहे हो ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए आज के सुंदर से विचार को सुबह सुबह अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो आज का विचार इस प्रकार है, दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं संतुष्टता है। आज के विचार को मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं संतुष्टता है। आइए आज के विचार का विस्तार करते हैं। कहते हैं, संतुष्टता ही सबसे बड़ा धन है। लोगों के पास करोड़ की संपत्ति होती है फिर भी वो जीवन में संतुष्ट नहीं होते, धन के पीछे भागते ही रहते हैं। उन्हें खाने पीने और परिवार के साथ रहने का समय नहीं होता, उनका जीवन एक मशीन की तरह हो जाता। तभी तो किसी ने ठीक ही कहा है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो प्यारे श्रोताओं, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, बने रहेंगे आप आशियाना में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आशियाना सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी उषा का नमस्कार। आइए अब मैं आपको घरेलू नुस्खा देती हूँ फिटकरी के बारे में कि दर्द पीड़ा नाशक है फिटकरी। कैसे है आइए जानेंगे और उसके उपाय भी सुनाऊंगी आपको। फिटकरी एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में हर घर की महिला बहुत कुछ जानती है। ये त्वचा रोगों को दूर करने, शरीर के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करने, कीड़ों को मारने, दर्द को कम करने और सूजन एवं बादी को शांत करने की बेजोड़ दवा है। तो आइए इसके औषधि गुण, किस तरह हम औषधि के रूप में यूज करेंगे फिटकरी को, अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि अगर दांत का दर्द हो तो सरसों के तेल में फिटकरी का चूर्ण मिला करके दांतों पर मलिए। अगर दांतों का दर्द हो, दांत में कोई तकलीफ हो रही हो तो आप सरसों के तेल में फिटकरी का चूर्ण मिला करके दांतों पर घिसिए, मलिए, रगड़िए, ठीक है, इससे आपके दांत का दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। अगला उपाय भी बहुत अच्छा है। सामान्य ज्वर हो, सामान्य ज्वर यानी कि साधारण बुखार हो, तो 3 ग्राम अदरक और 2 ग्राम फिटकरी दोनों की चटनी पीस करके दिन में 2 बार गर्म पानी से सेवन कर लीजिए, फिर देखिएगा आपके बुखार में आराम मिल जाएगा। पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनेंगे। अगर साधारण बुखार हो तो आप 3 ग्राम अदरक और 2 ग्राम फिटकरी दोनों की आपको चटनी बना देनी है पीस करके, ठीक है, फिर आपको दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ लेना है, इससे आपके बुखार में आराम हो जाएगा, आपका बुखार रफू चक्कर हो जाएगा। अपच की तकलीफ हो तो 2 ग्राम फिटकरी तथा 1 ग्राम कलमी शोरा दोनों को खरल करके गुनगुने पानी से पी जाइएगा। अगर अपच की तकलीफ हो तो आप 2 ग्राम फिटकरी लीजिए और 1 ग्राम कलमी शोरा दोनों को खरल कर लीजिए और गुनगुने पानी से सेवन करिए, इससे अपच की तकलीफ समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे श्रोताओं, इस तरह फिटकरी के द्वारा आप अपने जो भी मैंने आपको तकलीफें बताई है उसका उपचार आराम से कर सकते हो और अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, बने रहोगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में इस समय हो चला है खुशनुमा जीवन में बातें करने की। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, और अच्छा पाएंगे तो जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। कैसे? चलिए दो पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। बहारे रुक जाए तो सूरज थम जाए, बहारे रुक जाए तो सूरज थम जाए, पैरों की धूल चाहे आंधी बन जाए। बहारे रुक जाए तो सूरज थम जाए, पैरों की धूल चाहे आंधी बन जाए। अपने जीवन को इतना अच्छा बना लो, अपने जीवन को इतना अच्छा बना लो कि जीवन की काली शाम सुख का सवेरा हो जाए, जीवन की काली शाम सुख का सवेरा हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अच्छे कर्मों के बदले अच्छा फल मिलने और बुरे कर्मों के बदले बुरा फल मिलने वाली बात पर संदेह है। हो सकता है उन्होंने स्वयं अच्छे काम करके बुरा फल पाने का अनुभव किया हो, या फिर अच्छे काम करने वालों को बुरा फल पाते देखा हो। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उम्मीद न होते हुए भी अच्छा फल मिला। आइए हम कर्म फल की स्पष्टता के लिए एक आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारा जीवन एक यो आकार की नली की तरह है। जन्म लेते समय इसके आधे हिस्से में अच्छाई भरी थी और आधे में बुराई। हम इसे आधा पुण्य और आधा पाप भी कह सकते हैं। पाप पुण्य के चक्कर में नहीं जाना चाहे तो हम इसे आधा सकारात्मक और आधा नकारात्मक भी कह सकते हैं। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो इस ट्यूब के अच्छाई वाले आधे हिस्से में अच्छाई जाती है और दूसरी तरफ से उतनी ही बुराई बाहर निकलती है, क्योंकि ट्यूब पूरी तरह भरी हुई है। अगर हमने किसी का बुरा कर दिया तो ट्यूब के बुराई वाले हिस्से में बुराई घुसी और दूसरी तरफ से उतनी ही अच्छाई बाहर निकल गई। यदि लगातार बुरा ही बुरा करते जाते हैं तो ट्यूब में भी अधिक बुराई अंदर जाती रहती है और अच्छाई बाहर निकलती रहती है। हम रिश्वत लेते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, क्रोध करते हैं, बुरा सोचते बोलते हैं, और एक दिन सारी अच्छाई ट्यूब से निकल जाती है। इसके बाद उस नली से केवल बुरा ही बुरा निकलता है। जिस दिन सारी अच्छाई निकल जाती है उस दिन हम चाहे कितने ही ऐशो आराम में रहते हो, बेचैन और विचलित रहेंगे। बड़े बुजुर्ग इसी को तो कहते थे कि पाप का घड़ा

तथा उसे फांसी की सजा हुई। जब फांसी लग पूछने को कान ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा। आप समझ, ये कहानी ही नहीं सच्ची कहानी के रूप में सुनाया है, कहीं न कहीं घटित हो का कहने का भाव यही है। बच्चे खराब करके बढ़ावा देंगे तो बोलिए कैसे अच्छे हो सकते हैं बच्चे, फिर लौट करके सारा दर्द, सारा तनाव, सारा दुख हमारे

के पास ही आना है। तो प्यारे श्रोताओं, हमें हमेशा श्रेष्ठ कार्य करना है और अपने बच्चों को भी अच्छा ही कार्य सिखवाना है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, तो जीवन में खुशियाँ किसके रहेगी? हमारे ही रहेगी ना, किसी और के पास थोड़े ना जाने वाली है। तो इस तरह अगर अच्छे संस्कार देंगे तो जीवन में खुशियाँ रहेगी और हमारा जीवन आनंद पूर्वक बीतेगा। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम और अल्प विराम के बाद और भी बातचीत करेंगे कि अच्छा करने से अच्छा कैसे पाए, बुरे का परिणाम बुरा क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहानी में सुनाया कि इस बच्चे को अच्छी शिक्षा शुरू से दे दी होती, किताब अगर वो चोरी करके लाया और माँ ने उसी समय एक चांटा लगा करके डांटा डपटा होता, तो उसको आगे जा करके वो डकैत नहीं बनता, फांसी नहीं मिलती। तो कहते हैं ना, बुरे का परिणाम बुरा हुआ। तो और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: सच्चाई की नाव कभी डूब सकती नहीं, सच्चाई की नाव कभी डूब सकती नहीं, सच्चाई तो सिद्ध है, सिद्ध की जा सकती नहीं, सच्चाई तो सिद्ध है, सिद्ध की जा सकती नहीं। तूफा हिलाने डुलाने की कोशिश तो करेगा, तूफा हिलाने डुलाने की कोशिश तो करेगा, मंजा माजी मंजिल पर होगा, रुक सकता नहीं, मंजा माजी मंजिल पर होगा, रुक सकता नहीं। तो प्यारे श्रोताओं, अल्प विराम के पहले आपसे बातचीत हो रही थी कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, और उसमें मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी कि किस तरह उस माँ ने अपने बेटे को उल्टी शिक्षा दी और बच्चा आगे चल करके डकैत बना और फांसी मिली। तो कहते हैं ना कि बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। एक घटना मेरे को और याद आ रही जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि हमारे पास एक डॉक्टर साहब का घर है। डॉक्टर साहब के घर में एक महिला अपने अच्छे कर्म को नहीं छोड़ती थी, उसे गरीबी मंजूर थी लेकिन गलत काम नहीं। एक दिन बाथरूम में उसे डॉक्टर साहब की सोने की अंगूठी मिली, उसे धोकर वापस घर गई। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है ये अंगूठी कितने की होगी? उसने कहा, दाम तो नहीं पता साहब, लेकिन बहुत महंगी होगी, सोना और हीरा तो महंगे ही होते हैं ना। उन्होंने पूछा, तुम इसे चुपचाप अपने पास रख सकती थी ना, तुम्हारे मन में ऐसा क्या आया जो वापस कर दी? उसने दोनों कानों को हाथ लगाया और कहा, साहब पिछले जन्मों की गलतियों के कारण इस जन्म में गरीबी देख रही हूँ, अभी भी नहीं चेती तो अगले जन्मों का चक्र बिगड़ जाएगा। उस महिला को उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, और जब डॉक्टर साहब ने ये बात मुझे बताई तो मैंने भी उस महिला को मन ही मन सलाम किया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है, आप उसे गाइड कर दे ताकि वह हाई स्कूल पास हो जाए। उन्होंने उसे एक शिक्षक के पास भेज दिया, लड़की प्रथम श्रेणी में पास हो गई। फिर लखनऊ में एक रूसी अध्ययन संस्थान की बहन से उसका परिचय करा दिया गया। लड़की ने रूसी भाषा में पढ़ाई शुरू कर दी, उसे सोवियत संघ की ओर से एक स्कॉलरशिप मिला। लड़की ने कभी ट्रेन तक नहीं देखी थी, एक शाम वह एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली आई और एरोप्लेन द्वारा मॉस्को पहुंची। भारत से बहुत लोग पढ़ाई के लिए वहां गए थे पर वापस चले आए, लेकिन उसने बदलते हुए समय और स्थान के साथ खुद को ढाल लिया। आज वह मॉस्को में बहुत बड़ा व्यापार समूह संभाल रही है। बाद में उसकी माँ उसके

पास चली गई। अब लखनऊ में उसका बहुत बड़ा बंगला है, दिल्ली मुंबई में तो है ही। उस महिला ने अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा, उसकी ट्यूब में ढेरों पुण्य समाते गए और दूसरी छोर से सारे पाप निकल गए। जिस दिन सारे पाप निकल गए, ट्यूब के पास निकालने का सिर्फ अच्छा अच्छा ही रह गया। ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम अल्पकाल के लिए दुखों को सहते हुए पुण्य के खाते को बढ़ाना चाहते हैं या पाप करते हुए अपने पुण्य के खाते को खत्म करके दुख को बार बार झेलना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर आधार है। तो प्यारे श्रोताओं, इस घटना से आप समझ गए होंगे कि एक महिला गरीब होने के बावजूद भी ईमानदारी पर रही, हर समय उसने अच्छा ही किया, उसके ईमान को नहीं बिगड़ने दिया। बाकी अपन समझ सकते हैं कि आजकल पैसे वाले का भी ईमान हिल जाता है जब सामने रखी हुई दौलत बड़ी कीमती होती है। तब कौन से रिश्ते कब बदल जाते हैं, धन संपदा को देखकर किसी का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम अच्छाई पर डटे रहेंगे, अपने ईमान पर डटे रहेंगे, तो एक दिन कहते हैं ना, अच्छा अच्छा करते हैं अच्छा बन ही जाएंगे। जैसे कि सत्संग में जाते हैं, संत लोग क्या कहते हैं, भले आपको नींद आवे लेकिन आप सत्संग में आइए और सत्संग का लाभ लीजिए। बहुत सी महिलाओं को नींद आती है तो संतों को पता है और महिला कहती भी रहती है कि संत महाराज निंदा प्रपंच करते तब तो हमको नींद नहीं आती, लेकिन सत्संग सुनने आते हैं तो नींद आ जाती। तो संत यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, नींद आती है तो आने दो, लेकिन सत्संग आप सुनने आओ। कहते हैं कि सत्संग के अगर दो शब्द भी कानों में चले गए और जीवन में बदलाव आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसी तरह प्यारे श्रोताओं, पाप का जब हमारे पूर्व जन्म का कोई भी हिसाब किताब हो कर्मों का, वो चुकता होने के बाद अगर हम इस वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म कर रहे होते हैं तो बुरे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के बाद हमारे साथ अच्छा ही होगा। जैसे कि उस महिला का हुआ, उस महिला ने ईमानदारी से डॉक्टर साहब के घर में काम किया, एक अंगूठी वो चाहती तो छुपा भी सकती थी। आप समझ सकते हो डॉक्टर के घर में किस चीज की कमी रहती है, तो वो छुपा भी सकती थी, लेकिन उसका ईमान उसने ये नहीं करने दिया और उसने डॉक्टर साहब को अंगूठी लौटा दी। तो उसकी एक दिन गरीबी समाप्त हो गई और उसकी बेटी इतने अच्छे आगे बढ़ पाई कि अच्छे अच्छे को उसने टक्कर दे दी और वो भी एक दिन विदेश चली गई। तो सोचिए अच्छाई का परिणाम कितना अच्छा होता है, और अच्छाई का परिणाम अच्छा होता है तब जब हम अच्छाई करते हैं। तो ये खुशियां हमारे पास ही लौट के आती है और हमारा जीवन सदैव खुशियों से भरपूर रहता है। तो प्यारे श्रोताओं, अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको सिखाते हैं नए नए व्यंजन। तो आशियाना के किचन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आशियाना के किचन में आज बनने जा रहा है काजू रोल। काजू रोल जो अक्सर हम त्योहारों पर बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि बनाना नहीं आता, इसलिए हम काजू कतली है, काजू रोल है, रेडीमेड बाजार से ले आते हैं और इस तरह त्योहारों पर काजू रोल व काजू कतली का खाने का आनंद उठाते हैं। लेकिन अगर हम घर पर बनाते हैं तो कितनी अच्छी बात है। घर पर बनाने से हर चीज थोड़ी सस्ती भी पड़ती है और स्वच्छता से बनाई जाती है। स्वच्छता से बनी हुई चीज सभी को अच्छी लगती है और अपने मन माफिक टेस्ट के अनुसार हम चीज बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी। इसलिए हर एक चीज घर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए काजू रोल के लिए सामग्री लेंगे। पेन और डायरी तो आपने ले ली है ना? ओके, तो मैं आपको जो सामग्री लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। पीसे हुए काजू लीजिएगा 2 कप, ठीक है। पिसकर लेनी है आपको 1 कप। देसी घी 2 छोटे चम्मच लीजिएगा। भीगी हुई केसर लेनी है।

है आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिएगा। तो ये हो गए काजू रोल की सामग्री। अब काजू रोल भी बनाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहोगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: idioma Duban, dotin, on internet, even Russia, even everywhere.
1: अभी आप आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है काजू रोल। काजू रोल की सामग्री तो मैंने आपको लिखवाई दी है, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा। काजू, शक्कर, देसी घी, केसर, चांदी का वरक और पिस्ता कतरन। ठीक है, तो ये हो गई सामग्री। अब कैसे बनाएंगे आइए वो भी सिखाते हैं आपको। शक्कर में आधा कप पानी डाल करके आप गैस पर रखिए और लगातार हिलाते हुए पकाइए। ठीक है, जब एक तार की चाशनी बनने लगे ना, तो इसमें काजू का पाउडर व देसी घी मिला करके तेजी से फिर से हाथ चलाते हुए पकाइए। जब मिश्रण किनारे छोड़कर एक जगह इकट्ठे होने लगे तो गैस बंद कर दीजिए। फिर आप मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके मध्यम आकार के रोल बनाइए और चांदी के वर्क, भीगी केसर, पिस्ता कतरन से इसको सजा दीजिए। तो ये बन गए हमारे काजू रोल। पुनः दोहरा रही हूँ काजू रोल की विधि को, बहुत ही अच्छी है, आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप शक्कर की चाशनी बना लीजिए, जिसमें आप शक्कर में आधा कप पानी डाल करके गैस पर रखिए और लगातार हिलाते हुए पकाइए। जब एक तार की चाशनी बनने लगे ना, तो इसमें काजू का पाउडर व देसी घी मिला करके तेजी से हाथ चलाते हुए पकाइए। हाथ चलाते हुए बोले तो अच्छी तरह हिलाइए, हिलाते हुए आपको पकाना है। ठीक है, और जब मिश्रण किनारे छोड़कर एक जगह इकट्ठा होने लगे तो बस आप गैस बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। फिर आप मध्यम आकार के रोल बनाइए और रोल बनाने के बाद आप चांदी के वर्क, भीगी हुई केसर, पिस्ता कतरन से सजा दीजिए ऊपर ऊपर से। तो ये बन गए हमारे काजू रोल। अब काजू रोल तैयार है तो बस भोजन तो आपने बनाया ही होगा, फिर देर किस बात की। लीजिए एक स्वच्छ थाली, स्वच्छ थाली में भोजन पिरसिएगा, काजू रोल भी रखिएगा और तुलसी पत्र जल के स्वच्छ ग्लास भर के रखिए और ऊपर से ढकिए स्वच्छ कपड़ा और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो काजू रोल का। अब लेंगे यहाँ पर छोटा सा विराम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
2: समय रिसागे उदय सिंगी मोटियार होवण दागे, वारी राजपूती मरोड़ अर सांगारी शक्ति उदयरे बाजुओं में देखण दाके, उठीने मेवाड़ री प्रजा सामंत अर जागीरदार बनवीर रे आतंक सू घणी धापियोड़ी ही दुखी हुई। छेवट मेवाड़ अर मारवाड़ रा कई मानिता सरदार भेड़ा होयर गुप्त मंत्रणा करता हा। उन समय उन्होंने ठा पड़ी कि मेवाड़ी सूरज उदय सिंह जिंदा है। पन्ना रे बलिदान री बातां घर घर होवण लागी। जद मेवाड़ रा सरदार ने पतो लागो के उदय सिंह आशा शाहरे घरे है, तद सरदार चूंडावत, सरदार महीदास, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़रा अखय सिंह और सांचोर रा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होयर कुंभल मेर गया। सगड़ा मिलुर उदय सिंह रो राज तिलक करियो। एण अवसर माथे सोनगढ़रा शासक अखय सिंह आपरी बेटी रो ब्याह उदय सिंह जी साथे करियो।

0: गौरवशाली गुजरी उदय सिंह रखवाड़ माँ ममतारी मूर्ति तू शक्ति प्रण पाल तू शक्ति प्रण पाल बलिदानी मायड़ थारो जीवन गीता सार पन्ना धाय पड़के है सूरज रे उणियार सूरज रे उणियार।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखे और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाए और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन,
3: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए अब सामान्य जानकारी देते हैं कि सर्दी के मौसम में कैसे दिल की देखभाल करेंगे। दिल की ही नहीं पूरे स्वास्थ्य की संभाल रखिएगा, या तो आती हुई सर्दी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है या फिर जाता हुआ मौसम हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन खास दिल का ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे दिल की संभाल करेंगे, चलिए ये जानकारी लेते हैं। जन्म से मृत्यु तक दिल धड़कता है। 24 घंटे काम करने वाला दिल कभी भी धोखा दे सकता है। अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और उपचार के पहले ही दिल धड़कना बंद कर देता है। दिल को चुस्त दुरुस्त रखना है तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, खान पान को थोड़ा सा बदलिएगा। तनाव दिल का कट्टर दुश्मन है मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल भी अनियंत्रित करता है। तनाव से बचिए, यह अवस्था है रोग नहीं। ब्लड प्रेशर दिल को कमजोर करता है। नमक का सेवन कम करिए, खाने में ऊपर से नमक नहीं लीजिए तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। दांतों को फ्लश और ब्रश करें। ओरल केविटी से एक बैक्टीरिया निकलता है जो रक्त में मिलकर के रक्त प्रवाह को बाधित करता है। रक्त का थक्का हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों के मसूड़े का संक्रमण रोग है उन्हें मुंह व दांत को रोज 2 बार सफाई करना चाहिए और चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए। नाश्ता कभी नहीं छोड़िए। सारी रात कुछ नहीं खाने के बाद सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो शरीर तनावग्रस्त होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। टमाटर में लाइकोपेन एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखता है। अनिद्रा तनाव बढ़ाती है और दिल को क्षति पहुंचाती है। हर व्यक्ति को 8 घंटे गहरी नींद सोना चाहिए। धूम्रपान से बचिए। अधिक धूम्रपान के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, रक्त प्रवाह में बाधा आती है, ब्लड प्रेशर और धड़कन बढ़ती है। आज के आपाधापी के दौर में बीमारियों से बचने के लिए व्यायाम, संतुलित खानपान और नियमित जांचों का शेड्यूल रखना बेहद जरूरी हो गया है। जांचों के माध्यम से मोटापा, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बीमारियों का पूर्वानुमान लगाकर हम इनसे होने वाले खतरों को कम तो कर ही सकते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, इस तरह अपने दिल का ध्यान रख सकते हो। इन सभी बातों पर गौर करेंगे तो हमारा दिल स्वस्थ रहेगा। दिल स्वस्थ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें अच्छा लगेगा। अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

ज्ञान कितना भी सुनते रहो, पर सच्चा ज्ञानी वह है जिसके हर कर्म में ज्ञान दिखाई दे। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। मेरी कविता का शीर्षक है वक्त की हवाएं। देखो हवाएं किस रुख बह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही, आने वाले वक्त के आसार कह रही, आने वाले वक्त के आसार कह रही। समझ से एकाग्र हो विचार करो, समझ से एकाग्र हो विचार करो, वक्त से पहले ही तैयार करो, फिर जीत तुम्हारी तय रही, फिर जीत तुम्हारी तय रही। देखो हवाएं किस रुख बह रही। ना तुम तबाही का जिक्र करो, ना तुम तबाही का जिक्र करो, योजना बनाओ न फिक्र करो, घड़िया अब चंद रह रही, घड़िया अब चंद रह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही। मुश्किल वक्त भी उससे डरता है, मुश्किल वक्त भी उससे डरता है, जो जरूरी है वह करता है, संग उसके ही विजय रही, संग उसके ही विजय रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही। तुम बड़ो संग शक्ति का दाता है, तुम बड़ो संग शक्ति का दाता है, वह किसी को निमित्त बनाता है, वह किसी को निमित्त बनाता है, और समझो क्या गहरी वजह रही। देखो हवाएं किस रुख बह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही, आने वाले वक्त के आसार कह रही, देखो हवाएं किस रुख बह रही।

0: ये क्या है हमारी पीते की तेरा गर्भपात हो जाएगा। मैं और गर्भपात नहीं होने दूँ, मैं और गर्भ से पहले भी होने दूँ। आपने मेरी बच्चे की ज्ञान दी है, आपने मेरी बार मैं आपको नहीं करने दूँ, इस बार मैं आपके और ना ही इस तरह को मैं स्वयं करूँगी।
1: ये
0: महारानी काढ़ा पीने से इंकार कर रही है, काढ़ा पीने से इंकार कर रही है। मैं अब और हत्या नहीं कर सकती, अब और कुछ भी हो गया, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को नहीं मरता, सुन सुन कर मैं तंग आ गई, सुन सुन मुझे तंग आ गई। मेरी बच्ची चाहिए, वो भी दिव्यति चाहिए।
1: ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस इस पहले बंद करो ये जानलेवा खेल। अब मुझे लड़का बच्चे चाहिए, चाहिए मुझे लड़का और लड़के ले। कोई फर्क नहीं दिखा लड़की में, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी बंद में तो लड़ रही हैं, लड़कों से भी जब बस बस अपार बंद करो देखिए, सब बराबर ही तो है ना, करो देखिए सब बराबर ही तो है ना।
0: भ्रूण हत्या करना मतलब भ्रूण आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं, कि क्या आप नहीं ना।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भगिनी निवेदिता के सामने अब प्रश्न था कि सेवा से आगे क्या, क्योंकि मामला केवल भूखे शरीर तक सीमित नहीं था, प्रश्न था आत्मा की स्वतंत्रता का। भारत की पीड़ा को उन्होंने देखा था, अब वो उसे महसूस भी करने लगी थी। निवेदिता अब सिर्फ एक सेविका नहीं थी, वो एक देशभक्त बन चुकी थी। उन्होंने अपने बाकी जीवन को अनुशीलन समिति, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी जैसे संगठन, जो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले लोग थे, उनकी सेवा में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। वो अपने ज्ञान से लोगों में ऊर्जा का संचार करती थी।
1: मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा जीवन में ब्रह्म को खोजने की बात करते थे। आज की सिचुएशन में स्वराज को खोजना ही ब्रह्म है, और स्वराज को खोजने के लिए एक महामंत्र है जो आपके संघर्ष में आपको जोश और शक्ति देगा। वो है वंदे मातरम। हमारे चारों तरफ माया है, हमें इस माया को भूलकर देश की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए सेवा ही ईश्वर की सेवा है। God is seeking your services more than anything.
0: इन्हीं दिनों कलकत्ता की हवाओं में एक गीत की सुबुगाहट होने लगी थी, एक ऐसा गीत जिसे गाने पर जेल और सुनने पर संदेह होता था। उस गीत का नाम था वंदे मातरम, और उसे एक वैचारिक हथियार बनाने वाले थे अरविंदो घोष, स्वाधीनता संग्राम के प्रखर चिंतक। इधर जैसे जैसे बच्चियां भगिनी निवेदिता से उनके जीवन के बारे में जान रही थी, उनकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, साथ ही बढ़ रहे थे उनके प्रश्न।
2: अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आपने मठ और क्रांति को एक साथ कैसे संभाला?
1: अच्छा प्रश्न किया तुमने लाली, ये सफर मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं अनुशीलन समिति जाने लगी तो मठ के वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रॉब्लम्स होने लगी।
3: तुम समझ नहीं रही हो निवेदिता, ये मठ व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को क्रांतिकारी नहीं, बल्कि उसे समाज के प्रति संवेदनशील बनाना है।
0: मठ के वरिष्ठ जनों की बात सुनकर निवेदिता का मन विचलित हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। फिर भी उन्होंने धैर्य से अपनी बात रखी।
1: स्वामी जी की आखिरी इच्छा थी स्वराज, इसीलिए मुझे पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
0: निवेदिता के दृढ़ निश्चय को देख उस व्यक्ति ने कहा,
3: यही तो डर है मुझे, कहीं तुम्हें मठ से अपना नाता न तोड़ना पड़े, क्योंकि मठ किसी क्रांतिकारी या राजनीतिक समूह से जुड़ना नहीं चाहता है। तुम्हें मठ छोड़ना पड़ेगा निवेदिता,
4: छोड़ना पड़ेगा।
1: जिस मठ को मैं अपना घर समझती थी, उसे छोड़ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, पर मैं अपने स्वामी जी की लास्ट विश को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आश्रम से जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले भी हुआ है मेरे साथ, जब मैंने अपना देश और अपना घर छोड़ा था। स्वामी जी ने मुझे मोह माया से डिटैच्ड रहना सिखाया था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत, उठो जागो, सचेत हो जाओ, और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। टू अवेक, to be alert and never stop till the goal is achieved.
0: भगिनी निवेदिता की कहानी सुनकर सबकी आंखें भर आईं। फिर निवेदिता ने कहा,
1: मठ से निकाल देने के बाद मुझे श्री अरविंदो ने अपने आश्रम अनुशीलन समिति में रहने का स्थान दिया। उन्होंने पूरे आदर सम्मान के साथ मुझे सभी आश्रम सदस्यों के साथ कार्यरत होने को कहा।
0: सन 1905 का समय था।

0: सम्मेलन समिति की बैठक थी जिसमें भगिनी निवेदिता भी उपस्थित थी।
1: हाँ अरविंदो, बताओ कि क्या अपडेट्स हैं?
2: युवाओं की शारीरिक मजबूती के लिए हमने उनके फिजिकल एक्टिविटी शेड्यूल को और भी सख्त कर दिया है। साथ ही समूह में विचार विमर्श और तर्क वितर्क के अभ्यास के लिए हमने स्टडी सर्कल्स भी चला रखे हैं।
1: That's great. Next plan क्या है?
2: उसी के बारे में विचार करने हम यहाँ आए हैं। दरअसल आगे की योजना के लिए हमें शास्त्रागार की भी जरूरत है, साथ ही बम बनाने और उसके रख रखाव के लिए हमें एक सुरक्षित स्थान भी चाहिए।
0: थोड़े सोच विचार के बाद निवेदिता ने कहा,
1: मेरा एक फ्रेंड है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। वैसे उसे प्लान्स और ट्रायल्स की फीलिंग समझने का शौक है। लेट्स सी अपने नेशन की फीलिंग्स को वो कितना समझ पाता है।
0: इस बैठक के बाद भगिनी निवेदिता अपने मित्र जगदीश चंद्र बोस से मिलने जाती हैं। उनसे स्वतंत्रता संघर्ष में साथ देने की अपील करती हैं, जिसे वो मान जाते हैं।
3: मैडम, मैं देश के लिए आपका साथ जरूर दूंगा।
0: समय के साथ साथ निवेदिता और उनके साथियों का दल और भी मजबूत होने लगा। विज्ञान के प्रयोगों के साथ साथ उन्होंने बम का प्रयोग भी करना सीख लिया। लेकिन उनके समक्ष अभी और भी कई चुनौतियां थीं। ऐसा ही हुआ साल 1906 में। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उनको अपनी बात रखने का आग्रह किया गया, लेकिन पार्टी दो पक्ष नरमपंथी और चरमपंथी में बटे होने के कारण उन्हें दोनों पक्षों को संतुष्ट करना था। उनके प्रभावशाली वाक्यों का ऐसा जादू हुआ कि जो काम दादा भाई नारोजी इतने वक्त से नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने करके दिखा दिया था। पार्टी के दोनों पक्षों को एक बात पर सहमत कर उन्हें एकजुट करवाया। इधर निवेदिता की बात सुनते हुए एक बच्ची ने पूछा,
4: अच्छा दीदी, आप कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के अधिवेशन का हिस्सा बने, क्या ये इतना आसान था? कोई कठिनाई नहीं आई?
1: नहीं, इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं इन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स से लगातार मिल रही थी, इसलिए अब CIT डिपार्टमेंट की नजर मुझ पर थी। पुलिस डिपार्टमेंट में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और मैं लगातार उनकी हेल्प ले रही थी टू इन्फॉर्म द अनुशीलन समिति मेंबर्स अबाउट द रेड्स। मैं गुप्तचरों की हेल्प से उनको इन्फॉर्मेशन एक लेटर के फॉर्म में भेजती थी और अरविंदो मेरे संकेत समझ जाते थे। बट देन अ डे केम जब हमारे मेंबर्स पकड़े जाने लगे, फिर मुझे लगा कि कुछ समय के लिए कलकत्ता छोड़ने में ही समझदारी है। हेंस आई हैव कम टू मीट माई डियर गर्ल्स, क्योंकि अब कुछ समय के लिए हमारा मिलना मुश्किल है। ये थी मेरी कहानी। आज मैं तुम्हें एक प्रार्थना सिखाऊंगी, पर वादा करो कि तुम लोग ये प्रार्थना हर दिन गाओगे।
0: प्रार्थना की बात सुनकर लड़कियों में असमंजस पैदा हो गया। उन्होंने निवेदिता से पूछा,
5: लेकिन दीदी, हम पहले से इतनी सारी प्रार्थनाएं गाते हैं, तो अब एक और क्यों?
1: क्योंकि सभी प्रार्थनाओं में हम गॉड से अपनी अच्छी हेल्थ, अच्छी स्टडीज और फैमिली के लिए प्रे करते हैं, लेकिन इस प्रार्थना में हम भारत माता के राष्ट्र की भलाई के लिए प्रे करेंगे। इस गीत को गाकर हम भारत माता की वंदना करेंगे। ये गीत हमें एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ ताकत का एहसास दिलाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये गीत भारत का हर बच्चा गाए। क्या तुम लोग इसे गाने को तैयार हो?
5: हाँ!
0: सभी लड़कियां भगिनी निवेदिता के साथ खड़ी होती हैं।
1: Please repeat after me. Vande Mataram.
5: Vande Mataram.
1: Vande Mataram.
5: Vande Mataram.
1: सुजलाम सुफलाम,
5: सुजलाम सुफलाम,
1: मलयज शीतलाम,
5: मलयज शीतलाम,
1: शस्य श्यामलाम मातरम,
5: शस्य श्यामलाम मातरम,
1: वंदे मातरम,
5: वंदे मातरम।
1: मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि वंदे मातरम जैसे महान गीत को मैं स्कूल प्रेयर्स में शामिल कर पाई।
0: और फिर धीरे धीरे कई और स्कूल्स में वंदे मातरम गीत गाए जाने लगे। उधर लड़कियों से मिलते हुए शाम हो जाती है और निवेदिता वापस अनुशीलन समिति आ जाती है। रात का समय था। कलकत्ता के अनुशीलन समिति में दिए की लौ कांप रही थी। भगिनी निवेदिता खिड़की के पास बैठकर आनंद मठ को पढ़ रही थी और वंदे मातरम गीत गुनगुना रही थी।

0: सिस्टर निवेदिता, आप जानती हैं कि ये गाना, इस गाने को गाना अब अपराध घोषित किया जा चुका है।
1: अगर मातृभूमि को प्रणाम करना क्राइम है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी।
0: यह गीत केवल शब्द नहीं है, यह ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती है। आप विदेशी हैं, आपको सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा।
1: मैं विदेश में जन्मी हूँ, पर अब मेरी कर्म भूमि भारत है, सोल भारतीय है, और आत्मा पर कोई शासन नहीं कर सकता।
2: उस क्षण निवेदिता ने वंदे मातरम को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जी लिया।
1: वंदे मातरम किसी भूमि का गीत नहीं, ये उस माँ की पीड़ा है जो अपने बच्चों को पराधीन देखने से दुखी है। जब तक ये पीड़ा है, वंदे मातरम अमर रहेगा। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, और ये गीत सही मायनों में भारत के राष्ट्र को दर्शाता है। ये धरती मेरी कर्म भूमि बन गई है, और ये देश मेरा घर। मैं हमेशा ही यहाँ रहना चाहती हूँ, अनंत काल तक।
2: अब निवेदिता केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रही, वो युवाओं की चेतना, गुप्त सभाओं और विचारों की क्रांति का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने अपनी कहानी सुनाते सुनाते बच्चियों से कहा,
1: तुम्हें तलवार नहीं उठानी, सिर्फ अपना डर छोड़ना है। वंदे मातरम कहते समय आईज नीचे मत करना।
3: दीदी दीदी, अगर हमें जेल हो गई
1: तो समझना मदर इंडिया भारत माँ ने तुम्हें अपनी गोद में छुपा लिया है।
2: भगिनी निवेदिता का मत था कि भारत की दुर्दशा का बड़ा कारण विदेशी गुलामी है। बंग भंग का उन्होंने प्रबल विरोध किया। क्रांति गीत वंदे मातरम को अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत बनाया, अनेक पुस्तकें लिखी, प्लेग पीड़ितों की अथक सेवा की, और फिर एक दिन शरीर ने जवाब दे दिया। वो 13 अक्टूबर 1911 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जब भगिनी निवेदिता ने अंतिम सांस ली। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति

याद आती है वो चेतना जिसने भगिनी निवेदिता जैसी विदेशी स्त्री को भी भारत माँ की बेटी बना दिया। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती। वंदे मातरम गीत कैसे बनी एक पूरे राष्ट्र की आवाज, कैसे एक गीत बना डर का सबसे बड़ा शत्रु, और कैसे ब्रिटिश सत्ता इस गीत से कांप उठी, अगले अध्याय में हम जानेंगे उस गीत की यात्रा जो जेल की दीवारों से टकराई, फांसी के फंदों तक पहुंची और फिर भी अमर हो गई। अगर आज भी वंदे मातरम सुनकर आपका सिर अपने आप झुक जाता है, अगर आपकी आंखों में नमी और सीने में आग एक साथ उठती है, तो समझ लीजिए ये गीत अब भी जीवित है। और जब तक ये जीवित है, भारत की आत्मा कभी पराजित नहीं होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक गीत, एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल, ये अपना भाषा है क्योंकि आदिवासी भाषा है। तो हमें बहुत खुशी होता है जब गांव और अंचल में जाते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सब तक पहुंचे, इस कोशिश को लेकर जब रेडियो मधुबन गांव-गांव ढाणी ढाणी और गली गली शहर शहर में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी बहुत कुछ मिलता है और सभी का बढ़ चढ़ कर हिस्सा भाग लेते तो हमें खुशी मिलता है। तो इस कार्यक्रम को आज सजाने के लिए हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रांगण में जो पीएम पार्क है, दादी प्रकाशमणि पार्क, तो उसी में आज बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी उपस्थित है। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए। आज थोड़ा दूर से सभी जो आए तो उनको भी एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आसपास क्या गतिविधि हो रहा है, खासकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या गतिविधि वो आज आप तक पहुँचाएंगे। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ बहुत सारे भाई बहन उपस्थित है। तो पहले शुरुआत करते हैं, हमारा भाई साहब उपस्थित है तो आपको स्वागत है रेडियो मधुबन परिवार की ओर से और खासकर हमारा ग्रामवासियों की तरफ से, अंचलवासियों की तरफ से। आपका परिचय प्लीज।
1: मेरे शरीर का नाम विपुल है और ऐसे मेरा जो गांव है उसका नाम कंथारिया गांव है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं सूरत में हूँ, वहाँ मेरा अपना बिजनेस है और मैं लास्ट 36 साल से ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और ये राज्यों का अभ्यास मैं कर रहा हूँ अपने जीवन में।
0: राज्यों क्यों आवश्यक पड़ा आपका जीवन में, और हमारा जो ग्रामवासी सुन रहे अंचलवासी सुन रहे उनके लिए राज्यों कितना आवश्यकता है, उनका जीवन शैली में क्या परिवर्तन, जैसे आप अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या आपका परिवर्तन हुआ ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद?
1: ईश्वरीय ज्ञान से और खास करके जो यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर एक मन की सच्ची शांति जो आज हर एक चाहते हैं। आज देखते हैं कि हर एक के जीवन में इतनी कंपटीशन है, कंपैरिजन है और इतना फास्ट लाइफ है कि जीवन के अंदर टेंशन, तनाव, डिप्रेशन और बीमारियां वो बढ़ती जा रही है और मेन इसका कारण है मेंटल। हाँ, तो हमने देखा कि राजयोग से हमारा जो जीवन के अंदर हम रिलैक्स रहते हैं, हाँ, और हम संतुष्ट, हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज है, गुण है, हाँ, जैसे संतुष्टता है, मधुरता है, हर्षित मुक्ता है, सहनशीलता है, ये सब दिव्य गुण भी हमारे जीवन में आते हैं। तो परिस्थितियां तो आती है, हर एक के जीवन में आती है, गांव में रहे, शहर में रहे, परिस्थितियां तो आती है, लेकिन उसको हम सहज भाव से कैसे उसको हम सामना करें, तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो समझने की शक्ति भी आती है, सहन शक्ति भी आती है, और हर एक के साथ हम कैसे एडजस्ट करें। हाँ, जैसे कंपनी में काम करते हैं 10 है, 15 है, हाँ, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे है, तो हर एक को हम कैसे चलाए, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। तो इसलिए हमारा जीवन एकदम इजी, सरल रीति से चलता है।
0: विपुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल भाई के लिए ताली बजा। सुंदर प्रस्तुति दिए और सूरत से और गुजराती होते हुए भी आज पूरा हमारा जो आसपास गांव के जो श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि आबू रोड जो है राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर में है, तो और एक हमारा साथ कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको भी स्वागत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम?
2: ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है भिखू भाई।
0: अच्छा,
2: मैं ज्ञान में 14 साल से हूँ और मेरा गाँव है भावनगर। ठीक है, मेरा वैसे जॉब है, सरकारी कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और उसमें आप सब जानते हो कि कितना सारा काम रहता है। आज की जो परिस्थिति है, तनाव ज़्यादा बढ़ता है, जो कुछ भी है, तो उसमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से सेल्फ रियलाइज आप नहीं करोगे तब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए फिर मुझे ऐसा संकल्प हुआ, बाबा से मिला, बाबा का ज्ञान लिया और आज इतनी सारी खराब परिस्थिति है, जैसे कोरोना अभी पास हुआ, फिर भी मैं निश्चय और निश्चिंत था। तो उसी वजह से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप सबको कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा की याद में रहो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय में जो गतिविधि हो रही, जैसे आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खासकर सूरज भावनगर से हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भाई बंधु आए हैं, तो उनको भी आज सम्मान मिल रहा है, उनका आवाज़ भी आज दूर दूर तक पहुंच रहा है, ये हमारे लिए खुशी है। हमेशा तो गांव और अंचल का आवाज़ हम सुनाते थे, लेकिन आज थोड़ा हट के कुछ नया आध्यात्मिक ज्ञान जो कि हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है और जीवन परिवर्तन करने के लिए राजयोग कितना आवश्यकता हम भलीभांति अनुभव करते हैं और आप लोग भी जानते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आज जब रेडियो मधुबन खासकर पीएम पार्क में पहुंचे, यहाँ के जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व

0: विद्यालय में बहुत आगंतुक आते हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भाई बहन, अपने जीवन को सरस सुंदर सहूलियत बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक बहन को हम माइक देते हैं, वो भी कुछ बात बताएंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया कि गीत हो जाए गीत न हो, और हमारा श्रोता मित्र को खुशी मनोरंजन कराने के लिए गुजराती गीत हो चाहे हिंदी गीत, जो आपको पसंद है।
1: मेरा शरीर का नाम वर्षा बेन है और मैं सूरत से रहने वाली हूँ। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसाराणा, ओ हंसाराणा, तो चुगले चुगले राजयोग का मोती, तू चुगले चुगले राजयोग का मोती।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पीएम पार्क में। बहुत सारा हमारा भाई बहन आए हैं ब्रह्मा कुमारी दूर से आने के लिए, राज्य को सीखने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ सुंदर बनाने के लिए। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा दीदी जी उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी, तो अपना परिचय खुद देंगे। दीदी आप अपना परिचय दीजिए पहले।
2: इस शरीर का नाम सावित्री है और 42 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और बहुत बड़ों की बाप दादा की भी पालना ली है, मधुबन की भी ली है, पांडव भवन की भी ली है, बाबा से वरदान भी पाए हुए हैं और 20 साल से सेंटर पर समर्पित रूप में रह रही हूँ। तो अभी मैं अपने हाथ से बनाया हुआ जो गरबा है गरबा गाऊँगी गुजराती में।

0: ओम शांति।
1: ताली बजा देवी के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इतने सुंदर प्रस्तुति दिए। हमारा श्रोता मित्र आज तो झूम गए होंगे मधुबन रेडियो में और मधुबन का ही गीत। चलो मधुबन मैंने जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, रेडियो मधुबन में मधुबन का ही महिमा हो रही है, क्योंकि जो मधुबन है परमात्मा का कर्तव्य भूमि है, दिव्य भूमि है और देवी देवता का वासस्थान कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत में मधुबन है और मधुबन आने के लिए सब तरसते हैं, पूरा विश्व का ये मधुबन है, सभी लोग आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीदी जी को, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए और जैसे सभी को पूरा मधुबन गीत सुनते सुनते सब मधुबन आ गए जो नहीं आए साकार में, आप तो आ गए मधुबन, जो नहीं आए हैं जो रेडियो का माध्यम से सुन रहे हैं वो भी अपना भावना को लेकर पहुंच जाते हैं और खुशी लगता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक अब तो पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आज खासकर गुजराती और हिंदी मिक्स आपको सुनने को मिल रहा है और इसका पहले हमारा दीदी लोग भाई लोग ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपना आवाज सुनाए, कोई अनुभव सुनाया, कोई गीत गाए, लेकिन छोटी सी मासूम दोनों तोतली तोतली आवाज में सुनाएंगे और वो भी गुजराती में, है ना? तो नाम बताइए।
4: रोशनी।
3: आज तो पूरा रोशनी करेगा। तुम्हारा नाम?
4: सुहानी। सुहानी।
3: अरे रोशनी और सुहानी को वेलकम करते हैं आज का कार्यक्रम में। छोटे से बच्चे हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारी है और ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं और घर में मम्मी चलती तो मम्मी को देकर बच्चे भी आ जाते, टोली खाते हैं और बाबा का बोली भी सुनते हैं। तो गीत गाएंगे कुछ? हाँ, अनुभव सुनाएंगे। और शिव बाबा को जानते हैं आप?
4: हाँ जी।
3: कितना साल से शिव बाबा को जानते?
4: बस 9 साल से।
3: और आपका?
4: 9 महीने से।
3: 9 महीने से। 9 महीने से। और उनका उम्र अभी 11 साल होगा, है कि नहीं? 7th क्लास। मधुबन आकर आपको बाबा घर कैसे लगा?
4: हमें बाबा का घर इतना अच्छा लगा कि यहाँ आके बहुत शांति मिले मुझे। जितना घर पे अच्छा नहीं लगता था इतना इधर अच्छा लगता है।
3: मम्मी पापा यहाँ पर कौन है तुम्हारा?
4: यहाँ मेरा बाप है।
3: इसी बाबा है, है? और तुमको क्या लगा?
4: अच्छा लगा इधर आकर।
3: और घर में कौन कौन ज्ञान में चलते शिव बाबा को जानते?
4: पापा मम्मी और मेरी बहन और मैं।
3: हेलो भाई, कैसे लगा बाबा का घर स्वागत? कैसे लगा
4: जी?
3: खाना पीना ठीक से मिल रहा? ब्रह्मा भोजन?
4: हाँ।
3: मिल रहा टोली?
4: मुझे बाबा की टोली एक गोली के तरह लगती है।
3: बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं?
4: हाँ जी, हम अपने जीवन का अनुभव सुनाएंगे, हम कैसे ब्राह्मण जीवन में हमारा जन्म हुआ। हम लोग मम्मा के दिन पे घर पे थे, मम्मी ने बोला कि आज मम्मा का दिन है तो ब्रह्मा कुमारी इसमें टोली रहेगी, माना प्रसाद होगा। तो पूरा दिन बारिश हुआ, फिर हमने शाम को बारिश बंद हुआ, हमारी बहन जी यानी कि मौसी की लड़की के साथ हम लोग सेंटर पे गए, फिर दीदी ने टोली खिलाई और बोले कि कल से आना शुरू कर दो। तो हमने दूसरे दिन से चालू कर दिया जाना। और फिर मेरी धारणा कैसे चालू हुई कि मेरी दीदी थी इतनी पक्की धारणा करते हैं कि उनके पास से मैंने सीखा है धारणा करना।
3: धारणा क्या होता है?
4: धारणा माना अन्न शुद्धि नियम।
3: अन्न शुद्धि क्या है?
4: लहसुन प्याज नहीं खाना और बाहर का चीज नहीं खाना, ये सब मेरी दीदी ने सिखाया था, मेरी टीना दीदी थी।
3: आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? चलो बहुत अच्छा। ज्ञान अच्छा लगता है
4: जी?
3: क्या अच्छा लगता है? ज्ञान सुनाओ तो। श्री बाबा का एक मूल्य का पॉइंट सुनाओ।
4: मन मना भव।
3: अरे वाह, मन मना भव, जो कि गीता का सार है, मन मना भव मध्याजी भव, है ना? मन में परमात्मा को जब याद करेंगे तो मध्याजी में विष्णु जैसे बन पाएंगे, लक्ष्मी जैसे बन पाएंगे, है कि नहीं? सत्य जी में लक्ष्मी बनेगी ना नारायण बनेगी?
4: लक्ष्मी।
3: तुम क्या बोले? नारायण।
4: हाँ जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। चले, और कुछ बोलना है?
4: हाँ, हम रोज मुरली सुनते हैं, हमारी मम्मी जाती है इसीलिए, और मुझे अपने कड़ोदरा सेंटर की दीदी बहुत अच्छी लगती है।
3: मम्मी का नाम तो बताओ।
4: मनीषा बहन।
3: बहन हो गया मम्मी ने? बहन, वाह, इसको कहते पक्का धारणा वाले, मम्मी को भी बहन बना दिया, है कि नहीं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, है ना? संस्था में जब आते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। अच्छा।

0: आज भिन्न भिन्न आवाज को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक ही आवाज तो हमेशा सुनते थे, लेकिन आज सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन को पवित्र रहकर श्रेष्ठ बनाते हैं, उनका आवाज आप तक पहुंच रहा है। और ये परमात्मा का देन है, परमात्मा का हम सब संतान आत्मा है। तो और एक आत्मा वो अपना आवाज को सुनाएगी गुजराती में, तो क्या नाम है?
1: नाथी बेन।
0: अभी गुजराती में है, चलो शुरू करिए।
1: उतारो यार तीजियो भगवान के।

0: डर जाते हैं, पसीना निकल जाता है, लेकिन इतना उम्र होने के बाद कहाँ तक पढ़ाई किया? पढ़ाई किए कुछ
1: नहीं,
0: भगवान के पास पढ़ाई कर रहे हैं।
2: भगवान पढ़ा वैसे,
0: भगवान पढ़ा रहे, अभी पढ़ने आए। ये भी एक राज है, तो दादी माँ का आवाज सुन रहे थे, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कौन रह गया जो कुछ बोलना चाहेंगे? अरे वाह,
3: ओम शांति। आ शरीर नु नाम मनीषा छे, हूँ सूरत थी छू, आंबा तलावड़ी सेंटर में थी। अपने स्त्रीओं ने छे ने घना बधा टेन्शन होय छे लाइफ में। हूँ एक हाउस वाइफ छू, एक माँ छू, अने कोई पण माँ होय ने एनी एक चिंता हमेशा होय ने बाळकोने लईने, કે મારા બાળકોના સંસ્કાર છે ને કોઈ દિવસ બગડવા ના જોવે। અને આજકાલમાં, આજકાલની લાઈફમાં જે આપણો માહોલ બગડેલો છે એ તો બધી માનો આ વિષય છે કે મારા છોકરાના સંસ્કાર હું કઈ રીતે સુધારું, એનામાં કોઈ સંસ્કાર એના કોઈ બગડવા ના જોવે। એના માટે મારો એક અનુભવ હું તમને કહેવા માંગીશ કે શિવ બાબા, આ એક છેલ્લા એક વર્ષથી હું બ્રહ્મકુમારીઝને ફોલો કરું છું અને શિવ બાબામાં મને વિશ્વાસ આવ્યો છે। એના ઘણા બધા એવા અનુભવો છે જેના લીધે મને તેના પર વિશ્વાસ આવ્યો છે। હું ખાલી એટલું કહેવા માંગીશ કે તર્ક વિતર્કને છોડો, કે ભાઈ આપણે હંમેશા તર્ક વિતર્કમાં લાગતા હોઈએ કે હિપ્નોટાઇઝ કરે છે, આવું હોય તેવું હોય, એ લોકો આપણને આમ કરે છે, એ બધું છોડો। બસ ખાલી એકવાર આવીને શિવ બાબાના દ્વારે આવીને એકવાર અનુભવ કરો, એ તમને અનુભવ આપશે કે તમારી લાઈફના ઘણા બધા ટેન્શનો, ઘણી બધી એવી પરિસ્થિતિઓ હોય જેના રસ્તા તમને એ બતાવશે, તમને ખબર બી નહીં પડે। બસ ખાલી હું એટલું કહેવા માંગુ છું, એકવાર તમે આવો અને શિવ બાબાને ફોલો કરો। ઓમ શાંતિ, થેન્ક યુ।
0: મનીષા કો બહુત બહુત ધન્યવાદ। રાજયોગ અભ્યાસ કરતી હૈ ઓર જીવન મેં જો અંધવિશ્વાસ રૂઢિવાદી કો ત્યાગ કરકે કિસી સુની સુનાઈ બાતો મેં જબ તક અનુભવ નહીં કિયે, जब तक नहीं देखे किसी सुनी सुनाई बातें में विश्वास नहीं करना है और अपना अनुभव आधार से वो अपना बताई। सही में परमपिता परमात्मा का ये दिव्य जो भूमि है उनसे अनुभव करते हैं, बहुत खुशी लगता है। जीवन परिवर्तन होने का एक यही एक मौका है, तो हमारा ग्रामवासी सुन रहे हैं तो वो भी कभी मौका मिले तो ज़रूर राजयोग अभ्यास करें और शांतिवन मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुँचे, ये हमारा सुभावना है। तो कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए और एक स्वइच्छा से एक कुमार आ गए, तो कुमार जीवन में तो क्या नाम है और एक आदर्श गांव के लिए सभी के लिए राजयोग कितना आवश्यकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सदा के लिए राजयोग से ही मिलता है, जो आप लोग का अनुभव से हम सुन रहे थे अभी तक, हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे। तो खासकर गांव के लिए, शहर के लिए राजयोग जो आप कर रहे हैं तो वो कितना कारगर साबित होगा, राजयोग से हमको क्या फ़ायदा होगा गांव को और शहरों को, वो चीज़ आप बताइए। आपका स्वागत है, आपका परिचय प्लीज।
4: इस शरीर का नाम अभी है और राजयोग से मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट वो हुआ है कि मैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा बहुत करता था, तो मैं अब तो बहुत कम गुस्सा करता हूँ। और ऐसे तो मैं तीन चार महीनों से ज्ञान में हूँ, और जो साक्षात्कार मुझे हुआ था प्रकाश मणि दादी का जो स्तंभ है ना, वहाँ पे मैं सुबह योग कर रहा था, तो जो मणि है ना उसमें मुझे जानकी दादी दिखे मणि के अंदर। हाँ, और दूसरी बात कि वो अव्यक्त लोक है ना, उसका जो अव्यक्त स्तंभ है उसकी मणि के अंदर मुझे जानकी दादी, बाबा और मम्मा तीनों दिखे। अब ये कैसे हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है, फिर भी ये साक्षात्कार तो माना जाता है, क्योंकि वो किसी किसी को ही दिखता है, सभी को तो नहीं दिखता है। ओम शांति।
0: तो श्रोता मित्र, आप कभी अंदर जो शांतिवन में आएंगे, ये तो पूरा बाहर से आए देखे हैं, जैसे अव्यक्त लोक, प्रकाशमणि स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ये जो कि हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो मुख्य हेड चीफ थे दादी प्रकाशमणि, पहला प्रशासिका, और इसका बाद और शक्ति स्तंभ जो जानकी दादी, गुलजार दादी जो अव्यक्त लोग हैं, ये तीनों का जो नाम लिए, वो तीन चीफ थे, अभी तो नहीं है, लेकिन ये पूरा ईश्वर विश्वविद्यालय को जो पिलर कहते हैं, तीन स्तंभ रखा हुआ है, शक्ति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ और अव्यक्त लोक, जहाँ से वो अनुभव आधार से अपना बात बताए। तो कोई अंधश्रद्धा नहीं और कोई बोली बोली मैंने कोई कहने पर नहीं, वो खुद अनुभव किए, जिसका आधार से अनुभव लेकर जाते हैं यहाँ पर, जो भी आते हैं अनुभव लेकर जाते हैं। आप भी इस मौका को कभी जब मौका मिलेगा जरूर आकर अपना अनुभव ले, ये हमारा सुभावना है। रेडियो मधुबन हमेशा आपको आने में सहयोग करेगा। धन्यवाद।

अगर एक सवाल का एक जवाब होता, या फिर हर सवाल का एक जवाब होता, तो क्या होता? अगर भगवान ने दुनिया में एक ऐसी चीज़ बनाई होती जो पाते ही ऐसा लगे कि खजाना मिल गया, जिसको जीवन में शामिल होने से ऐसा लगे कि जीवन सफल हो गया, जीवन स्वर्ग बन गया, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिंदगी में हो जिसके बस माथे पर हाथ रख देने से सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो कौन है? जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ हर उस माँ की, या हर उस शख्स की जिसने माँ का किरदार निभाया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी हमारी बड़ी बहन, कभी कभी हमारे पिता, कभी हमारे चाचा, मामी, मामा, कोई भी हो सकता है जिसने हमें माँ बन के प्यार किया। माँ कौन होती है? जो सेल्फलेस प्यार करती है, पालना करती है, जो उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ें ये कामना करती है, ऐसी होती है ना माँ? तो दोस्तों, उस माँ को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं। वैसे तो कोई एक दिन नहीं होता माँ को सेलिब्रेट करने के लिए, या माँ को ये बताने के लिए कि आप क्या हो मेरे लिए। हालांकि कई बार हम इसे शब्दों में बयां कर भी नहीं पाते हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तभी तो बहुत सारे गाने बने हैं दोस्तों जो हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। चलिए, फिलहाल मैं आपको लिए चलती हूँ ऐसे ही एक गीत की ओर, बहुत सुंदर है, और उसके बाद हम मधुबन अनप्लग्ड में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। रेडियो मधुबन के साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बुआ ऑल ओवर सुनाओ ना।
1: हाँ बेटा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी मम्मीज को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, यानी ये संगीत का सफर है, ये संगीत से प्यार का जो हम अनुभव करते आए हैं उसे एक ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं। हर हफ्ते हम आ जाते हैं रात को 8 से 9 आपके समक्ष लेकर बहुत सुंदर सा, ये मीठा सा, प्यारा सा, मधुर सा संगीत का सफर। दोस्तों आज का दिन और स्पेशल है, मदर्स डे है, यानी हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं, दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं हर उस माँ का या हर उस व्यक्ति का जिसने माँ का रोल निभाया है हमारे जीवन में। कोई ना कोई ज़रूर रहा होगा दोस्तों। कई बार हमें महसूस होता है कि हमारे बड़े भाई बहन ही ऐसे हैं जिन्होंने माँ की तरह हमें बड़ा किया या माँ की तरह प्यार किया, तो उन्हें भी मदर्स डे कह सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए अब बातें कम और संगीत ज़्यादा, भाई हमारे नारा है क्योंकि कार्यक्रम है संगीत वाला। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में विवेक जी। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू जी।
0: विवेक जी मैं चाहूंगी सबसे पहले, वैसे तो मुझे लगता है आप हमारे श्रोताओं से कई बार मधुबन अनप्लग्ड में जुड़ चुके हैं
1: जी,
0: और आप बहुत सुंदर सेवाएं भी करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या फिर आप चाहे गीत संगीत की बात हो या पोएट्री लिखने की बात हो, बहुत कुछ आपके अंदर हुनर छुपे हुए हैं, इससे तो हम परिचित हैं। आज मदर्स डे पे आप क्या फील कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: जी वैसे तो मैं माँ बाप का जो ऋण होता है वो चुकाया नहीं जा सकता, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता है तो वो पर्टिकुलर डे पे एक्सप्रेस करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो हमने माता जी को फोन लगाया, हमने माता जी को हैप्पी मदर्स डे बोला तो माता जी ने भी बड़ा थैंक यू बोला, तो उसको भी एक अंदर से अच्छा फील आया होगा जरूर कि भाई कुछ भी हो, मीन्स एक तो लगा उसको कि अपने बच्चे ने हमको अप्रिशिएट किया है कुछ भी, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा करने से हमको कोई अप्रिशिएट करे तो उनको भी लगता होगा, क्योंकि आजकल कितने भी बुढ़े हो जाए अगर वो थोड़ा सा मीडिया से कनेक्टेड है तो उनको पता चल जाता है आज मदर्स डे, आज फादर्स डे है, जो भी डे है,
0: आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाता है फटाफट।
1: जी जी, तो उनको पता रहता है कि आज मदर्स डे है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी हमको कभी फोन करे, क्योंकि जब से ये फोन आया है सब लोगों को दूर कर दिया इस फोन ने, तो हो सकता है कि उनको भी थोड़ा बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ होगा। और मुझे भी फोन करने के बाद आपने जो याद दिलाया मुझे, तो उसके बाद में मुझे भी थोड़ी सी एक भावना जागृत हो गई कि नहीं फोन करना चाहिए, तो अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा।
0: अगर मैं आपसे पूछूं अपनी माँ की सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है?
1: मेरी माँ की सबसे अच्छी क्वालिटी ये मुझे ऐसी लगती है, बचपन से मैं देख रहा हूँ कि जो भी कोई घर पे आए वो भूखा ना रहे, और हम भी बच्चे और हमको भी उन्होंने यही सिखाया कि मेहमान भगवान का रूप होता है, उसको कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। कभी भी आए, रात को 12 बजे क्यों ना आए, उसका फर्ज अलग है, लेकिन अपना फर्ज है कि उसको पूछे और उसको कुछ बना के खिलाए तो वो संतुष्ट होके अपने घर से जाए। और मैंने देखा कि जो खाना खिलाने में ज़्यादा भावना रखते हैं, खिलाते हैं, दिल से करते हैं, उनके घर में किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। तो हमारे घर में भी यही है, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि जो भी आए उसको अपने हाथ से बना के खिलाओ, और आज भी हमको यही आदत है, हम जितना हो सके और जो भी हो सके हम करने की जरूर कोशिश करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है।
0: मतलब ये संस्कार आप में माँ से आए
1: जी,
0: है ना? तो क्या आप माँ से कुछ कहना चाहेंगे, मैं रेडियो के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आपने उनसे कहनी चाहिए या नहीं कह पाए?
1: पर्टिकुलरली मैं मेरी माँ को तो अभी सब कुछ बोल दिया, मैं ज़्यादा तो माँ बाप से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, उनके लिए मेरे जो कर्तव्य होते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इन जनरल मैं सभी जो बच्चे हैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक होता है कि उनका कर्तव्य होता है, और एक और दूसरी चीज़ होती है कि उसका एक धन्यवाद देना होता है। कर्तव्य तो जब हम लोग माँ बाप बनते हैं तब हमको पता चलता है कि कर्तव्य क्या चीज़ होता है और एप्रिसिएशन क्या चीज़ होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो भी माँ बाप है, आप जिस किसी फीलिंग से, जिस किसी फॉर्मेट में आप बताना चाहते हो, बाय टेक्स्ट, बाय मैसेज, बाय ऑडियो क्लिप, किसी भी चीज़ से आप उनको जरूर बताइए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज के माँ बाप लोगों को पता चल जाता है कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, तो एक्सपेक्टेशंस रहती है थोड़ी सी, तो उस एक्सपेक्टेशंस को हम, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा उनसे बात कर लेना चाहिए, भले मदर्स डे फादर्स डे हैप्पी मदर्स डे नहीं बोले, लेकिन उस दिन उनको जरूर फोन करें। और ये मैं खुद को भी आज आपके रेडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि जो रोज कम से कम एक बार तो भी अपने माँ बाप को फोन करते हैं। माँ को तो जरूर करते, भाई होगा तो माँ को करते हैं, बच्ची होगी तो पिताजी को करते हैं। मुझे तो ऐसा होता नहीं, मेरे से मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि रोज क्या बोले, कुछ नया हो, कुछ अलग हो तो बात करे ना, कि बस खाना खाया क्या, ये हुआ कि हाँ किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई अलग सा ओकेजन हुआ है रेगुलर से तो बात करने का कुछ बनता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आदत मेरी भी मुझे बदलनी चाहिए। नहीं, मैं तो 15-15, 20-20 दिन फोन नहीं करता हूँ, लेकिन करना चाहिए एटलीस्ट, नहीं कुछ तो अल्टरनेट डे, 7 days, वंस इन अ वीक, ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए, उनके हालचाल पूछने चाहिए।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है अब विवेक जी, आप हम जिस जनरेशन के हैं, हम सभी हम ऐसे बड़े हुए हैं कि हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने माता पिता के साथ। हम उन्हें ये नहीं कहते कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, या कुछ बोलते नहीं हैं कभी। वो शायद हम उन पे गुस्सा कर सकते हैं अगर वो अपनी दवाई टाइम पे ना खाएं, या हम पे गुस्सा करें तो, या कोई बात ना माने, हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं तो हम उनको टोक सकते हैं, उनसे नाराज हो सकते हैं, पर उनसे ये नहीं कह पाते कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
1: लेकिन उनसे नाराज होना, वो जो दवाई नहीं देते उनसे नाराज होना, इसमें भी एक प्यार छुपा है। और हो सकता है कि वो गुस्सा होना कितने लेवल तक के हम करते हैं, तो उसमें भी उनको अच्छा लगता है कि ये केयरिंग है।
0: बिल्कुल,
1: वो भी हो सकता
0: वो भी
1: अच्छा फील करते होंगे, वो हमारे तरफ ध्यान देते हैं तो। लेकिन हर चीज हर वक्त गुस्से से ही नहीं करनी चाहिए, ये मैं खुद को भी समझाता हूँ। तो कुछ कुछ वक्त प्यार से भी बात कर लेनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अभी याद आया, मदर्स डे के लिए ही नहीं, अभी वो बूढ़े होने के बाद में बच्चे सरीके जरूर करते हैं।
0: हाँ,
1: उनको थोड़ा सा जैसे बच्चों को हम इग्नोर करते हैं कि चलो कोई नहीं बच्चा है, उस हिसाब से भी माँ बाप को अभी थोड़ा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि 60 के बाद में वो थोड़ा सा रिवर्स गियर डाल के वो बच्चों सरीका करना शुरू करते हैं, उनको बहुत कंजूसी आ जाती है, उनमें हर चीज में पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, और उनको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि वो हमको ऐसा समझते हैं कि इनको कोई नॉलेज नहीं है आज की दुनिया का, क्योंकि वो बहुत पुराने लोग हैं, उनको उनके पास में बहुत अनुभव है। लेकिन मैं इस रेडियो के जरिए, आपके रेडियो के जरिए माँ बाप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बच्चों के ऊपर भी विश्वास करके देखना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आज का जनरेशन ऐसा है कि करके देखना चाहते हैं, गलतियां तो होगी लेकिन उस गलती से सीख भी लेंगे, इसलिए कुछ कुछ गलतियां होने दो। कुछ कुछ गलतियां माँ बाप कर रहे हैं आज के डेट में, इतने अनुभवी होने के बाद में भी, तो उनका बचपन है, उनको भी माफ करो। और माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी थोड़ा सा फ्री छोड़ो, उनको नया कुछ ट्राई करने दो, उनको अलग कुछ ट्राई करने

0: एक दो बार मैंने पिताजी को भी बोला है, एक दो बार मैंने माताजी को भी बोला है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैं वर्ड यूज करता हूँ इसलिए मैं आपके लिए ये करता हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए।
1: हाँ, बस उतना ही काफी है।
0: उतना ही काफी, उतना बोलेंगे तो उस वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग बनता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए घर बना रहा हूँ। वो तो अपने आप में जान चुके हैं, लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ अनकंडीशनल रहता है, उतना उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। उसके आगे वो कंडीशन डाल देते हैं तो फिर वो कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि भाई घर तक ही इसका घर ये सीमित है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके आगे कंडीशंस नहीं लिखने चाहिए, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक्सप्रेस करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ये बोलना जरूरी है और ये बोलना पड़ेगा, ये मैं आपके रेडियो के माध्यम से खुद को भी समझा रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं कहना है।
1: तो अगर आपकी माँ आपके सामने होंगी तो आप उन्हें कह सकते हैं केवल ये सेंटेंस?
0: हाँ, कह सकता हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स के इसमें नहीं जाएगा, वो थोड़ा कॉमेडी सेंस में चला जाएगा, वो थोड़ा हंसी के मोड में लेके जाऊंगा मैं
1: बोलने की ना।
0: हाँ, तो वो थोड़ा हंसी के मोड में चला जाएगा, हंसी हंसी में भी थोड़ी सीरियस बातें की जा सकती है,
1: कर सकते
0: और हंसी हंसी में भी फिर धीरे धीरे सीरियस हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी जरूरी
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल,
0: तो हंसी से क्यों ना हो कि शुरुआत तो हो जाएगी। अभी मैंने माता जी को बोला तो थैंक यू दो तीन बार उसने थैंक यू बोला, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी बड़ा एक दिल का बोझ हल्का हुए शरीर का लगा आज।
1: इसीलिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने की शुरुआत करनी है तो कल पे मत छोड़िए दोस्तों, आज मौका है, आज कर दीजिए।
0: क्या पता अगला मदर्स डे आए ना आए, उनका वो अपने साथ रहे ना रहे, अपना भी भरोसा नहीं है, उनका भी भरोसा नहीं है,
1: जीवन का भरोसा तो नहीं है। और सच में कई बार हम बहुत मिस करते हैं, जब वो डिस्टेंस भी हो जाता है कई बार तो भी बहुत मिस करते हैं, तो मौका छोड़िए मत। क्या कोई गाना है ऐसा जो आप सुनाना चाहेंगे आज मदर्स डे पे हमारे श्रोताओं को भी और अपनी माँ को भी डेडिकेट करना चाहेंगे आज?
0: जी, एक गाना है जो हम मुझे हमेशा के लिए पसंद है, वो तारे जमीन मूवी का, तारे जमीन पर मूवी का मेरी माँ। तो ये गाना मैं आपके माध्यम से मेरी माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ।
1: जरूर
0: जी।

जी श्रोताओ, मैं आपके सामने ये गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भावनाओं पे जाइएगा, थोड़ा आज गले में खराश है, तो आप सुनिए और अपनी माँ को भी याद कीजिए आज के दिन।

0: बहुत सारा स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड और अभी अभी आपने विवेक जी की आवाज़ में जो गाना सुना, एक शब्द भले छूट गया हो उसमें से, लेकिन भावना पूरी पहुंच गई। और सच में ये ऐसा गाना है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आते हों ये गाना सुन के, या इसके लिरिक्स पढ़ के, या हल्की सी नमी आ जाती हो, या शायद भावना तो अंदर आपकी बाहर आने को तड़पती ज़रूर होगी, क्योंकि सच में माँ को सब पता होता है। माँ पहचान जाती है वो चीज़ें भी जो हम खुद से भी छुपाते हैं। भले हमें डांटती है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी पिटाई भी होती है, लेकिन वो भी हमारे लिए ही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सच में माँ को कहने के लिए। और अगर आपके मन में भी इस वक्त कुछ आ रहा है तो देर बिल्कुल मत कीजिए, फ़ोन कीजिए, या अगर आपके पास हैं तब तो सबसे बेस्ट है, उन्हें कुछ कहिए, कोई जेस्चर से दिखाइए, या किस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने माँ की भूमिका आपके जीवन में निभाई है तो उसे भी कहिए हैप्पी मदर्स डे। विवेक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। थैंक यू।
0: और दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, लौट कर आएंगे। मधुबन अनप्लग जारी रहेगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में। तो तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
3: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
4: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
3: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों कई ऐसे कवि हुए, कई ऐसे ज्ञानी हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे बातें कह दी शब्दों में पिरो के कि वो दिल को छू जाती हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई, कई गहरी बातें अपने कलर से उतार दी। कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया जा सकता है। पर हम घर में सोचते हैं कि मैं तो भाई जॉब करता हूँ या स्कूल में पढ़ती हूँ या कॉलेज जाता हूँ, ना मैं कोई कलाकार हूँ और ना ही मुझे इतनी सुंदर तरीके से अपनी बात को व्यक्त करना आता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सच्चे दिल से बोले गए दो बोल, चाहे वो शायरी ना हो, चाहे वो कविता ना हो, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ ना हो, फिर भी दिल तक पहुँचते हैं और वो जो अनुभव होता है ना वो हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं जो अच्छी चीज़ है, अब देखिए बुरी चीज़ें तो हम फटाफट कह देते हैं, गिना भी देते हैं गलतियाँ और याद भी दिला देते हैं एक दूसरे को, अरे तुमने ऐसा किया था, और कोई अगर हमें हमारी गलती याद दिलाए फिर तो फटाफट उसको भाई दिलानी ही पड़ती है ना। ऐसा होता है लड़ाई झगड़े बातें, जब उन चीज़ों में हम देरी नहीं करते जबकि उसमें करनी चाहिए, डिले होना बहुत ज़रूरी है उन थॉट्स में, उन एक्शंस में जो कई बार हमें बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो प्यार में देरी क्यों, अपनी माँ से कहने में देरी क्यों कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? या कोई ऐसी शख्सियत जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जिसने आपके जीवन में माँ की भूमिका निभाई हो। दोस्तों ये भावना अगर हमें समझनी है तो बस खुद के अंदर ही जाना होगा थोड़ा सा, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हमारे अगले गेस्ट और आइए उनका नाम पूछते हैं।
5: नमस्कार, मेरा नाम अतुल है। आपको और रेडियो मधुबन के हर श्रोता को आज मदर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस।
3: तो अतुल आप मदर्स डे पर आज अपने माँ को कौन सा गीत डेडिकेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
5: जैसा कि आज का शो मदर्स डे को डेडिकेटेड है, तो आज के इस हैप्पी डे पर मैं अपनी मदर का एक बहुत फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गाना गाना चाहूँगा और सारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा।

कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा।

देवर बिन अंग नाना सोभे राजा, देवर बिन अंग नाना सोभे राजा। सास ससुर बिन ससुरो न सोभे, सास ससुर बिन ससुरो न सोभे, सास ससुर बिन, सास ससुर बिन।

0: बिन अंगना ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा. So this was one of the favorite songs my mother likes, and ye gana main unko aaj dedicate kar raha hu. Hope everybody liked it aur unhe acha laga ho.
1: थैंक यू सो मच अतुल, बहुत सुंदर गाना आपने गाया. और सच में ऐसा लग रहा था कि वो ना एक जो लोकल फ्लेवर आता है, जो हमारे गाँव में हमारे यू नो घरों में गीत गाए जाते हैं, फिर वो वाली बात आ रही थी. और सच में अपने माँ का फेवरेट गाना आपने गाया, बहुत सुंदर लगा होगा उन्हें भी हमें लगता है. अब मैं आपसे जानना चाहूँगी अतुल, इतना प्यारा आपने गीत गाया, कोई ऐसी माँ के बारे में अपनी बात भी बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आप उनसे कहना चाहते हैं, आज वो बात अपनी जरूर अपनी माँ से कह दीजिए.
0: और आज मदर्स डे पर अपनी माँ की तारीफ के लिए मैं कितना भी कहूंगा, जितना भी कहूंगा उतना कम ही होगा, बिकॉज उसकी कोई लिमिट नहीं है. आई एम deeply deeply deeply grateful for all her love, her dedication. उन्होंने जितने sacrifices मेरे लिए किए हैं, मुझे पालने के लिए, मुझे इतना बड़ा करने के लिए, मुझ में अपने values, अपने संस्कार डालने.
1: बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है, संस्कार डालना वो माँ ही कर सकती है. तो
0: values, अपने संस्कार डालने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है. तो मैं ताउम्र इस जीवन में भी, शायद अगले जीवन में, अगर वो हम एक दूसरे के सामने आते हैं, हमारा आमना सामना होता है, तो भी मैं उस जीवन में भी उतना ही शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझ पर अपना एफर्ट, अपना समय, अपना प्यार लुटाया है. One of the best things as a mother towards me, कि उनके अंदर बहुत patience है. वो जैसे cranky, notorious और शरारती इंसान को, एक शरारती बच्चे को पालना, इतना बड़ा करना एक बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए भी, बिकॉज हर जगह इधर शरारत कर रहा हूँ मैं, उधर तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट शी हैज मेंटेन्ड पेशेंस. वो अपना काम, कंपोज बिहेवियर रखा है. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मार नहीं खाई है, मैं बहुत पिटा हूँ, बट जिस हिसाब से मैंने उनकी नाक में दम करके रखा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हाईएस्ट कोई एक अवार्ड मिलना चाहिए पेशेंस के लिए, उनको दे देना चाहिए. बिकॉज मैं एज अ चाइल्ड क्या, मैं अभी भी नाक में दम करने में, मैं ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कोई ऐसी कोताही छोड़ रखी है उनको परेशान करने में, बट स्टिल शी स्टिल लव्स मी विद दैट सेम फील, सेम डेडिकेशन. तो आई एम ब्लेस्ड, मैं इससे ज़्यादा और तो कुछ मांग भी नहीं सकता हूँ कि हाँ. और एक बेस्ट चीज़ ये रही है कि उनकी वजह से मेरा बचपन, ठीक है आज मेरी उम्र 35 साल के ऊपर हो गई है, पर वो जो बचपना था, जो 13 साल के अंदर वो जो एक मासूमियत थी, जो शरारत करने का एक जज्बा बोल सकता हूँ मैं, या मेरी अंदर की एक जो स्किल थी, वो आज भी जिंदा है. बिकॉज शी लिसन्स टू इट, शी केटर्स टू इट. उन्हें समझ में आता है कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, और मेरे अंदर की खुद की अपनी एक जो फीलिंग है उसको उन्होंने अभी तक जिंदा रखा है, उसे वो समझती हैं. सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि हाँ आज इस स्टेज पर भी आकर उन्हें वो चीज़ें समझ में आती हैं, और मेरे अंदर का वो जो बचपन है उनकी वजह से है. सो हैट्स ऑफ टू हर एफर्ट्स, हर डेडिकेशन. एंड अपनी तरफ से फिलहाल मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि उन्हें प्राउड करवाऊँ. मेरी अपने जो भी लक्ष्य थे या उनके प्रति जो मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ थी, मैंने उन्हें पूरा किया है और आगे भी करता रहूंगा. तो इन दिस होप कि हाँ मैं एक बेहतर बेटा बन पाऊँ, एक बेहतर इंसान बन पाऊँ, वो गर्व उनको मैंने वो महसूस करने के लिए दिया है. एंड थैंक यू माँ, आई लव यू बिकॉज यू हैव लाइक यू आर द बेस्ट. सिंपल इज दैट, यू आर द बेस्ट बेस्ट बेस्ट बेस्ट. और जाने से पहले एक चीज और, देर आर अदर वुमेन टू, सिर्फ मेरी माँ नहीं, और भी कुछ ऐसी महिलाएं रही हैं मेरे जीवन में, जहाँ मेरी मौसी हैं या मेरे दोस्तों की मम्मियाँ रही हैं, जो जिन्होंने जब जब जरूरत थी मुझे, तो सहारा दिया है, समझा है, कुछ चीज़ें समझाई हैं कि जीवन में जब मैं कभी भटक रहा था तो आई डू रिमेम्बर वो मदरली फिगर्स भी वहाँ पर थे जिन्होंने मेरे अच्छे के लिए अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम का इन्वेस्टमेंट दिया है, जहाँ उन्होंने मुझे सुना है, मुझे समझाया है, मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और उन्हें भी मैं अपनी तरफ से हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच अतुल। और बिल्कुल ऐसे महिलाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने हमारे जीवन में वो भूमिका निभाई। उन सभी को आज रेडियो मधुबन भी बहुत दिल से प्रणाम करता है, नमन करता है और कहता है हैप्पी मदर्स डे।

0: जी हाँ दोस्तों, जब माँ की बात आती है तो फिर शब्द कम पड़ ही जाते हैं, लेकिन संगीत का सफर है तो हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजे उषा जी भी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पर।
1: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने आज खास दिन के लिए हमें याद किया इसके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देरी ना करते हुए मैं आपसे भी हाँ जी जी जानना चाहूंगी कि आप सबसे पहले
1: इस दिन की खास ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और हाँ जी, और सब मैं आरुषि जी
0: जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी माँ के लिए, आज कुछ विश करना चाहेंगे उन्हें?
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं हर माँ के लिए यही कहना चाहूंगी, माँ तो कहते ना कि ममता की मूरत होती है और माँ रत्नों की खान होती है। वो कहते हैं कि माँ ए माँ बाकी बदा वगड़ा ना वाह, ये गुजराती में कहावत है।
0: अच्छा
1: जी, तो जी। मतलब माँ की होड़ इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल सही बात है, और आप खुद एक माँ हैं, बहुत प्यारे प्यारे आपके जो बहुत सुंदर सुंदर परिवार वाले हैं वो भी मुझे लगता है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपने आप सभी को वो प्यार अनुभव कराते रहते हैं अपना रोल हर जगह जहाँ भी जाते हैं। और आपके जो माता जी हैं वो भी हम समझते हैं इस उम्र में भी इतने एक्टिव और इतने खुश मिजाज हैं कि वो भी एक उदाहरण है हम सब के लिए।
1: और देखे हर माँ, वो कहते हैं ना त्याग की मूर्त होती है, माँ भले खुद दुख सहन कर लेती है, खुद भूखी रहेगी, लेकिन अपने संतान को अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं रहने देंगे, इसलिए माँ की महिमा है। कहते हैं ना त्याग के बिना कोई किसी की तारीफ नहीं करता, और माँ तो माँ के नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कि अच्छी सी चॉकलेट खा ली हो मुंह में।
0: सही बात है, माँ शब्द इतना मीठा है, इससे मीठा शब्द नहीं होगा। उषा जी, क्या कोई दो पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे आज मदर्स डे पे खास हमारे श्रोताओं को?
1: जरूर जरूर। रुके तो चांद जैसी है माँ, चले तो हवाओं जैसी है माँ, वो माँ ही है जो धूप में भी ठंडी छाव जैसी है। वो कहते हैं कि लाड़ प्यार की बस यही है, दोस्तों मेरे लाड़ प्यार की बस यही है, मैं बिगड़ भी जाऊं ना तो वो मुझे अनमोल कहती है। नींद अपनी भुलाकर सुलाया है मुझे, नींद अपनी भुला करके सुलाया है मुझे, अपने आंसू सुखा करके हंसाया है मुझे। तो मैं आज के इस खास दिन पर मैं अपनी भी माँ को याद कर लेती हूँ सभी माताओं के साथ कि माँ तो कहते हैं ना कि ये एक दिन मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन एक दिन नहीं, रोज मनाना चाहिए। रोज माँ की महिमा जितनी आप गाओ उतनी कम है, और हमारे भारतीय संस्कृति में तो यही कहा जाता है कि बच्चे अपनी माँ का अगर चरण धोकर के रोज पिए ना तो भी उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते।
0: माँ बाप का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता
1: जी,
0: संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने
1: बिल्कुल
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, बहुत इमोशनल और बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज इस दिन को और खूबसूरत बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, आपको भी और हमारे सुनने वाले सभी छोटा बंधुओं को भी
0: शुक्रिया दोस्तों, और उषा जी के साथ साथ आप सभी का भी धन्यवाद। आप सभी रेडियो का हिस्सा हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, और आपकी खुशियों में आपके गम में हम आपके साथ हैं, शामिल हैं, क्योंकि ये एक परिवार है। तो दोस्तों, रेडियो मधुबन से अपना ये रिश्ता बनाए रखें, बरकरार रखें, अपने मैसेजेस अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेजेस के माध्यम से अपने विचार ज़रूर हम तक पहुँचाते रहें। हमें भी पता चलता रहता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो फीडबैक हम तक पहुंचता है। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर संगीत का आपको शौक है, तो जरूर आपका नाम, आपके गांव का नाम हमें लिखकर भेज दीजिए हमारे नंबर पर जो कि है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414151415। अब फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन सच में दोस्तों, अपनी भावनाओं को इजाज़त मत लेने दीजिएगा, खुद से दूर मत करिएगा। अगर वो सच्ची हैं, अच्छी हैं, प्यारी हैं, कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो मत कहिए, लेकिन अच्छा है कुछ कहने के लिए तो देरी बिल्कुल मत करिए, क्या पता कल वक्त मिले ना मिले, है ना? तो दोस्तों, अपनी माँ को, अपनी बहन को या किसी भी रिश्ते को अगर आप ये कहना चाहें कि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ या थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए किया, किसी भी तरह से जो आपके मन में आ रहा हो कह दीजिए, एक सेंटेंस हो, एक पैराग्राफ हो, कुछ लंबा चौड़ा हो, लेकिन अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो कह दीजिए। फिलहाल लेते हैं इजाजत और सलाम करते हैं हर उस माँ को जिसने कर्तव्य अपने ऐसे निभाए कि उनके कई बेटे भारत माँ की रक्षा में भी खड़े हैं। उन माओं को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपने बेटे का, अपनी बेटी का मोह ना करके देश को समर्पित कर दिए। बहुत बड़ी बात है, ये करना आसान नहीं होता। बहुत कमाल की वो माएँ होती हैं जब उनका बेटा शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर आते हैं, तब भी वो सलाम करती हैं देश को, गर्व से कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को भारत माँ के नाम कर दिया। उस माँ को भी हम सलाम करते हैं और आप सभी को कहते हैं दिल से हैप्पी मदर्स डे, मातृदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 12 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। प्रीत बुद्धि आत्मा के लक्षण क्या है और विपरीत बुद्धि का विनाश कैसे होता है, उस बात को बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। साथ ही बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को सबसे पहली बात दुनिया के मनुष्य को समझाना है, एक तरफ शिव बाबा की महिमा लिख करके दूसरी ओर से कृष्ण की महिमा लिखनी है और फिर दोनों का अंतर बताना है। साथ ही साथ पतित पावन, क्या परमात्मा है या पानी की गंगा है, इस बात का भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए सबको समझाना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य अगर ये कहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर प्रीत किससे करे, किसको याद करे, इसीलिए इसको असत्य कहा जाता है। तो सत्य और असत्य बात को भी सबके सामने स्पष्ट करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने 6 निशानियां बताई है। पहली निशानी, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता, वह आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी निशानी, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीचि ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठी बात, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो एक तो बाबा ने कहा, एक बाप से ही बुद्धि योग रहेगा, किसी देहधारी को आशिक या माशुक नहीं बनाएंगे, प्रीत बुद्धि सदा विजयी बनेंगे, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहेंगे, रोज अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे, दधीचि ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां देंगे और उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी, बाबा कहते ये ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। भले मालिक तो दोनों बनते हैं लेकिन पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है,
बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते, मैं खुद कहता हूं, क्या कहते हैं कि उनका विनाश होगा, जो विपरीत बुद्धि होंगे उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजयी होगी, ये बाप खुद कहते हैं। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। दुनिया में जितने भी संबंध हैं, वहां प्रीत नहीं है, स्वार्थ है। इसलिए बाबा कहते, इस दुनिया में प्रीत तो कोई है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन, यह तो जरूरी है ना। दूसरा, पहली बात तो शिव बाबा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखनी है। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए इनको। बाबा कहे, सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, जो लौकिक दुनिया में गीता पाठशाला वाले हैं उनको देना चाहिए, वह तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए। क्यों क्यों उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए? क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं, वही रास्ता भूले हुए हैं कि परमात्मा कौन है, और सबको भी भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना, तो जो समझ में आए सो करना, तो मनुष्य भी समझे। ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है, गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। बाबा आकर के सत्य में सत्य ही बताते हैं। मनुष्य जो अर्थ करते वो बिल्कुल रॉन्ग है, कोई भी सत्य नहीं कहते हैं, मैं ही सत्य बताता हूं। सबसे पहली बात कौन सी बाबा ने सत्य बताई? परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है, ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी है। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं, दूसरी बात, फिर एक तो सर्वव्यापी की बात हो गई। बाप कहते हैं, यूरोप वासी यादव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। पहले पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं? यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल, बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा ही पाते हैं, जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, सर्विस करने वालों को ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होंगी। बाबा कहे, बाप से प्रीति नहीं है, चाहे सगे बने व
सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कब पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर, 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर से कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहां गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर से कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, क्या कहते? हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं है। भारत की बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं। जो भी किंग आदि थे उनके स्टैच्यू तो बाहर रास्ते पर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, उनको कोई बाहर रास्ते पर नहीं बिठाते हैं, उनके लिए घर मंदिर बनाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। इतना लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य थे। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी, एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है तो शिव बाबा को भी इतना नहीं करते हैं। हम बाबा कहते हैं आपस में लगाव हो जाता है, तो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम भी नहीं सुनाते, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं है। सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता वह आता है ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो,
ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमें समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए, कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर से कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। चित्र फाड़ देने से कोई सत्य झूठ नहीं हो जाता है, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रडिया नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है, भावक इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहाचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहां तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हीरे हुए हैं वह यहां ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। बाबा अपना अनुभव सुनाते, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहाचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। इस पढ़ाई में ग्रहाचारी जरूर बैठती है उनके लिए जो बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहां तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा, वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे राज्य भाग्य पाएंगे।
निधन के जो होंगे वह ऐसे मरेंगे और जो धनी के होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहने इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। इतनी अच्छी बात बताई, तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। बॉम्बजादी बनाते हैं उन करोड़ों से तो अपना विनाश करते हो, और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। इतनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देधारियों से नहीं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, इतना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है? सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एकर स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हो। हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एकर स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना, इतना अंतर हो गया। अच्छा,